0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। जीवन की समस्याओं को लेकर के आप आएंगे, समाधान मैं बताऊंगा। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार महाराज।
0: जय श्री बालाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी,
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले कहीं बाहर घूमने गए थे क्या?
1: हाँ जी।
0: और वहाँ पे आपने रास्ते में चलते हुए मीठा खाया होगा?
1: जी हाँ।
0: तो भैया, मीठा खाने के साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखते कि मीठा रास्ते में चलते हुए नहीं खाते, क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो किसी प्रकार के दुष्ट शक्तियां जो हैं वो हमारे आसपास होती हैं, वो परेशानियां खड़ी करती हैं, जिस वजह से क्या है कि आप दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं, परेशानियां ज़्यादा बन रही हैं और काफ़ी समय से आप दिक्कत में आ रहे होंगे, परेशानियों में आ रहे होंगे। आशीष जी,
1: मैं बहुत करवाए हैं गुरु जी।
0: हाँ, दवा कराए होंगे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया होगा, दवा का असर नहीं होगा
1: जी।
0: आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उसको आप करना, आपके जीवन में परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने 5 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च लेकर के और चौराहे पर रख देना है उसको
1: जी।
0: चौमुखा दिया जलाना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है
1: जी।
0: ये उपाय करना है इतवार को। 5 उपाय करेंगे, आपके जीवन में परेशानी काफी तक दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बालाजी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते रहे, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, हमारे जीवन में परेशानी जो आती है, स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो, उनका सभी का समस्या का समाधान है। दर्शकों, जीवन को जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री कला सरकार।
0: नाम बोलो बेटा, क्या है?
2: पंडित जी, मैं शरद जोशी बात कर रहा हूँ।
0: जी शरद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है?
2: पंडित जी, मैं एक लड़की के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था।
0: ठीक है।
2: और हम दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था और हम एक पति पत्नी के घर रह रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी
0: जी।
2: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
2: नहीं सर, पंडित जी लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
2: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता, उस पर कत्था लगाना है और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है, तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। और कत्था के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
2: जय श्री बालाजी।
0: जी बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु सत्यता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी सरकार।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
2: रवि बात कर रहा हूँ गुरु जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा?
2: नोएडा से बात कर रहा हूँ।
0: हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है?
2: जी, एक लड़की से प्रेम करता हूँ गुरु जी।
0: जी।
2: घर वाले नहीं मानते हैं।
0: जी
2: जी
0: बेटा, ऐसा है, घर इंटरकास्ट है क्या वो?
2: जी
0: अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है?
2: जी गुरु जी, अंतर जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
2: जी जी जी जी गुरु जी।
0: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल।
2: जी जी जी।
0: बेटा ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, एक कार्य करना पड़ेगा तुम्हें।
2: जी गुरु जी बताइए।
0: हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप।
2: जी।
0: खुद लगाना और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है?
2: जी।
0: और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
2: जय बालाजी, मेरा भी प्रणाम।
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा?
2: हर्षवर्धन तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
2: जी छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं महाराज जी।
0: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
2: भट्टी का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
0: कार्य चल नहीं रहा है, काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
2: ईंट का है, ईंट का बनाते हैं।
0: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा। ईंट भट्टे का कार्य लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए।
2: जी हाँ।
0: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, रा से राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
2: जी जी राघव।
0: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया?
2: जी हाँ।
0: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में?
2: जी गुरु जी।
0: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान होगा, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा। बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा, 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए। तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
3: जय श्री राम गुरु जी।
0: जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फल फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
3: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
0: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
3: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
0: घर में कलेश रहता है, पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें, छत पे कोई कूद रहा है, खुद आ रहा जा रहा है?
3: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
0: बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है?
3: जी जी।
0: और जब तुम जाके देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए। और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी सा नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो
3: हाँ जी जी जी जी
0: उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक, और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूंक मारनी है, 3 फूंक मारनी है, और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने, और थोड़ा सा गंगा जल पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
4: उनका बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता गुरु जी, मान लीजिए कि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
4: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं, और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों की ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी, जिस वजह से।
4: किसने कराया है
0: बेटा? ऐसा है, किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
4: जिसकी उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के ऊपर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
4: जी।
0: आप जब ऐसा करो अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
4: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
4: अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा, और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
5: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
5: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
5: मैं गाजीपुर से बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
5: महाराज जी, हमारा एक मीटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
5: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग 4 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
5: और लड़की भी तो राजी है, एग्री है, तो घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
5: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है, और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना, और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे, तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पे जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें, और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें, बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राम।

0: जय श्री बालाजी सरकार। आप सभी के सामने मैं आपका आचार्य परमानंद पुनः आपका स्वागत करता हूं। जीवन की समस्याओं को लेकर के आप आएंगे, समाधान मैं बताऊंगा। और इसी श्रृंखला में हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक कॉलर, जानना चाहेंगे उनकी समस्या क्या है और बताना चाहेंगे उसका समाधान क्या है। जय श्री बालाजी।
1: जय श्री बालाजी सरकार महाराज की।
0: जय श्री बालाजी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम आशीष बात कर रहे हैं, आशीष जी एमपी मध्य प्रदेश।
0: जी आशीष जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या आपके जीवन में?
1: जी पंडित जी, हमारा जो है सर दर्द होता रहता है।
0: ठीक है
1: जी,
0: स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है
1: जी।
0: माफ कीजिएगा आशीष जी,
1: जी
0: आप मुझे एक बात बताने का कष्ट करेंगे कि आप अभी कुछ दिन पहले कहीं बाहर घूमने गए थे क्या?
1: हाँ जी।
0: और वहाँ पे आपने रास्ते में चलते हुए मीठा खाया होगा?
1: जी हाँ।
0: तो भैया, मीठा खाने के साथ साथ में आप इस बात का ध्यान रखते कि मीठा रास्ते में चलते हुए नहीं खाते, क्योंकि जब मीठा खाते हैं तो किसी प्रकार के दुष्ट शक्तियां जो हैं वो हमारे आसपास होती हैं, वो परेशानियां खड़ी करती हैं, जिस वजह से क्या है कि आप दुष्ट शक्तियों के प्रभाव में आ चुके हैं, परेशानियां ज्यादा बन रही हैं और काफी समय से आप दिक्कत में आ रहे होंगे, परेशानियों में आ रहे होंगे। आशीष जी,
1: मैं आप बहुत करवाए हैं गुरुजी।
0: हाँ, दवा कराए होंगे, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया होगा, दवा का असर नहीं होगा
1: जी।
0: आशीष जी, मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, उसको आप करना, आपके जीवन में परेशानियां जो हैं दूर हो जाएंगी और स्वास्थ्य आपको लाभ प्राप्त होगा। पहला उपाय मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने 5 काली मिर्च लेनी है और काली मिर्च लेकर के और चौराहे पर रख देना है उसको
1: जी।
0: चौमुखा दिया जलाना है, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना, अपने घर चले जाना है
1: जी।
0: ये उपाय करना है इतवार को। 5 उपाय करेंगे, आपके जीवन में परेशानी काफी तक दूर हो जाएंगी, आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। बालाजी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करते रहें, आपके ऊपर आशीर्वाद बना के रखें। जय श्री बालाजी। दर्शकों, हमारे जीवन में परेशानी जो आती है, स्वास्थ्य को लेकर के हो चाहे कैसे भी हो, उनका सभी का समस्या का समाधान है। दर्शकों, जीवन को जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो। अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी सरकार।
0: नाम बोलो बेटा, क्या है?
2: पंडित जी, मैं शरद जोशी बात कर रहा हूँ।
0: जी शरद, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: मैं बोरीवली मुंबई से बात कर रहा हूँ।
0: जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है?
2: पंडित जी, मैं एक लड़की के साथ पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था।
0: ठीक है।
2: और हम दोनों का बहुत ही अच्छा संबंध था और हम एक पति पत्नी के घर रह रहे थे, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं थी
0: जी।
2: लेकिन अचानक से उस लड़की का स्वभाव इतना ज्यादा बदल गया कि मुझे लग रहा है कि मैं उसके कभी करीब ही नहीं था या हम दोनों का कभी कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब अचानक से उसका प्रभाव मेरे प्रति इतना नेगेटिव हो जाना, मैं बहुत चिंतित हूँ।
0: पिछले 7-8 महीने से ऐसा हो रहा है क्या?
2: नहीं सर, पंडित जी लगभग 7-8 महीने से प्रॉब्लम हो रही है मुझे।
0: और क्या वो जो लड़की है वो जॉब करती है?
2: हाँ पंडित जी, वो जॉब कर रही है, टिकट में है वो।
0: ठीक है भैया, ऐसा है कि उस लड़की का जो है आपका और उसका विद्वेषण कर दिया गया है, मन दूसरे एक दूसरे से हट गया है। चाहे बेशक आप कितना ही उसके लिए कुछ कर रहे हो, कैसे भी कर रहे हो, लेकिन उसका मन आपके प्रति आसक्त नहीं है, जिस कारण से क्या है, और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है। उसने विद्वेषण के माध्यम से ये कार्य को आप में उसने क्रियान्वित किया है, जिस कारण, क्योंकि पहले ही वो उसके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन जब आपका और उसका संबंध विच्छेद नहीं हुआ तो उसने विद्वेषण क्रिया की हुई है। आपने कार्य ये करना है, पान लेना है, पान का पत्ता, उस पर कत्था लगाना है और माँ कामाख्या का ध्यान करते हुए, बालाजी सरकार का ध्यान करते हुए आपने उसको खिला देना है और बालाजी से प्रार्थना करनी है, बाबा अगर मेरा प्रेम सच्चा है, उसका प्रेम सच्चा है और किसी तीसरे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है तो उसको आप दूर करें और हमें पुनः मिलाएं, कैसे, जैसे भगवान श्री राम और सीता को मिलाया था। आप एक बार ही यदि ये करते हैं तो निसंदेह आपको आपका प्रेम अवश्य प्राप्त होगा। और कत्था के साथ में आपने थोड़ी केसर और डाल लेनी है बेटा, ये कार्य करेंगे। जय श्री बालाजी।
2: जय श्री बालाजी।
0: जी बेटा देखिए, जीवन है, जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, चाहे प्रेम विवाह हो, चाहे प्रेम का हो, चाहे वैवाहिक जीवन क्यों ना हो और चाहे व्यापार संबंधित क्यों ना हो, क्योंकि जब समस्याएं आती हैं और जब रास्ता नहीं मिलता, अगर स्वास्थ्य खराब है और स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी डॉक्टर्स जो हैं उसका आप उपाय नहीं बता पा रहे हैं, उसका निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, परेशानियां दर परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऊपरी बाधा, प्रेत बाधा, भूत बाधा अथवा तो किसी प्रकार का भी और तंत्र मंत्र का चक्कर वो आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज के युग में लोग विश्वास नहीं करते, परंतु सत्यता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं, बात करते हैं। जय श्री बालाजी बेटा।
2: जय श्री बालाजी सरकार।
0: हाँ बेटा, क्या नाम आपका?
2: रवि बात कर रहा हूँ गुरु जी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा?
2: नोएडा से बात कर रहा हूँ जी।
0: हाँ बेटा, क्या जानना चाहते हो, क्या समस्या आ गई है?
2: जी, एक लड़की से प्रेम करता हूँ गुरु जी।
0: जी।
2: घर वाले नहीं मानते हैं।
0: जी
2: जी
0: बेटा, ऐसा है, घर इंटर कास्ट है क्या वो?
2: जी
0: अंतर जातीय है क्या? आपकी कास्ट के नहीं है?
2: जी गुरु जी, अंतर जाती है।
0: कितने वर्ष हो गए? 5 वर्षों से उससे प्रेम कर रहे हो?
2: जी जी जी जी गुरु जी।
0: उसका नाम ना से शुरू होता है, ना से नल?
2: जी जी जी।
0: बेटा ऐसा है कि घर वाले मान जाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, ये कार्य करना पड़ेगा तुम्हें।
2: जी गुरु जी बताइए।
0: हनुमान जी के मंदिर में जाना, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाना और हनुमान जी के दाएं पैर का सिंदूर ले लेना आप
2: जी,
0: खुद लगाना और खुद लगा करके माता पिता को लगा देना, ठीक है
2: जी।
0: और उनसे हनुमान जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे जीवन में जो कष्ट आ रहा है आप उसको दूर करें और जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो मेरे उसको मेरे परिवार वाले उसको स्वीकार करें और मेरे जीवन की परेशानी को दूर करें। बालाजी कृपा हो, 5 मंगलवार करोगे आपका कार्य बन जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी।
2: जय बालाजी, मैं रवि प्रणाम।
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम बेटा?
2: हर्षवर्धन तिवारी।
0: कहाँ से बोल रहे हो हर्षवर्धन?
2: जी छत्तीसगढ़ से बात करें महाराज जी।
0: क्या समस्या आ गई बेटा जीवन में?
2: भट्टी का कार्य है, कार्य चल नहीं रहा है हमारा।
0: कार्य चल नहीं रहा है, काय का कार्य करते हैं आप? क्या कार्य है आपका?
2: ईंट का है, ईंट बनाते हैं।
0: ईंट भट्टे का कार्य है बेटा, ईंट भट्टे का कार्य लगभग लगभग 7 से 8 महीने हो चुके हैं बंद हुए।
2: जी हाँ।
0: और इसमें मुझे आप एक बार बताएं, ये जब आप पिछले दिनों जब आप भट्टे पे गए थे उस समय किसी प्रकार का एक व्यक्ति जिसका नाम र से शुरू होता है, रा से राकेश इत्यादि करके, वो था क्या?
2: जी जी राघव।
0: राघव था, और उससे आपका झगड़ा भी हुआ और उसको आपने बाहर निकाल दिया?
2: जी हाँ।
0: उसके निकलने के बाद ही परेशानियां चालू हुई आपके जीवन में?
2: जी जी गुरु जी।
0: तो बेटा उसने तांत्रिक प्रयोग कराया है, तांत्रिक प्रयोग करा करके आपके भट्टे को बांध दिया है। बांधने की वजह से सारा का सारा परेशानियां बहुत ज्यादा आ रही हैं और भट्टे का काम नहीं चल रहा, आपको नुकसान पे नुकसान हो रहा, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा होगा। बेटा एक कार्य तुम्हें करना है, पीली सरसों लेनी है, लोहवान और गूगल लेना है, उसमें हनुमान जी का 12 नाम जो है, 12 नाम का जाप करना है और उसको अभिमंत्रित करके 12 नामों से आपने भट्टे पे भट्टे के चारों तरफ डाल देना है। शनिवार को यह कार्य करना है, आपका भट्टा चालू हो जाएगा, 7 शनिवार लगातार करना होगा, धीरे धीरे परेशानी जो है काफी हद तक दूर हो जाएंगे। और राघव नाम का व्यक्ति जो है उसको आप संपर्क में मत रखिएगा, वो दोबारा उसने प्रयास किया होगा आने के लिए और आपका विचार बन रहा होगा उसको दोबारा रखने के लिए।
2: जी जी।
0: तो बेटा उसको रखना मत, परेशानियां बढ़ जाएंगी, इसलिए अपना ध्यान रखना और थोड़ा सा जो उपाय बताया जा रहा है आप उसको करने का प्रयास करना। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी।
3: जय श्री राम गुरु जी।
0: जय श्री राम बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। हाँ बेटा, कहाँ से बोल रहे हो, क्या नाम है?
3: जी मैं विंध्याचल से बोल रही हूँ।
0: हाँ बेटा, समस्या बताओ, क्या परेशानी आ गई है?
3: मेरे घर में बहुत कलेश रहता है गुरु जी।
0: घर में कलेश रहता है, पिछले दिनों में कुछ आवाजें भी सुनाई दी थी तुम्हें छत पे, कोई कूद रहा है, कुछ आ रहा जा रहा है?
3: मतलब आपस में सब लोगों की नहीं बनती है, सब लोग आपस में किसी की बातें किसी को अच्छी नहीं लगती।
0: बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि क्या तुम्हें ऐसा लगा पिछले दिनों रात को सोते समय 12-1 बजे के आसपास कि छत पे कोई चल रहा है, छत पे कोई आवाज आ रही है?
3: जी जी।
0: और जब तुम जाके देखे तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला? बेटा ऐसा है कि समस्या ये आ रही है कि तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो थोड़ी सी परेशानी भरी हैं, क्योंकि किसी ने ऐसा प्रयोग किया है कि तुम्हारे घर में किसी की मति एक जैसी ना हो, किसी की मति जो है सबकी मति फ्री रहे, सारे के सारे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते रहें, सुख शांति घर की खत्म हो जाए। और जिस वजह से क्या है कि तुम्हारे पड़ोस में किसी स नाम की कोई औरत रहती है क्या? हेलो।
3: हाँ जी जी जी
0: उसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास है बेटा, उस वजह से थोड़ा कोई ना कोई परेशानी बनाई है उसने, तो परेशानी आ रही है। तुम्हें एक काम करना होगा, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, 5 पाठ करने हैं रोजाना 1 हफ्ते तक। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में गंगा जल लेना है कटोरी में, और 5 पाठ करने के बाद गंगा जल में फूंक मारनी है, 3 फूंक मारनी है, और पूरा गंगा जल घर में छिड़क देना तुमने। और थोड़ा सा गंगा जल पीने वाले पानी में डाल देना बेटा, तो तुम्हारी सारी परेशानियां जो है दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे बालाजी अपनी कृपा करेंगे और तुम्हारी परेशानियों को दूर करके तुम्हारे परिवार में खुशहाली सुख संपत्ति लेके आएंगे और तुम्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे बेटा। जय श्री बालाजी बेटा, खुश रहो, सदा सुखी रहो।
2: उनका साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता गुरु जी, मान लीजिए कि हर प्रत्येक महीने 15,000 रुपए का इलाज में करवाना ही पड़ता है।
0: और रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा होगा?
2: रिपोर्ट में नॉर्मल सब डॉक्टर बताते हैं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है पैसा खाए जा रहे हैं मेरा।
0: हाँ बेटा, ऐसा है कि तुम्हारा जो है सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि तुम्हारे घर में किसी प्रेतात्मा का जो है वो वास हो चुका है। प्रेतात्मा का वास होने के कारण ही सारी समस्याएं बन रही हैं। और जो प्रेतात्मा का जब वास वैसे नहीं हुआ, किसी ने कराया हुआ है, तो मंत्रों की ताकत से तुम्हारा प्रेतात्मा का जो वास हो रखा है घर में, इस वजह से तुम्हारी घरवाली की तबीयत खराब रहेगी, पैसा खराब होगा, काम धंधा चलेगा नहीं, झगड़ा बनेगा और परेशानी ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। जिस वजह से
2: किसने कराया है
0: बेटा, ऐसा है किसने कराया ये तो नहीं बता सकते हम, लेकिन इसमें यह है कि आपको उपाय जरूर बता देंगे कि किस प्रकार से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है।
2: जी उपाय बता दीजिए
0: बेटा। एक काम करना, तुमने गोला लेना है, गोले में बताशे रखने हैं, लौंग रखनी है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक जायफल रखना है, नींबू काट के रख लेना, घर के पर वार करके आपने चौराहे पे जा करके उसको जला देना है।
2: जी।
0: आप जब ऐसा करो अथवा तो पानी में बहा देना दोनों।
2: कितने दिन करना है
0: बेटा? ये करना है तुम्हें लगभग लगभग 21 दिन करना होगा बेटा।
2: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: 21 दिन करोगे तो सारी समस्याएं तुम्हारी दूर हो जाएंगे, परेशानी खत्म हो जाएंगे, घर में सुख शांति इत्यादि का वास होगा और सारी परेशानी जो है सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी बेटा। बालाजी कृपा करेंगे, बालाजी कृपा हुई तो तुम्हें पुनः परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। जो प्रेतात्मा का वास है वो खत्म हो जाएगा बेटा। जय श्री बालाजी, सदा सुखी रहो, सदा खुश रहो बेटा। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा फलो फूलो। मेरे प्यारे दर्शकों, बालाजी की कृपा जिसके घर के ऊपर होती है, जिस व्यक्ति के ऊपर होती है, उसको परेशानी छू भी नहीं सकती। अगर परेशानियां आई हैं, परेशानियां चल रही हैं, तो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाती है। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं, जानना चाहेंगे क्या समस्या है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी बेटा।
2: श्री बालाजी महाराज,
0: खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। क्या नाम तुम्हारा?
2: ऋषि नाम है महाराज।
0: कहाँ से बोल रहे हो ऋषि?
2: मैं गाजीपुर बात कर रहा हूँ।
0: गाजीपुर से बेटा, समस्या बताओ, समस्या क्या है?
2: महाराज जी, हमारा एक मीटर है, मैं किसी को लाइक करता था।
0: अच्छा।
2: तो नियंत्रण देखा जाए उसमें लगभग 4 महीने से ब्रेकअप चल रहा है, शादी भी करना चाहता था।
0: ठीक है।
2: और लड़की भी तो राजी है, एग्री है, तो पूर्ण रूप से घर वाले नहीं मान रहे हैं हमारे।
0: आपके घर वाले नहीं मान रहे?
2: जी महाराज।
0: कोई बात नहीं, घर वाले मान जाएंगे। एक काम करना है, शुक्रवार के दिन तुमने पेड़ा लेने हैं 5, और 5 पेड़ा में माँ भगवती का नाम लेना है, माँ भगवती के मंत्र का जाप करना है और माँ भगवती से प्रार्थना करनी है, माँ जिससे मैं प्रेम करता हूँ, जिसको चाहता हूँ, उससे मेरा विवाह कराइए, मेरे घर वालों को मनाइए। उसमें माता पिता जो जो नहीं मान रहे उन सब का नाम लेना और माँ से प्रार्थना करना, मैया कृपा करेंगे तुम्हारा विवाह जो है उसी के साथ कराने के लिए राजी हो जाएंगे, जिसको तुम्हें चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो। टेलीविजन स्क्रीन पे जो संस्थान के नंबर दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। अगले एपिसोड में आकर के पुनः मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा, पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, सुखी रहें और आप अपने आचार्य परमानंद को इजाजत दें, आज्ञा दें, बालाजी कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, उनका आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता रहे। जय श्री बालाजी सरकार, जय श्री राम।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
5: परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: जश्न आजादी के रंग में रंगा सारा देश, तिरंगे की रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, लखनऊ और ग्वालियर की प्रमुख इमारतें, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ देश। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में सुरक्षा बल मुस्तैद, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। लेह में तैयार हुआ इंटरनेशनल आइस हॉकी स्टेडियम, अब हर मौसम में आइस हॉकी खेलना होगा संभव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लद्दाख को मिली नई पहचान। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 5 लाख डहेलिया फ्लावर्स से बनाया गया फूलों का कालीन, जापान की मशहूर डिजाइनर ने तैयार की खूबसूरत आकृति, दीदार के लिए उमड़े हैं सैलानी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे पर, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ।
3: जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बांध दिया खंबे में, कहां है भगवान? प्रहलाद जी बोले, ये पूछो कहां नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईशावास्मिदं सर्वम, यत्र रामा तत्र रामा च सर्वत्रो श्री रामा, यहां वहां सर्वत्र विद्यमान है भगवान, कण कण में व्याप्त है, यहां वहां बाटन में, घाटन में, बीथन में, बागन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटका में, बन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, कुंजन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोकुल में, गोधन में, घन में, जहां जहां देखूं तहां श्याम ही दिखाई दे, सालिग राम छाए रहे नैनन के मन, कहां नहीं है ये पूछा। प्रहलाद जी बोले, कहां नहीं है, है? तब हिरण्यकश्यपु बोला, हम चेक कर रहे इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले, हाँ है। हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया, कुछ नहीं सुनाई पड़ा, बोले झूठ बोल रहे, है ही नहीं। तो प्रहलाद जी बोले, हटो पिताजी हटो, एक तरफ किया। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो भीतर से आवाज आई, बोलो। प्रहलाद जी बोले, बोलना नहीं है, सुनो। क्या? प्रभु हमारे पिताजी कृपाण लिए खड़े हैं, कृपाण जानते हो जिसमें दोनों तरफ धार रहती, कृपाण लिए खड़े हैं और वो कह रहे दोनों तरफ धार है, एक मिनट में साफ कर देंगे। भगवान बोले, डर रहे हो क्या? प्रहलाद जी बोले, डर वर नहीं लग रहा, हमको एक दुख लग रहा है। बोले, क्या? बोले, प्रभु हम कह तो दिए कि खंबे में हो, अब आप नहीं आओगे तो लोग कहेंगे झूठ बोलते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, तो हमारी हमारी ब्रांडिंग खराब नहीं होनी, आपों की ब्रांडिंग खराब होगी। हाँ, ब्रांड आपका डैमेज होगा, हमारा नहीं होगा, हमारा कुछ गड़बड़ नहीं होना, आपका बिगड़ेगा। इतना कहते ही भगवान प्रहलाद जी से बोले, चिंता मत करो, हम अभी प्रकट होते, और भागवत में आया, गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो, निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है, गगड़गड़ावे दसन जीप लप लप प्रसावे, चितपत सरोज मन मानो, अब खावत है खंबा फट गया, और नरसिंह प्रकट हो गए। तुरंत नरसिंह प्रकट हो गए, और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा प्रहलाद जी ने, सबसे ज्यादा खुश प्रहलाद जी है। बोले, प्रभु बड़ी कृपा कर दी जो आप आ गए, आप न आते तो आपकी आज ब्रांडिंग गई। हाँ, भगवान है ये ब्रांडिंग ही खत्म हो जाती। तो भगवान प्रकट होते ही क्या कह रहे, जरा सुनिए। कितने दयालु हैं भगवान। प्रकट होते ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं, भैया प्रहलाद हमको आने में देर हो गई, माफी करो, हमको माफ करो, आने में देर हो गई। बताओ कोई भगवान इतना दयालु होगा है? कोई इतना कृपालु होगा? भगवान कह रहे प्रभु प्रहलाद हमको आने में देरी हो गई, माफ करो। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु देर से ही सही आ तो गए हो, न आते तो हमारी और तुम्हारी दोनों की लुटिया डूब जाती, ये तो काट ही देते हमको, आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठता, दीना नाथ अनाथ का भला मिला संजोग, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। प्रभु अपनी लाज नहीं रखोगे ना तो लोग हंसेंगे, नाथ अपनी लाज नहीं रखोगे लोग तमाशा बनाएंगे, उलाहना देंगे, और देते ही है भक्त को तो उलाहना मिलता है, जो भक्ति के मार्ग में जाता ना उसे बड़ा सहना पड़ता, कमाल तो कहने वाले करते हैं, भक्त तो सहते हैं, सहने के अलावा कुछ नहीं बचता। मीरा बिस पी गई, सूरदास को सहना पड़ा, रैदास को सहना पड़ा, तुलसीदास जी को परीक्षा देनी पड़ी, किसको नहीं सहना पड़ा। भाग्यनगर वालों कुछ तुम्हें सहना भी पड़े ना, सह लेना, भक्ति के मार्ग में पर डटे रहना, हमें भरोसा है जो तुम पर हंसते हैं वो तुम्हारे लिए एक दिन तालियां बजाएंगे, जो तुम्हारे बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं देखना तुम भगवान के भरोसे भर रहना, वो तुम्हारी जय जय कार ना करे तो करे। प्रहलाद जी के सामने जब भगवान प्रकट होते हमको माफ करो, प्रहलाद जी बोले प्रभु कैसी बात करते हो, भगवान इतने विकराल रूप में है कोई देवी देवता पास आने को तैयार नहीं है, कोई भी, इतना विचित्र रूप, आधा नर आधा सिंह, नाम नरसिंह, कौन नजदीक आए, सब दूर दूर है। सोचा भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करें, भगवान आए हैं स्वागत करें, प्रोटोकॉल है कि राज्यपाल आएगा तो क्षेत्र का एसपी महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो मुख्यमंत्री स्वागत करने जाएंगे, वैसे ही भगवान प्रकट भय तो प्रोटोकॉल है ब्रह्मा जी जाएंगे, पर ब्रह्मा जी अपने पंख अपने हंस पर बैठ कर गए नरसिंह भगवान के पास। जैसे ही गए भगवान ने एक नजर टेढ़ी की और एक घुड़क्का मारा, सोई ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले इतने अवतार देखे ये खतरनाक नहीं देखा। शंकर जी को कहा आप जाओ। बोले बाबा बोले नंदी पे बैठ के हम जा रहे। बोले बाबा नंदी पे बैठ के आए, नंदी बैल है, भगवान नरसिंह है, दोनों की आंखें मिली, भगवान ने थोड़ा आंखें बड़ी कर दी और जैसे एक भुड़क्का मारा शंकर जी का नंदी भागा। शंकर जी बोले ये तो खतरा नहीं महाखतरा, अब जाए कौन। सबने कहा पति कितना भी नाराज हो धर्म पत्नी मना लेती, घरवाली को नस पता होती, कौन सी नस दबाने से हमारे हस्बैंड साइलेंट हो, इसलिए तुम जरा देखना बाहर आदमी चाहे जितनी लंबी लंबी फेंके घरवाली के सामने नहीं फेंकता, और बाहर के लोग चाहे जितना सम्मान कर दे घरवाली नहीं करती है, उन्हें पता होता है कि जो बाहर ये धर्मात्मा बने घर में कितने, घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती है, और चलनी भी नहीं चाहिए घरवाली के सामने, वो भी तो शक्ति है, शक्ति के सामने चलती किसकी है। एक आदमी हमें हैदराबाद में मिला, बोले गुरुजी पत्नी को कंट्रोल करने का उपाय बताओ, उनका बेटा वो तो शंकर जी नहीं कर पाए, अब तुम्हें कहां से बताएं। बोला फिर भी आप तो गुरु हो, बड़े चमत्कारी हो, दरबार लगाते हो, कुछ बताओ। हमने कहा एक कथा बता देते हैं। बोले बताओ। हमने कहा एक आदमी था, पत्नी को लेने गया, पुराना जमाना था, बैलगाड़ी पर आ रहा था, बैलगाड़ी चलने लगी। जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगी तो पत्नी बोली रथ पर जाऊंगी। रथ लेकर के आया तो घोड़ी लेकर आया, घोड़ी को रथ में लगाया, घोड़ी चलने लगी पर घोड़ी धोखे से शादी वाली आ गई। जो शादियों में जाती थी उस शादियों वाली घोड़ी की एक आदत थी, थोड़ा चले और फिर रुके, क्योंकि शादी में थोड़ा चलते थे रुकते थे, फिर नागिन डांस होता था और फिर चले और फिर रुके। तो वो बड़ा परेशान, पत्नी भी बड़ी परेशान, कौन सा घोड़ा घोड़ी ले आए हो। इसने बंदूक उठाई, घोड़ी चली नहीं। बंदूक उठा करके बोला ए घोड़ी थोड़ी चली, जा आगे जाके फिर रुक गई। उसने बंदूक ली दो, घोड़ी फिर थोड़ा चली, लेकिन आगे जाके फिर रुक गई। तीसरी बार गोली मार दिया, घोड़ी मर गई। अब पत्नी पूछने लगी क्यों जी क्यों मारा। बोला एक आज तक उसकी घरवाली चुप है। राम जी बोले एक काम करो, एक काम बचा। बोले क्या। बोले राजाओं के दरबार में जब राजा को जम्हाई आती है तो कोई चुटकी बजाता। हनुमान जी से बोले ये चुटकी बजाने का काम आपका है। हनुमान जी बोले ये तो और बढ़िया रहा। बोले क्यों। बोले प्रभु पहले तो चरणों पर देखना पड़ता था, अब बहुत बड़ी कृपा कर दिए, मुख ही देखना पड़ेगा। बढ़िया काम मिला है। अब हनुमान जी राम जी की तरफ देखें तो राम जी कभी इधर मुंह करें कभी उधर मुंह करें, तो हनुमान जी कभी इधर छलांग लगाएं कभी उधर। अब विचार करो नीचे ना देखें, मुंह करें राम जी की तरफ, देखें राम जी की तो छलांग मारे बगल में, तो जो नीचे वाले बैठे थे उनकी हालत खराब, रोज चार छह लोग घायल हो। अब शाम हुई, राम जी अंदर जाने लगे तो हनुमान जी जाने लगे, पहरेदारों ने रोक लिया, रुको कहां जा रहे हो। अंदर जा रहे हैं, सेवा है, ड्यूटी। ड्यूटी क्या ड्यूटी है, चुटकी बजाने की ड्यूटी है। ड्यूटी जमाई भीतर भी तो आ सकती है, कभी भी आ सकती, ड्यूटी तो ड्यूटी है। पहरेदार बोले अंदर नहीं जा सकते, ये देखो नियमावली लिखी है अंदर की सेवा में केवल माता जानकी जी रहेंगी। क्यों, क्योंकि वो उनकी अर्धांगनी है, सिंदूर लगाती है, वही बन रहेंगे और कोई नहीं। हनुमान जी बोले ऐसी बात है। तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है। बोले हमहू है, माता जी तो केवल माथे में लगाती, हम तो पूरे शरीर में ठोका है। अब जाने दो भैया, तब भी नहीं जाती, ये बुद्धि देखना हनुमान जी, तब भी नहीं जाने दिया। हनुमान जी परेशान हो गए, अंत तो गत्वा वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज उसी महल के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी सोचने लगे अगर जमुआई आ जाए और हम चुटकी ना बजाएं तो फेल हो जाएंगे, एक काम किया, हम काम करते चुटकी बजाते ही रहते हैं, जब जमुआई आएगी तो फिट बैठ जाए। दोनों हाथों की उंगलियां ली और गाने लगे।

जी ऐसी चुटकी बजाते बजाते बजाते बैठे रहे। इधर राम जी ने सोचा, सुबह सुबह बेचारे हनुमान जी रात भर से चुटकी बजा रहे हैं और हमको दो ही बार जमुहाई आई है, चुटकी व्यर्थ गई है, एक काम करते हैं इकट्ठी थोक में जमुहाई ले ले। तो राम जी मुंह खोल के बैठ गए, मुंह खोल के बैठे तो ना बंद करे ना कुछ कहे। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट माता जानकी जी देखे और भगवान आंख बंद किए। राम जी सोचे हनुमान जी चुटकी बंद करें तो हम मुंह बंद करें, और हनुमान जी सोचे पता नहीं कब जमुहाई आ जाए तो वो लगे ऊपर। श्री

घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। जानकी माता को लगा कोई बीमारी हो गई है, भागी भागी गई मंत्रियों को बुला के, बोली जरा देखो प्रभु बीमार हो गए। बोले का हुआ? बोले मुंह खुल गया। मंत्री बोले जरा चेक करो, लकवा तो नहीं हो गया? अब गुरु वशिष्ठ जी आए, सब लोग आए, हनुमान जी, अरे हनुमान जी चुटकी बजा रहा, राम जी बैठे टिके हुए सुबह से, और सोचे कि वो बंद करे तो हम बंद करें। वशिष्ठ जी बोले एक बात बताओ, हनुमान जी कहां है? खोजा गया तो हनुमान जी ऊपर बैठे पकड़े गए। चलो नीचे, क्या हुआ? प्रभु को बीमारी हो गई। अच्छा, तो चुटकी बजाना भूल नहीं पाए जा रहा।

जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु को देखा, हनुमान जी को लगा ये जमुहाई तो है नहीं, सो चुटकी बंद कर ली। और जहां हनुमान जी ने चुटकी बंद की, सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। जानकी माता बोली, कोई बीमारी नहीं लगी थी, ये बीमारी लगी थी। जानकी माता बोली, हनुमान जी आज से तुम्हारी ये सेवा बंद। हनुमान जी बोले, पर कौन सी सेवा? जानकी माता बोली, जो पुरानी वाली थी वही लागू है, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बल बहुत लोगों के पास होता, बुद्धि बहुत कम लोगों के पास होती। बुद्धि भर बहुत लोगों के पास होती, पर बल बहुत लोगों के पास कम होता, एक कुछ ना कुछ ज्यादा होता। पर धन है हनुमान जी, ये छठवां गुण हनुमान जी का बड़ा प्यारा है, बल है तो बुद्धि भी हनुमान जी के पास है। और हमें लगता कम बुद्धि का व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा तो उसकी भी बुद्धि भी बढ़ जाएगी और बल भी। सातवां गुण हनुमान जी के अंदर क्या है पूछो, क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हनुमान जी के अंदर सातवां गुण भी बड़ा प्यारा है। आहा, धन है हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर सातवां जो गुण है वो है समय के साथ चलना। क्या बोलो बोलो बोलो? समय के साथ चलना। हमेशा शक्तियों का प्रभाव नहीं लेते, जब आवश्यकता है तब शक्ति का प्रताप दिखाते। बलराज अष्ट सिद्ध नौ निधि के, आठ सिद्धियां नौ निधियां है, कभी भी कुछ भी कर सकते, पर नहीं, जब आवश्यकता है तब हनुमान जी शक्तियों का प्रयोग करते। आठवां और हनुमान जी के अंदर अंतिम गुण जो है वो एक है, भगवान की कथा सुनना। हनुमान जी को हनुमान जी बनाने का सबसे, बनने का सबसे बड़ा कारण यदि है वो ये भी है, हनुमान जी कथा के बड़े रसिक हैं।

आठवां गुण है, सदैव भगवान की कथा को सुनते रहते। और हैदराबाद के प्रिय जनों, भाग्यनगर के पागलों, जो भी ये चारों पांचों पंडाल में बैठे हैं, हमारी एक प्रार्थना पहले दिन की कथा में है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। या तो हनुमान जी को मानना छोड़ो या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। यदि हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ोगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, देखो भगवान के अलावा तुम्हारा कोई दूसरा नहीं। तो देवताओं ने कहा, इतना विचित्र विराट रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट भए, देवताओं की चली नहीं, कौन मनाएगा। बोले भाई पति देव कितने भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना देती है, जरा बात करो। लक्ष्मी माता के पास गए, आपके स्वामी जी विचित्र रूप में बैठे हैं, जाओ आरती कर लो, उनको शांत करवाओ। हमारे स्वामी जी? हाँ, कौन? श्री हरि विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद के लिए। अरे हमारे प्रभु अशांत नहीं हो सकते, शांताकारम भुजग सेनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो परम शांताकार है, वो कहां विचित्र रूप में होंगे। देवता बोले आंखों से ही देख लो। तो लक्ष्मी माता ने कहा अभी चलते, बढ़िया साड़ी पहनी हैदराबादी, बढ़िया भाग्यनगर हैदराबादी साड़ी पहनी, साउथ इंडियन लुक में आई माता, गजरा वजरा लगाकर, माथे पर व्हाइट व्हाइट चंदन भोलेनाथ वाला लगाकर, साउथ इंडियन स्टाइल में बढ़िया थोड़ा सा बिंदी लगाकर, और माता बढ़िया कनेर के गुलाब के पुष्पों की माला लिए हुए, थाली लिए हुए, आरती करने के लिए नरसिंह भगवान के सामने आई, चरणों से आरती शुरू की। और जैसे ही मुख पे आरती आई और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई आरती फेंक के नजर आई, बोली ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है हमारे वाले, बड़े विचित्र है, ये नहीं है, जब घर आएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं हम कर सकते हैं। घर वापस दौड़ी चली आई, देवता परेशान हो गए, अब भगवान की स्तुति कौन करे, प्रार्थना कौन करे। तब तक देवताओं की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी, अरे भैया तेरे कारण भगवान

0: प्रकट भय। तू प्रार्थना कर। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा। हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए प्रहलाद जी। प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है। भगवान के पास समझदार बन के जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के पास भक्त बनकर जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को बुद्धि से मत देखो, भगवान को भाव से देखो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत ठेर ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान भाव के भूखे, ऐसे भगवान के चरणों के आश्रित जो रहेगा वो भक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो। अपने भरोसे पर जो जी।
1: अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ है तो क्या प्रभाव होते हैं? बृहस्पति अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है? क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
5: जश्न आजादी के रंग बिरंगा दिखा सारा देश, तिरंगे की रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी और ग्वालियर की प्रमुख इमारतें, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ देश। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में सुरक्षा बल मुस्तैद, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग। अस्सीवीं स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। लेह में तैयार हुआ इंटरनेशनल आइस हॉकी स्टेडियम, अब हर मौसम में आइस हॉकी खेलना होगा संभव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लद्दाख को मिली नई पहचान। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 5 लाख डहेलिया फ्लावर से बनाया गया फूलों का कालीन, जापान के मशहूर डिजाइनर ने तैयार की खूबसूरत आकृति, दीदार के लिए उमड़े सैलानी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ।
5: स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे की रोशनी में नहाया दिल्ली का इंडिया गेट, आजादी के जश्न में 4 चांद लगा रहा है ये खूबसूरत नजारा। मुंबई में भी आजादी के जश्न की जोरदार तैयारी, महाराष्ट्र विधान भवन तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठा। मुंबई की प्रमुख इमारतों पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी नजर आई, देशभक्ति के रंग में रंगे दिखी माया नगरी मुंबई। मुंबई की दो बड़ी पहचान भी तिरंगे के रंग में रंगी हुई नजर आई, बीएमसी ऑफिस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। मुंबई के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि सीएसटी को भी तिरंगे की रोशनी में नहाया गया दिखाई दिया, तो वहीं एलआईसी और एसबीआई की इमारतें भी देशभक्ति के रंग में रंगी हुई दिखाई दी। स्वतंत्रता दिवस से पहले दुल्हन की तरह सजाया गया लखनऊ शहर, तिरंगे के रंग में जगमगाती हुई नजर आई इमारतें और सड़कें। स्वतंत्रता दिवस से पहले गुवाहाटी में असम विधानसभा भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगाया, जनता भवन का एक खूबसूरत नजारा देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ दिखा। ग्वालियर की ऐतिहासिक इमारतों को भी तिरंगे की रोशनी में सजाया गया, रंग बिरंगी रोशनी में शहर की पुरानी इमारतें बेहद खूबसूरत दिखीं। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस जगह जगह पर कर रही है वाहनों की जांच। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की हो रही है कड़ी चेकिंग, स्वतंत्रता दिवस से पहले अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल। 15 अगस्त से पहले जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, जवानों ने शुरू की विशेष सुरक्षा एक्सरसाइज। पुलिस बीएसएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग जारी, रात में भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एयरपोर्ट पर हाई लेवल एंटी टेरर मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ बीएसएफ और पुलिस ने किया संयुक्त अभ्यास। आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, क्विक रिस्पांस टीम ने कार्रवाई की प्रैक्टिस की, बम निरोधक दस्ते ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। पंद्रह अगस्त से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त की गई, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के 6 चरण, पहले 5 चरण सीआईएसएफ ने निगरानी की, बीडीडीएस डॉग स्क्वाड से भी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की फाइनल रिहर्सल, बीएसएफ जवानों ने किया शानदार ड्रिल का प्रदर्शन। पंद्रह अगस्त से पहले बॉर्डर पर देशभक्ति का माहौल देखने को मिला, जवानों ने पूरे जोश से कदम ताल किया, झंडा उतारने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, जवानों के जोश ने खींचा लोगों का ध्यान, अनुशासन और तालमेल का दिखा शानदार नजारा। जवानों की शानदार प्रस्तुति ने मोहा सभी का मन, बॉर्डर पर गूंजा देशभक्ति का उत्साह, मुख्य समारोह से पहले हर तैयारी परखी गई। कदमों की ताल से गूंजा अटारी बॉर्डर, बीएसएफ की परेड ने बढ़ाया देशभक्ति का जोश, स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी। सहारनपुर में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, बुलडोजर से तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, कोर्ट रोड पर दिखा अनोखा नजारा। बुलडोजर पर खड़े होकर बरसाए गए फूल, हर घर तिरंगा के नारों से गूंजा शहर, हर मन तिरंगा के नारों से उत्साह। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, अंबेडकर चौक से रामलीला मैदान तक यात्रा देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। मुजफ्फरपुर में बड़े धूमधाम से निकाली गई तिरंगा यात्रा, सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे, देशभक्ति के नारों से गूंजा पूरा शहर। जगह जगह तिरंगा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई, लोगों ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई, लंगट सिंह कॉलेज से खुदीराम बोस स्मारक तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जयपुर में इस बार चर्चा में है 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर, इसमें ड्राई फ्रूट्स, शहद और सोने का वर्क किया गया है। अब घेवर सिर्फ पारंपरिक स्वाद में नहीं बल्कि ब्लूबेरी चीज केक और तिरामिसू जैसे फ्लेवर्स में भी मिल रहा है, ये नए स्वाद युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। रेगुलर के साथ मिनी साइज में भी मिल रहा है घेवर। ग्राहक अपनी पसंद के अलग अलग फ्लेवर का पैक भी बनवा सकते हैं। घेवर का नया रूप घेवर चाट भी लोगों को पसंद आ रहा है। इसमें दही, छोले, चटनी और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में तीज पर घेवर खिलाने की बहुत पुरानी परंपरा है। अब नए फ्लेवर और डिजाइन के साथ घेवर पुरानी परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ रहा है। जयपुर में तीज से पहले महिलाओं ने खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लहरिया, मेहंदी, राजस्थानी गहनों में सभी ने त्योहारों का रंग जमाया।

कार्यक्रम में महिलाओं ने अलग अलग रंगों और डिजाइन की लहरिए पहने, पारंपरिक कपड़ों ने कार्यक्रम में लगाया चार चांद। एक महिला ने हरे नीले रंग और मोर के डिजाइन से मोरनी जैसा लुक बनाया। उनके खास पहनावे कार्यक्रम में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। महिलाओं ने इस मौके पर अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। राजस्थानी गानों पर डांस और स्वादिष्ट पकवानों ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया। राजस्थान में तीज की परंपरा और संस्कृति को माना जाता है त्योहार। अब तीज की सवारी के साथ जयपुर में उत्साह और भी खास नजर आएगा। बिहार के अमन वर्मा ने अपनी मां के पसंदीदा सफेद रंग से शुरू किया फैशन ब्रांड श्वेतांगा। उनके डिजाइन सफेद रंग को शौक नहीं बल्कि खूबसूरती और आत्मविश्वास से जोड़ते हैं। 2021 में दिल्ली में श्वेतांगा की हुई शुरुआत। अमन वर्मा के डिजाइन में सफेद और आइवरी रंग खास हैं। अमन वर्मा का फैशन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें मॉडल्स ने बुलंदशहर के गांव की गली में दिखाया था फैशन। अमन के डिजाइन सफेद रंग को लेकर समाज की पुरानी सोच को देते हैं चुनौती। सफेद रंग को नए अंदाज में पेश करें, इसे खूबसूरती और आधुनिक फैशन का हिस्सा बनाएं। कई चर्चित अभिनेत्रियां भी पहन चुकी हैं अमन वर्मा के डिजाइन। निया शर्मा, ईशा मालवीय, डेजी शाह उनके आउटफिट्स में नजर आ चुकी हैं। लेह में बनाया गया है इंटरनेशनल लेवल का आइस हॉकी स्टेडियम। अब यहां हो सकेंगे नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी मैचेस। यह स्टेडियम 24 घंटे और हर मौसम में आइस हॉकी के लिए रहेगा तैयार। इससे गर्मियों में भी लद्दाख में हॉकी खेलना संभव होगा। इस आइस रिंग को बनाने में करीब 51 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है स्टेडियम। इस इंटरनेशनल स्तर के आइस रिंग को बनाने में 22 महीने लगे। अब आइस हॉकी खेलने और देखने वालों को नई सुविधा मिलेगी। पहले लद्दाख में आइस हॉकी मुख्य रूप से सर्दियों में ही होती थी। अब यहां पर गर्मियों में भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट कराने की तैयारी हो सकती है। हिंसा को छोड़कर हुनर और मेहनत की राह पर चली बस्तर की पूर्व नक्सली महिलाएं। रायपुर में उन्होंने छत्तीसगढ़ हैंडलूम के कपड़े पहनकर रैंप पर अपनी नई पहचान दिखाई। कभी हथियार उठाने वाली महिलाएं पारंपरिक कपड़ों में आत्मविश्वास से रैंप पर उतरी। उनकी कहानी बताती है बस्तर में आ रहा है बदलाव। इन महिलाओं ने हिंसा की जिंदगी छोड़कर हुनर सीखना और काम करना शुरू किया। अब वे अपनी मेहनत से बना रही हैं बेहतर भविष्य। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कौशल फैब नाम का नया ब्रांड लॉन्च किया। इसका मकसद छत्तीसगढ़ के मशहूर कोसा सिल्क को देश और दुनिया में पहचान दिलाना है। रायपुर के कार्यक्रम में बस्तर की संस्कृति और महिलाओं की नई जिंदगी साथ नजर आई। हुनर और संस्कृति से बनेगी बस्तर की पहचान। अमरावती में लग्जरी बस बनी मेडिकल ट्रेनिंग लैब। बस में सर्जरी सीख रहे मेडिकल छात्र टांके लगाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स में प्रैक्टिकल क्लास, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी सीख रहे हैं छात्र। मरीज पर सर्जरी से पहले मिल रही है ट्रेनिंग। बस के अंदर बना हाईटेक ट्रेनिंग सेंटर। प्रोफेसर्स की निगरानी में सर्जरी की प्रैक्टिस बढ़ रहा। मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास। मुजफ्फरपुर की सोनी गुप्ता बनी मिसेस बिहार 2026। पहली कोशिश में ही जीता खिताब। 3 बच्चों की मां ने रचा नया मुकाम।
शादी के 17 साल के बाद उतरी पेजेंट में, करीब 100 प्रतिभागियों को पीछे छोड़ा, सोनी को मिला 50,000 रुपए का पुरस्कार। देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में बना आस्था और भक्ति का रिकॉर्ड, 14 दिन में 28,33,000 भक्तों ने किया जलार्पण। बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, बोलबम के जयकारों से गूंज रहा है मंदिर परिसर। श्रावणी मेले में लगातार बढ़ रहा है शिव भक्तों का तांता, चारों तरफ दिख रही है मेले की भव्य रौनक, श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह।

0: श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा भी आया। मंदिर को 3,55,00,000 की हुई आमदनी। दूसरे राज्यों के वाहनों से 38,70,000 का शुल्क। पेड़ा सिंदूर समेत अन्य कारोबार से 2 करोड़ से ज्यादा की आय। अस्थायी बिजली कनेक्शन से मिले 55,00,000। गुजरात के वडनगर में श्रावण उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। 108 कलाकारों ने एक साथ बजाया डमरू, दिखा आस्था का सैलाब। डमरू की गूंज से शिवमय हुआ वडनगर। शर्मिष्ठा तालाब से निकली भव्य डमरू यात्रा, हाटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची यात्रा। ऐतिहासिक स्थलों से होकर गुजरी डमरू यात्रा। डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने खुद बजाया डमरू, श्रावण में भक्ति और संस्कृति का संगम देखने को मिला। वडनगर में शुरू हुई हेरिटेज ऑटो सेवा। वडनगर की थीम पर डिजाइन किए गए ऑटो, हेरिटेज ऑटो पर्यटकों के लिए बनी आकर्षण। भविष्य में 120 से 150 हेरिटेज ऑटो चलाने का लक्ष्य, पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में निकली विशाल कलश यात्रा। 51,000 कलश लेकर निकली महिलाएं। आगर मालवा की सड़कें शिव भक्ति में डूबी, हजारों महिलाओं ने कलश यात्रा में हिस्सा लिया। बैंड बाजों के साथ निकली भव्य यात्रा, जगह जगह पर हुआ कलश यात्रा का स्वागत। कलश में जल लेकर निकली शिव भक्त महिलाएं, बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंची विशाल यात्रा। भगवान बैजनाथ को चढ़ाया गया जल, श्रावण में शिव भक्ति से भक्तिमय हुआ पूरा शहर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: तो अगर अशुभ फल दे रहा हो तो जीवन में क्या असर पड़ता है, क्या है बृहस्पति के अशुभ प्रभाव और क्या है इनसे बचने के उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है।
अगर आप नृत्य के साथ नाच करके गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावत स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड डमड डमड निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। गा गाकर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हों, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: जश्न आजादी के रंग में रंगा सारा देश, तिरंगे की रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी और ग्वालियर की प्रमुख इमारतें, देशभक्ति के रंग में सराबोर हुआ देश। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में सुरक्षा बल मुस्तैद, जम्मू कश्मीर के पुंछ में गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। लेह में तैयार हुआ इंटरनेशनल आइस हॉकी स्टेडियम, अब हर मौसम में आइस हॉकी खेलना होगा संभव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लद्दाख को मिली नई पहचान। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 5 लाख डेलिया फ्लावर्स से बनाया गया फूलों का कालीन, जापान की मशहूर डिजाइनर ने तैयार की खूबसूरत आकृति, दीदार के लिए उमड़े सैलानी। बॉक्स ऑफिस पर आज सिनेमा के सितारों की जोरदार टक्कर, सिर चढ़कर बोल रहा है सुपरस्टार सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान की आवारापन 2 का क्रेज।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका।
4: जी नमस्कार।
3: तो आज के शो में हम बृहस्पति के बारे में बात करने वाले हैं। बृहस्पति अगर आपके जीवन में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो उसे दूर करने के महा उपाय क्या होने वाले हैं, जानेंगे पंडित जी से, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
4: देखिए बृहस्पतिवार को किसी भी धर्म स्थान पर जाकर, मंदिर जाकर पीले फूल अर्पित करिएगा। अगर आप हर बृहस्पतिवार को ऐसा करें तो ऐसा करने से आपका संतान पक्ष बेहतर होता जाएगा।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि 14 अगस्त 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या रहने वाला है।
4: दिनांक 14 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि, शाम को 6:46 तक, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
3: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति कितने शुभ होते हैं और इसकी शुभता के जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ते हैं।
4: देखिए आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बृहस्पति का अशुभ प्रभाव हो तो बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बृहस्पति शुभता कैसे देता है। बृहस्पति अगर शुभ है तो क्या होता है? देखिए ग्रहों में बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ और पवित्र माना जाता है। केवल कुंडली में बृहस्पति के शुभ होने पर व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा बनी रहती है। बृहस्पति अकेला आपके जीवन में संतान, धन और विवाह के मामलों को उत्तम कर देता है। बृहस्पति की दृष्टि गंगा जल के समान पवित्र मानी जाती है। जिस ग्रह पर और जिस भाव पर पड़ती है उसके अशुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है। यानी अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो इसकी शुभता की वजह से जीवन की बहुत सारी मुश्किलें आपकी दूर हो जाएंगी।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का दैनिक राशि फल क्या है।
4: मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति के अशुभ प्रभाव पड़ने पर क्या होता है।
4: अगर आपके ऊपर बृहस्पति का अशुभ प्रभाव पड़े, आपकी कुंडली के माध्यम से बृहस्पति आपके ऊपर अशुभ असर डाले तो क्या होता है? बृहस्पति के कमजोर होने पर या बृहस्पति के निगेटिव होने पर व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या के मामले में और धन प्राप्ति के मामले में बाधा आती है और व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो व्यक्ति का पाचन तंत्र यानी डाइजेशन कमजोर होता है, पेट की बीमारियां होती हैं, कैंसर और लीवर, इसकी सारी गंभीर बीमारियां बृहस्पति ही जीवन में देता है। अगर बृहस्पति गड़बड़ हुआ तो संतान पक्ष की समस्या भी व्यक्ति को परेशान करती है और अगर ज्यादा गड़बड़ हुआ तो कभी कभी संतान हो ही नहीं पाती। अगर बृहस्पति संतान भाव में बैठे तो संतान के लिए बहुत ही नकारात्मक है और अगर बृहस्पति विवाह भाव में बैठ जाए, विवाह के स्थान में बैठे, तो विवाह होना काफी कठिन हो जाता है या विवाह से संबंधित मुश्किलें जीवन में परेशान करती हैं। शनि की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की समस्याओं का निवारण हो जाता है आसानी से, लेकिन बृहस्पति के बुरे असर का निवारण इतना आसान नहीं होता। बृहस्पति के बुरे असर का निवारण बहुत मुश्किल होता है।
3: और आगे बढ़ने से पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल जानने का वक्त हो गया है।
4: कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
3: और चलिए अब वक्त हो चला है आज का आपका सबसे पहला सवाल लेने का। पंडित जी से जान लेते हैं आज पंडित जी सबसे पहला सवाल किसका रहेगा।
4: जी आज का पहला प्रश्न राकेश जी ने हमें लिखा है और राकेश जी हमें पटना बिहार से मेल लिखते हैं। 15 अक्टूबर 1975 का जन्म है, दोपहर के 3:10 जन्म स्थान है दरभंगा बिहार। राकेश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है और काफी समय से मैं अपना कर्ज उतारने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मेरा कर्ज उतर नहीं पा रहा है, तो मेरा कर्जा कब तक उतरेगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राकेश जी आपकी कुंडली के हिसाब से आपके कर्ज साल 2027 के आखिरी तक काफी हद तक उतर जाएंगे, उस समय तक आपके कर्जे उतरने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कर्ज उतारने के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी सेल करनी पड़े, ये संभावना भी आपके लिए दिखाई दे रही है। कर्ज आपका जल्दी उतरे और आर्थिक स्थिति जल्दी बेहतर हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6-8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें, रोज सुबह 1 ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, इस

0: अगला प्रश्न हमें प्रेम लता जी ने लिखा है और प्रेम लता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मार्च 1980, जन्म का समय रात में 11:15, जन्म स्थान है लखनऊ। प्रेम लता जी कह रही हैं कि काफी समय से मेरा स्वास्थ्य बेहतर नहीं रह रहा है, तो मेरा स्वास्थ्य कब तक बेहतर होगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। प्रेम लता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको केवल अपने खान पान का और अपने डाइजेशन का ध्यान रखना है, बाकी मामले आपके लिए निगेटिव नहीं दिखाई दे रहे हैं, बाकी मामले आपके लिए नकारात्मक नहीं हैं। केवल खान पान में सावधानी रखें, डाइजेशन का ध्यान रखें, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। एक ओपल बनवा करके पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने, हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी।
1: और चलिए अब बात करेंगे बृहस्पति की। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर करने का सबसे अचूक उपाय क्या है, पंडित जी से जान लेते हैं।
0: तो अगर बृहस्पति आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए अशुभ हो रहा है, तो क्या उपाय करेंगे? बृहस्पति को स्वयं शिव जी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए शिव जी की भक्ति से, शिव जी की साधना से बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। अगर बृहस्पति अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए, रुद्राक्ष की माला से या उंगली पर नमः शिवाय का सुबह शाम जप करिए। अपना आहार, व्यवहार और विचार ये पूरी तरह से सात्विक रखिए, अपने खान पान में शुद्धता और पवित्रता बनाए।
1: और चलिए आगे बढ़ने से पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का दैनिक राशिफल जान लेते हैं।
0: तुला राशि, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का

मीटर आपको नंबर दे रहा है 65% जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।

0: कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेंगे कि अगर बृहस्पति की अशुभ या मारक दशा चल रही है तो क्या कुछ उपाय करके इसे दूर करें।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि बृहस्पति की कोई अशुभ दशा चल रही होती है या कोई मारक दशा चल रही होती है जिसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। तो अगर बृहस्पति की कोई अशुभ या मारक दशा चल रही है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। अपने घर से एक लोटा जल भर करके ले जाइए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। बृहस्पति की अगर मारक दशा है या अशुभ दशा है तो सुबह और शाम दोनों समय कम से कम 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। हर बृहस्पतिवार को किसी निर्धन व्यक्ति को चने की दाल का या केले का दान करिए। और अगर बृहस्पति की अशुभ दशा है या मारक दशा है तो सोना और पीला रंग प्रयोग करने से आपको परहेज करना चाहिए। और अपने आहार को, अपने खान पान को सात्विक बना लीजिए। मांस मदिरा का प्रयोग करना पूरी तरह से बंद कर दीजिए।
1: और अब वक्त हो चला है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जातकों का दैनिक राशिफल जानने का।
0: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा।
1: और चलिए अब वक्त हो चला है आज के आपके तीसरे सवाल का, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं आपकी टीवी स्क्रीन पर एक मेल आईडी दी गई है जिसपे आप मेल करके पंडित जी तक अपना प्रश्न पहुंचा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी आज का तीसरा सवाल किसका रहने वाला है।
0: जी अगला प्रश्न हमें गोविंद जी ने लिखा है और गोविंद जी हमें मेल लिखते हैं अलीगढ़ से। इनकी जन्म की तारीख है 13 जुलाई 1984। जन्म का समय रात में 9:15। जन्म स्थान है अलीगढ़। गोविंद जी कह रहे हैं कि मेरा व्यापार बंद हो गया है, व्यापार में नुकसान बहुत हो रहा था, तो मैं अब विचार कर रहा हूं कि अपने परिवार के साथ अलीगढ़ से कहीं और शिफ्ट हो जाऊं तो क्या स्थान बदलना मेरे लिए बेहतर होगा, और स्थान बदल के आगे क्या मुझे कोई और व्यापार करना चाहिए। गोविंद जी, आपकी कुंडली में वैसे भी स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में आपका स्थान परिवर्तन होगा। किसी नई जगह पर जाने से और वहां पर व्यापार शुरू करने से आपको लाभ होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। तो स्थान परिवर्तन करना आपके लिए कुल मिला जुला के बेहतर है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने और रोज सुबह शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो चला है आज के आपके चौथे और अंतिम सवाल का। पंडित जी, चौथा सवाल आप किसका लेने वाले हैं?
0: जी अंतिम प्रश्न हमें संध्या शर्मा जी ने लिखा है, फरीदाबाद से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म तारीख है 28 दिसंबर 1994। जन्म का समय है 4:45 और पुत्री का जन्म स्थान है फरीदाबाद। ये कह रही हैं कि अपनी पुत्री के विवाह के लिए काफी समय से परेशान हैं, तो पुत्री का विवाह कब तक होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए संध्या जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय चल रहा है और ज्यादातर संभावना बनती है कि 2027 के आरंभ में इनका विवाह होगा और बहुत दूर नहीं होगा, आस पास में ही इनके विवाह की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, वैवाहिक जीवन में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी बेटी का विवाह शीघ्र हो और बेहतर हो, इसके लिए आप अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको ओपल धारण कराएं और अपनी पुत्री से कहें कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं कि बृहस्पति के होने से अगर जीवन में अशुभता आ रही है तो क्या कुछ रत्न पहनने का भी इस पर प्रभाव पड़ सकता है, क्या ये बाधाएं दूर कर सकते हैं?
0: जी देखिए, बृहस्पति का रत्न है पीला पुखराज। अगर बृहस्पति की वजह से जीवन में अशुभता आ रही है या बृहस्पति की वजह से आपकी सेहत में किसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, कैंसरस प्रॉब्लम अगर आपको हो गई है, तो इन स्थितियों में बृहस्पति का रत्न बिल्कुल धारण ना करें। अशुभ होने पर बृहस्पति अगर आप पीला पुखराज पहनेंगे यानी बृहस्पति का रत्न पहनेंगे तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। अगर बृहस्पति नकारात्मक है, अगर बृहस्पति अशुभ है, तो ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा फायदा होता है पन्ना पहनने से। बृहस्पति को काउंटर करने के लिए अगर आप पन्ना पहने या सलाह लेकर के एक ओपल धारण करें तो इससे बृहस्पति की अशुभता कम होती है, बृहस्पति संबंधी समस्याओं से आप बच सकते हैं।
1: और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन 14 अगस्त को है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी बर्थडे। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 14 अगस्त को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति में सुधार होता जाएगा। उतार चढ़ाव से बचाव करना होगा। होगा

0: साथ ही साथ इस फील्ड में आगे बढ़कर कन्नौज का भी नाम रोशन कर रहे हैं।
1: इस पहल का असर अब प्रतियोगिताओं में भी दिखाई देने लगा है। कन्नौज के सरकारी विद्यालयों के बच्चों ने स्टेट लेवल पर 17 पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया है।
2: वर्ष 2016 में मेरी यहाँ विद्यालय में नियुक्ति हुई थी। कोरोना काल के बाद से हम लोगों ने यहाँ पर ताइक्वांडो का प्रशिक्षण वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के अंतर्गत चालू किया, जिसके अंतर्गत हमारी बच्चियाँ जिला बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जिला स्तर पर राज्य स्तर पर प्रतिभाग कर रही हैं। पिछले तकरीबन 3 वर्षों से हमारे बच्चों ने राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक जीते हुए हैं।
1: स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ हफ्ते में 2 से 3 दिन शारीरिक शिक्षा की क्लास में यह प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे छात्राएं किसी भी आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा खुद कर सके।
3: मतलब मैंने खेलने में पहले प्रतिभाग किया था, इससे पहले मुझे आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिखी थी। मेरे सर ने कहा कि खेलो तो आगे बढ़ोगे। मैंने खेलने में प्रतिभाग किया, मैं राज्य स्तर पर एक बार गोल्ड मेडल, सिल्वर, ब्रांज भी था मेरा,
4: और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए हमारे सर ने हमको ये गेम खिलाया और मैंने राज्य स्तर पर दो स्वर्ण पदक जीते हैं।
1: बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों में सिर्फ खेल और आत्मरक्षा प्रशिक्षण ही नहीं, बल्कि आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं बच्चों के सीखने के अनुभव को बेहतर बना रही हैं। आधुनिक तकनीक से जुड़ी शिक्षा, बेहतर शैक्षणिक माहौल और बच्चों की प्रतिभा को निखारने वाली गतिविधियाँ सरकारी विद्यालयों को नई दिशा दे रही है। प्रभम श्रीवास्तव, कन्नौज, गुड न्यूज टुडे।
5: अब आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले हैं, कुछ इमोशनल कर देने वाले। देखिए,
6: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वही चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपा कर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नज़र से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठाकर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही हैं।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
2: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। श्रीनगर की डल झील में शिकारों और SDRF की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक रोकी सांस। जश्ने आजादी के रंग में रंगा सारा देश, तिरंगे की रोशनी में नहाई राजधानी दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी और ग्वालियर की प्रमुख इमारतें, देशभक्ति में सराबोर हुआ देश। उत्तराखंड के पीपलकोटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे हुए 19 लोगों को NDRF और SDRF ने निकाला। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 5 लाख डेलिया फ्लावर्स से बनाया गया फूलों का कालीन, जापान की मशहूर डिजाइनर ने तैयार की खूबसूरत आकृति, दीदार के लिए उमड़े सैलानी। बॉक्स ऑफिस पर आज सिनेमा के सितारों की जोरदार टक्कर, सर चढ़कर बोल रहा सुपरस्टार सनी देओल का की बंटवारा, 1947 और इमरान की आवारापन 2 का क्रेज।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: उम्मीदों भरे पहर की खुशभरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
3: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तो बिना रुके बिना थमे अगले 1 घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: तो शुभ समाचार की शुरुआत जश्न आजादी के रंग से करेंगे। कल 15 अगस्त है, ऐसे में 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, भारत माता के जयकारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों ओर देश प्रेम की भावनाएं नजर आ रही है, तो ये रंग भी आगे आपको दिखाएंगे।
3: और साथ ही बात मानसूनी बारिश की भी होगी, मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला बदला सा दिखाई दे रहा है, जिसके चलते वीकेंड के कूल कूल रहने के आसार हैं। मानसून के सक्रिय रहने से देश के ज्यादातर हिस्सों में 19 अगस्त तक बारिश होने का अनुमान है। इधर दिल्ली NCR में आज भी बारिश की संभावना है, तो वहीं इसके बारे में आगे विस्तार से बात होगी।
2: इसके अलावा आपको अमरावती लिए चलेंगे, जहां एक हाईटेक बस में मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इस बस में छात्रों को सर्जरी के गुर सिखाए जा रहे हैं, इससे असली सर्जरी से पहले मेडिकल छात्रों को सर्जरी के अभ्यास का मौका मिल रहा है। तो इस बस में और क्या है खास, कैसे होता है इसमें काम, इस पर भी हम आगे करेंगे बात।
3: और साथ ही कल से श्रीलंका में टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो रही है, ये भारत का 600वां टेस्ट होगा, तो शुभमन एंड कंपनी ने कैसे तैयारी की है इसके बारे में भी आगे विस्तार से बात होगी।
2: तो वहीं आज फिल्मी फ्राइडे भी है, आज बड़े पर्दे पर बंटवारा, 1947 और आवारापन 2 भी रिलीज हो रही है, और कौन सी फिल्म आ रही है आगे आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, खासकर राजधानी दिल्ली एक छावनी में तब्दील नजर आने लगी है। पुलिस जगह जगह पर वाहनों की चेकिंग कर रही है, दिल्ली से सटे बॉर्डर पर भी पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है।
2: 15 अगस्त से पहले सरहदों पर भी हाई अलर्ट है, जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF ने चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते जवानों ने विशेष सुरक्षा एक्सरसाइज भी शुरू की है। ऊंटों पर तैनात जवान दिन रात सीमा पर गश्त लगा रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए तुरंत कार्रवाई की जा सके।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर की सभी सरकारी इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहाई हुई नजर आई। आजादी के जश्न में चार चांद लगाता हुआ दिल्ली का इंडिया गेट का खूबसूरत नजारा दिखा। मुंबई में भी आजादी के जश्न की जोरदार तैयारी नजर आई। महाराष्ट्र विधान भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा। बीएमसी ऑफिस और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि सीएसटी का भी तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ तस्वीरें नजर आई। अटारी बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहां स्वतंत्रता दिवस से पहले मीटिंग रिट्रीट की फाइनल रिहर्सल संपन्न हुई। बीएसएफ के जवानों ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन किया। जवानों ने पूरे जोश से कदमताल किया। झंडा उतारने की प्रक्रिया का भी अभ्यास किया गया। मुख्य समारोह से पहले हर तैयारी परखी गई।

0: देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था और भक्ति का रिकॉर्ड बना। 14 दिनों में धाम में 28,33,000 भक्तों ने जलार्पण किया। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर में रिकॉर्ड चढ़ावा भी चढ़ा। मंदिर को 3,55,00,000 रुपए का दान प्राप्त हुआ। श्रावणी मेले में लगातार शिव भक्तों का तांता नजर आ रहा है। चारों तरफ दिख रही मेले की भव्य रौनक के साथ श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
1: सावन के महीने में जयपुर में इस बार 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर चर्चा में है। इसमें ड्राई फ्रूट, शहद और सोने का वर्क इस्तेमाल किया गया है। साथ ही अब घेवर सिर्फ पारंपरिक स्वाद में नहीं बल्कि ब्लूबेरी चीज केक और तिरामिसू जैसे फ्लेवर में भी मिल रहा है। ये एक नए स्वाद युवाओं को खास पसंद आ रहे हैं। घेवर का नया रूप घेवर चाट भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसमें दही, छोले, चटनी और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में तीज पर घेवर खिलाने की बहुत पुरानी परंपरा है।
0: लेह में इंटरनेशनल लेवल का आइस हॉकी स्टेडियम बनाया गया है। अब यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल हॉकी मैच खेले जा सकेंगे। इस आइस रिंग को बनाने में करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्टेडियम बनाया गया है। ये स्टेडियम 24 घंटे और हर मौसम में आइस हॉकी के लिए तैयार है। इससे गर्मियों में भी लद्दाख में हॉकी खेलना संभव होगा।
1: आज बड़े पर्दे पर अभिनेता सनी देओल की फिल्म बटवारा 1947। फिल्म की कहानी के साथ साथ कलाकारों की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी बटवारा 1947 को आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और इसमें भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले ही कहानी दिखाई गई है। बटवारा 1947 में सनी देओल और प्रीति जिंटा के अलावा शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह भी मौजूद हैं।
0: चाइना में जायंट पांडा की खास बर्थडे पार्टी आयोजित की गई है। इस मौके पर पांडा के लिए खास केक सजाया गया। फ्रूट केक और बर्फ से पांडा की खातिरदारी की गई। म्यांगांग सेंटर में शानदार जश्न के दौरान पांडा को सिचुआन स्टाइल खिलौने भी मिले।

तो शुभ समाचार की शुभ शुरुआत तिरंगे की छटा, देशभक्ति के गीत और उत्साह से भरे देश के साथ। देशभर में आजादी के पूर्व स्वतंत्रता दिवस की रौनक देखने को मिल रही है। कल देश आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, लेकिन उससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर पूरा भारत एक रंग में खिल उठा है। शहरों से गांवों तक, हिमालय से समुद्र तट तक आजादी का उत्सव विविध परंपराओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जा रहा है। ये केवल राष्ट्रीय पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को समर्पण करने का, उनको स्मरण करने का अवसर भी है जिनकी बदौलत देश ने स्वतंत्रता हासिल की। आजादी का ये उत्सव हमें अतीत के संघर्षों से जोड़ते हुए भविष्य के प्रति नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है। यही विविधता में एकता भारत के स्वतंत्रता पर्व को अद्वितीय बनाती है।

तो वहीं कश्मीर की खूबसूरत डल झील, जहां कुदरत की खूबसूरती आजादी के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है, यहां पर तिरंगे के रंग में सजी हुई नावें और शिकारे हैं। एक तरफ लहरों पर लहराता हुआ तिरंगा और चारों तरफ कश्मीर की हसीन वादियां नजर आ रही हैं। ये खूबसूरत तस्वीरें देखिए, जहां पर शिकारा राइड लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और तिरंगे लगाए गए हैं। तो वहीं पूरी डल लेक में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, मानो झील के पानी में भी देशभक्ति की लहर दौड़ रही हो। आजादी के जश्न में श्रीनगर डूबा हुआ है और डल झील एक खूबसूरत संदेश दे रही है। ये अद्भुत अद्वितीय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डल लेक से। लोगों ने यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाली है। श्रीनगर का ये अद्भुत नजारा आपके सामने हम रख रहे हैं। ये एक ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो ये बयां करती हैं कि अब जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे ही देशभक्ति देखने को मिल रही है। जिस तरह से पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह से देशभक्ति का अनूठा नजारा नजर आया। और मौका स्वतंत्रता दिवस के जश्न का है, तो दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास तिरंगा बाइक रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया। तिरंगे से सजी बाइक्स के साथ पुलिसकर्मी रैली में शामिल हुए। रैली के दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। तो ये नजारा है दिल्ली के इंडिया गेट का। आप देखिए किस तरह से चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही नजर आएगा। दिल्ली पुलिस के जवानों की रैली जो है वो निकाली गई है और तिरंगा रैली देश के अलग अलग शहरों से आपको देखने को मिल रही है। और उस बीच इंडिया गेट पर तिरंगा बाइक रैली, तो देखिए किस तरह से स्वतंत्रता दिवस के जश्न का दिल्ली पुलिस ने भी खूब उसे जोरों शोरों से मनाया। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास तिरंगा बाइक रैली निकालकर देशभक्ति का इसी के साथ संदेश दिया है। तिरंगे से सजी बाइक्स के साथ साथ पुलिसकर्मी रैली में भी शामिल हुए हैं। रैली के दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा। तो ये नजारा देखिए दिल्ली की सड़कों का, जहां दिल्ली पुलिस के जवानों ने बाइक रैली निकाली तिरंगे के साथ। तो पूरा देश जश्न आजादी के रंग में रंग चुका है। 80वीं स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारत माता के जयकारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों ओर देश प्रेम की भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा है।

देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न जारी है। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शहर शहर, गांव गांव, गली गली और हर घर तिरंगामय हो गया है। फिर चाहे वो सुदूर जम्मू कश्मीर का कोई इलाका हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई शहर, या फिर चाहे हरियाणा का, दिल में देशभक्ति का उबाल, हाथों में तिरंगा और हर बढ़ते कदम में कभी न रुकने का संकल्प आजादी के इस जश्न को और रंगीन बना रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पूरे जोश और जुनून के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जब हाथों में तिरंगा थामकर सड़क पर निकले तो नजारा कुछ खास था। खुले आसमान में हवा के तेज झोंकों के साथ फहराता ये तिरंगा हमारी आन बान और शान की गवाही दे रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के सहारनपुर का था। स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में हर कोई देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हाथों में तिरंगा थामे शहर की गलियों से आगे बढ़ते लोगों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई।

0: के पलवल में तो इतिहास लिखा जा रहा था। 10 फीट चौड़े और 5 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ लोगों का हुजूम जब सड़कों पर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो सावन के महीने में 3 रंगों वाली कोई नदी लहराते बलखाते तरुणाई का संदेश दे रही हो। इस भव्य और विशाल तिरंगा रैली में आसपास के इलाकों से हजारों लोग शामिल हुए।
1: पलवल के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा जिसकी लेंथ और 6.5 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। मैं सभी उन छोटे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 50,000 से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर पलवल की एकता, हरियाणा की एकता, अखंडता को किया है।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाने की अपील की है। देश भर से आ रही ये तस्वीरें हर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा के नारे को जीवंत बना रही है। कुलगाम से अश्ववानी, सहारनपुर से राहुल कुमार, फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और महाराष्ट्र के अमरावती जिले से एक सुंदर तस्वीर सामने आई है। वहां तिरंगे की अनोखी मानवंदना की गई। पुलिस कांस्टेबल प्रवीण आकरे ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर साइकिल चलाई। इस दौरान वो करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक सांस रोके रहे। इस दौरान उन्होंने किसी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल भी नहीं किया। तो देखिए ये सुंदर तस्वीर आपको अमरावती से हम दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती में एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण कुमार आकरे ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर साइकिल चलाई। ये बेहद अद्भुत नजारा है और इस दौरान वो करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक सांस रोके हुए पानी के अंदर रहे और साइकिल चलाते हुए उन्होंने ये वीडियो बनाया है।

आजादी के उत्सव को लेकर पूरा देश चमक रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश की सरहद पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर ऐसी सजावट की गई है जिसे देखकर पलके झुकाने का शायद ही मन करे। जगह जगह पर तिरंगे की रोशनी की जगमगाहट दिखाई पड़ रही है जो ना सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली है बल्कि देशभक्ति की भावना से भी भर रही है।

0: देश पूरी तरह आजादी के उत्सव के रंग में डूब चुका है। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर जगह भव्य सजावट देखने को मिल रही है। हर तरफ बस नजर आ रही है तो तीन रंगों की जगमगाहट। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के होने वाले मुख्य राष्ट्रीय समारोह को लेकर दिल्ली भी जगमगा रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ खूबसूरत तिरंगे की रोशनी से चमकता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे की आकर्षक एलईडी लाइट से की गई ये दिव्य सजावट लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। आजादी के उत्सव को लेकर देश का कोना कोना तिरंगे की रोशनी से रोशन है। यूपी की राजधानी लखनऊ भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सराबोर है। यहाँ विधान भवन समेत सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों के अलावा मुख्य मार्गों को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस उत्सव के शानदार रंग मुंबई पर भी पूरी तरह छाया हुआ है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन हो या उसके सामने स्थित बीएमसी का मुख्यालय, तिरंगे की दिव्य रोशनी से चमक रहा है। सीएसटी और बीएमसी हेडक्वार्टर्स के अलावा विधान भवन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एसबीआई से लेकर एलआईसी की बिल्डिंग तक तिरंगे की चमक से सराबोर है। आजादी के उत्सव को लेकर ऐसी ही चमक हर तरफ बिखरी हुई है। ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति वाली शहर ग्वालियर भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्य रोशनी और सजावट में चमक रहा है। ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस बिल्डिंग की छटा देखते ही बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार की पहचान वाले राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी भी 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगामय है। चाहे विधानसभा भवन हो या जनता भवन, तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। देश के सरहदी इलाके भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। बॉर्डर का प्रवेश द्वार से लेकर दर्शक दीर्घा तक को आकर्षक तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सीमा का पूरा परिसर केसरिया, सफेद और हरे रंग की एलईडी लाइट से जगमगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो स्वतंत्रता दिवस से पहले पूरे देश में तिरंगे की छटा दिखने लगी है। हर घर तिरंगा मिशन के तहत हर घर राष्ट्र ध्वज लहराए जाएंगे, लगाए जाएंगे। तिरंगे की डिमांड बढ़ने के साथ ही इसके बनाने की रफ्तार भी बढ़ गई है। तिरंगा बनाने वाले कारखानों में इन दिनों काम की रफ्तार बढ़ा दी गई है।

0: चंगे का ये निर्माण बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार की सौगात भी दे रहा है।
1: बरसों का अनुभव, कला की बारीकियां और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जज्बा जब एक साथ मिल जाए तो नतीजा एक खूबसूरत तिरंगे की शक्ल में सामने आता है। कर्नाटक के धारवाड़ में तिरंगे के निर्माण का ये हुनर बरसों की विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ हर तिरंगे को हाथों से बुने खादी के कपड़े पर उकेरा जा रहा है। धारवाड़ के गारक गांव के लोगों ने खादी के तिरंगे बनाने की अपनी इस काबिलियत को बदलते दौर में भी जिंदा रखा है। आज ज्यादातर जगहों पर आधुनिक मशीनों की मदद से तिरंगे बनाए जा रहे हैं, लेकिन गारक गांव में बने खादी के तिरंगे की आज भी एक अलग पहचान है। इन तिरंगों में इस्तेमाल होने वाले खादी के कपड़ों को पारंपरिक तरीकों से बुना जाता है। इसके बाद कुछ हुनरमंद हाथ तिरंगे के अलग अलग रंगों को एक साथ जोड़कर इसे राष्ट्र ध्वज की शक्ल देते हैं। अशोक चक्र को रंगने के लिए आज भी पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है। धारवाड़ ही नहीं, असम में भी पिछले कुछ महीनों से खादी के तिरंगे बनाने का काम तेजी से चल रहा है। असम खादी बॉर्डर ने 15 अगस्त तक हजारों तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ भी तिरंगों का निर्माण पारंपरिक तरीकों से ही किया जाता है।
2: खादी का जो मानदंड है, जो खादी का प्रति खादी का जो साहिदा है, वो साहिदा हमेशा रहेगा। और बाहर में जो प्लास्टिक मेड वो मेंटेन नहीं करता है, रंग मेंटेन नहीं करता है, कोई कोई ऐसा ऐसा करता है, लेकिन खादी का फ्लैग का डिमांड है। वो आप लोग देखेगा जो 15 अगस्त का पीछे वो नर्दमा सर्दमा जहाँ तक फेंक देता है प्लास्टिक, खादी का फ्लैग संभाल कर रख देता है।
1: यहाँ छोटे तिरंगों के साथ बड़े आकार के तिरंगे भी बनाए जा रहे हैं। अशोक चक्र को पारंपरिक रंगों से उकेरने के बाद तिरंगे के अलग अलग हिस्सों को आपस में मिलाकर राष्ट्र ध्वज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झंडों का ये निर्माण स्थानीय कारीगरों को बेहतर रोजगार की सौगात भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में ये महिलाएं 2,00,000 तिरंगे तैयार करने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। तिरंगों के निर्माण का ये काम करीब 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर पूरा कर रहे हैं। यहाँ बन रहे तिरंगे हर घर तिरंगा मिशन के तहत गांवों, ब्लॉक्स और सरकारी दफ्तरों में बांटे जाएंगे।
3: जो हम बेरोजगार थे, आज हमें रोजगार मिला और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए और क्या कहते हैं घर की जो अन्न खर्च होते हैं अन्न खर्च के लिए और अपना जो घर चला रहे हैं और बच्चों के पढ़ाई लिखाई खेती किसानी हर चीज के लिए, मतलब समूह के माध्यम से सब हो रहा। अब ये
4: स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये हमें सिलाई का काम मिला। 15 अगस्त आ रहा तो झंडा सिल रहे हैं। जो हम बेरोजगार थे तो हमें रोजगार मिला है, जिससे हमारी बच्चों की पढ़ाई का चल रही है, इससे घर का व्यापन हो रहा है।
1: तिरंगा निर्माण के इस पहल ने हजारों की संख्या में महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया है। इस कोशिश ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च उठाने में सक्षम भी बनाया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा निर्माण का ये मिशन हजारों परिवारों के लिए एक बड़े आर्थिक बदलाव का पैगाम लेकर आया है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: और चलिए बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वतंत्रता दिवस पर बड़े पर्दे पर आई फिल्म बंटवारा 1947 की बात करेंगे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम ढूंढ। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: हसीवे स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक रोकी सांस।

खबरें के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका शुभ समाचार में। और अब बात करेंगे सावन की फुहार की। चारों तरफ हरियाली, हाथों में मेहंदी और झूलों की बात। कल यानी शनिवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज आते ही देश के कई हिस्सों में उत्सव का रंग गहरा हो जाता है। खासकर उत्तर भारत में महिलाएं इस पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। कहीं पारंपरिक गीतों की गूंज है तो कहीं 16 श्रृंगार कर महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति से जुड़ी है। महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ व्रत और पूजा करती हैं। कई जगहों पर कुंवारी युवतियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से इस पर्व में हिस्सा लेती हैं। घरों में विशेष पकवान बनाए जाते हैं और नाचते गाते हुए पर्व को खुशहाली के साथ मनाया जाता है। हरियाली तीज का एक खास पहलू इसका प्रकृति से रिश्ता भी है। सावन में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये पर्व मनाया जाता है। झूले और सावन के गीत इस मौसम को उत्सव में बदल देते हैं।

0: बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में. सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज नो लव, हस्बैंड के लिए लव वे की दिखाता है. ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव. एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं. तो वो शिव जी और पार्वती की जैसी जोड़ी बनी रहती है वैसे ही सब चाहते हैं कि उनकी उनके हस्बैंड के साथ ये जोड़ी बनी रहे और ये उनको आशीर्वाद मिलता रहे.
1: सावन मतलब बारिश, जैसे मेरा नेम रिजेंबल करता है मेघा. एंड मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार है. अगर तीज और बारिश प्यार का एक सिंबल है तो आई लव तीज. एंड यस इसमें फास्ट रखते हैं, गेवर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं.
2: सबसे पहली हम जो हमारी तीज मनाते हैं, जो झूला झूलते हैं, जो गेवर खाते हैं, वो हमारे ससुराल से आता है और हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है. और हर महिला राजस्थान की तीज संजारा दोनों पे लहरिया पहनती है क्योंकि इसके सुहाग से जुड़ा हुआ था. और लहरिया अकेला नहीं पहना जाता, लहरिया 16 श्रृंगार से जुड़ा हुआ होता है. लहरिए के साथ साथ हमारे लिए नथ पहनना ज़रूरी है. चूड़ियाँ जो हरे रंग की आप पहनते हैं या बहुत सारे फैशन के हिसाब से अलग अलग तरीके के चूड़ियाँ या चूड़े आते हैं वो पहना जाता है. हम घेवर खाते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सावन पे झूला झूले. और ये एक सम्मान है हमारा, हमारे पर्यावरण को धन्यवाद देने के लिए एक सम्मान होता है कि हम हमारे पेड़, हमारी प्रकृति और हमारी घास और हमारी सुंदरता को हम एक धन्यवाद देते हैं क्योंकि राजस्थान में बारिश वैसे ही बहुत कम आती है. तो जब भी बारिश आती है तो हमारे लिए वो एक ईश्वर का तोहफा होता है और ये सब हमारा जो महिलाओं का धन्यवाद देने का एक तरीका है.
3: तो देखिए किस तरह से तीज का त्यौहार मनाया जा रहा है. लोग नाच कर गा कर इस त्यौहार को मना रहे हैं खुशहाली की कामना के साथ साथ साथ महिलाओं ने व्रत भी रखा है, पूजा की है. कई जगहों पर कुंवारी युवतियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से इस पर्व में हिस्सा लेती हैं.

0: का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती है, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएं आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। चारों तरफ लहरिया से इसको सजाया गया है, रंग बिरंगे यहाँ पे जो प्रॉप्स हैं वो लगाए गए हैं, अलग अलग एक्टिविटी सभी महिलाओं के लिए रखी है, फैशन शो हो रहा है, डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो भी आउटफिट्स हैं उनको, उनका भी कॉम्पिटिशन होगा, देखा जाएगा कि किसका आउटफिट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कौन सबसे ज़्यादा यूनिक तरीके से तैयार हो गया। और साथ ही साथ में कई ऐसी लोकल स्टॉल्स भी लगी हैं जहाँ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका काम भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये जो एक सेलिब्रेशन है ये कह सकते हैं कि महिलाओं का गेट टुगेदर भी है जहाँ सारी महिलाएं एक साथ आई हैं और राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनको एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हिदम जैन, बिजनेस टुडे जयपुर।
1: तो हरियाली तीज पर घेवर की भी काफी डिमांड होती है, इसका काफी महत्व होता है। ऐसे में काफी डिमांड होती है तो लोग यहाँ पर जगह जगह पर मार्केट्स में पहुंचते हैं इसे खरीदने के लिए। घेवर तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन जयपुर के घेवर के जायके की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। दरअसल इस घेवर में सोने का भस्म और वर्क इस्तेमाल किया गया है, इसकी कीमत भी करीब 21,000 रुपए रखी गई है। और क्या खास है इस घेवर में, बता रही है हमारी संवाददाता रिदम जैन।
0: घेवर की मिठास और बहुत ही अलग अलग पारंपरिक स्वाद और त्यौहार, और ऐसे में हम हैं एक ऐसी जगह जहां घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नज़र आता है। और मैं आपको दिखाती हूं कैसे ये घेवर दिखते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं। कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है, पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को, जिसको कहा जाता है जेन जी, उनको खास पसंद आते हैं। और इसके पीछे के जो इनोवेटर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, अंजलि जी हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या है इस घेवर के पीछे की सोच। मैम आप पहले यहाँ आ जाइए और हमें आप बताइए कौन से घेवर है, क्या खास है?
2: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार, और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपये पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
0: जी।
2: साथ ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा, घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोर्स्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड वो भी डाली है, और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है, और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है अगेन विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे, रबड़ी इसमें नहीं यूज हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है, जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है। मैं बोलूँगी डिफरेंट होगा बट बहुत डिलीशियस होगा, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। शुगर में भी, वैसे शुगर का कंटेंट भी हम लोग बहुत मिनिमलिस्टिक रखते हैं चीज़ों में, लेकिन अगर आप शुगर का रिप्लेसमेंट देखें तो हनी और भी ज़्यादा आयुर्वेदा में रिकमेंड करा जाता है। ये पूरा आयुर्वेदा से बनी हुई रेसिपी है जो कि आपके हेल्थ और टेस्ट दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है।
1: तो सावन का मौका है और महादेव के इस पवित्र और पावन महीने में शिवालय में हर दिन बेहद खास दिन मनाया जाता है। बड़ी संख्या में लोग सावन के महीने में शिव मंदिरों का रुख कर रहे हैं। महाकाल के दरबार में तो हर दिन लाखों लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह सवेरे होने वाली भस्म आरती का नजारा देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। भस्म आरती के दौरान महाकाल के दरबार में भक्ति का ऐसा रंग नजर आता है जिसे देखने और महसूस करने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। भस्म आरती से पहले महादेव का भव्य अभिषेक किया जाता है। पंचामृत से होने वाले इस अभिषेक में दूध, दही, घी, शक्कर और शहद अर्पित किया जाता है। मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान के बीच होने वाला ये अभिषेक भक्तों के लिए बेहद खास आध्यात्मिक अनुभव होता है। इसके बाद बाबा महाकाल की भस्म आरती होती है जिसमें दिव्य दर्शन के लिए श्रद्धालु घंटों इंतजार करते हैं।

0: पर आके अभिभूत हो जाता हूँ, रम जाता हूँ। यहाँ पर ऐसा लगता है कि बाबा महाकाल खुद ही खींचते हैं हमें अपने तरफ। और भस्मा आरती की तो बात ही अलग है, सबको पता है, पूरे देश विदेश भी पता है।
1: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत खास माना जाता है। आपको बता दें, बम भोले के जयकारों के साथ सावन के महीने में आध्यात्मिक आस्था अपने चरम पर होती है। उत्तर भारत में जहां आधा सावन महीना गुजर चुका है, वहीं देश के दक्षिणी हिस्से में सावन का आगाज हुआ है। तो चलिए देखते हैं वहां कैसे हैं सावन में आस्था के रंग।
2: गुजरात, महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के राज्यों में सावन की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत में पूर्णिमा चंद्र पंचांग का पालन किया जाता है, जिससे महीने की शुरुआत पूर्णिमा के बाद होती है। वहीं दक्षिण भारत में अमांत चंद्र पंचांग से गणना शुरू होती है, जिसके चलते महीने की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है। अलग अलग चंद्र पंचांग होने के चलते दक्षिण भारत में सावन का महीना 15 दिन बाद शुरू होता है। यहाँ सावन का महीना भले ही 15 दिनों के बाद शुरू होता है, लेकिन भगवान शिव की भक्ति का स्वरूप और आध्यात्मिक महत्व एक जैसा ही है। समंदर के किनारे भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश ही नहीं, यहाँ दुनिया भर से हजारों शिव भक्त भगवान की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। आसमान से बरसती सावन की फुहारों के बीच भोलेनाथ के इस अलौकिक धाम की शोभा ही निराली नजर आती है। भगवान शिव के इस पावन धाम में आकर हर कोई अपने आप को धन्य मान रहा है।
3: सोमनाथ के दर्शन मैंने अभी शाम को, मैं लखनऊ से आया था, शाम को मैंने दर्शन किए, फिर मैंने मॉर्निंग में दर्शन किए, मैंने दो बार दर्शन किए और मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी लगी।
4: हर साल हम आते हैं, पूरा महीने शिव जी की सेवा करते हैं और एक जो एक जुड़ाव है, एक लगाव है, जो शिव जी की कृपा जिन पर रहती है, वहाँ पे ही आप आ सकते हो।
5: यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे यहाँ का दृश्य हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, बहुत ही मनमोहक। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जो कोई मुझे देख पा रहा है, यहाँ पे जरूर आए।
2: सावन के पवित्र महीने में हर दिन बाबा सोमनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है, लेकिन सावन महीने के हर सोमवार और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। भक्तों में भगवान शिव के अनुपम श्रृंगार के दर्शन का अपना अलग ही आकर्षण होता है। भगवान सोमनाथ के धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सावन महीने में जो शिव भक्त बाबा के धाम नहीं पहुँच पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ 30 दिनों तक ऑनलाइन बिल पूजा की व्यवस्था भी की गई है, जिसकी बुकिंग भक्त महज 21 रुपए में ही कर सकते हैं।
6: श्रावण महीने के शुभारंभ से सोमनाथ में लोगों का एक मानव मेहरामण उमड़ रहा है। यहाँ हर राज्यों से अभी यात्री आते हैं और ये यात्रियों की इच्छा दर्शन करने की होती है, पूजा करने की होती है, गजा चढ़ाने की होती है। सबके लिए यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त है।
2: गीर सोमनाथ ही नहीं, गुजरात के राजकोट में भी सावन महीने की अलग ही रौनक है। यहाँ पंचनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कोई रुद्राभिषेक करने में लीन नजर आ रहा है।
7: भगवान की पूजा करना ये भी श्रावण मास के अंदर बहुत उत्तम माना गया है कि भगवान शिव की पूजा कौन कर सकता है, कि जिसका भाग्य का उदय होता है वही श्रावण मास में शिव पूजा कर सकता है।
2: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना लिए सावन के पावन महीने में भक्त महादेव की शरण में पहुंचते हैं। बम भोले के जयकारों के साथ पूरा वातावरण ही शिवमय हो चला है। गीर सोमनाथ से दिलीप मोरी, गुड न्यूज टुडे।
1: मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला सा नजर आ रहा है, जिसके चलते वीकेंड के कूल रहने के आसार हैं। मॉनसून के सक्रिय रहने से देशभर के ज्यादातर हिस्सों में 19 अगस्त तक बारिश होने के अनुमान है। दिल्ली एनसीआर में गुरुवार के बाद शुक्रवार यानी आज भी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है।
2: देश के कई हिस्सों में मॉनसून सक्रिय है और जगह जगह बारिश भी हो रही है। एक दिन पहले यानी गुरुवार को भी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर यूपी के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी बादल जमकर बरसे। दिल्ली एनसीआर में हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। और गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में बादल छाए रहने और बौछारें पड़ने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से मॉनसून फिर से सक्रिय हो गया है और इसके चलते 14 से 19 अगस्त के बीच दिल्ली NCR, UP, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण पश्चिम के कई राज्यों में भी बारिश होने के आसार हैं। इस दौरान कहीं हल्की और मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश से लेकर बहुत भारी बारिश तक भी हो सकती है। मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी 19 अगस्त तक बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 14 से 17 अगस्त के बीच कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, जबकि बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अनुमान जताया गया है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलग अलग जगहों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
8: देर शाम से मानसून फिर से सक्रिय होगा और 14 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक संभावना है कि पूरे प्रदेश में ही बारिश के मतलब मौसम दौर देखने को मिलेगा। साथ में इसी दौरान 14 अगस्त को संभावना है हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है। विशेषतः देखिए डिस्ट्रिक्ट मंडी और शिमला के लिए ऑरेंज कैटेगरी में अलर्ट जारी किया गया, जहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ में ऊना, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा यहाँ पे येलो कैटेगरी का कल 14 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उसके उपरांत देखिए ओवरऑल बारिश का दौर 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक जारी रहेगा।
2: मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त तक मॉनसून के सक्रिय रहने का अनुमान है, जिसके चलते जगह जगह बारिश होने के आसार हैं।
8: अलर्ट्स की बात करें तो 15 अगस्त को प्रदेश में येलो कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर यहाँ पे संभावना है कि 15 अगस्त को हल्के से मध्यम बारिश के साथ एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। और उसके बाद देखिए 16 अगस्त को डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर यहाँ पे संभावना है कि भारी बारिश हो सकती है। और ओवरऑल उसका देखिए 17-18 अगस्त को फिर से जो मानसून की इंटेंसिटी उसमें और मतलब इंक्रीज करेगा और उस समय प्रदेश में कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें विशेषता बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर यहाँ पे 17 अगस्त के लिए ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया गया और बाकी जो क्षेत्र हमारे जो केन के क्षेत्र है मध्यवर्ती वहाँ पे हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया। तो
2: इन सब के अलावा मौसम विभाग के अनुमानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 22 अगस्त तक कई स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अब बात करते हैं फिल्मी फ्राइडे की। इस वीकेंड पर सिनेमा प्रेमियों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिलने जा रहा है। बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 और इमरान हाशमी की मोस्ट अवेटेड फिल्म आवारापन 2 का अब आमने सामने आने वाली है। दोनों ही सितारों की अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और दोनों फिल्मों का दर्शक लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं। बंटवारा 1947 देश के विभाजन के उस दौर की कहानी है जो खौफ, हिंसा और दहशत से भरा हुआ था। फिल्म में सनी देओल सिकंदर मिर्जा के किरदार में नजर आ रहे हैं और ऐसा किरदार जो नफरत और डर के माहौल के बीच भी साहस का रास्ता चुनता है। वहीं दूसरी तरफ है आवारापन 2 के साथ इमरान हाशमी एक बार फिर से जो वापसी कर रहे हैं और अपने ही अंदाज में लौट रहे हैं और आपको बता दें उन्हें इंटेंस और इमोशनल किरदारों के लिए अलग पहचान दिलाई है इस फिल्म ने। तो वहीं फिल्म को लेकर फैंस के बीच पहले से ही खासा क्रेज है, यानी एक तरफ इतिहास के पन्नों से निकली दर्द और हिम्मत की कहानी तो दूसरी तरफ प्यार, जज्बात और इमरान हाशमी का इंटेंस अंदाज। यानी इस फिल्मी फ्राइडे पर दर्शकों के पास मनोरंजन के दो बिल्कुल अलग रंग मौजूद हैं। तो अब ये दोनों ही आपके सामने होंगी और दर्शकों का इन दोनों ही फिल्मों का लंबे समय से बेसब्री से इंतजार था जो कि अब उनके सामने आने जा रही हैं। बंटवारा है एक तरफ और एक तरफ आवारापन है। आवारापन का ये सीक्वल है। आवारापन 2 लेकर इमरान हाशमी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं।
9: और इंस्टा स्टोरी में आपको उन कलाकारों की इंस्टा रील दिखाते हैं जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसाने और गुदगुदाने में भी पीछे नहीं है। देखिए कीकू शारदा की फनी इंस्टा स्टोरी।
10: पापा मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इससे।
11: करते क्या हो बेटा?
12: अंकल हमारा मोमोज का ठेला है।
11: बेटा बुरा मत मानना, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जीवन भर एक गरीब घर में रहे।
12: करेक्ट अंकल, इसीलिए इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। चले
13: एक्सक्यूज मी भैया, आपके कितने सेट बाकी हैं?
14: दो और।
13: लेकिन भैया मैं आपसे पहले आया हूँ।
1: और इसी के साथ शुभ समाचार में फिलहाल इतना है।
9: बाकी देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है,
16: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
16: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
20: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
16: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
17: और दुर्भाग्य कहता है
16: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
18: अविश्वास में विश्वास बसता है।
16: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
19: गुड न्यूज टुडे।
16: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
19: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: 80वीं स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। श्रीनगर की डल झील में शिकारों और SDRF की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक रोकी सांस। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, राजधानी दिल्ली सहित तमाम राज्यों में सुरक्षा बल मुस्तैद, श्रीनगर में गाड़ियों की बारीकी से चेकिंग। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। उत्तराखंड के पीपलकोटी में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टनल में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे हुए 19 लोगों को NDRF और SDRF ने निकाला। बॉक्स ऑफिस पर आज सिनेमा के सितारों की जोरदार टक्कर, से चढ़कर बोल रहा है सुपरस्टार सनी देओल की बटवारा 1947 और इमरान की आवारापन 2 का क्रेज।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करना बड़ा सरल है और उनकी कृपा पाने के लिए हमें भगवान शिव की स्तुतियां करनी चाहिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सावन में भगवान शिव की कौन सी स्तुति करें और उससे किस तरह का लाभ जीवन में प्राप्त होगा। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं शिव जी की स्तुतियों के बारे में। शिव जी की स्तुतियों का महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। देखिए, शिव जी की जो स्तुतियां हैं वो बहुत विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। भगवान शिव की स्तुतियां सामान्यतः छंदात्मक होती हैं, गाई जा सकती हैं। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों के लिए उनकी अलग अलग स्तुतियों की रचना की गई है और अलग अलग विशेष स्थितियों में इनकी स्तुतियों का प्रभाव अचूक होता है। आप जिस तरह की स्तुति का पाठ करने जा रहे हैं उसके पहले उससे संबंधित स्वरूप का ध्यान आपको कर लेना चाहिए। भगवान शिव की पहली स्तुति है शिव पंचाक्षरी स्तोत्र। शिव पंचाक्षरी स्तोत्र जो है ये भगवान शिव का जो पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, इस मंत्र की व्याख्या है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व की शक्ति से भरा हुआ है। इसका निरंतर पाठ करने से शिव जी की कृपा जीवन में अवश्य मिलती है और अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करे तो उसके ऊपर शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप या तो रेगुलरली नमः शिवाय का जप करें या शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें, शिव जी की कृपा आपको निरंतर मिलती रहेगी। चर्चा हमारी जारी है लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, करियर में लाभ होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, यात्रा पर जा सकते हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मिथुन राशि, करियर में लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। भगवान शिव की दूसरी स्तुति है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव के परम भक्त रावण द्वारा की गई एक विशेष स्तुति है। ये स्तुति छंदात्मक है और इसमें बहुत सारे अलंकार हैं। आम तौर पर शिव तांडव स्तोत्र को गाया जाता है। किसी भी कठिन से कठिन स्थिति में इस स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है। अगर किसी अशुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बहुत खराब समय चल रहा हो, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नृत्य के साथ नाच करके गा करके इसका पाठ करें तो सर्वोत्तम होगा। और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने के बाद शिव जी का ध्यान करें और अपनी प्रार्थना करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावतस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमड डमड डमड डमड निनाद वड्ड वर्मयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। गा गा कर अगर शिव तांडव स्तोत्र पढ़ा जाए, कितना भी कठिन वक्त चल रहा हो, उस कठिन वक्त के प्रभाव से आपको छुटकारा मिलेगा। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, ऑफिस में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, किसी अतिथि का आगमन होगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
अब एक और बड़ी अद्भुत स्तुति की बात करते हैं, उसका नाम है दारिद्र दहन स्तोत्र। दारिद्र दहन स्तोत्र महर्षि वशिष्ठ के द्वारा लिखा गया है या रचा गया है। इसका पाठ रेगुलर करने से दरिद्रता का नाश होता है। अगर आर्थिक स्थिति खराब है तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिए, और इसका पाठ दोनों वेला दोनों समय करना चाहिए। अगर आप दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, दरिद्रता बहुत ज्यादा है, पैसे की कठिनाई बहुत है, तो सुबह शाम दारिद्र दहन स्तोत्र का पाठ करें, और जितने दिन इसका पाठ करें सात्विकता बनाए रखें, मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, धन के खर्चों पर ध्यान दें, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, धन लाभ के योग हैं, करियर की समस्या हल होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तो आज हमने बात की भगवान शिव की स्तुतियों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के महीने में जितने भी दिन संभव हो शाम के समय शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाइएगा। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। देखिए, अगर आयु की बाधा हो, स्वास्थ्य में गहरा संकट चल रहा हो, स्वास्थ्य की मुश्किलें बहुत परेशान कर रही हो, तो भगवान शिव के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके चंद्रशेखराष्टक का पाठ करिएगा। सुबह और शाम शिव जी के महामृत्युंजय स्वरूप का ध्यान करके अगर आप चंद्रशेखराष्टक का पाठ करें तो ऐसा करने से आपके आयु की और आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी। प्रातः काल भगवान शिव को जल और बेलपत्र अर्पित करिएगा।
इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगा

0: कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

जब हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बांध दिया खंबे में, कहां है भगवान? प्रहलाद जी बोले ये पूछो कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ईसा वास्मिदं सर्वम यत्र रामा तत्र रामा च सर्वत्रो श्री रामा, यहाँ वहाँ सर्वत्र विद्यमान है भगवान, कण कण में व्याप्त है, यहाँ वहाँ बाटन में घाटन में बीतन में बागन में वृक्षन में बेलन में बाटका में बन में दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में हीरन में हारन में कुंजन में तन में कानन में कुंजन में गोकुल में गोधन में घन में, जहाँ जहाँ देखूत है श्याम ही दिखाई दे, साले ग्राम छाए रहे नैनन के मन, कहाँ नहीं है ये पूछो। प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है, है? तब हिरण्यकश्यपु बोला हम चेक कर रहे इस खंबे में है। प्रहलाद जी बोले हाँ है। हिरण्यकश्यपु ने कान लगाया कुछ नहीं सुनाई पड़ा, बोले झूठ बोल रहे है ही नहीं। तो प्रहलाद जी बोले हटो पिताजी हटो, एक तरफ किया। अब प्रहलाद जी ने कान लगाया तो भीतर से आवाज आई बोलो। प्रहलाद जी बोले बोलना नहीं है सुनो। क्या प्रभु हमारे पिताजी कृपाण लिए खड़े हैं, कृपाण जानते हो जिसमें दोनों तरफ धार रहती, कृपाण लिए खड़े हैं और वो कह रहे दोनों तरफ धार है, एक मिनट में साफ कर देंगे। भगवान बोले डर रहे हो क्या? प्रहलाद जी बोले डरवर नहीं लग रहा, हमको एक दुख लग रहा है। बोले क्या? बोले प्रभु हम कह तो दिए कि खंबे में हो, अब आप नहीं आओगे तो लोग कहेंगे झूठ बोलते हैं, भगवान भगवान कुछ है ही नहीं, तो हमारी ब्रांडिंग खराब नहीं होनी, आपों की ब्रांडिंग खराब होगी। हाँ, ब्रांड आपका डैमेज होगा, हमारा नहीं होगा, हमारा कुछ गड़बड़ नहीं होना, आपका बिगड़ेगा। इतना कहते ही भगवान प्रहलाद जी से बोले चिंता मत करो, हम अभी प्रकट होते। और भागवत में आया गड़गड़ानो खंभ फाटो चरचरानो निक्सो नर नाहर को रूपति भयानक है, गगड़गड़ावे दसन जीप लप लप प्रसावे चितपत सरोज मन मानो अब खावत है खंबा फट गया और नरसिंह प्रकट हो। तुरंत नरसिंह प्रकट हो गए और जैसे ही नरसिंह भगवान को देखा प्रहलाद जी ने, सबसे ज्यादा खुश प्रहलाद जी है, बोले प्रभु बड़ी कृपा कर दी जो आप आ गए, आप न आते तो आपकी आज ब्रांडिंग गई। हा भगवान है ये ब्रांडिंग ही खत्म हो जाती। तो भगवान प्रकट होते ही क्या कह रहे जरा सुनिए, कितने दयालु है भगवान। प्रकट होते ही नरसिंह भगवान प्रहलाद जी से कह रहे हैं भैया प्रहलाद हमको आने में देर हो गई, माफी करो, हमको माफ करो, आने में देर हो गई। बताओ कोई भगवान इतना दयालु होगा है? कोई इतना कृपालु होगा? भगवान कह रहे प्रभु प्रहलाद हमको आने में देरी हो गई, माफ करो। प्रहलाद जी की आंखों में आंसू आ गए, प्रभु देर से ही सही आ तो गए हो, न आते तो हमारी और तुम्हारी दोनों की लुटिया डूब जाती, ये तो काट ही देते हमको, आप पर भी प्रश्न चिन्ह उठता।

0: रात का भला मिला समझो, यदि अब तुम तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। प्रभु अपनी लाज नहीं रखोगे ना तो लोग हंसेंगे। नाथ अपनी लाज नहीं रखोगे, लोग तमाशा बनाएंगे, उलाहना देंगे। और देते ही है भक्त को तो उलाहना मिलता है, जो भक्ति के मार्ग में जाता ना उसे बड़ा सहना पड़ता। कमाल तो कहने वाले करते हैं, भक्त तो सहते हैं। सहने के अलावा कुछ नहीं बचता। मीरा बिस पी गई, सूरदास को सहना पड़ा, रैदास को सहना पड़ा, तुलसीदास जी को परीक्षा देनी पड़ी, किसको नहीं सहना पड़ा। भाग्यनगर वालों कुछ तुम्हें सहना भी पड़े ना, सह लेना, भक्ति के मार्ग में पर डटे रहना। हमें भरोसा है जो तुम पर हंसते हैं वो तुम्हारे लिए एक दिन तालियां बजाएंगे। जो तुम्हारे बर्बाद होने का इंतजार कर रहे हैं, देखना तुम भगवान के भरोसे भर रहना, वो तुम्हारी जय जयकार ना करे तो कर। प्रहलाद जी के सामने जब भगवान प्रकट होते, हमको माफ करो। प्रहलाद जी बोले, प्रभु कैसी बात करते हो, भगवान इतने विकराल रूप में है, कोई देवी देवता पास आने को तैयार नहीं है, कोई भी। इतना विचित्र रूप, आधा नर आधा सिंह, नाम नरसिंह, कौन नजदीक आए, सब दूर दूर है। सोचा भगवान प्रकट हुए, भगवान ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, ब्रह्मा जी ने सोचा स्तुति करें, भगवान आए हैं स्वागत करें। प्रोटोकॉल है कि राज्यपाल आएगा तो क्षेत्र का एसपी महोदय या महामहिम राष्ट्रपति महोदय आएंगी तो मुख्यमंत्री स्वागत करने जाएंगे। वैसे ही भगवान प्रकट भय तो प्रोटोकॉल है, ब्रह्मा जी जाएंगे। पर ब्रह्मा जी अपने पंख अपने हंस पर बैठ कर गए नरसिंह भगवान के पास। जैसे ही गए, भगवान ने एक नजर टेढ़ी की और एक घुड़क्का मारा, सोई ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ा के भाग गया। ब्रह्मा जी बोले, इतने अवतार देखे ये खतरनाक नहीं देखा। शंकर जी को कहा, आप जाओ। बोले बाबा, बोले नंदी पे बैठ के हम जा रहे। बोले बाबा, नंदी पे बैठ के आए, नंदी बैल है, भगवान नरसिंह हैं, दोनों की आंखें मिली, भगवान ने थोड़ा आंखें बड़ी कर दी और जैसे एक घुड़क्का मारा शंकर जी का, नंदी भागा। शंकर जी बोले, ये तो खतरा नहीं महा खतरा, अब जाए कौन। सबने कहा, पति कितना भी नाराज हो धर्म पत्नी मना लेती, घरवाली को नस पता होती, कौन सी नस दबाने से हमारे हस्बैंड साइलेंट हो। इसलिए तुम जरा देखना, बाहर आदमी चाहे जितनी लंबी लंबी फेंके घरवाली के सामने नहीं फेंकता, और बाहर के लोग चाहे जितना सम्मान कर दे घरवाली नहीं करती है। उन्हें पता होता है कि जो बाहर ये धर्मात्मा बने हैं घर में कितने, घरवाली के सामने किसी की नहीं चलती है, और चलनी भी नहीं चाहिए घरवाली के सामने, वो भी तो शक्ति है, और शक्ति के सामने चलती किसकी है। एक आदमी हमें हैदराबाद में मिला, बोले गुरुजी पत्नी को कंट्रोल करने का उपाय बताओ। उनका बेटा, वो तो शंकर जी नहीं कर पाए, अब तुम्हें कहां से बताएं। बोला, फिर भी आप तो गुरु हो, बड़े चमत्कारी हो, दरबार लगाते हो, कुछ बताओ। हमने कहा, एक कथा बता देते हैं। बोले बताओ। हमने कहा, एक आदमी था, पत्नी को लेने गया, पुराना जमाना था, बैलगाड़ी पर आ रहा था, बैलगाड़ी चलने लगी, जैसे ही बैलगाड़ी चलने लगी तो पत्नी बोली, रथ पर जाऊंगी। रथ लेकर के आया तो घोड़ी लेकर आया, घोड़ी को रथ में लगाया, घोड़ी चलने लगी, पर घोड़ी धोखे से शादी वाली आ गई। जो शादियों में जाती थी, उस शादियों वाली घोड़ी की एक आदत थी, थोड़ा चले और फिर रुके, क्योंकि शादी में थोड़ा चलते थे रुकते थे, फिर नागिन डांस होता था और फिर चले और फिर रुके। तो वो बड़ा परेशान, पत्नी भी बड़ी परेशान, कौन सा घोड़ा घोड़ी ले आए हो। इसने बंदूक उठाई, घोड़ी चली नहीं, बंदूक उठा करके बोला, ए घोड़ी थोड़ी चली, जा आगे जाके फिर रुक गई। उसने बंदूक ली, दो घोड़ी फिर थोड़ा चली, लेकिन आगे जाके फिर रुक गई।
1: तीसरी बार गोली मार दिया, घोड़ी मर गई। अब पत्नी पूछने लगी, क्यों जी क्यों मारा? बोला एक आज तक उसकी घरवाली चुप है। राम जी बोले एक काम करो, एक काम बचा। बोले क्या? बोले राजाओं के दरबार में जब राजा को जमुहाई आती है तो कोई चुटकी बजाता। हनुमान जी से बोले ये चुटकी बजाने का काम आपका है। हनुमान जी बोले ये तो और बढ़िया रहा। बोले क्यों? बोले प्रभु पहले तो चरणों पर देखना पड़ता था, अब बहुत बड़ी कृपा कर दिए, मुख ही देखना पड़ेगा। बढ़िया काम मिला है। अब हनुमान जी राम जी की तरफ देखें तो राम जी कभी इधर मुंह करें कभी उधर मुंह करें, तो हनुमान जी कभी इधर छलांग लगाएं कभी उधर। अब विचार करो, नीचे ना देखें, मुंह करें राम जी की तरफ, देखें राम जी की तो छलांग मारे बगल में, तो जो नीचे वाले बैठे थे उनकी हालत खराब, रोज चार छह लोग घायल हो। अब शाम हुई, राम जी अंदर जाने लगे तो हनुमान जी जाने लगे, पहरेदारों ने रोक लिया, रुको कहां जा रहे हो? अंदर जा रहे हैं, सेवा है, ड्यूटी। ड्यूटी क्या ड्यूटी है? चुटकी बजाने की ड्यूटी है। ड्यूटी जमुहाई भीतर भी तो आ सकती है, कभी भी आ सकती, ड्यूटी तो ड्यूटी है। पहरेदार बोले अंदर नहीं जा सकते, ये देखो नियमावली लिखी है, अंदर की सेवा में केवल माता जानकी जी रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो उनकी अर्धांगनी है, सिंदूर लगाती है, वही भर रहेंगी और कोई नहीं। हनुमान जी बोले ऐसी बात है? तो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगाया है। बोले हमऊ है, माता जी तो केवल माथे में लगाती, हम तो पूरे शरीर में ठोका है। अब जाने दो भैया, तब भी नहीं जाती, बुद्धि देखना हनुमान जी, तब भी नहीं जाने दिया। हनुमान जी परेशान हो गए, अंत तो गत्वा वीर बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज उसी महल के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी सोचने लगे अगर जमुहाई आ जाए और हम चुटकी ना बजाए तो फेल हो जाएंगे, एक काम किया, हम काम करते चुटकी बजाते ही रहते, जब जमुहाई आएगी तो फिट बैठ जाए। दोनों हाथों की उंगलियां ली और गाने लगी,

भी ऐसी चुटकी बजाते बजाते बजाते बैठे रहे। इधर राम जी ने सोचा, सुबह सुबह बेचारे हनुमान जी रात भर से चुटकी बजा रहे हैं और हमको दो ही बार जमुहाई आई है, चुटकी व्यर्थ गई है, एक काम करते हैं इकट्ठी थोक में जमुहाई ले ले। तो राम जी मुंह खोल के बैठ गए। मुंह खोल के बैठे तो ना बंद करे ना कुछ कहे, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट माता जानकी जी देखे और भगवान आंख बंद किए। राम जी सोचे हनुमान जी चुटकी बंद करें तो हम मुंह बंद करें, और हनुमान जी सोचे पता नहीं कब जमुहाई आ जाए, तो वो लगे ऊपर। श्री

घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। जानकी माता को लगा कोई बीमारी हो गई है, भागी भागी गई मंत्रियों को बुला के, बोली जरा देखो प्रभु बीमार हो गए। बोले का हुआ? बोले मुंह खुल गया। मंत्री बोले जरा चेक करो, लकवा तो नहीं हो गया? अब गुरु वशिष्ठ जी आए, सब लोग आए, और हनुमान जी, अरे हनुमान जी चुटकी बजा रहे, राम जी बैठे टिके हुए सुबह से, और सोचे कि वो बंद करे तो हम बंद करें। वशिष्ठ जी बोले एक बात बताओ, हनुमान जी कहां है? खोजा गया तो हनुमान जी ऊपर बैठे पकड़े गए। चलो नीचे, क्या हुआ? प्रभु को बीमारी हो गई। अच्छा, तो चुटकी बजाना भूल नहीं पाए, जा रहे हैं, चुटकी बज रही है और मनी

जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु को देखा, हनुमान जी को लगा ये जमुहाई तो है नहीं, सो चुटकी बंद कर ली। और जहां हनुमान जी ने चुटकी बंद की, सो राम जी ने मुंह बंद कर लिया। जानकी माता बोली कोई बीमारी नहीं लगी थी, ये बीमारी लगी थी। जानकी माता बोली हनुमान जी आज से तुम्हारी ये सेवा बंद। हनुमान जी बोले पर कौन सी सेवा? जानकी माता बोली जो पुरानी वाली थी वही लागू है, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो बल बहुत लोगों के पास होता, बुद्धि बहुत कम लोगों के पास होती। बुद्धि भर बहुत लोगों के पास होती पर बल बहुत लोगों के पास कम होता, एक कुछ ना कुछ ज्यादा होता। पर धन है हनुमान जी, ये छठवां गुण हनुमान जी का बड़ा प्यारा है, बल है तो बुद्धि भी हनुमान जी के पास है। और हमें लगता कम बुद्धि का व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करेगा तो उसकी भी बुद्धि भी बढ़ जाएगी और बल भी। सातवां गुण हनुमान जी के अंदर क्या है पूछो, क्या? अरे जोर से तो पूछो, और जोर से पूछो। हनुमान जी के अंदर सातवां गुण भी बड़ा प्यारा है। आहा, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी के अंदर सातवां जो गुण है वो है समय के साथ चलना। क्या? बोलो बोलो बोलो। समय के साथ चलना, हमेशा शक्तियों का प्रभाव नहीं लेते, जब आवश्यकता है तब शक्ति का प्रताप दिखाते। बलराज अष्ट सिद्ध नौ निधि के, आठ सिद्धियां नौ निधियां है, कभी भी कुछ भी कर सकते, पर नहीं, जब आवश्यकता है तब हनुमान जी शक्तियों का प्रयोग करते। आठवां और हनुमान जी के अंदर अंतिम गुण जो है वो एक है, भगवान की कथा सुनना। हनुमान जी को हनुमान जी बनाने का सबसे, बनने का सबसे बड़ा कारण यदि है वो ये भी है, हनुमान जी कथा के बड़े रसिक हैं।

हनुमान जी के अंदर ये आठवां गुण है, सदैव भगवान की कथा को सुनते रहते। और हैदराबाद के प्रिय जनों, भाग्यनगर के पागलों, जो भी ये चारों पांचों पंडाल में बैठे हैं, हमारी एक प्रार्थना पहले दिन की कथा में है, आज के बाद या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो। या तो हनुमान जी को मानना छोड़ो या हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ो। यदि हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ोगे तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, देखो भगवान के अलावा तुम्हारा कोई दूसरा नहीं। तो देवताओं ने कहा, इतना विचित्र विराट रूप धारण करके नरसिंह भगवान प्रकट भए, देवताओं की चली नहीं, कौन मनाएगा। बोले भाई पति देव कितने भी नाराज हो, धर्म पत्नी मना देती है, जरा बात करो। लक्ष्मी माता के पास गए, आपके स्वामी जी विचित्र रूप में बैठे हैं, जाओ आरती कर लो, उनको शांत करवाओ। हमारे स्वामी जी? हाँ। कौन? श्री हरि विचित्र रूप धारण करके प्रकट हुए प्रहलाद के लिए। अरे हमारे प्रभु अशांत नहीं हो सकते, शांताकारम भुजग सेनम पद्मनाभम सुरेशम, वो तो परम शांताकार है, वो कहां विचित्र रूप में होंगे। देवता बोले आंखों से ही देख लो। तो लक्ष्मी माता ने कहा अभी चलते, बढ़िया साड़ी पहनी हैदराबादी, बढ़िया भाग्यनगर हैदराबादी साड़ी पहनी, साउथ इंडियन लुक में आई माता, गजरा बजरा लगाकर माथे पर व्हाइट व्हाइट चंदन भोलेनाथ वाला लगाकर साउथ इंडियन स्टाइल में, बढ़िया थोड़ा सा बिंदी लगाकर, और माता बढ़िया कनेर के गुलाब के पुष्पों की माला लिए हुए, थाली लिए हुए आरती करने के लिए नरसिंह भगवान के सामने आई, चरणों से आरती शुरू की। और जैसे ही मुख पे आरती आई और भगवान ने एक घुड़क्का मारा, सोई आरती फेंक के नजर आई, बोली ये हमारे हस्बैंड नहीं है, ये नहीं है हमारे वाले, बड़े विचित्र है, ये नहीं है, जब घर आएंगे तब बात करेंगे, आज नहीं हम कर सकते हैं। घर वापस दौड़ी चली आई, देवता परेशान हो गए, अब भगवान की स्तुति कौन करे, प्रार्थना कौन करे। तब तक देवताओं की नजर भक्त प्रहलाद पर पड़ी, अरे भैया तेरे कारण भगवान प्रकट भए, तू प्रार्थना कर। प्रहलाद जी बोले जो आज्ञा, हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए प्रहलाद जी। प्रभु हम तो कुछ जानते ही नहीं है, अज्ञानी है, भगवान के पास समझदार बन के जाओगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के पास भक्त बनकर जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए भगवान को बुद्धि से मत देखो, भगवान को भाव से देखो, क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं, भाव पूरत ठेर ही करती मुझे लाचार है, बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता प्रभु का अवतार है। भगवान भाव के भूखे, ऐसे भगवान के चरणों के आश्रित जो रहेगा वो भक्ति कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बोलो बोलो बोलो। अपने भरोसे पर जो जिएगा वो भूल कहलाती है, भगवान के भरोसे पर जो जिएगा वो भक्ति कहलाती है। इसलिए लोगों ने पूछा भक्ति क्या? ये भक्ति है तत् सुख सुखित्वम, जिसमें प्रभु आपकी प्रसन्नता हो, जही विद हो ये नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। रामायण कहती है प्रभु जैसे हमारा हित हो वैसे आप करो, हम तो आपके चरणों के दास हैं, ऐसा मानकर तुम जियोगे तो भक्त कहलाओगे, और ऐसा मान के जियोगे कि हम कर रहे हैं, ठटरी के बरे तुम कर नहीं रहे, भगवान करवा रहे हैं। कौन करवा रहा? बोलो बोलो बोलो, जरा और जोर से बोलो, भगवान करवा रहा। अंत में एक बात और कहें, हनुमान जी को दृष्टिकोण, चूंकि हनुमंत कथा है तो हनुमान जी को दृष्टिकोण करके रखें, हनुमान जी से सीखें क्या? हनुमान जी से भक्ति सीखें। क्या सीखें? बोलो बोलो बोलो, भक्ति सीखें। भगवान हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं।

दूसरा उत्तर आज का प्रश्न था, पहला प्रश्न था भक्ति क्या है, और आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। एक एक लाइन में यदि उत्तर दें, आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते। क्या कहते? आनंद की अभिव्यक्ति। आनंद मतलब देखो, आपको घर का याद नहीं आ रहा, परिवार का याद नहीं आ रहा, कर्जा लेना देना वो याद नहीं आ रहा, पेट में भूख लगी वो याद नहीं आ रही, अब बस यही मन में और क्या और क्या, अब क्या अब क्या, इसी आनंद की अभिव्यक्ति को भक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? और भक्ति क्यों जरूरी? अमृतमय रसमय मधुमय जीवन जीने के लिए, तनाव मुक्त होने के लिए, आनंद पाने के लिए भगवान की भक्ति जरूरी है। कौन भगवान की? चादर वालों की नहीं और फादर वालों की भी नहीं। आहा आहा, किनकी? अपने वालों की। चाहे राम जी को भजो या श्याम जी को भजो, हनुमान जी को भजो, शिव जी को भजो, क्योंकि दिनों का कोई ठिकाना नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
1: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
2: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
5: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है। डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
1: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
1: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं, जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
8: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
1: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
9: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
10: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
9: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना का मैं डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूँ हॉस्पिटल में।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
1: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
11: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
5: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
12: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
13: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
1: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
14: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 ईयर्स बैक व्हेन वी शिफ्टेड टू इंडिया, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, वी स्टार्टेड यूजिंग इट। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
1: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
15: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए, अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
1: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
8: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
16: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
3: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
5: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
17: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
18: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
2: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दमो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
1: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
3: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
4: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
7: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
1: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
20: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
22: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
20: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
21: और दुर्भाग्य कहता है
20: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
20: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
23: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
24: 80वीं स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और SDRF की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मांग, बंद मना, तो वहीं पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक रोकी सांस।

0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जीएनटी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। जीएनटी पर इस वक्त बात करेंगे सावन की फुहार की। चारों तरफ हरियाली है, हाथों में मेहंदी और झूलों की। कल यानी कि शनिवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी। हरियाली तीज आते ही देश के कई हिस्सों में उत्सव का रंग गहरा हो जाता है। हरियाली तीज का एक खास पहलू इसका प्रकृति से रिश्ता भी है और मान्यता है कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति से जुड़ी है। महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार के खुशहाली की कामना करती हैं और व्रत और पूजन करती हैं। कई जगहों पर कुमारी युवतियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना करती हैं और इस पर्व में हिस्सा लेती हैं। इस अवसर पर घेवर, मिठाई और विशेष पकवान बनाए जाते हैं और नाचते गाते हुए पर्व को खुशहाली के साथ मनाया जाता है। महिलाएं कई दिन पहले से ही इस त्योहार की तैयारी कर रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं तीज की तैयारियों के रंग। देश के कई हिस्सों में महिलाएं तीज पर्व को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाती हैं। कहीं पारंपरिक गीतों की गूंज है तो कहीं 16 श्रृंगार कर महिलाएं शिव पार्वती की पूजा करती हैं। सावन में धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच ये पर्व मनाया जाता है। झूले और सावन के गीत इस मौसम को उत्सव में बदल देते हैं और इसका खास रंग जयपुर में देखने को मिला है, जहां हमारी संवाददाता रिदम जैन आपको दिखा रही हैं तीज की तैयारी के रंग।
1: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती है, रंग बिरंगे कपड़े और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पे है, अलग अलग एक्टिविटीज़ साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। और देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिए में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नज़र आ रही हैं। तो इन्हीं से सबसे पहले जानेंगे इनके जो पोशाक है, इनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं उनके बारे में और जानेंगे कुछ चीज़ें सावन के बारे में। मैम बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, आपका शुभ नाम और आपका पूरा जो ड्रेसअप है उसके बारे में बताइए।
2: हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू मेहरा और मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और ये पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है।
1: क्या रीज़न रहा है कि आज लहरिया के बीच में ये पोशाक आपने?
3: राजस्थानी पोशाक जो है वो हमारी वेशभूषा है। लाइक जब से हम लोग जन्मे हैं मैंने देखा है राजपूताना जो हमारा है, राजस्थान की पहचान है।
1: देखिए राजस्थान की पोशाक हमने देखी और उसके साथ में बहुत सारी हमारे पास लहरिया पहने हुए महिलाएं भी हैं, तो इनका लहरिया तो हम देख ही रहे हैं, अब सावन का महत्व जानेंगे। आप बताइए कि लहरिया आपने पहना है, सावन में ये पहना जाता है, क्या उसका कारण है और क्या कुछ सावन की तीज पे की जाती है?
4: जी देखिए, राजस्थान में जिस तरह से सावन को सेलिब्रेट किया जाता है लहरिया बंदेज जिसके माध्यम से, ये ऐसा नहीं है कि कोई फैशन है, ये एक रिवाज है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, हैंड प्रिंटेड कपड़ा बनता है, उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो एक लहर जैसा शेप दे देती हैं। यहीं से ये प्रचलन शुरू हुआ और साथ ही साथ देखिए आप जितनी भी औरतें देखेंगे उनको पहला लहरिया जो है उनकी जब सगाई हो जाती है, सिंजारा आता है या शादी के बाद तीज से पहले बाद में तीज आती है तो सिंजारा आता है, तो पहला लहरिया या मोठड़ा हमें हमारे ससुराल से हमारी सास की तरफ से तोहफे में मिलता है। सबसे पहली हम जो हमारी तीज मनाते हैं, जो झूला झूलते हैं, जो घेवर खाते हैं, वो हमारे ससुराल से आता है और हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। और हर महिला राजस्थान की तीज सिंजारा दोनों पे लहरिया पहनती है क्योंकि इसके सुहाग से जुड़ा हुआ था। और लहरिया अकेला नहीं पहना जाता, लहरिया 16 श्रृंगार से जुड़ा हुआ होता है। लहरिया के साथ साथ हमारे लिए नथ पहनना ज़रूरी है, चूड़ियाँ जो हरे रंग की आप पहनते हैं या बहुत सारे फैशन के हिसाब से अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ या चूड़े आते हैं वो पहना जाता है, हम घेवर खाते हैं और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सावन पे झूला झूले। और ये एक सम्मान है हमारा, हमारे पर्यावरण को धन्यवाद देने के लिए एक सम्मान होता है कि हम हमारे पेड़, हमारी प्रकृति और हमारी घास और हमारी सुंदरता को हम एक धन्यवाद देते हैं क्योंकि राजस्थान में बारिश वैसे ही बहुत कम आती है, तो जब भी बारिश आती है तो हमारे लिए वो एक ईश्वर का तोहफा होता है और ये सब हमारा जो महिलाओं का धन्यवाद देने का एक तरीका होता है।
1: मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी, एज अ वुमेन आपके लिए तीज और सावन क्या महत्व रखता है?
5: हाय, आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में. सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है, विच इज नो लव, हस्बैंड के लिए लव एक ही दिखाता है. ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव. एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं, और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं. तो वो शिव जी और पार्वती की जैसी जोड़ी बनी रहती है, वैसे ही सब चाहते हैं कि उनकी उनके हस्बैंड के साथ ये जोड़ी बनी रहे और ये उनको आशीर्वाद मिलता रहे. तो दिस इज द रीजन पीपल सेलिब्रेट अबाउट इट.
0: मैम, आपसे जानेंगे, यहाँ पे हमने बहुत सारी महिलाओं से बात की, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आपको सबसे ज्यादा तीज का एक्सपीरियंस होगा, तो कितने साल का एक्सपीरियंस हो चुका है?
6: मेरे को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है. और मैं बहुत ही चाव से मनाती हूँ हर फेस्टिवल, ये नहीं कि तीज, जितने भी अपने राजस्थान के फेस्टिवल्स होते हैं सभी को ऑर्गेनाइज करते हैं. हम चाहते हैं कि सारी लेडीज़ एक प्लेटफॉर्म पे आएं, अपने दिल की जो उनको इतना अच्छा लगता है कि हम तैयार होके जाएं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए. तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं, बहुत सारे गेम्स रखते हैं. तो इस बार हमने जैसे कि रमाडा के साथ एसोसिएशन में किया है, और JKJ वाले हैं और बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. लेडीज इतनी अच्छी ड्रेसअप में आई हैं, तो हम उनका एक फैशन शो भी करवा रहे हैं जी.
0: आप मैम काफ़ी यंग हैं, तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि या तो ये आपकी पहली तीज है या फिर नहीं, देखते हैं, जानते हैं, आप ही बताइए. और आपका तीज, मतलब आपके लिए तीज कितनी इम्पोर्टेंट है, कैसे आप सेलिब्रेट करते हैं?
7: वेल, मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं शादी को, इट्स अबाउट अक्टूबर में 10 इयर्स हो जाएंगे. एंड पहली बार मैंने लहरिया वेयर किया है, इतना मौका मुझे मिल नहीं पाता. वेल, मेरा नाम मेघा है, आई एम फ्रॉम JSQ, द ऑफिशियल किटी ऑफ जयपुर बेसिकली. एंड साड़ी से प्यार मुझे अब होने लगा है, मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं करा, बट अब मुझे लगता है, पहले ऐसा लगता था कि साड़ी पहनना इज़ लाइक अ ट्रिकी टास्क फॉर मी, बट अब जब मैं साड़ी पहनती हूँ आई लव दैट. जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ आई फील वेरी वेरी नाइस. एंड ऑल्सो सावन मतलब बारिश, जैसे मेरा नेम रिजेंबल करता है मेघा, एंड मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार है. अगर तीज और बारिश प्यार का एक सिंबल है तो आई लव तीज. एंड यस, इसमें फास्ट रखते हैं, गेवर खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं.
0: बिल्कुल सच बात है, क्योंकि जयपुर एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा कल्चर देखने को मिलता है, त्यौहार ऐसे देखने को मिलते हैं. और यहीं मैं दिखाती हूँ जिस तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है, चारों तरफ लहरिया से इसको सजाया गया है, रंग बिरंगे यहाँ पे जो प्रॉप्स हैं वो लगाए गए हैं, अलग अलग एक्टिविटी सभी महिलाओं के लिए रखी है, फैशन शो हो रहा है, डांस परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके जो भी आउटफिट्स हैं उनको, उनका भी कॉम्पिटिशन होगा, देखा जाएगा कि किसका आउटफिट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कौन सबसे ज़्यादा यूनिक तरीके से तैयार हो गया है. और साथ ही साथ में कई ऐसी लोकल स्टॉल्स भी लगे हैं जहाँ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका काम भी प्रमोट किया जा रहा है. तो ये जो एक सेलिब्रेशन है, ये कह सकते हैं कि महिलाओं का गेट टुगेदर भी है जहाँ सारी महिलाएं एक साथ आई हैं और राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के जो त्यौहार है, उनको एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं. कैमरामैन मनीष के साथ विदम जैन, बीबीसी न्यूज़ जयपुर.
8: सावन में हरियाली तीज पर घेवर का काफी महत्व होता है, ऐसे में इसकी काफी डिमांड होती है. घेवर तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जयपुर के घेवर के जायके की इन दिनों खूब चर्चा है. दरअसल इस घेवर में सोने का भस्म और वर्क इस्तेमाल किया गया है, और क्या खास है इस घेवर में, बता रही है हमारी संवाददाता रिदम जैन.
0: का त्यौहार साथ में लाती है घेवर की मिठास और बहुत ही अलग अलग पारंपरिक स्वाद और त्यौहार. और ऐसे में हम हैं एक ऐसी जगह जहाँ घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नज़र आता है. और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं, और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं. कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है. पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को, जिसको कहा जाता है जेन जी, उनको खास पसंद आते हैं. और इसके पीछे के जो इनोवेटर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है. अंजलि जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि क्या है इस घेवर के पीछे की सोच. मैम आप पहले यहाँ आ जाइए और हमें आप बताइए कौन से घेवर है, क्या खास है?
9: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है, जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार, और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपये पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
10: जी।
9: साथ ये इसका जो बैटर है, जिसमें जनरली हम मैदा, घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोर्स्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म, जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड, वो भी डाली है, और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है, और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है अगेन, विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे, रबड़ी इसमें नहीं यूज हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है।
11: आपने बोला तो मुझे ये बताइए कि उसका फ्लेवर कितना अलग होगा आम चाशनी वाले घेवर से।
9: मैं बोलूँगी डिफरेंट होगा, बट बहुत डिलीशियस होगा, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। शुगर में भी, वैसे शुगर का कंटेंट भी हम लोग बहुत मिनिमलिस्टिक रखते हैं चीज़ों में, लेकिन अगर आप शुगर का रिप्लेसमेंट देखें तो हनी और भी ज़्यादा आयुर्वेदा में रिकमेंड करा जाता है। ये पूरा आयुर्वेदा से बनी हुई रेसिपी है, तो हर एज ग्रुप के हिसाब से हमने जो रेगुलर लोग खाते, मतलब बड़े लोग जो खाते हैं चाशनी का घेवर और रबड़ी वाला घेवर, जेंजीज को देखते हुए हमने ब्लूबेरी, तिरामासू, बेल्जियन चॉकलेट, कुनाफा, ये सब चीज़ें लॉन्च करी है। तो हर घेवर की अपनी एक खासियत है, एज के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। साथ ही में हमने इस बार कुछ सेवरी में भी लॉन्च किया, इसको हम घेवर चाट नाम दिया है। तो आप घेवर में सॉल्टेड, सेवरी, तीखा, हर तरह का टेस्ट आपको मिलेगा त्यौहार पे। इट्स ऑल असॉर्टमेंट ऑफ लाइक फ्लेवर्स हियर।
11: इसमें से स्क्रेप करके हम इंग्रेडिएंट्स दिखा सकते हैं कि क्या क्या इसमें डाला है, क्यों ये भी है।
9: एक जनरली लोग आजकल चाहते हैं, अगर हम मीठा कम खाना चाहते हैं और मीठे इतना सारा जब मीठा खा लिया है त्यौहार पे, उसके साथ उनको कुछ नमकीन टेस्ट चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज डिश बनाई है।
11: एक सवाल भी उठता है, जब हम इतनी ज़्यादा इनोवेशन देखते हैं और हम नई जनरेशन से जो पारंपरिक मिठाइयाँ हैं उनको जोड़ते हैं, तो ये बात आती है कि पुराने जो ट्रेडिशंस हैं वो कहाँ जा रहे हैं, क्या वो बदलाव बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं अभी भी ये पुराने ट्रेडिशंस से जुड़ा हुआ है, तो उस पर आपका क्या मानना है, कैसे आप रूट्स से जोड़ के रखती हैं?
9: बिल्कुल, जैसे घेवर तो हमारे राजा महाराजों के यहाँ से निकली हुई मिठाई है, और ये हमारे राजस्थान की परंपराओं को बहुत ज़्यादा, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई सबसे मेजर मिठाई है। अगर मैं राजस्थान की शान बोलूँ मिठाइयों में, तो वो घेवर है। तो इसको हमने जोड़ने के लिए, अब आप जैनजीज रबड़ी और चाशनी वाले घेवर से मुझे लगता है सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनको अल्टीमेटली तिरामासू, बेल्जियन चॉकलेट या कुनाफा, ये सब चीज़ें चाहिए।
11: तो देखिए, इससे हमें ये पता चलता है कि त्यौहार पे जो, क्योंकि हर एक त्यौहार की खास मिठाई होती है, भारत में हर एक अच्छे ओकेजन को मिठाइयों के साथ जोड़ा जाता है, तो इसमें पारंपरिक घेवर तो है ही, बट कुछ चेंजेस उसमें लाए हैं जिससे जो नई जनरेशन है, खास करके जेंजी है, वो उसको इंजॉय कर सके। इसमें हमें जो लोटस बिस्कॉफ है, बहुत ज़्यादा फेमस ये फ्लेवर बन चुका है, या चीज़ केक के फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, न्यूटेला फ्लेवर जो है वो आ गया है, और बीते कुछ सालों में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फ्लेवर्स जो हैं, जैसे कि कुनाफा है, वो ऐड हुआ है। तो ये घेवर के साथ अगर एक इनोवेशन दिखती है तो अपने आप उसको खाने का मन होता है। खास करके अगर हम चाट की बात करें, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मीठा खाना अवॉइड करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ एक चाट के रूप में आई है, तो वो बहुत एक यूनिक बात हुई है। 3 साइज़ में ये घेवर यहाँ मिल रहे हैं, एक कॉइन साइज़ है, एक मिनी घेवर है, और उसके अलावा एक जो रेगुलर 8 इंच का घेवर होता है वो मिल रहा है। पर खास बात ये है कि ये घेवर आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स से ये बना हुआ है, और इसमें आम रबड़ी नहीं है, जो ग्लेजिंग है वो भी ड्राई फ्रूट्स की है, जो इसको अपने आप में खास बनाती है। तो ये जो सीरीज है ये दिखाती है कि क्या इनोवेशन जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनके साथ अब जोड़ी जा सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे, जयपुर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन

मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं
जिनसे

0: बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, या मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्णकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च, जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक, चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है। यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्णकंद, यह है सूर्णकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है। ये इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास, अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू, लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार, कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है, वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में। ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, ये है इंद्रायन की जड़, इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियस की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन, भारत माता की जयकारों के साथ अमर शहीदों को नमन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर घर तिरंगा अभियान। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड तक रोकी सांस। जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। बॉक्स ऑफिस पर आज सिनेमा के सितारों की जोरदार टक्कर, सिर चढ़कर बोल रहा है सुपरस्टार सनी देओल की बंटवारा 1947 और इमरान की आवारापन 2 का क्रेज।

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जश्न आजादी की और जश्न के इस माहौल में अभूतपूर्व सुरक्षा की। 15 अगस्त को देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किले पर शान से तिरंगा लहराएगा, लेकिन इस जश्न की सुरक्षा के लिए लाल किले को अवैध किले में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ लाल किले बल्कि पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट है। 20,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी राजधानी की सुरक्षा घेरे में तैनात हैं। आज 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली की फुल प्रूफ सुरक्षा पर बात होगी। समझेंगे कि इस दौरान दिल्ली में क्या क्या पाबंदियां रहेंगी और ट्रैफिक रूट कैसा रहेगा। इसके अलावा चलेंगे राजस्थान की सरहद पर, जहां पर बीएसएफ 15 अगस्त को देखते हुए ऑपरेशन अलर्ट चला रही है। बात करते हैं दिल्ली से। आजादी के जश्न से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में है और लाल किला एक अभेद किला बन चुका है। साथ ही आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हजारों पुलिसकर्मियों के साथ पैरामिलिट्री फोर्स और विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात किए गए हैं। तमाम आधुनिक उपकरणों से लैस सुरक्षा एजेंसियां हर संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए हमारे संवाददाता मनीषा की रिपोर्ट।

0: आजादी हम सब के लिए बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, उसके मायने हर इंसान के लिए जरूर अलग अलग हो सकते हैं। आजादी से सांस लेना भी आजादी है, आजादी से काम करना भी आजादी है, किसी के लिए घर से बाहर निकलना आजादी है, तो कोई नाचने गाने खाने पीने को आजादी मानता है। आजादी दरअसल वो एहसास है जो हमें जीने का मकसद देती है, और 80 साल से इसी आजादी को सलामत रखा है इस हिंदुस्तान। हर बरस इसका जश्न देश के ऐतिहासिक धरोहर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराकर हर हिंदुस्तानी मनाता है। लेकिन इसके साथ ही हमारी आजादी पर बुरी नजर रखने वाले भी कम नहीं हैं, जो हर बरस हमारी आजादी के जश्न में खलल डालने की ताक में रहते हैं, और वो भूल जाते हैं कि वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उससे पहले उन्हें हमारे सुरक्षा जवान और दिल्ली पुलिस से पार पाना होगा। 20,000 दिल्ली पुलिस के जवान, पैरा मिलिट्री फोर्स, एनएसजी और सीआरपीएफ के कमांडो, हाई राइज बिल्डिंग पर निशानेबाज और स्नाइपर, 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे, चेहरे को पढ़ने वाले 75 फेस रिकॉग्निशन कैमरे, पुलिस और कमांडो के स्नाइपर्स, खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी, जगह जगह लगे एंटी ड्रोन सिस्टम, पूरी दिल्ली में नो फ्लाई जोन, पतंगबाजी पर पूरी तरह रोक, क्यूआरटी यानी इमरजेंसी में एक्शन लेने वाली टीम, एनडीआरएफ की टीम किसी भी आपदा के लिए तैयार है।
1: जो फंक्शन के वेन्यू की बात करें तो उसके ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिप्लॉयमेंट हमारा रहता है मैन पावर का, उसमें दिल्ली पुलिस की ही कई सारी यूनिट्स रहती हैं, लोकल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से रहती है, उसके अलावा ट्रैफिक रहता है, सिक्योरिटी रहती है, स्पेशल सेल रहता है, स्पेशल ब्रांच रहती है, PCR रहती है, तो ये सारी यूनिट्स वहाँ पे काम में अपने अपने रोल को निभाती हैं। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस की बहुत टुकड़ियाँ होती हैं, कमांडोज होते हैं जिनको हम लोग कंटिजेंसी रिस्पांस वगैरह के लिए भी रखते हैं, एनएसजी भी रहती है, हिट टीम्स रहती हैं जिसके अंदर हम लोग उनका 15,000 से 20,000 के आसपास का डिप्लॉयमेंट रहता है।
0: ये तो सिर्फ एक झलक है सुरक्षा से जुड़ी उन तैयारियों की जो 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर और उसके आसपास देखी जाएगी। पर कुछ तैयारियां तो ऐसी है जो दिखाई तक नहीं देंगी। जमीन और आसमान के अलावा हवा तक पर नजरें हैं कि कहीं इस हवा को कोई जहरीला ना बना दे। बायो वेपन से लेकर केमिकल वेपन तक से कैसे निपटना है इसके लिए भी दिल्ली पुलिस पूरी तरह तैयार है। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली 365 दिन और 2400 घंटे हाई अलर्ट पर रहती है, लेकिन जब मौका 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस का हो और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार दिल्ली के आतंकवादियों के निशाने पर रहने का अलर्ट भेज रही हो, तो सुरक्षा व्यवस्था का अभूतपूर्व होना लाजमी है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस ने 15 अगस्त के लिए सुरक्षा इंतजामों की शुरुआत करीब महीने भर पहले से ही शुरू कर दी थी। अब जब आजादी के जश्न के सबसे बड़े जलसे के महज चंद घंटे बाकी बचे हैं, तो दिल्ली पुलिस ने अपनी ये सुरक्षा व्यवस्था कुछ इतनी दुरुस्त कर ली है कि इसे भेद पाना लगभग नामुमकिन है।
1: देखिए, 15 अगस्त हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है दिल्ली पुलिस का जो लाल किले में हर साल होता है, जिसको लेकर बहुत ही डिटेल में और काफ़ी समय पहले से तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं, तो कई महीनों से हम लोग इसकी तैयारियां कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग शुरू में एंटी टेरर ड्राइव्स जो हैं वो इलाके में चलाई गई हैं, जैसे होटल गेस्ट हाउसेस की चेकिंग करना, कौन आ रहा है, कौन रुक रहा है, और उसके अलावा कार डीलर्स हो गए, सिम कार्ड डीलर्स हो गए, सोशल मीडिया पे जो चैटर चल रहा है उसकी हो गई।
0: स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी दिल्ली की सुरक्षा को सिर्फ इसके इंतजामों पर एक निगाह डालकर ही आसानी से समझा जा सकता है। लाल किले पर प्रधानमंत्री के भाषण से पहले पूरे इलाके को सैनिटाइज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के 20,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी पर हैं। कार्यक्रम की सुरक्षा और उसके सुपरविजन का काम दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसर DCP की निगरानी में हो रहा है। पिछले 15 दिनों से शहर में आने जाने वाले तमाम बॉर्डर पर सख्त चेकिंग चल रही है, यहाँ तक कि शहर के होटल गेस्ट हाउस की गहन जांच चल रही है, और सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना रह जाए इसीलिए दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के भी लगातार संपर्क में है। ड्रोन और पतंगबाजी दिल्ली में इस वक्त सख्त मना है, कोई सुरक्षा घेरे को ना तोड़ पाए इसीलिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा मैनुअल पुलिसिंग और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करने का काम भी चल रहा है। AI बेस्ड CCTV से वांटेड बदमाश और आतंकवादियों की पहचान की जाएगी। दिल्ली पुलिस संदिग्ध और फरार आतंकियों की तस्वीरों वाले पोस्टर भी जगह जगह लगा रही है, ताकि अगर ऐसे नापाक इरादे वाले लोग शहर में या आसपास देखे जाएं, तो फौरन उसकी खबर पुलिस को मिल सके। पुलिस ने स्पेशल फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया है, जिससे ऐसे संदिग्ध चेहरों की फौरन पहचान हो सके। असल में ये एक तरह का डाटा बैंक है, जिसमें अगर संदिग्ध और फरार आतंकी नजर आते हैं तो ये फौरन कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजता है, और इससे ऐसे संदिग्ध लोगों को फौरन इंटरसेप्ट करना मुमकिन हो जाता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये FRS यानी कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जब फ्रिस्किंग होती है, चेकिंग होती है अंदर आने के लिए, तो वहाँ पर भी ये CCTV AI बेस्ड कैमरे लगाए जाते हैं, जिसमें ये चेहरों को रिकॉग्नाइज करता है। इनमें वो सभी चेहरे शामिल होते हैं जो किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से पुलिस की रडार पर है, चाहे वो छोटे क्राइम की वजह से हो, बड़े क्राइम की वजह से हो, सीरियस ऑफेंस की वजह से हो, सभी जितने भी पुलिस की नज़र पर हैं वो इस CCTV कैमरे में कैद हो जाएंगे। और अगर वो पुलिस की लिस्ट में पहले से ही है, तो पुलिस का ये जो AI बेस्ड CCTV सिस्टम है, जो कैमरा है, वो उसे फौरन ही पकड़ लेगा। पूरी दिल्ली को CCTV निगरानी में रखा गया है। एक एक हरकत पर दिल्ली पुलिस की नजर है, हर पल निगरानी की जा रही है।
1: CCTV कैमरों का हम बहुत ही इंटेंसिव यूज कर रहे हैं। 1000 से ऊपर CCTV कैमरे हम लोगों ने लगवाए हैं, जिसमें जरूरत के मुताबिक कई जगहों पे CCTV कैमरों के ऊपर AI बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स फीचर्स को भी एनेबल किया गया है, जिसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, ऐसे सारी टेक्निक्स को हमने उसमें इम्प्लीमेंट किया है, और इसकी मॉनिटरिंग और अलर्ट सिस्टम किया जा रहा है। उनके रिस्पॉन्स टीम्स भी हैं, ऑफिसर्स को हमने बॉडी वॉर्न कैमराज दिए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम भी यहाँ पे लगाया गया है। जो भी पब्लिक व्यूवर्स देखने आएंगे, उन सबकी चेकिंग के लिए यहाँ पे मल्टीपल लेयर्स के अंदर चेकिंग फ्रिस्किंग का सिस्टम भी लगाया गया है।
0: पूरी दिल्ली इस समय अभेद्य सुरक्षा घेरे में है। इस सुरक्षा घेरे को मजबूत करने में जिसकी सबसे अहम भूमिका है, वो है CCTV कैमरा। तस्वीर आप ये देखिए, ये वाली जो स्क्रीन है, ये बता रही है कि कितने लोग एंटर कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं, यानी कि जो नंबर्स है, जो काउंटिंग है, वो ये जो बार आपको दिख रहा है, ये आपको दिखा रहा है। इसके अलावा ये जो CCTV कैमरे अलग अलग लोकेशंस के हैं, आसपास का जितना भी इलाका है जो इस दायरे में आता है, सुरक्षा घेरे में आता है, वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। गाड़ी का नंबर है वो भी यहाँ तक कि देखा जा रहा है। हर एक गाड़ी को, एक एक गाड़ी को जो है, वो पूरी तरीके से नोटिसेबल है, नोटिस किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, वो 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं कि कहीं भी कोई भी चूक ना हो जाए। ये जहाँ पर ही पूरा कार्यक्रम होना है, जहाँ पर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, वहाँ का जो खास करके पूरा एरिया है, उसको किस तरीके से CCTV से लैस किया गया है। ये कुर्सियाँ जहाँ पर लोग बैठेंगे, इसको यहाँ पर अगर कोई भी हलचल होती है तो फौरन वो पकड़ा जाएगा, अगर कोई भी कुछ भी करने की कोशिश करता है। ऊपर देखिए, इसके आसपास का पूरा इलाका वो पूरी तरीके से CCTV से लैस है। इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये जो मंच बना हुआ है, उसके नीचे का इलाका है, नीचे की जगह है, और यहाँ पर भी अगर कोई जंप करता है, कोई आता है, या कोई भी ऐसी गतिविधि करने की कोशिश करता है, तो वो फौरन ही पकड़ा जाएगा। यहाँ पर क्लिक होगा और वो पकड़ा जाएगा। स्वतंत्रता दिवस पर हर साल खासतौर पर लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल मुजाहिदीन और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन गड़बड़ी फैलाने या हमला करने की साजिश बुनते रहते हैं। इस बार भी पुलिस ने इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा और खालिस्तानी संगठनों के 19 आतंकियों के पोस्टर जारी किए हैं। इन पोस्टर को दिल्ली में जगह जगह चिपकाया गया है, ताकि इनके नजर आते ही पुलिस को खबर मिल सके।
1: एंटी टेरर के अंदर हमारी जो काफ़ी टाइम से तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की, बहुत ही स्पेशलाइज यूनिट्स है, स्पेशल सेल वगैरह, वो इस पर बहुत ही अच्छे से काम कर ही रहे हैं। लोकल पुलिस के लेवल पे हम सब लोग इसके अंदर, हमारे एरिया के अंदर एक अवेयरनेस बढ़ाना, आईज एंड ईयर्स जो हमारी स्कीम है उसके तहत लोगों को जोड़ना कि किसी को कोई भी संदिग्ध कुछ भी वस्तु, व्यक्ति या घटना दिखे तो हमको उसको खबर दें हमें। और उसके अलावा भी जो हमारे काउंटर टेरर यूनिट्स हर थाने के अंदर बनी हैं, अभी उन सबको एक्टिवेट करना कि जानकारी जुटाए, सोशल मीडिया जो चैटर है उसके उससे पता करे क्या घटना, क्या बात चल रही है, क्या सेंटिमेंट है।
0: दिल्ली पुलिस बाकी सुरक्षा एजेंसी के साथ मिलकर भी पूरी तैयारी कर रही है, जिससे कि अगर एक बार में एक से ज्यादा जगह पर दुश्मन के नापाक इरादों की नजर पड़ जाए तो उससे कैसे निपटना है। और इस तैयारी को दिल्ली पुलिस ने नाम दिया सुदर्शन शक्ति भी। इस ड्रिल में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल स्वाट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, ट्रैफिक पुलिस, क्राइम ब्रांच, PCR, मेट्रो यूनिट और IGI एयरपोर्ट की टीमें भी शामिल रही। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाईटेक और ट्रेंड एनएसजी, भारतीय सेना, एनडीआरएफ, सीआईएसएफ, बीसीएएस, एएआई, डीएमआरसी, फायर सर्विस, एफएसएल, सीएटीएस, एम्बुलेंस और स्वास्थ्य विभाग ने भी हिस्सा लिया। लाल किले की प्राचीर में सिर्फ वही दाखिल हो पाएंगे जिसके पास पहले से ही पास होगा। पीएम मोदी के भाषण को सामने से सुनने के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए आपको दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कवच से होते हुए पीएम सिक्योरिटी एसपीजी की पैनी नजरों के सामने से भी स्कैन होकर जाना होगा। कई लेयर्स को पार कर आप अपनी जगह तक पहुंच पाएंगे। हर परत में दाखिल होने के बाद आपकी बारीकी से जांच की जाएगी। मैनुअली चेकिंग, फ्रिस्किंग, स्कैनिंग, एक एक सामान की तलाशी, ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी, स्नाइपर्स की तैनाती है। इन सभी नजरों से गुजरकर आप एक परत को पार करेंगे, लाल किले की उस प्राचीर जहां से पीएम मोदी देश को संदेश देंगे। उस जगह तक जाने के लिए कुल 6 रास्ते हैं और हर दरवाजे पर आपको इस सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना ही होगा। लाल किले के परिसर में आने के लिए आपको अलग अलग सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसमें आप पहले सीसीटीवी कैमरे में तो कैद हो ही जाते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक और सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना होगा जो कि है चेकिंग और फ्रिस्किंग का। यानी ये जो दरवाज़ा है यहाँ पर चेकिंग और फ्रिस्किंग किया जाएगा, क्योंकि मैंने अपना सिक्योरिटी चेक पहले करवा लिया है, इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स मुझे फिलहाल नहीं रोकेंगे, क्योंकि मैं आपको शूट करने के लिए बता रही हूँ। लेकिन ठीक इसी तरीके का दरवाज़ा, इसी तरह की चेकिंग फ्रिस्किंग आपको अलग अलग जगहों पर मिलेगी इस लाल किले परिसर के अंदर आने के लिए। और तकरीबन 6 दरवाजे यहाँ पर हैं और हर दरवाजा एक अलग यूनिट को डेडिकेटेड है।
1: टोटल अंदर जाने के आप देखें 4 गेट पब्लिक के हैं और 2 वीआईपी गेट्स हैं। जो पब्लिक पर्सन्स आते हैं वो सबके 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी चेक रहता है उसके ऊपर, और उसके अलावा और जो ऑफिशियल्स हैं उन सबके भी उनके हिसाब से 1 लेयर किसी पे 2 लेयर सिक्योरिटी चेक रहते हैं।
0: दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के अफसरों के साथ मिलकर दिल्ली के ट्रैफिक को कुछ वक्त के लिए दूसरा रास्ता दे दिया। दिल्ली में ट्रकों और भारी सामान ढोने वाली गाड़ियों की एंट्री को कुछ वक्त के लिए रोक दिया गया। सबसे पहले 12 अगस्त की शाम 5 बजे से होकर अगले दिन यानी 13 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक जारी रहा, जबकि दूसरा चरण सबसे खास दिन स्वतंत्रता दिवस के लिए 14 अगस्त की शाम 5 बजे से पाबंदी फिर दोबारा शुरू होगी, जो कि 15 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। 2 अगस्त से 16 अगस्त 2026 तक दिल्ली में ड्रोन समेत सभी तरह के छोटे हवाई प्लेटफॉर्म उड़ाने पर रोक लगी है। दिल्ली पुलिस ने यह आदेश दिया है कि ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंड ग्लाइडर, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, हॉट एयर बलून, छोटे पावर्ड एयरक्राफ्ट और विमान से पैरा जंपिंग करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
1: नो फ्लाइट जोन तो अभी पूरे ही दिल्ली के अंदर सीपी साहब का ऑर्डर है, उसके अंदर तो जितने भी सब एरियल जो व्हीकल्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं उन सबको प्रोहिबिट कर रखा है।
2: पतंगबाजी
1: पे हमने भी ऑर्डर इशू किया है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पतंगबाजी भी बैन की गई है। 163 बीएनएसएस का ऑर्डर भी उसके लिए पब्लिक प्रोमल्गेट किया गया है, और उसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी पतंगबाजी होती है, बट इवेंट के टाइम पे वो बंद है, तो उसके बाद फिर लोग उड़ा सकेंगे, और उस टाइम पे उड़ाएंगे तो फिर उसके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा और काइट कैचर्स भी हमने रखे हैं।
0: दिल्ली उतनी ही आपकी है जितनी दिल्ली पुलिस की, ये हम सब की दिल्ली है। इसीलिए दिल्ली पुलिस का कहना है कि आप दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनिए और दिल्ली को महफूज रखने में उनकी मदद कीजिए।
1: हमारा यही मैसेज है कि आप लोग सुरक्षित रहें। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, 80वां स्वतंत्रता दिवस है, और हम सब सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम किसी भी अफवाह का पार्ट ना बने, ना फैलाएं, ना सुने, ना विश्वास करें, उसको वेरीफाई जरूर करें, और उसके अलावा हमारे आसपास कुछ भी संदिग्ध होता है तो उसको तुरंत पुलिस को सूचित करें, पुलिस के आंख और कान बने ताकि हम दिल्ली को सुरक्षित रख सकें और इस फंक्शन को भी बहुत ही शांतिपूर्वक सुरक्षित ढंग से निपटा सकें।
0: तो आइए और इस आजादी के जश्न में आप भी शामिल हो जाएं। जय।
3: स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा का दायरा सिर्फ लाल किले तक सीमित नहीं बल्कि सड़कों से लेकर यमुना तक फैला है। नदी में नावों के जरिए लगातार गश्त की जा रही है और यमुना के किनारे पर भी ये गश्त नजर आ रही है। इसके अलावा दिल्ली में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। 15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में भारी वाहनों की आवाजाही पर अस्थायी रोक है। कुछ रास्तों में भी फेरबदल किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए।

0: राजधानी की सड़कें हों या यमुना की लहरें, जमीन आसमान, गली बाजार, हवा और पानी, हर जगह हर हलचल पर नजर है। मौका है स्वतंत्रता दिवस का, इसीलिए दिल्ली इस वक्त सुरक्षा के ऐसे घेरे में है जिसे भेद पाना नामुमकिन है। यमुना की लहरों पर आगे बढ़ती ये नाव सिर्फ नदी में कश्त नहीं कर रही, बल्कि उन तमाम इलाकों पर नजर रखे हुए है जहां से कोई संदिग्ध सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकता है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का संबोधन होगा, इसीलिए लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली में चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है और राजधानी के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की मौजूदगी बढ़ाई गई है। सुरक्षा के नजरिए से लाल किले के नजदीक बहने वाली यमुना का मोर्चा भी बेहद अहम है। यमुना का पानी शांत दिखाई देता है, लेकिन इन दिनों इसकी लहरों पर भी चौकसी तेज है।
1: अगस्त की सुरक्षा की किस तरीके की तैयारी की गई है यमुना नदी की इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि सिर्फ सड़क और हवाई मार्ग नहीं बल्कि लाल किले के पीछे जो यमुना नदी बह रही है उस पर किस तरीके की तैयारी है। आप देखिए, हमारे साथ आपको दिल्ली पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर आएंगे। इस तरीके की गश्त हो रही है जो पूरे दिल्ली बॉर्डर पर, जो पूरी यमुना नदी है दिल्ली में, उसको इस तरीके से नजर रखा जा रहा है। लाल किले की तरफ से होते हुए हम आप देखिए आईटीओ के पास पहुंच गए हैं और यहां पर आप देखिए इस तरीके की गश्त लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस पूरे सड़क मार्ग को उन्होंने पूरी तरीके से कवर किया हुआ, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, 10,000 जवानों को दिल्ली की सुरक्षा में तैनात किया गया है। खासतौर से लाल किले और आसपास के इलाके में ज्यादा तैनाती की गई है, अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे जो चेहरों को पहचान ले, उनका बैकग्राउंड खंगाल ले, ऐसे कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन नदी जिसके आसपास काफी सारा जंगल का इलाका रहता है, काफी खाली इलाका रहता है, हर जगह पर नजर रखी नहीं जा सकती है, तो ऐसे में ये यमुना नदी का कोई फायदा ना उठा ले, इधर से कोई आतंकी इस रास्ते को उपयोग करते हुए करीब ना पहुंच जाए, इसलिए चप्पे चप्पे पर लगातार नजर रखी जा रही है। 24 घंटे इस पूरी यमुना पर लगातार इसी तरीके से पेट्रोलिंग दिल्ली पुलिस के अधिकारी और तमाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकारी नजर बना के रखे हुए हैं। सामने आप देखिए आईटीओ का जो पुल है वो आपको नजर आएगा, वहीं पीछे कुछ ही दूरी पर लाल किला है, तो इस पूरे इलाके में राउंड द क्लॉक आपको सिक्योरिटी नजर आएगी।
0: पुलिस कर्मी नावों के जरिए नदी में गश्त कर रहे हैं, किनारों से लेकर आसपास के इलाकों तक निगाह रखे हुए हैं। नदी के रास्ते कोई साजिश कामयाब ना हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैयार है। कहां कौन मौजूद है, किस तरह से आवाजाही हो रही है, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि तो नहीं, इन तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। यमुना में ये गश्त इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि सुरक्षा का मकसद सिर्फ मुख्य आयोजन स्थल को सुरक्षित रखना नहीं बल्कि उससे जुड़े हर संभावित रास्ते पर भी नजर बनाए रखना है।
1: इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद है ठीक सामने लाल किला है, यहाँ पर नदी है, नदी के बीच में कुछ खाली इलाका है जहां पर जंगल है। इन सभी जगहों पर, चाहे ये आपको जो खाली इलाका दिख रहा है जंगल, इन सभी जगहों पर पुलिस की निगाह है। और यमुना नदी में तो हम आपको दिखा ही रहे हैं कि किस तरीके से गश्त हो रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, भारत तिब्बत सीमा पुलिस लगातार राउंड द क्लॉक यहाँ पर नजर रखी जा रही है। ये हर इलाका जो निर्जन आपको दिख रहा है, इन सभी जगहों पर दिल्ली पुलिस की राउंड द क्लॉक निगाह है। लगातार एक एक शख्स पर, एक एक मूवमेंट पे नजर रखी जा रही है। दिल्ली की लाल किले की तरफ आने वाले तमाम सड़कों पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो न सिर्फ अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का है तो उसको पहचानेगा बल्कि पूरा डाटा निकाल के रख देगा। बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, दूसरे राज्यों से आने वालों पर नजर रखी जा रही है।
0: दिल्ली में भीड़भाड़ वाले इलाकों में हर जगह चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। दक्षिणी दिल्ली में ही 1600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती है। अतिरिक्त पिकेट, वाहन जांच और ड्रोन निगरानी जैसे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी है। विशेष सुरक्षा टीमें और ऊंची इमारतों से निगरानी जैसे इंतजाम भी है। रास्तों पर नजर है, रूट्स में बदलाव किया गया है। जश्न आजादी है, देश और दिल्ली के लिए खुशियों का दिन है। इस खुशी के रंग में कोई दुश्मन भंग डालने की कोशिश न करे, इसीलिए सुरक्षा की अभेद दीवार तैयार है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए
0: देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
3: अमरावती में एक अत्याधुनिक बस में मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस बस में छात्रों को सर्जरी के गुड़ सिखाए जा रहे हैं। बस में ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं, इससे असल सर्जरी से पहले मेडिकल छात्रों को सर्जरी के अभ्यास का मौका मिल रहा है।
4: भविष्य के डॉक्टर यहां सर्जरी के गुर सीख रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में हर तरह के ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है एक हाईटेक बस में। अमरावती के पंजाबरा देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑन व्हीकल्स नाम की ये बस डॉक्टरों की ट्रेनिंग में मील का पत्थर साबित हो रही है।
5: मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो यात्रियों की बस नहीं है, लेकिन ये बस इतनी खास है कि इस बस को प्रशिक्षणार्थी बस कहा जाता है। और इस बस के भीतर क्या होता है, क्योंकि हम फिलहाल है अमरावती के PDMC कॉलेज में, जो पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उन छात्रों को इस बस के भीतर इन व्हील्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ सभी छात्रों को जो है वो टीचर्स कैसे लगाने हैं उसके गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सर्जरी में टीचर्स किस तरह से लगाया जाता है, सर्जरी किस तरह की होती है, वो सभी गुर जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है ये बस के भीतर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं।
4: बस के अंदर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर यहां छात्रों को ऑपरेशन की बारीकियां समझाते हैं। बस में ही छात्रों को ऑपरेशन थिएटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल होता है। सर्जरी की तकनीक को समझने के साथ यहां सही तरीके से ऑपरेशन करने का अभ्यास करने का मौका भी मिल रहा है।
6: इसमें ये स्टूडेंट को जैसे पेट की अतड़िया फट जाती है या फिर उनको काटने की जरूरत पड़ती है, तो उनको काटने के बाद कैसे सीना है प्रॉपरली वो सिखाया जा रहा है। इस मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीके के स्टिचेस हैं जो हम सर्जरी में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी हाथ को कैसे सिया जाता है वो ये स्टूडेंट सीख रहे हैं यहाँ पे।
5: तो स्टूडेंट से बात करेंगे, कितना आसानी होती है इस प्रैक्टिकल को देख कर, इसका कितना फायदा होगा भविष्य में आपको?
7: काफी ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएंगी रियल पेशेंट पे करने से पहले, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो अभी हम सीख सकते हैं पहले।
4: इस लैब में छात्र चीरा लगाने से लेकर टांके लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन के साथ साथ लैब्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के जरिए सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी छात्रों को इस बस में दी जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग से इन मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसी मरीज की सर्जरी से पहले डॉक्टरों को व्यावहारिक अनुभव भी मिल जा रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियस की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग। एमपी के सीएम और बिहार के सीएम ने तिरंगा रैली में की शिरकत, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जनसैलाब। श्रीनगर के डल झील में शिकारा और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड्स तक रोकी सांस। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन ने की लोगों से सहयोग करने की अपील। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों की आज छुट्टी।
4: हर तिरंगा।

0: नमस्कार, जय हिंद। गुड न्यूज टुडे में स्वागत है आप सभी का। आज का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, आज का दिन है उस आजादी का उत्सव मनाने का दिन, जिसके लिए ना जाने कितने वीरों ने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम। आजादी का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परमिता देशमुख जी। परमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: चलिए, तो इस दिन को देखिए हम सभी याद करते हैं। आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
1: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक।

0: बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए, कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?
1: आजादी जैसे सबके अंदर वो रहना चाहिए कि बात करने की आज़ादी हो, सबको अपना बात रखने की आज़ादी हो, ये होना चाहिए।
0: विचारों की आज़ादी हो।
1: तो इसके लिए मैं अभी वैष्णव जन का एक गाओ।
0: बिल्कुल,
1: इसमें बहुत अच्छा सीख भी है वैष्णव जन में।

0: अच्छा, जिस सीख के बारे में आप बात करें, उस सीख के बारे में थोड़ा सा आप बता सकती हैं हमारे दर्शकों को, क्या सीख छुपी है संगीत के पीछे?
1: संगीत के पीछे,
0: संगीत के पीछे और इस गीत के पीछे जो आप गाने वाली
1: हैं। हाँ, जैसे वैष्णव जन है तो मतलब आप कोई अभिमान लेके कोई अभिमान मत करो, किसी का मदद किया तो वैष्णव जन है। दूसरे का दुख अगर आप समझ पाओ तो वो सबसे बड़ी बात है। ये तो गांधी जी का लिखा हुआ है, तो बहुत सुंदर गाना है।
0: बिल्कुल, चलिए ये तस्वीरें इसी बीच आपको दिखा देते हैं। देशभक्ति के तमाम रंग देखिए, इन तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। देशभक्ति से रंगी हुई ये तस्वीरें आ रही हैं। आजादी के पर्व को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, ये रौनक पूरे देश में देखने को मिल रही है। स्वतंत्रता दिवस के इस खास मौके पर पूरा भारत एक रंग में खिला हुआ दिखाई दे रहा है। शहरों से लेकर गांव तक, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक आजादी का उत्सव विविध परंपराओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जा रहा है। ये केवल राष्ट्र पर्व नहीं बल्कि उन अनगिनत बलिदानों को स्मरण करने का अवसर है जिनकी बदौलत देश ने स्वतंत्रता हासिल की।
2: तो आजादी का ये उत्सव हमें अतीत के संघर्षों से जोड़ते हुए भविष्य के प्रति नए संकल्प लेने की प्रेरणा देता है, और साथ ही यही विविधता में एकता भारत के स्वतंत्रता पर्व को अद्वितीय भी बनाती है। तो चलिए परोमिता जी, जो आप सुनाने वाली थी फिर।

0: बहुत बढ़िया। मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए। नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने। अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, ज्योति तो डाकशुने के उनाश, एकला चलो रे।
0: ये होना चाहिए ना, फिर सिर्फ ऐसे कह के तो नहीं चलेगा काम, है ना। तो ये होना
1: सारे गानों में।

0: ना बहुत हाँ. सारा सीख है.
1: हाँ.
0: अगर कोई तुम्हारा नहीं सुन रहा है तो तुमको हाँ. ये संघर्ष में अकेले ही जाना है. जिंदगी का जो संघर्ष है या जो भी है अकेले ही करना चाहिए.
1: इंसान अकेला आया और अकेला जाएगा.
0: हाँ
1: ठीक है, चलिए इसका इसको आगे बढ़ाते हैं. अगर यही आपके दिल के बहुत करीब है तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं.
0: ठीक है
1: बिल्कुल. तो तब तक एक तस्वीर आपको दिखाते हैं कश्मीर की खूबसूरत डल झील की. दरअसल यहाँ पर कुदरत की खूबसूरती आजादी के रंग में रंगी नजर आ रही है. तस्वीरें देखिए, तिरंगे के रंग में सजी नाव की और शिकारे, एक तरफ लहरों पर लहराता तिरंगा और चारों तरफ कश्मीर की हसीन वादियां हैं. मानो झील के पानी में भी देशभक्ति की लहर दौड़ रही हो. आजादी के जश्न में डूबा श्रीनगर और डल झील एक खूबसूरत संदेश दे रही है. डल झील की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं. शान से यहाँ पर तिरंगा हमारा लहरा रहा है. तो इस साल भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत नजारा डल झील से भी नजर आ रहा है. मुख्य थीम को लेकर भी यहाँ पर कई तस्वीरें सामने आ रही हैं. और
2: जी चलिए, मौका स्वतंत्रता दिवस के जश्न का है. देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग सुंदर तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के आसपास तिरंगा बाइक रैली निकालकर देशभक्ति का संदेश कैसे दिया वो तस्वीरें देख लीजिए. तिरंगे से सजी बाइकों के साथ साथ पुलिसकर्मी इस रैली में शामिल हुए. इस रैली के दौरान भारत माता की जय जयकार और देशभक्ति के जयकारों के साथ पूरी फिजा गूंज उठी. वो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह कारवां आगे बढ़ा और किस तरह से हमारा तिरंगा शान से लहराता हुआ.
1: तो पूरा देश जश्न आजादी के रंग में रंग चुका है. 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं और भारत माता के जयकारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं. तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों ओर देश प्रेम की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है.

0: देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न जारी है। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत माता के जयकारों की गूंज सुनाई दे रही है। शहर शहर, गांव गांव, गली गली और हर घर तिरंगामय हो गया है। फिर चाहे वो सुदूर जम्मू कश्मीर का कोई इलाका हो, या फिर उत्तर प्रदेश का कोई शहर, या फिर चाहे हरियाणा का। दिल में देशभक्ति का उबाल, हाथों में तिरंगा और हर बढ़ते कदम में कभी न रुकने का संकल्प आजादी के इस जश्न को और रंगीन बना रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पूरे जोश और जुनून के साथ हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जब हाथों में तिरंगा थामकर सड़क पर निकले तो नजारा कुछ खास था। खुले आसमान में हवा के तेज झोंकों के साथ फहराता ये तिरंगा हमारी आन बान और शान की गवाही दे रहा है। ऐसा ही कुछ नजारा यूपी के सहारनपुर का था। स्वतंत्रता दिवस से पहले निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा में हर कोई देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। हाथों में तिरंगा थामे शहर की गलियों से आगे बढ़ते लोगों पर बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। देशभक्ति के उमड़ते जन सैलाब की रास्ते में मौसम भी कोई बाधा न बन सका। लोगों को गर्मी और उमस से राहत देने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव होता रहा। हाथों में तिरंगा झंडा और जुबां पर देशभक्ति के जोशीले गीत, और इसके जरिए हर कोई देश की एकता, भाईचारे और राष्ट्र प्रेम की इस कड़ी को और मजबूत करता नजर आया। उधर हरियाणा के पलवल में तो इतिहास लिखा जा रहा था। 10 फीट चौड़े और 5 किलोमीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ लोगों का हुजूम जब सड़कों पर निकला तो ऐसा लग रहा था मानो सावन के महीने में 3 रंगों वाली कोई नदी लहराते बलखाते तरुणाई का संदेश दे रही हो। इस भव्य और विशाल तिरंगा रैली में आसपास के इलाकों से हजारों लोग शामिल हुए।
1: पलवल के लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। 5 किलोमीटर लंबा तिरंगा जिसकी लेंथ और 6.5 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं। मैं सभी उन छोटे भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने 50,000 से ज्यादा संख्या में एकत्रित होकर पलवल की एकता, हरियाणा की एकता अखंडता को किया है।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाने की अपील की है। देश भर से आ रही ये तस्वीरें हर घर तिरंगा और हर मन तिरंगा के नारे को जीवंत बना रही है। कुलगाम से अश्ववानी, सहारनपुर से राहुल कुमार, फरीदाबाद से सचिन गौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए आजादी के तराने यूं ही जीएनडी पर आपको सुनाते रहेंगे, लेकिन यहां पर छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, लौटते हैं जल्द।
3: हर घर तिरंगा।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग। एमपी के सीएम और बिहार के सीएम ने तिरंगा रैली में की शिरकत। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जनसैलाब। श्रीनगर के डल झील में शिकारा और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल, 1 मिनट 16 सेकंड्स तक रोकी सांस। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन ने की लोगों से सहयोग करने की अपील। वायुसेना की ओर बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों की आज छुट्टी।
3: Yeah.

गाना जोदी तो डाक सुने के उनाश है, रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना है जी। उन्होंने बोला है कि अगर आपका कोई नहीं सुन रहा है फिर आप अकेले ही चलो, ये गाना जी।

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरविता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी।
1: चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ तस्वीरें आपको और दिखा देते हैं। आजादी के उत्सव को लेकर पूरा देश चमक रहा है, राजधानी दिल्ली से लेकर देश की सरहद तक पर स्वतंत्रता दिवस को लेकर ऐसी ही सजावट की गई है जिसे देखकर पल के झुकाने का शायद ही मन करे।
0: बिल्कुल, देखिए जगह जगह तिरंगे की रोशनी की जगमगाहट दिखाई पड़ रही है जो ना सिर्फ आंखों को सुकून देने वाली है बल्कि देशभक्ति की भावना से भी आप सभी को भर दे रही है। तस्वीरें आपके लेकर आए हैं, देखिए जरा।
2: बरसों का अनुभव, कला की बारीकियां और राष्ट्र के प्रति समर्पण का जज्बा जब एक साथ मिल जाए तो नतीजा एक खूबसूरत तिरंगे की शक्ल में सामने आता है। कर्नाटक के धारवाड़ में तिरंगे के निर्माण का ये हुनर बरसों की विरासत को अपने आप में समेटे हुए है। यहाँ हर तिरंगे को हाथों से बुने खादी के कपड़े पर उकेरा जा रहा है। धारवाड़ के गारक गाँव के लोगों ने खादी के तिरंगे बनाने की अपनी इस काबिलियत को बदलते दौर में भी जिंदा रखा है। आज ज्यादातर जगहों पर आधुनिक मशीनों की मदद से तिरंगे बनाए जा रहे हैं, लेकिन गारक गांव में बने खादी के तिरंगे की आज भी एक अलग पहचान है। इन तिरंगों में इस्तेमाल होने वाले खादी के कपड़ों को पारंपरिक तरीकों से बुना जाता है। इसके बाद कुछ हुनरमंद हाथ तिरंगे के अलग अलग रंगों को एक साथ जोड़कर इसे राष्ट्र ध्वज की शक्ल देते हैं। अशोक चक्र को रंगने के लिए आज भी पारंपरिक तरीकों को अपनाया जाता है। धारवार ही नहीं, असम में भी पिछले कुछ महीनों से खादी के तिरंगे बनाने का काम तेजी से चल रहा है। असम खादी बॉर्डर ने 15 अगस्त तक हजारों तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा है। यहाँ भी तिरंगों का निर्माण पारंपरिक तरीकों से ही किया जाता है।
3: खादी का जो मानदंड है, जो खादी का प्रति खादी का जो चाहिदा है वो चाहिदा हमेशा रहेगा, और बाहर में जो प्लास्टिक मेड वो मेंटेन नहीं करता है, रंग मेंटेन नहीं करता है, कोई कोई ऐसा ऐसा करता है, लेकिन खादी का फ्लैग का डिमांड है वो आप लोग देखेगा जो 15 अगस्त का पीछे वो नर्दमा सर्दमा जहाँ तक फेंक देता है प्लास्टिक, खादी का फ्लैग संभाल कर रख देता है।
2: यहाँ छोटे तिरंगों के साथ बड़े आकार के तिरंगे भी बनाए जा रहे हैं। अशोक चक्र को पारंपरिक रंगों से उकेरने के बाद तिरंगे के अलग अलग हिस्सों को आपस में मिलाकर राष्ट्र ध्वज को अंतिम रूप दिया जा रहा है। झंडों का ये निर्माण स्थानीय कारीगरों को बेहतर रोजगार की सौगात भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा में ये महिलाएं 2,00,000 तिरंगे तैयार करने के लक्ष्य को जल्द पूरा करने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। तिरंगों के निर्माण का ये काम करीब 150 सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर पूरा कर रहे हैं। यहाँ बन रहे तिरंगे हर घर तिरंगा मिशन के तहत गांव, ब्लॉक्स और सरकारी दफ्तरों में बांटे जाएंगे।
4: जो हम बेरोजगार थे आज हमें रोजगार मिला, और बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए और क्या कहते हैं घर की जो अन्न खर्च होते हैं अन्न खर्च के लिए, और अपना जो घर चला रहे हैं और बच्चों के पढ़ाई लिखाई खेती किसानी हर चीज के लिए, मतलब समूह के माध्यम से सब हो रहा। अब ये
5: स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ये हमें सिलाई का काम मिला 15 अगस्त 2018 तो झंडा सिल रहे हैं। जो हम बेरोजगार थे तो हमें रोजगार मिला है, जिससे हमारी बच्चों की पढ़ाई का चल रही है, इससे घर का व्यापन हो रहा है।
2: तिरंगा निर्माण के इस पहल ने हजारों की संख्या में महिलाओं को रोजगार का अवसर दिया है। इस कोशिश ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च उठाने में सक्षम भी बनाया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा निर्माण का ये मिशन हजारों परिवारों के लिए एक बड़े आर्थिक बदलाव का पैगाम लेकर आया है। बांदा से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: तो चलिए आजादी के तरानों की एक खास पेशकश जीएनटी पर लगातार जारी है। पौरोमिता जी हमारे साथ बनी हुई हैं। पौरोमिता जी, अब क्या सुनाएंगे हमें?
6: अभी ये राजी फिल्म का जो गाना है ना, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू,
0: बहुत बढ़िया। चलिए हो जाए।

0: बहुत बढ़िया। चलिए ये
1: आजादी के तराने तो हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे। हमारी बहुत सारी डिमांड्स है ना
2: कि हमारी डिमांड तो बढ़ती जा रही
1: है। वैसे तो पूजा ने मुझे बोला है कि वो भी गाना बहुत अच्छा गाती है, लेकिन शो के बाद मुझे सुनाएंगे।
2: अच्छी बात है, मैं शो के बाद ही सुनाऊं। अभी परमिता जी की आवाज में ही सुनना चाहेंगे। परमिता जी, और इसके अलावा कोई गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? अभी जब वंदे मातरम की भी आपने शुरुआत की थी, वो भी हमने आधा ही गाया था, वो भी रह गया था, वो भी वो पूरा कर सकते।
0: अच्छा ठीक है, अभी गाओ।
2: हाँ
0: ठीक है,
2: स्वीटली पूछती हैं।
0: अच्छा इसके बारे में, सॉरी इसके नहीं, मतलब वंदे मातरम के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी।
2: प्लीज।
0: ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था 1875 में। तो उसके बाद जब इंडिपेंडेंस डे का वो सब चल रहा था, तब रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में 25 जनवरी को ये किया था, उसको मतलब एक दर्जा दिया था। और फिर उसके बाद में जो प्रेसिडेंट थे, पहला प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी,
2: डॉक्टर,
0: उन्होंने इसको घोषित किया, भारत का एक मतलब सम्मान मिला उसको, इस गाने को एक दर्जा दिया गया कि ये हमारे ये है। तो राष्ट्रगान के हिसाब से उसको लिया जाता है। अच्छा ठीक है, पूरा एक ठीक है, थोड़ा ऊपर कर।

0: बहुत बढ़िया, यकीन मानिए मैं और पूजा डिसाइड करके बैठे थे कि इसको खींच लेंगे, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है थोड़े से भारी दिल के साथ कहना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पौरमिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल, और
1: वापस ब्रेक के बाद फिर से शुरुआत,
0: लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखिए इन्होंने मुझे ऐसे एक्सप्रेशन दिया है कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, अभी अभी अभी रुकिए, अभी ब्रेक लेंगे, अभी हम लेंगे यहाँ पर पूजा,
1: छोटा सा ब्रेक, आप कहीं जाइएगा, देखते रहिए गुड न्यूज़।
2: वही तो वही है जो गाया था।
3: हर कल तिरंगा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: खास पेशकश मेरे और पूजा के साथ लगातार जारी है। हालांकि पूजा ने मुझे जो प्रॉमिस किया है वो शो के बाद पूरा करेंगी, लेकिन इस बीच पारमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ?
0: हाँ, जी, हाँ, जी, जी, धीमी आवाज में।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: हर तिरंगा।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है। इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग। मध्य प्रदेश के सीएम और बिहार के सीएम ने तिरंगा रैली में की शिरकत। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जनसैलाब। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की खास तैयारी, कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। लाल किला समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। प्रशासन ने की लोगों से सहयोग करने की अपील। वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
0: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे और झंडों से भरा हुआ नजर आया दिल्ली का कर्तव्य पथ। नई दिल्ली जोन की निकली अनोखी पीसीआर वैन और बाइक तिरंगा रैली। मुंगेर में विशाल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी हुए रैली में शामिल। भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, लहराते हुए तिरंगे हाथ में लिए सड़कों पर निकले लोग। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई पूरी डल झील। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों और युवाओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रायपुर में तिरंगा यात्रा दौड़ का आयोजन किया गया, देशभक्ति के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शानदार आयोजन। देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा प्रयागराज, निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल हुए। भोपाल में सुंदर तिरंगा बोट रैली का आयोजन किया गया, बोट क्लब में हुए कार्यक्रम में तिरंगे से सजी हजारों बोट्स। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल। रामबन में सीआरपीएफ 84 बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया, छात्रों के साथ निकली तिरंगा रैली। कुलगाम में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रामबन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जिला पुलिस लाइंस में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड आयोजित की गई, देशभक्ति के रंग में रंगा इलाका। जोशीले अंदाज में कदम ताल करते हुए नजर आए पुलिस के जवान, स्कूली छात्रों और बैंड में भी हिस्सा लिया।
2: पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल।
0: लद्दाख कुजांस्कर क्षेत्र में देखी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की मिसाल, भारतीय सेना ने फहराया 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। देश के कोने कोने के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना था इस गरिमामय समारोह का उद्देश्य, बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के कारगिल में हुई 80वीं स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित, दिखा देशभक्ति के जोश का नजारा। मार्च पास्ट में स्कूली छात्रों की टुकड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और लद्दाख पुलिस बैंड ने हिस्सा लिया, फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। पूरे कश्मीर में आजादी के जश्न का जोशीला माहौल, कश्मीरी महिलाएं बना रही मेड इन कश्मीर तिरंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में फहराए जाएंगे झंडे, सरकारी इमारतों की भी शोभा बढ़ाएंगे ध्वज। रामबन में जश्न आजादी को समर्पित लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया, देशभक्ति के तरानों पर झूमे लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभेद्य और कड़े इंतजाम, लाल किले के आसपास मल्टीलेयर्ड सुरक्षा घेरा। ड्रोन से की जा रही है आसमान की निगरानी, बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग, शहर भर में भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया एडवाइजरी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन की लोगों से सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर एजेंसियां, स्वतंत्रता दिवस और आगामी अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, आजादी के जश्न के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त से पहले जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, जवानों ने शुरू की विशेष सुरक्षा एक्सरसाइज। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग जारी, रात में भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एयरपोर्ट पर हाई लेवल एंटी टेरर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, सीआईएसएफ बीएसएफ और पुलिस ने किया संयुक्त अभ्यास। आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, क्विक रिस्पांस टीम ने कार्रवाई की प्रैक्टिस की, बम निरोधक दस्ते ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। 15 अगस्त से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के 6 चरण, पहले चरण सीआईएसएफ की निगरानी में, बीडीडीएस डॉग स्क्वाड से भी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की फाइनल रिहर्सल, बीएसएफ जवानों ने किया शानदार ड्रिल का प्रदर्शन। पंद्रह अगस्त से पहले बॉर्डर पर देशभक्ति का माहौल, जवानों ने पूरे जोश से किया कदम ताल, झंडा उतारने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। मीटिंग रिट्रीट की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप, जवानों के जोश ने खींचा लोगों का ध्यान, अनुशासन और तालमेल का दिखा शानदार नजारा।

0: जवानों की शानदार प्रस्तुति ने मोह सभी का मन, बॉर्डर पर गूंजा देशभक्ति का उत्साह। मुख्य समारोह से पहले हर तैयारी परखी गई। कदमों की ताल से गूंजा अटारी बॉर्डर, बीएसएफ ने परेड में बढ़ाया देशभक्ति का जोश। स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी। भारतीय वायुसेना जल्द करेगी अपने परिवहन बेड़े में बड़ा बदलाव। पुराने परिवहन बेड़े को 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने की योजना। नांदेड़ में गुरुद्वारा पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल। अखंड पाठ के साथ टेका माथा, साथ ही लंगर सेवा की। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई सुबह की मंगल आरती। महाप्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हुए पवित्र यात्रा में शामिल। इस दौरान प्रशासन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी रही चाक चौबंद। बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई कांवड़ यात्रा। बांका में कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे भक्ति के कई अनोखे रंग। विशाल शिवलिंग वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग की प्रतिमूर्ति है ये विशेष कांवड़। तो वहीं औघड़ धानी बम रखा गया है इस अनोखी कांवड़ का नाम। धनबाद से एक खास कांवड़ लेकर निकला है 13 कांवड़ियों का जत्था। 33 फीट है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई। करीब 210 मीट्रिक टन है वजन। कल से राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर हुआ बदलाव। बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे पुजारी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम का है। रेशम यानी सिल्क का होगा ये वस्त्र। रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ड्रेस में किया गया शामिल। जयपुर में इस बार चर्चा में है 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर। इसमें ड्राई फ्रूट, शहद और सोने का वर्क किया गया है इस्तेमाल। अब घेवर सिर्फ पारंपरिक स्वाद में नहीं बल्कि ब्लूबेरी चीज केक और तिरामिसू जैसे फ्लेवर्स में भी मिल रहा है। ये नए स्वाद युवाओं को खूब पसंद आ रहे हैं। रेगुलर के साथ मिनी साइज में भी मिल रहा है घेवर। ग्राहक अपनी पसंद के अलग अलग फ्लेवर्स का पैक भी बनवा सकते हैं। घेवर का नया रूप घेवर चाट भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। इसमें दही, छोले, चटनी और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान में तीज पर घेवर खिलाने की बहुत पुरानी परंपरा है। अब नए फ्लेवर और डिजाइन के साथ घेवर पुरानी परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ रहा है। जयपुर में तीज से पहले महिलाओं ने खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। लहरिया, मेहंदी और राजस्थानी गहनों के साथ सभी ने त्योहार बनाया। महिलाओं ने अलग अलग रंगों और डिजाइन के लहरिए पहने। पारंपरिक कपड़ों ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। एक महिला ने हरे, नीले रंग और मोर के डिजाइन से मोरनी जैसा लुक बनाया। उनका खास पहनावा कार्यक्रम में लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा। महिलाओं ने इस मौके पर अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया। राजस्थानी गानों पर डांस और स्वादिष्ट पकवानों ने माहौल को और खुशनुमा कर दिया। राजस्थान में तीज को परंपरा और संस्कृति का माना जाता है त्योहार। अब तीज की सवारी के साथ जयपुर में यह उत्सव और भी खास नजर आएगा।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियस की दुनिया में रिश्तों की अनबन। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: और चलिए अब आपको दिखाते हैं सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस जो खूब पसंद की जा रही हैं, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाली हैं तो कुछ इमोशनल कर देने वाली।
7: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को

0: के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा, जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो। कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपाकर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है। बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठा कर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, मध्य प्रदेश के सीएम और बिहार के सीएम ने तिरंगा रैली में शिरकत की। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जन सैलाब। श्रीनगर के डल

0: में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। स्वतंत्रता दिवस के लिए दिल्ली मेट्रो की खास तैयारी, कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी मेट्रो सेवा। लाल किला समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में सफर करेंगे। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन ने लोगों से सहयोग करने की अपील की। वायुसेना की और बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे 60 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, देश में विमान निर्माण को बढ़ावा देने पर भी जोर। दिल्ली एनसीआर में आज बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों में आज छुट्टी।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं हूं पारुल चौधरी, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए सास बहू और पेटियां यानी एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज। वैसे कहते हैं कि खूबसूरती ना सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, ये जो आपकी उंगलियों पर सजे छोटे छोटे नाखून है ना जिन पर हम नेल पेंट लगाते हैं, वेल ये भी कभी कभी हमारे लुक को उभार देते हैं और कर देते हैं कमाल। कहीं पर क्लासिक रेड, पेस्टल पिंक या फिर फ्रेंच टिप्स, और आजकल तो जेल नेल्स, नेल आर्ट और उसके साथ साथ क्रोम नेल पेंट्स भी कर रहे हैं ट्रेंड। लेकिन देखिए, जरूरी नहीं है कि उंगलियों को खूबसूरत दिखाने के लिए आप सिर्फ नेल पेंट लगाएं, जरूरी है कि किस तरह आप नेल केयर करें, सही मैनिक्योर करें और नेल पेंट्स को किस तरह आप अपने नेल से रिमूव करें। तो आज तो शेयर करेंगे हम आपके साथ ढेर सारी ब्यूटी टिप्स और उसके साथ साथ है यहाँ पर ढेर सारा ग्लैमर और ढेर सारा एंटरटेनमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे ये एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
3: क्यों ना बोले मुझसे मोहन, क्यों है रूठे रूठे।
4: सास बहू और बेटियां की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए, देव होगा वसुधा से नाराज, रिश्ते में आएगी गलत फहमी की दीवार,

और विक्रांत के हसीन पलों की तस्वीरें। विक्रांत की याददाश्त लौटते ही करेगा वो धैर्य पर वार। जाएगी ईशान की याददाश्त, नयनिका होगी परेशान।

0: कभी क्लासिक रेड, कभी ब्राइट पिंक, तो कभी नेल आर्ट। इसी तरह पति और पत्नी के रिश्ते में भी अंगों की कमी नहीं होती। तो क्या कुछ हो रहा है पति ब्रह्मचारी की इस कहानी में, आज देखिए कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पहुँच गई है। रिश्तों में इतनी उथल पुथल, इतने सारे उतार चढ़ाव, लेकिन तभी तो है हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट। लेकर चलते हैं आपको यहाँ।
1: ऐसी क्या बात है, बोल दो ना जो बोलना है।
2: ईशा सूरज पहुँचे काव्या के रिश्ते की बात लेकर।
3: बिना सुने बिना समझे नाम मत कहना।
1: बंटी?
2: बंटी से जुड़ेगा काव्या का नाता।

0: کاویا کا انکار. دنگل ٹی وی کے سیریل پتی برہمچاری میں ایشا اور سورج نے ٹھان لیا ہے کہ وہ کاویا کی دوسری شادی کرا کر رہیں گے. آرف کے جانے کے بعد کاویا اکیلی پڑ گئی ہے. ایسے میں بنٹی بھی کاویا سے پیار کرتا ہے اور اسی لیے آج ایشا سورج ساتھ ساتھ پہنچے ہیں کاویا کے پاس اسے یہ بتانے کہ وہ بنٹی سے شادی کر لے کیونکہ بنٹی اس سے بے حد پیار کرتا ہے. پہلے تو انہیں ہو رہی ہے ہچکچاہٹ کہ آخر کار وہ کاویا سے یہ بات کیسے کہیں.
1: تو ہے تو مسکراتے ہیں کہ تیرے بن سو.
2: اتنا کیوں مسکرا رہے ہو آپ لوگ؟ بھیا کہیں آپ کا پھر سے مجھے کسی چیز میں پھنسانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ اور یہ پیچھے کیا چھپا رہے ہو؟
0: لیکن تھوڑی نوک جھوک کے بعد آخر کار ایشا اور سورج کاویا کو بتا ہی دیتے ہیں کہ بنٹی کاویا سے پیار کرتا ہے اور اسے بنٹی سے شادی کر لینی چاہیے.
3: بنا سنے بنا سمجھے نام مت کہنا.
2: اچھا لڑکا ہے.
3: ارے اپنے ہی محلے کا ہے، تجھے دور بھی نہیں جانا پڑے گا.
2: تم سے اتنا پیار ہے کہ اس نے
3: خود آ کے مجھ سے تیرا ہاتھ مانگا.
2: آپ دونوں نا بات کو گھماؤ مت، مجھے سیدھا سیدھا اس کا نام بتاؤ. آخر مجھے بھی تو پتا چلے وہ محلے کا لڑکا کون ہے.
3: خود ہی دیکھ.
2: یہ کیا ہے؟
0: بھائی کاویا تو انکار کر دیتی ہے لیکن پھر بھی ایشا اور سورج اسے منانے کی اور سمجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے.
3: بہت اچھا لڑکا اور سب سے بڑی بات اسے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور وہ پتا یہ بات مجھے بہت پہلے ہی بتا دینے والا تھا پر کبھی ہمت ہی نہیں جگہ پایا. اور آج اس نے اپنے دل کی بات کہہ دی اور پتا ہے کہہ کے بھاگ بھی گیا.
2: سچ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اتنا کہ وہ تمہارے لیے پوری دنیا سے لڑ جائے. ایسے لڑکے بڑی مشکل سے ملتے. سورج آج سے بنٹی تمہارے ساتھ کام نہیں کرے گا. اسے کاویا کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ بنا دو. وہ کاویا کے ساتھ ہاسپٹل جائے گا روز اور اس کے ساتھ کام کرے گا. سمجھے؟
3: لیکن
2: کچھ نہیں، میں نے کہہ دیا بس.
3: ٹھیک ہے جو حکم.
0: تو بھائی شادی کے لیے کاویا مان تو گئی ہے اور اس بات سے سورج اور ایشا بھی کافی خوش ہیں. لیکن اس شادی میں بھی ٹوسٹ ہے.
4: کاویا کے پاس پروپوزل لیے بوچے ہے بکاز یہ ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے پوری فیملی کو. اور اسپیشلی پہلے تو سورج سے شروع ہوئی ہے تو سڈنلی منڈی یہ فیل سننا ہے کہ ڈن. پہلے منڈی آتا ہے اس کو ادھر کی بات کرنی ہے
5: ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ کاویا کے ساتھ گیا رہتا ہے ہسپتال سورج خود ہی بھیجا رہتا ہے اور منڈی خود بولتا ہے کہ میں ڈراپ کر دیتا ہوں کیونکہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اور جسٹ ڈراپ کرنے کے بعد بہت دنوں سے اس کو دماغ میں چل رہا تھا. ریا نے فیشن بنایا تھا कि सूरज भैया को बोल देती कि बात बोल रही कि मुझसे प्यार करता है, हमारी शादी तो करेंगे, ये करता है, उसमें हिम्मत नहीं हो पा रही थी। और अचानक से वो काव्या को ड्रॉप करके अचानक उसे रिया वाली बात याद आती है और वो रिया वाली बात बोल तो जाता है कि मुझे आपकी बहन से प्यार। अब सूरज को लगता है
4: मैं पहला थॉट काव्या ही आई, मेरा तो आई नहीं,
5: राखी घूमने निकला है, तो मुझे लगा कि काव्या से प्यार करता और वो जैसी शख्स थे बताता है सबकी ईशा जी ऐसा वैसा। और ईशा
4: तो ये बात नहीं है कि हम आरव को मतलब ऐसे साइड करके हम काव्या की लुक नहीं समझ पा रहे, बट वो चीज है कि काव्या की पूरी लाइफ बची है, वो हम पहले भी इसलिए रिश्ता लाए थे, बट उसमें दोनों आमने सामने आ गए सूरज ईशा, और ऑफकोर्स दोनों लड़के सही नहीं थे, तो वो हम काव्या को समझा रहे हैं कि मूव ऑन करो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ बची है, आरव भी तुम्हें खुशी खुशी खुशी देखेगा कि अगर तुम दूसरी शादी करके खुश रहोगी, तो हम वही काव्या को समझाना है कि बंटी तुमसे प्यार करता है, वो अच्छा लड़ता है, सूरज कॉन्फिडेंस दिला रहा है कि मैं बचपन से उसे डांसा उस उसको रखूंगा, पर वो नहीं मान रही है, अफकोर्स नहीं मानेगी, पर कैसे वो अपनी कोशिश नहीं छोड़ सकते थे
0: भाई। इस शादी में ट्विस्ट तो ये है कि बंटी असल में रिया से प्यार करता है और ये बात से बेखबर है सूरज और ईशा, उन्हें लग रहा है कि बंटी को काव्या से प्यार है। ऐसे में देखिए कैसे बंटी और रिया एक दूसरे संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, ये साफ देखने को जाहिर है। लेकिन अब तो इस प्यार में भी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो भाई अब देखना होगा कि क्या रिया और बंटी की जोड़ी बन पाएगी या फिर काव्या और बंटी की शादी हो जाएगी। भाई यही तो है कहानी में आने वाला नया ट्विस्ट। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: कुछ नेल पेंट्स बहुत सॉफ्ट होते हैं तो कुछ बोल्ड होते हैं, ऐसे ही जिंदगी में कभी कभी सुकून के पल आते हैं तो कभी कभी इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं, और बिल्कुल इन्हीं इमोशंस पे टिकी है ये कहानी जिसका नाम है सैराब। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आज सबको नौनिका और ईशान के पास और देखते हैं किस तरह आगे बढ़ रही है आज ये कहानी। क्या फिर से आया है यहाँ पर कोई नया कन्फ्यूजन या फिर आ रही है हमारे लिए कोई गुड न्यूज, लेट्स चेक इट आउट।
0: ईशान की याददाश्त, नयनिका को लगा जोर का झटका।
7: मैं तेरे कल में हूँ आज,
0: पार्शियल मेमोरी लॉस से गुजरते ईशान
7: तेरी सांसों के साज में हूँ।
0: स्टार प्लस के सीरियल सैराब में कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है जहां पर ईशान ठीक तो हो गए हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं। जी हां, उन्हें हो गया है पार्शियल मेमोरी लॉस, यानी कि उन्हें कुछ चीजें याद रहेंगी और कुछ वो भूल जाएंगे। भाई जहां एक तरफ नयनिका ने घर वालों के सामने ईशान से अपने प्यार का इजहार किया था तो वहीं दूसरी तरफ उसे जोर का झटका लग गया है क्योंकि ईशान याददाश्त ही खो बैठा है। ऐसे में अब कहानी में असली ट्विस्ट आएगा।
8: हाँ सुनिधि, ईशान सर की हालत बहुत ज्यादा खराब है,
9: उन्होंने अपनी मेमोरी खो दी है। He is suffering from partial memory loss.
8: नहीं। अगर ईशान किसी मुसीबत में होगा तो मैं जरूर उससे मिलने जाऊंगी क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे।
10: तो फिर तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा।
0: घर वालों से लड़कर नयनिका पहुंची अस्पताल ईशान से मिलने के लिए और देखिए कैसे ईशान नयनिका को पहचान ही नहीं रहा है, वो तो उसे डॉक्टर समझकर ही उससे बातें कर रहा है। और ऐसे में देखिए नयनिका को जोर का झटका लगा है, उसे समझ तो आ गया है कि ईशान उसे पहचान नहीं रहा है। ऐसे में डॉक्टर बनकर ही नयनिका ईशान से उसका हालचाल पूछ रही है और बड़े ही कैजुअल अंदाज में ईशान नयनिका से बातें कर रहा है।
11: नहीं,
0: भाई ये सब देखकर तो नयनिका सदमे में है। उसे दुख भी हो रहा है, लेकिन उसने ठान भी लिया है कि वो ईशान को जल्द से जल्द ठीक करेगी। वहीं दूसरी तरफ ईशान अपने घर वालों को और दोस्तों को तो पहचान गया है, लेकिन सिर्फ नयनिका को ही भूल चुका है।
11: हमें जैसे ही पता चला तेरे बारे में, हम दोनों काफी डर गए थे, इसलिए हम दोनों फौरन चले आए। पर अब तुझे देखकर लग रहा है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। थैंक गॉड।
12: पहचान पाएंगे ना?
13: मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि लॉस होगा ही, पर कई केसेस में ऐसा होता है।
12: डॉक्टर साहब, पहचान लिया, मेरे को पहचान लिया। बाबा आप ठीक है ना? बेटा मुझे पता चला कि ननका बिटिया ने पूजा के फूल आपके माथे से लगाए थे। डॉक्टर साहब की मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से आप ठीक हो रहे हो, अब ठीक हो जाओगे। ननका बिटिया ने
0: यानी कि अब सीरियल में सैयारा वाला ट्विस्ट आया है। अब देखना होगा कि नयनिका कैसे ईशान को ठीक करेगी और शुरू होगी इनकी लव स्टोरी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: कभी सिंपल न्यूड लुक, कभी ग्लिटर, तो कभी ग्लैमरस नेल आर्ट, कुछ ऐसे ही रंग पाए जाते हैं नेल पेंट्स की दुनिया में। लेकिन कैसे रंग है आज एंटरटेनमेंट की दुनिया में? Well, यहां तो है आपके लिए मनोरंजन का हर रंग, जिसे लेकर हाजिर है हमारी सास बहू और बेटिया की एयरलाइन। यहां तो खुले हैं एंटरटेनमेंट के सभी द्वार, तो आप कर लीजिए हमारी एयरलाइन को बोर्ड, बांध लीजिए एंटरटेनमेंट की बेटी, क्योंकि हम लेकर चलेंगे आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया के इस नॉन स्टॉप सफर पर।
0: कलर्स टीवी के सीरियल जूही मूवी में देखिए आज कैसे जूही काला कोट पहनकर पहुंच गई है कोर्ट में। भाई वकील साहिबा आज पूरी ड्रेसअप होके यहाँ पहुँची है, ऐसे में उसे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि उसका पहला दिन जो है, और ऐसे में जूही तैयारी कर रही है केस लड़ने की। वो थोड़ी घबराई है, लेकिन उसे विश्वास है कि वो सब कुछ सही कर लेगी।

0: वहीं दूसरी तरफ संयम सिंह पहुंच गया है अपने दुश्मन के पास, क्योंकि उसे पता है कि ये दुश्मन जूही को भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो पहुंचा है इन्हें चेतावनी देने के लिए।
1: तो अपना रास्ता भूल गया क्या इंस्पेक्टर संयम सिंह?
2: ना, ये बताने आया हूँ कि आज तक हमारे बीच में कानून का दायरा था, लेकिन अगर जूही मैडम ने कुछ भी हुआ तो मैं सारे दायरे भूल जाऊंगा।
1: अपनों से लड़के नुकसान ही होगा संयम।
2: कौन सा अपने? सारे पाप ने हमारी माँ को मार दिया।
3: तो फिर सोच कि उस पगलेट के साथ क्या कर सकते हैं।
0: जी टीवी के सीरियल जगधात्री में 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है, जहां 15 अगस्त के फंक्शन में मिनिस्टर साहब आने वाले हैं, और ऐसे में इन्हें मिला है एक स्पेशल टास्क, जहां पर जानवी शिवाय के साथ मिलकर बना रही है प्लान। लेकिन यहां से जगधात्री गायब है, क्योंकि वो तो किसी और मिशन में ही लगी हुई है। बातें चल ही रही होती हैं कि जगधात्री यहाँ पहुँच जाती है वो फाइल लेकर, जिसमें मूसा की सारी डिटेल्स हैं, लेकिन जानवी और जगधात्री में हो जाती है बहस शुरू। भाई कहीं ना कहीं जगधात्री का मूसा यानी कि शिवाय के पापा के लिए शक सही होता जा रहा है, और ऐसे में उसे सबूत भी मिल रहे हैं।
4: माया देशमुख
5: जी, इंस्पेक्टर भाई,
4: आपके पुराने ड्राइवर का खून कर दिया है।
5: किस ड्राइवर की बात कर रहे हैं? ये राजेश के बारे में बात कर रहे हैं।
4: वैसे जिसे आप राजेश कह रही हैं, उसका असली नाम ज्ञान था।
5: अभी आज ही तो वो ड्यूटी पे था, कुछ घंटे बाद उसका मर्डर क्या हो गया? फिलहाल वो मेरी गाड़ी चला रहा था, लेकिन वो पहले महेश काका का ड्राइवर रह चुका है।
4: कौन ड्राइवर रह चुका है? इसे तो आप जानते ही होंगे, इसका किसी ने खून कर दिया।
5: क्रिमिनल था वो, और इसके कई दुश्मन रहे होंगे, फिर भी आपने इस आदमी को अपना वफादार बना के यहाँ पर रखा हुआ था, क्यों?
0: तो भाई अब देखना होगा कि जगधात्री कैसे सच का खुलासा करेगी। जल्द आने वाली है फिल्म टॉक्सिक। ऐसे में बीती शाम हुआ इसका एल्बम लॉन्च, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे। भाई पहले तो यहाँ पर पहुँचे फिल्म के हीरो यश। इसके अलावा यहाँ नजर आई कियारा अडवाणी। भाई आज की शाम के लिए इन्होंने चुना है लाल रंग, और देखिए कैसे वो अपने इस लुक को फ्लॉन्ट कर रही हैं।
6: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
0: इसके अलावा यहाँ नजर आई तारा सुतारिया, जिन्होंने आज की शाम के लिए काला रंग चुना। इसके अलावा हुमा कुरैशी, रुक्मणी, साथ ही सिंगर चोनिता गांधी, जिन्होंने गाना गाया है। इसके अलावा अनुषा दांडेकर, ये सभी इस एल्बम लॉन्च में पहुँचे। भाई आज तो इन सब का टशन देखने लायक है, तो आप सब भी हो जाइए तैयार फिल्म टॉक्सिक के लिए।

0: last night.
1: जिस तरह एक खूबसूरत नेल पेंट आपके पूरे लुक को बदल देता है, उसी तरह कहानियों में आया एक छोटा सा ट्विस्ट कहानी को पूरी तरह बदल देता है। तभी तो ये ट्विस्ट लेकर आते हैं कहानियों में एंटरटेनमेंट का मसाला। अगर आपसे ये ट्विस्ट हो गए हैं, मिस फिकर नॉट, लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए ये तमाम ट्विस्ट, वो भी एक साथ अपने इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में। लेट्स ट्विस्ट।
2: महादेव एंड सन्स, जल्द ही।
3: रज्जी ने अपने मायके से आए लड्डू नर्मदा को खिलाए थे और उन लड्डुओं में जहरीली चीज भी मिली हुई थी।
4: कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर रज्जी पर लग रहे हैं इल्जाम। भाई रज्जी तो नर्मदा को मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज नर्मदा ने ही रज्जी पर इल्जाम लगा दिए है, जिसका फायदा उठाया मोगरा ने। ऐसे में आज तो महादेव भी रज्जी पर ही बरस पड़े।
3: तो मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिल में पाप है। जिस रात तुमने मेरी जीवन ज्योत बुझाई थी, और फिर पानी पिलाने के बहाने मुझे केमिकल मिलाने की कोशिश की ताकि तुम मेरा बच्चा मार सको। तुम्हें हम पर भरोसा है, या तुम्हें भी यही लगता है कि हमने नर्मदा भाभी के बच्चे को मारा है?
5: हम इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहते रज्जी, लेकिन तुम एक सवाल का जवाब दो। आज सबके सामने तुमने मोगरा भाभी की सच्चाई क्यों नहीं बताई? आज तो मौका था ना, सबके सामने सब कुछ सच सच बोल सकती थी, पर क्यों नहीं बताया?
3: कोई सच्चाई सुनना ही नहीं चाहता है। सब उदास है, नाराज है, उन्हें चाहिए कोई ब्लेम करने के लिए, और हमने वो बलि का बकरा उन्हें मिल गया। जब भरे दरबार में द्रौपदी को बेइज्जत किया गया था, तब अपमान द्रौपदी का नहीं हुआ था, उनका अपमान होने से तो कृष्ण जी ने उन्हें बचा लिया था।
4: इसके बाद रज्जी ने घर छोड़कर जाने का फैसला ले लिया है, लेकिन उस पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि मोगरा करेगी रज्जी को जान से मरवाने की कोशिश। अब देखना होगा कि क्या रज्जी बच पाती है।
3: अम्मा, 9-2-11 कर दिए रज्जी को इस घर से।
6: लेकिन देखो बेटा, सावधान रहना,
7: और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने ससुराल से मीलों दूर भेज दो।
6: जब तक पास रहेगी तुम्हारी रास्ते का कांटा बनेगी।
8: रिश्ता क्या कहलाता है?
9: ये तुम सबको उस लड़के के बारे में बता रही थी, बस इसने मुझे ही बताना जरूरी नहीं समझा।
3: क्योंकि आप अपने रिएक्शन से मेरी हॉलिडे ही कर देते हो, एज इफ किसी लड़के के साथ कैब में आके मैंने कितना बड़ा क्राइम कर दिया।
9: एक लड़के के साथ कैब में आना क्राइम नहीं है, पर अपनी सेफ्टी के बारे में नहीं सोचना, मुझे इस बारे में नहीं बताना, मुझसे झूठ बोलना गलत है।
3: पर मैंने तो झूठ बोला ही नहीं, मैंने बस
4: स्टॉप लेस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में पापा और बेटी यानी कि अरमान और मायरा के बीच छिड़ गई है बहस, और देखिए कैसे मायरा अपने पापा पर हो रही है गुस्सा।
3: पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, डॉगी क्या करता है, बस उस बेचारे की आईडी चेक करनी रह गई थी।
9: हाँ, नेक्स्ट टाइम उसकी आईडी भी चेक कर लूंगा।
3: जरूर कर लेना, और ये भी प्रूव कर देना कि आपको अपने बिल्ली के बच्चे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
9: एक तो आप बात छुपा रहे हो और मुझसे भरोसे की बात कर रहे हो, रियली?
3: हाँ, मैं आपसे बातें छुपा रही हूँ, अदरवाइज आप पैनिक में फ्लाइट पकड़ के जयपुर पहुँच जाते हो। ओके, दैट्स इट। अरमान, प्लीज काम डाउन, और आप जाओ, जाके रेडी हो जाओ, गो।
4: ऐसे में जहां एक तरफ मुक्ति अरमान को समझाने गई है, तो वहीं अभीरा पहुंच गई है मायरा को समझाने, ताकि पापा बेटी में सुलह हो सके।
9: हर बात पे जिद, और उसके बाद मुक्ति आप कब आए?
0: जब आप बंदर पे गुस्सा कर रहे थे पापा, वो
9: मुक्ति मैं कितने भी गुस्से में हूँ, पर मेरी तीनों बिल्लियां मुझसे जब चाहे बात कर सकती हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ आप और मायरू मुझसे बातें करो, मुझे सब बताओ।
0: बंदर भी,
9: मुझे पता है आप उसी की साइड लेने वाले हो।
0: मैं ह्यूमन टीम में हूँ, बंदर टीम में नहीं। आप मेरे आने से पहले एकदम करेक्ट गुस्सा कर रहे थे। बंदर एक नंबर की जिद्दी है, जो मन में आता है वही करती है। सभी कहते हैं कि वो इतनी स्मार्ट है कि कोशिश करे तो लॉयर बन जाए, पर जो सब कहेंगे वो बंदर जी को करना ही नहीं है। अगर कोई उसे बोले लेफ्ट मुड़ जाए तो मजाल है कि वो लेफ्ट मुड़ जाए, उसे राइट मुड़ के अपना रास्ता खुद ढूंढना। मैं डेंजर देख के उसे दूर भागती हूँ, और वो डेंजर देख के उसके पीछे उसे गले लगाने दौड़ पड़ती है कि कुछ नया सीखने मिलेगा। हाँ सिलीना, दिमाग तो बस उसने शो पीस के लिए रखा हुआ है, हमेशा दिल से सोचती है। जस्ट लाइक
9: अभीरा,
0: एग्जैक्टली, वो माँ पार्ट टू है।

0: नो, अब पापा की साइड लेने वाले कि वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, डॉल दैट, बट मम्मा पापा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं।
1: आई नो बेबी, लेकिन बहस करने से पापा शांत भी तो नहीं हो जाएंगे ना। मैं उन्हें संभाल लेती, लेकिन उससे पहले ही आप उनसे लड़ने लगे। और अगर आप अपने फ्रेंड के बारे में उन्हें आराम से बताते तो आई एम श्योर पापा समझ जाते।
0: आप समझ जाते, पापा नहीं समझते। आई विश वो आपके जैसे होते।
1: बेटू, क्या रेनबो के सारे कलर सेम होते हैं? हर फूल की खुशबू सेम होती है? आप और बेबी गर्ल सेम हो? हमारे तो एक हाथ की पांच उंगलियां भी सेम नहीं होती। सबका अपना अलग अलग पर्पस होता है। तो फिर मैं और पापा सेम कैसे हो सकते हैं? अभी आपको पापा के ऊपर गुस्सा आ रहा है, लेकिन जब मैं आपको और बेबी गर्ल को डांटती हूँ तो आपको मुझसे बचाने कौन आता है?
0: पापा।
1: बेटा, पापा ने अपनी लाइफ और करियर में वर्स्ट टाइप के लोग देखे हैं। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन बेटू वर्ल्ड में बहुत स्कैरी टाइप के लोग होते हैं, और पापा ऐसे कई लोगों से डील कर चुके हैं। इसीलिए वो अपने बिल्ली के बच्चे के लिए डरते हैं, क्योंकि आप उनकी जान जो हो।
2: भाई सब कुछ ठीक तो हो गया है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अभी बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि कबीर दमानी इसका बेटा है और वो घर आकर कर रहे हैं बवाल। तो अब देखना होगा कि क्या मायरा जेल जाएगी या अरमान अभीरा उसे बचा लेंगे।
3: मेरे परिवार पे खतरा आने वाला है।
4: कबीर, हाउ डेयर यू? कबीर कौन है?
5: पूछिए अपनी बेटी से कि मेरा बेटा कहाँ है।
0: आई स्वेयर मुझे नहीं पता कबीर कहाँ है।
4: इसे सच पता है लेकिन ये बता नहीं रही है।
6: बस कीजिए मिस्टर दमानी, ये क्या नॉनसेंस बोले जा रहे हैं आप?
4: मैं सच बोल रहा हूँ।
5: आपकी बेटी अडल्ट है मिस्टर पोटर, अपनी करनी का भुगतान तो उसे करना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन तो इसे चलना पड़ेगा।
7: तो फिर चलिए आपकी जिंदगी में भी हम बिखेर देते हैं इन नेल पेंट्स की तरह एंटरटेनमेंट के रंग। अब लेकर चल रहे हैं आप सबको आपके फेवरेट सेगमेंट की ओर। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आज हमारी टीम सास पहुँच पीटिया ने किससे की है ये प्यारी सी मुलाकात आपके फेवरेट सितारे से। जानना चाहते हैं आप उन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल, सो गेट सेट गो।

0: मिले बरेली के बच्चन के माही बच्चन से। भाई पर्दे का ये शरारती बेटा सेल्फी के लिए मशहूर है, जिसके तीन भाई हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये हैं सचिन जीत सिंह, जो लखनऊ के रहने वाले हैं और आज पहुंच गए हैं अपने होम टाउन। आज ही हमें मिलाएंगे अपनी रियल फैमिली से, अपने रियल भाई संग करेंगे मौजा मौजा, शेयर करेंगे अपने बचपन की यादें, मिलाएंगे अपने परिवार वालों से, दिखाएंगे वो जगह जहां उनका बचपन बीता है, कैसे उनकी मम्मी उनके लिए बनाती है बेसन के लड्डू, यानी खोलेंगे एक यादों की गुल्लक विद सचिन जीत सिंह। पर्दे का माही बच्चन रियल लाइफ में है लखनऊ का एक ऐसा लड़का जो मुंबई आया है अपने सपने बनाने, लेकिन जब भी अपने घर पे जाता है तो बन जाता है घर का सीधा साधा बच्चा, जो अपने संस्कारों को नहीं भूला है। तो आज हम अभिनेता सचिन जीत सिंह के साथ करने वाले हैं होम टाउन डे आउट, यानी मेरा गांव मेरा देश, वो जगह वो शहर कस्बे और गांव जहां से लोग आते हैं सपने देखने और मुंबई में बन जाते हैं कलाकार। तो आज हम देखेंगे सीरियल बरेल के बच्चन के माही का रियल लाइफ घर, उनकी फैमिली, वेब सीरीज हो या फिर हो टीवी शो। सचिन जीत सिंह लखनऊ से पहुंचे हैं मुंबई अपने सपनों को पूरा करने, लेकिन आज सास बहू और बेटियां संग वो अपने घर पर आए हैं। तो चलिए मुस्कुराते हुए करते हैं उनका स्वागत उनके अपने शहर लखनऊ में।
1: आई एम सचिन जीत सिंह और आप लोग मुस्कुराइए, क्योंकि हम लखनऊ में हैं। और मेरे मुस्कुराने की वजह सिर्फ ये नहीं कि मैं लखनऊ में हूँ, बल्कि ये है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ। और जब से हम बरेली के बच्चन की शूटिंग कर रहे हैं, उसके बाद से मैं आज पहली बार वापस घर आया हूँ। मैं वापस आ गया और पीछे मेरा घर है, तो हम चलते हैं, आपको सबसे मिलवाऊंगा अपने घर में कौन कौन है, और मैं खुद मिलूंगा इतने टाइम बाद, तो वो अलग ही मोमेंट होगा। और आप है मेरे साथ इस वक्त, मैं अकेला नहीं हूँ, सास बहू बेटियां भी हमारे साथ है, तो आज ये अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है, कुछ बहुत फन होगा। क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ मिलने वाला है ना मुझे, कि मुझे अभी दो लेके तो मैं एक आया हूँ, पर मैं लेके दो तीन जाऊंगा डेफिनेटली। चलो देखते हैं कुछ क्या मिलता है घर पे।
0: हाथों में लगे ट्रॉली लिए सचिन आए हैं लखनऊ अपने सीरियल के प्रमोशन के लिए, और साथ साथ हमें अपना घर और अपना मोहल्ला भी दिखा रहे हैं, वो गलियां जहां पर वो पले बड़े हैं।
1: अभी रात तो बहुत हो गई है, शायद सो भी गए होंगे सब घर पे, लेकिन ये सामने पार्क देखिए। अब मुंबई में हमें ये बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है किसी भी हाल पे, कि इतना बड़ा पार्क आपके घर के सामने हो। तो ये मेरा पूरा गार्डन है इतना बड़ा एक तरीके से, और पूरी सोसाइटी है, पूरा कॉलोनी हमारा है, और बिल्डिंग विल्डिंग नहीं है, अपना घर है, ठीक है, बंगला है। और यहाँ पे चलते हैं अंदर, देखते हैं कौन कौन है।
0: लखनऊ में यह है सचिन का घर, जहाँ पर उनका बचपन बीता है और यहीं से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी।
1: घर में मैं बहुत ऐसे टाइम पे आया था जब 11, 12 मेरा चल रहा था क्लास, और उस टाइम पे पढ़ाई बहुत करनी पड़ती थी। तो ये घर पे मुझे सबसे ज्यादा याद था कि मैंने पढ़ाई बहुत करी है। फिर मैं गेमिंग करने लग गया था यहाँ पे। कितने ऑडिशंस दिए मैंने, बहुत सारे ऑडिशंस दिए, बल्कि बरेली के बच्चन को ऑडिशन भी मैंने अपने इसी घर में दिया है। मेरे मम्मी रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं ऑडिशन दे रहा था, एंड आई गॉट सिलेक्टेड एज यू नो। जल्दी से मम्मी से मिलते, रहा नहीं जा रहा, आइए।
0: लखनऊ में सचिन जीत के परिवार में उनकी मम्मी और उनका छोटा भाई है, और साथ साथ उनके बड़े पापा और मम्मी भी एक ही घर में जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। सचिन के पापा विदेश में रहते हैं, तो आज मिलते हैं उनकी फैमिली से उनके इस पुश्तैनी घर में।
1: यहाँ हमारे लखनऊ में सब बहुत लाइफ जी के रहते हैं, और यहाँ पे लाइफ ना थोड़ी स्टेबल लगती है, यहाँ पे सब आराम से रहते हैं, बहुत फास्ट मूविंग नहीं है। अगर आपको चाहिए तो भी फास्ट मूविंग भी हो जाएगा, बट देखिए हम घर पहुंचे। ये है मेरी मम्मी, ये है मेरे बड़े मम्मी, बड़े पापा भी हैं। और छोटा भाई जो बड़ा होता जा रहा है वो भी है। ये फैमिली है, और
2: ये है मेरी फैमिली,
1: ये है, ये मेरी फैमिली। पापा बाहर हैं अभी काम से, पापा से भी बात करेंगे थोड़ी देर में, और हाँ वीडियो कॉल करेंगे बिल्कुल।
0: जब से सचिन का सीरियल बरेल के बच्चन शुरू हुआ है वो घर नहीं आए हैं और पूरे 2 महीने बाद आज वो घर पहुंचे हैं, तो सारे परिवार ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और सचिन के अंदाज में सेल्फी ली और इन मोमेंट्स को स्पेशल किया।
1: ओनली कॉमेडी और फैमिली और पंजाब का बहुत बड़ा रोल है कि आई गेट टू प्ले कॉमेडी रोल्स वेरी इजीली। मतलब लोग को लगता है कि मैं नेचुरली बहुत फनी हूँ क्योंकि मैं पंजाब से आया हूँ और वहाँ पे कॉमेडी टाइमिंग कितनी अच्छी है, वहां से लेके आया और घर पे भी इतना माहौल कॉमेडी रहता है तो कॉमेडी
3: मुझे सीरियल पसंद है वाला, क्योंकि कॉमेडी सास बहू टाइप नहीं है ये बरेली का बच्चन, सास बहू सास बेटा बहू है,
1: सास भी नहीं है बहू भी नहीं है हमारे शो में, कुछ हमारे शो में सिर्फ हम 4-5 भाई और एक भाभी।
3: मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियल,
1: फर्स्ट सीरियल था तो ऐसा लग रहा था कि सीरियल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ओटीटी कर रहा हूँ ऑलरेडी और कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, ऑडिशंस भी अच्छे आ रहे हैं, बट देन आई रियलाइज कि ये सीरियल वैसा नहीं है जैसा मतलब नॉर्मल डेली शो प्ले
3: कर रहे हो, बट वो सास बहू वाला तो नहीं है, ये बोला कि सीरियल है तो सास बहू वाला भी होगा, फिर इसने शायद है ना
1: फिर बात हुई तो पता चला कि
3: सास बहू वाला नहीं है।
1: कॉमेडी और सटायरिकल ड्रामेडी शो है, मजा आएगा, 4 भाई है कुछ ना कुछ सबका, मेरा कैरेक्टर तो बहुत चिल और कूल है तो
3: मुझे भी नाम बड़ा पसंद है माही
1: माही हाँ, पीपल टोल्ड मी कितने सारे मैसेजेस आए कि माही नाम ज्यादा सूट करता है तुम सचिन से, बट जैसा सही लगे।
3: और जो कृष्णा के साथ केमिस्ट्री है इन दोनों की बहुत अच्छी लगती है,
1: कृष्णा भैया के साथ, ये मेरे प्यारे से बड़े पापा और ये भी मेरा सीरियल देख रहे साथ में डेली आप सभी के साथ, और अब बताएंगे कि कैसा लगा सीरियल।
4: तो बहुत अच्छा लगा, हम तो सुबह उठते ही जो है नाश्ते के टाइम योगा करने के बाद पहले सीरियल ही देखते, पूरा बैठ के आराम से और सीरियल देखने के बाद मजा लेते हैं, उसके बाद फिर और कार्य करते हैं बात।
5: अगर मैं सचिन की बात करती हूँ, क्योंकि सबको सबसे तो आज मैं मिली हूँ, लेकिन अगर मैं सचिन की बात करती हूँ, बहुत ही मेहनती है ये, और मतलब जिस काम में लग जाता है, और मैं उसके लिए बस ये 2 लाइनें कहना चाहती हूँ कि जो थक कर भी ना रुके वो बाजीगर होता है, जो थक कर भी ना रुके वह बाजीगर होता है, और जो झुके नहीं मुश्किलों में वह सिकंदर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको एक सिकंदर के रूप में देखना चाहती हूँ, क्योंकि कितनी भी परेशानी, अभी आप समझ लीजिए ये लोग जाना है, फिर इनको शूटिंग करनी है, मतलब आराम करने का टाइम नहीं है, तो वही है ना कि बाजीगर का काम यही, चाहे कितना भी थको लेकिन आपको चलते रहना है, और ये है कि जब काफी ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो एक सिकंदर के रूप में मैं इसको देखना चाहती हूँ बस।
0: घर आते ही सचिन सबसे पहले अपने फेवरेट बेसन के लड्डू खाते हैं, जो उनकी मम्मी बहुत प्यार से बनाती है।
1: तो घर आके सबसे पहले क्या कर सकते हैं, पैर तो छू लिए पर पानी पीना बहुत जरूरी है। घर आके मम्मी ने पानी पिलाने की प्रथा रखी है और लड्डू जरूर आने वाले होंगे, मैं घर आया हूँ तो मतलब लड्डू तो बने ही है, क्योंकि मुझे लेके जाने होंगे भर के बैग में, तो अभी आने जब तक मैं बोल रहा हूँ ये देखो
3: हाँ लड्डू बस बेसन के ही पसंद है, बाकी मीठा नहीं खाते है, बेसन के लड्डू
6: लपक के हमने पकड़ी थी।
3: हाँ कल लेके जाना था तो मैंने आज पैक करके रखा, कल सुबह निकल जाएंगे लेके लड्डू।
7: भैया के साथ ही मैं बड़ा हुआ था और फिर अचानक से जब मुंबई चले गए थे तो मैं बहुत मिस करता हूँ भैया को, क्योंकि हम लोग साथ ही में खेलते थे, भैया के साथ मैं गेम्स खेलता था, कमरा डेकोरेट करते थे, हम सब वीडियोस बनाते थे और कंटेंट क्रिएशन,
1: तो ये भी एक्टिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो हम मैं इसका ऑडिशन बनाता हूँ, ये मेरा ऑडिशन बनाता है, बहुत फिल्मी कल्चर है।
3: इसके पापा का ट्रांसफर होता रहता है, जो पुराने लोग हैं जो देखते हैं हाँ सचिन आ रहा है टीवी में, तो वो भी कहते हैं फोन नंबर देना, हमारे से लेट हो गया है या इतने साल हो गए इन लोग से संपर्क खत्म हो गया, तो वो लोग भी मांगते हैं फोन नंबर सबसे कि हाँ सचिन का सीरियल आ रहा है जरा देना उनकी मम्मी का फोन नंबर, बात करें तो हाँ बहुत अच्छा लगता है सच में।
7: मेरे दोस्त है हर्षित करके, उसने मुझे बताया कि अरे मैंने तुम्हारे भैया को मैंने टीवी पे देखा था, ये शो आता है उनका, तो काफी मतलब अगर अब मैं युवराज सिंह नहीं, अब मैं सचिन का भाई बोला जाता हूँ स्कूल में, तो काफी प्राउड की बात है मेरे लिए।
1: मुझे तो नहीं लगता कि सचिन का भाई बोला जाता हूँ इसका, क्योंकि जिस स्कूल में इसका हो जाता था एडमिशन उसमें मेरा होता नहीं था, मतलब सामने नहीं क्लियर होता था, ये क्लियर हो जाता था, तो ये हमेशा बेटर स्कूल में या बेटर एजुकेशन लेके आया है,
3: ना ज्यादा ना कम, बस लेकिन संतुष्ट रहता था कि इतने नंबर आ गए मेरे ठीक है, बट इनका है कि नहीं मेरे दो नंबर भी यदि कम हो गए तो हाय बहुत बड़ी बात हो गई, मुझे टॉप करना था, मेरे फ्रेंड के दो कैसे आ गए ज्यादा, इसका ये रहता है। और ये क्या है, छोटे से ही ठीक है जितने हैं सब ठीक है ओके।
7: हाँ काफी लड़ते थे, बहुत ज्यादा ही लड़ते हैं असल में, लेकिन अब जैसा कि मतलब भैया दूर चले गए हैं तो अब ज्यादा लड़ाई होती नहीं है।
3: लड़ाई होती थी लैपटॉप के पीछे, बाकी वैसी लड़ाई नहीं होती कभी, बट रूम के पीछे या मेरे दोस्त आ रहे तूने मेरा रूम खराब कर दिया,
1: रूम
3: साफ कर दिया मेरा, बस इतनी ये लड़ाई होती थी, बाकी नहीं।
1: मोस्टली जो मैंने अपना काम किया है करियर में वो सब लखनऊ में शूट हुआ है, क्रश डे, ये मेरी फैमिली वगैरह, बट फिर जब से अब जब रेगुलर शूट चल रहा है हमारे बरेली के बच्चन का, तो अब इतना लंबा गैप हो जाता है और कुछ किसी से ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिलता, तो अब इस बार थोड़ा लग रहा है कि यार थोड़ी देर और रुक जाते या थोड़ी देर और रुक सकते हैं। अभी जैसे अब तो हमें सुबह निकलना है वापस, लेकिन लग रहा है कि एक दिन और, एक भी दिन और हो जाता
3: खाने का, तो लगता
1: खाना लखनऊ तो बहुत मिस करते हैं।

0: ये बस सचिन ने अपने पापा को वीडियो कॉल किया जो इस वक्त अफ्रीका में है। जी हाँ, इनके पापा विदेश में रहते हैं लेकिन वीडियो कॉल से कनेक्टेड रहते हैं। तो आइए लगाते हैं सचिन के पापा को वीडियो कॉल।
1: अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। इनका एक सपना था इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करने का, तो मौका मिला है इनको। भगवान से दुआ करेंगे कि अच्छा काम करें, मेहनत करें, खूब आगे बढ़े।
0: अब जरा चलते हैं सचिन के साथ उनके उस कमरे में जो उनका फेवरेट कॉर्नर था, पर यहाँ पर उन्होंने ढेरों वीडियो बनाए हैं और आज अपने भाई के साथ इसी रूम में वो डांस भी करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सचिन के घर का उनका फेवरेट कॉर्नर यानी उनका रूम।
2: अब मैं आपको अपनी फेवरेट जगह लेके चल रहा हूँ, अपना फेवरेट कॉर्नर घर का। सो अभी ग्राउंड फ्लोर पे मेरा घर का फेवरेट कॉर्नर है मेरा रूम। इस पे मैंने अपना गेमिंग सेटअप कर रखा है, अभी वो काफी दिन से इनएक्टिव हो गया क्योंकि मैं नहीं था, बट मेरा छोटा भाई। ये है मेरा फेवरेट कॉर्नर घर का, ये मेरा रूम है।

0: किया था, अभी अभी मेरे छोटे भाई ने पूरा टेक ओवर कर लिया है क्योंकि मैं ऐसा हूँ लर्न है। हाँ यस, ये वही मेमोरी है कि दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई सॉ मीडिया, आई सॉ पीआर कि क्या क्या होता है। एंड ये तो मैं अपने, मेरा छोटा भाई का एक बवाल फिल्म में वरुण धवन के साथ रोल था तो उसको मुंबई बुलाया था, तो आई वेंट विद हिम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। दिस इज माय होल कंप्लीट फैमिली, ये मेरी फैमिली, ये मेरे भाई के दोस्त, पूरी गैंग है हमारी यहाँ पे। बेसिकली कॉर्नर कभी था नहीं, ये यहाँ पे एक मतलब ये बेसिकली एक सर्वेंट रूम था और यहाँ पे किचन हुआ करता था उनके लिए। बट जब हम बड़े हुए, हमें बस लैपटॉप वगैरह आया, कंप्यूटर वगैरह पे हम गेम्स खेलना शुरू किया, तो हमने यहाँ पे पूरा सेटअप बना दिया, सब हटाया यहाँ से। ये सब मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलके पूरा यूट्यूबिंग के लिए सब किया और अब मेरा भाई करता है चलो। बट यही पे सारे GTA हमने खेले, GTAs, यू नो स्पाइडरमैन, इतना बड़ा फैन हूँ स्पाइडरमैन का और उसकी गेम्स हम खेलते हैं। इस पे कंट्रोलर्स है हमारे पास तीन तीन, मेरे घर पे टूर्नामेंट होता था तो मेरे घर पे ये देखे, एक दो अभी और देखिए तीन तो इतने कंट्रोलर्स होते क्योंकि मेरे घर पे पूरा टूर्नामेंट होता था टेकन का। एक हम टेकन लगाते थे, 10 लोग आते थे, सबकी बारी बारी कंपटीशंस होते थे, जो जीतता था उसको मम्मी खाना खिलाती थी, कुछ करती थी, हम यहाँ पे नाइट स्टेज करते थे। तो मैं बहुत मिस करता हूँ अपने घर को, इस रूम को मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मुंबई में हमें इतना बड़ा रूम घर नहीं हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे बहुत सारे मेमोरीज है बेसिकली। ये इट्स नॉट अबाउट स्पेस और कैपेसिटी, इट्स अबाउट ये मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है, ये मैं अपने हाथ से खरीद के लेके आया हूँ। ये मून जिसको मैं, इससे मैं बास्केटबॉल खेलता था इसको मार मार के। एंड ये बैटमैन, जो इसकी भी वायरिंग मैंने ऐसी की थी कि ये ऑन यहाँ से होता था, दिस मतलब सब सोचते थे कि ये ऑन ऐसे कैसे होता है, यहाँ से ऑफ करता हूँ ये ऑफ हो जाता है, ऑन करता हूँ तो ऑन हो जाता है। तो पापा सोचते थे ये तुमने कैसे किया कि यहाँ से बटन ऑन कर रहे हो वहां से ऑन हो रहा है। पीसी है, साइंस पढ़ी है, आपके पैसे डुबाए नहीं है, पढ़ाई लिखाई करी है। बट हाँ अब बहुत मिस करता हूँ यार कि अब खेलने को मिल जाए मेरे भाई के साथ, मेरे भाइयों के साथ। तो मेरे लाइफ में मेरे भाइयों का बहुत बड़ा रोल रहा है, सारे सभी दोस्तों का, मतलब फैमिली इक्वली इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से कि जब आप अपने दोस्त बहुत अच्छे बनाए, मेरी लाइफ में अगर आप पूछो, बहुत बड़ा कुछ नहीं किया पर जितना भी किया वो इसलिए किया क्योंकि मेरे फैमिली और फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। फैमिली आप चेंज नहीं कर सकते लेकिन फ्रेंड्स आप वाइसली चूज कर सकते हो कि आपको किसको दोस्त बनाना है, किनके साथ आपको उठना बैठना है। तो मेरे दोस्त बहुत काम करते थे और उतने ही मजे करते थे। तो मेरे इस वाले घर में तो नहीं बट मुंबई वाले घर पे हमने बड़ा सा कोट लगाया हुआ है कि जितना काम उतना तमाम उतनी ही मस्ती होनी भी चाहिए। तो आप अपने फ्रेंड्स बहुत वाइसली चूज करें तो आप और आगे जा पाएंगे।
1: तो भाई सचिन को उनके भाई ने ज्वाइन किया और दोनों भाइयों ने एक बार फिर से अपने बचपन का वही धमाल रिक्रिएट किया। जी हाँ, दोनों ने मिलकर बहुत सारी रील्स बनाई हैं और एक बार फिर से अपने फेवरेट गाने पर इन दोनों ने रील बनाई और अपने बचपन को कुछ इस अंदाज में ताजा किया।

0: अब बारी है यादों की गुल्लक को खोलने की। जी हाँ, हर घर में होती है एक एल्बम जहाँ भरे ढेरों तस्वीर। तो सचिन की मम्मी ने दिखाई अपनी फैमिली एल्बम जहाँ पर सचिन के बचपन की तस्वीर है, उनकी फैमिली की तस्वीर है, सचिन की अचीवमेंट की तस्वीर है। तो आइए खोलते हैं यादों की गुल्लक और देखते हैं सचिन की फैमिली एल्बम।
1: जैसा कि सबको पता है कि हर इंडियन हाउसहोल्ड में एक फोटो एल्बम जरूर होती है, जो है एक सी शेल की तरह होती है, जिसमें पर्ल्स मोती पूरे सेव रहते हैं हमेशा के लिए। ट्रेडिशंस हमारे, हमारे मेमोरीज, हमारे स्वीट बचपन के मोमेंट। तो वैसे ही हम, मेरे पास भी एक सी शेल है हमारा, जो हमारी फोटो एल्बम है घर की। इसमें बहुत पुरानी है वैसे तो ये, बट इसमें आपको लेके चलता हूँ थोड़ा यादों में पीछे, यादों की गुल्लक में क्या क्या निकलता है देखते हैं। देखो फर्स्ट पेज,
2: ये सेकंड आया था, ये रेस में ना, हाँ, पंजाब में थे जब हम लोग,
1: चंडीगढ़,
2: लुधियाना। ये कितना क्लास तक था जब ये एनुअल फंक्शन में आता
1: है, स्टंट मैन हूं मैं।
2: और ये फर्स्ट आए हुए हैं

0: अरे बाप रे, ये फोटो से
1: ये देखिए, ये फोटो
0: सेंस देखिए, तब भी कॉट रहा था, अब भी कॉट रहा है. Yes, everything I've got from them.

0: डेनिम पहन रहा हूँ मैं तब से, आई एम कूल, प्रिटी कूल सिंस चाइल्डहुड, प्रिटी कूल, मम्मी को देखो और पापा लोग की फोटो तो बहुत कूल होती है ऑब्वियसली, पुरानी जो जितने भी पापा लोग की फोटो है वो कितनी कूल होती है, ऐसा लगता है हमारी ऐसी कैसे हम एडिट करके ऐसी
1: लग रहे हैं,
0: ओ है ना।

0: जिनका स्कूल का नेम से बच्चों के यहाँ
1: पे लगाए गए थे, तो इसका एन था। सेंटर पे हूँ, सब अगल बगल मस्त लड़कियाँ हैं। यहाँ पे तो मैं गंजा हो चुका हूँ, ये रहा मैं गंजा हो चुका हूँ। यहाँ मैं राम बना हूँ। अब जाके मेरा नंबर लगा है।
0: ये देखिए ये कहाँ गए थे?
2: वैष्णो वैष्णो कटरा
1: कटरा यस
2: अरे कटरे ही
0: जैसे मम्मी सोचती क्यों मतलब कपड़े मैम बोल रही हैं कि ये लाना है आज ये वाली ड्रेस आपको लेनी है, तो कई बार मम्मी लोगों से यही कहती हूँ कि भाई आप खर्च करो कोई बात नहीं, बच्चे का कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होती है, भले ही कितना महंगा है मेरे पास है नहीं है पैसे, फिर भी है ना जबरदस्ती तुम्हें फर्स्ट आना है, आज हम ये लेके आए या वो लेके आए, कल बड़ा शौक था मुझे छोटे से जिनको तैयार करके।
1: गली बॉय मूवी का सॉन्ग है आज़ादी, उसको हमने सोचा ये बहुत अच्छा लगा है ना, हमने कहा रेप्लिकेट कर लेते हैं। मैं रणवीर सिंह प्ले कर रहा था, एक लड़की को हमने आलिया भट्ट बना दिया। हजरतगंज में जाके लखनऊ में रात को 3-3 बजे शूट करते थे, हमारे पीछे कुत्ते भी पड़ जाते थे, कुछ भी होता था। फिर वो हमने यूट्यूब वगैरह पे डाली और उस पर रणवीर सिंह ने कमेंट किया, फिर अमेजोन प्राइम ने कमेंट किया, फिर आलिया भट्ट ने कमेंट किया। दिस वॉज वेरी बिग फॉर अस, मतलब फिर हम रुके नहीं, फिर सर हम करते रहे, हमने कहा नेक्स्ट कौन सी बनानी है। फिर 12th खत्म हो गया, ऐसे ऐसे देखते रहते 12th खत्म हो गया। एंड मैं PCM से हूँ तो मुझे पढ़ना बहुत पड़ा बीच में, साइंस की वजह से बहुत पढ़ना पड़ा, लेकिन साइंस पसंद भी बहुत है तो वो चल थी। फिर देन आई हैड टू ऑप्शंस कि आइदर आई डू मोर स्टडीज कोचिंग फॉर IIT और UPSC दैट काइंड ऑफ थिंग, बट तब तक मुझे यहाँ से बहुत अच्छा वैलिडेशन मिल गया था कि स्कूल में मुझे सब बोल रहे हैं एक्टर है, तो मैं तब तक मैं अपने आसपास एक डिल्यूजन बना लिया था कि मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो हीरो हूँ। तो डिल्यूजन में रहना भी कभी कभी आई गेस एट स्टार्टिंग पॉइंट जरूरी होता है, विच पुशेस यू टेक द स्टेप्स। फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि आसपास कहीं कोई कॉलेज देखते हैं जिसमें मास कॉम अच्छा हो, एंड MIT मुझे बहुत सही लगा क्योंकि MIT कोर्स बहुत अच्छे थे इस मास कॉम के हिसाब से। दे हैड फाइनल ईयर में आपको शॉर्ट फिल्म बनानी है, आपको पिच करना है, आपको ये करना है, आपको रोज एड बना के दिखाने हैं। फिर मास कॉम करने के बाद आई वॉज लाइक कि अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे इनकम भी जनरेट होने लग जाए कुछ, क्योंकि कॉलेज में इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो। एंड वी कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, मतलब पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, पापा ने तो बोला जहाँ पढ़ना है वहाँ, जो जहाँ तू बोलेगा वहाँ पढ़ा देंगे, बट वो सोचना मेरा डिसीजन था कि कहाँ फिर इतना अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो सही जगह हो। आई गेस विस्लिंग वुड वॉज द राइट प्लेस, जहाँ पे ऐसा था कि इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म स्कूल है आई गेस। फिर MBA खत्म हो गया उसके बाद से।
3: तो ये थे सचिन जीत सिंह यानी बरेली के बच्चन के माही, जो आज अपने घर पर हैं और अपने बचपन को जी रहे हैं, अपने मम्मी और भाई के साथ लौट आए हैं उस बचपन पे जिसकी यादें आज भी उन्हें मुंबई में सताती हैं।
1: तो थैंक यू सास बहू और बेटियां, ये थी मेरी फैमिली और आई होप आपकी फैमिली भी आपको इतना ही प्यार करती हो, इतना ही सपोर्ट करती हो जितना मेरी करती है। और मुंबई में तो हम मिलते रहते हैं, हमेशा शूट करते हैं और आप सबसे बातें करते रहते हैं, इंटरव्यूज देते रहते हैं, बट लखनऊ में मेरे घर पे आकर तो ये मोमेंट बनाना, तो दिस वॉज स्पेशल। मतलब मैंने सोचा था कि मुंबई में हो जाएगा ये, लेकिन बहुत अच्छा हुआ, टचवुड की मुंबई में नहीं हुआ और यहाँ लखनऊ आके मम्मी और भाई के साथ, पापा के साथ, बड़े पापा बड़ी मम्मी के साथ ये करने को मिला और उनको भी प्राउड फील हो रहा है आई एम श्योर, जितना देख पा रहा हूँ। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अल्टीमेटली फाइनली लाइफ हैज़ कम टू अ फुल सर्कल, कि लखनऊ से स्टार्ट किया और अब लखनऊ में ही आज हम प्रमोशंस करने आ रहे हैं, तो सरियल है बहुत। एंड थैंक यू, बहुत सारा मुझे प्यार दीजिए जितना मुझे इन लोगों ने दिया है। और बहुत सारा प्यार दीजिए और मुझे जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका मैं चाहता हूँ कि पूरा फल मिले, और आप लोग मुझे प्यार करें, आप लोग मुझे सपोर्ट करें, आप लोग मुझे देख के एंटरटेन हो सबसे ज़रूरी, कि आप लोग मुझे देख के बहुत ज़्यादा एंटरटेन हो, जब भी मैं आपको दिखूँ फ्रेम में शूट पे कहीं चलते हुए, बस आप मुझे देख के समझे ये देखो एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट।
3: तो ये थे लखनऊ के सचिन जीत सिंह, जो मुंबई में अब बरेली के बच्चन बन गए हैं, माही के किरदार में अपने तीनों भाइयों के साथ ये दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं इस शो से, जो एक कॉमेडी और सटायर है। तो उम्मीद है कि सचिन जीत सिंह के बारे में आज आपको ढेर सारी बातें पता चली हो।

0: होंगी जो आपको दिखलाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटे अपने खास सेगमेंट मेरा गाँव मेरा देश में।
1: ये कैमरे पे मिल रहे हैं पहली बार, वरना मिलता नहीं है, सिर्फ डांट मिलती है कि खाना खाया नहीं, सोया नहीं, काम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है,
2: 12 बजे आ रहा है, 4 बजे जा रहा है, बस इसी में लड़ाई होती है मेरी, और कोई बात नहीं है, और किसी तरह की कंप्लेंट नहीं आती, बस ये
1: क्या बोले आप लोग,
2: नहीं है बच्चे दोनों,
1: आप लोग को एंटरटेन करना भी तो पड़ता है, आप लोग को भी तो एंटरटेन करना है और उसमें मजा बहुत आता है, टू बी ऑनेस्ट, तो थोड़ा मम्मी झेल लेंगी, लेकिन आप एंटरटेनमेंट पूरा देखिए रखिए, ठीक है, सास बहू बेटिया, बाय बाय, सी यू सून अगेन।
0: लखनऊ से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: खूबसूरत नेल्स के लिए सिर्फ नेल पेंट जरूरी नहीं है बल्कि नेल केयर भी जरूरी है, उसी तरह खूबसूरत रिश्तों में भी केयर बहुत जरूरी है। आप अपने पार्टनर को, अपने घर वालों को या किसी भी सदस्य को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको वसुधा के पास, क्योंकि कुछ ऐसी है इनकी ये कहानी। तो ऐसा क्या हो रहा है कहानी में आज, लेट्स चेक इट आउट।

0: की वसुधा से नाराजगी,
1: बोले मुझसे मोहन क्यों,
0: रिश्ते में आई दरार,
1: मोहन क्यों,
0: गलती पर गलती करती वसुधा,
1: कैसे मनाऊं।
0: जी टीवी के सीरियल वसुधा में आज सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं और वसुधा हमेशा की तरह इन सभी घर वालों को परोस रही है खाना। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट आ जाता है, भाई आज तो वसुधा ने देव के पसंद के पराठे बनाए हैं, लेकिन जब वो उन्हें सर्व करने देव के पास जाती है तो वो हो जाता है नाराज और बिना पराठे खाए टेबल से उठ जाता है। ऐसे में वसुधा हैरान है कि आखिरकार देव को हुआ क्या है। खैर, देव तो ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी चंद्रिका उन्हें कहती है कि वो शुभ काम के लिए जा रहे हैं। ऐसे में वो दही शक्कर खाकर जाए, तभी आती है वसुधा दही शक्कर लेकर। लेकिन यहाँ पर भी हो जाता है गोलमाल, क्योंकि दही देव की शर्ट पर गिर जाती है और ऐसे में फिर एक बार वसुधा पर देव भड़क जाता है। भाई नाराजगी में ही देव घर से निकल गया है। हालांकि वसुधा उसके लिए दूसरी शर्ट भी लेकर आती है, लेकिन ऐसे ही देव घर से मीटिंग के लिए निकल गया है।
2: इतने साल हो गए, तुम जब भी किसी मॉल में मीटिंग के लिए गए, हमें तो

0: हट।
1: क्या है ये सब? ये काम अच्छे से नहीं होता तुमसे। अच्छा मैंने कहा था ना तुम्हें, ये अभी सुबह से और देर हो गई। सुबह से इसका ऐसे चल रहा है। अरे बटन निकाल के स्विच ऑफ करो।

0: ऐसे में वसुधा हो गई है काफी परेशान कि आखिरकार देव को हुआ क्या है, और यही बात चंद्रिका और देव के पापा भी वसुधा से पूछते हैं, और वसुधा रोने लगती है। खैर जल्द ही ये गम के पल खुशी में बदल गए जब देव घर लौटा लेकर दो दो अवार्ड्स। असल में चंद्रिका और वसुधा दोनों को ही मिले हैं अवार्ड्स बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर के, जो वो लेने जा नहीं पाई थी, इसीलिए खुद देव इन दोनों के लिए अवार्ड्स लाया है। भाई पहले तो देव ने अपने हाथों से अपनी माँ चंद्रिका को अवार्ड दिया और फिर चंद्रिका से कहा कि वो वसुधा को अवार्ड दे। लेकिन इन खुशियों में भी वसुधा से गलती हो गई क्योंकि अवार्ड उसके हाथ से गिरकर टूट गया। ऐसे में सभी घर वाले शौक हैं, लेकिन इस ड्रामे का मजा कोई उठा रहा है तो वो है सविता, जो वीडियो बनाते बनाते इस चीज का मजाक बना रही है। ऐसे में फिर एक बार वसुधा हो गई है परेशान क्योंकि उसके हाथों कोई ना कोई गलती तो हो ही रही है। ऐसा क्यों हो रहा है वो खुद वसुधा को भी समझ नहीं आ रहा। अब ये किसी का षड्यंत्र है या वाकई वसुधा से ही गलतियां हो रही हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो देव और वसुधा के रिश्ते में गलतफहमी आ चुकी है।
1: अब देव को मैं सजा देकर गलत कर रहे हैं, बड़े को सजा देनी ही है तो हमारे को भी दीजिए, मैं भी इस नाटक में हिस्सेदार थी।
2: वसु, जिसे तुम हिस्सेदारी कह रही हो वो तुम्हारी देवी हुकुम के प्रति तुम्हारी अंधभक्ति है, वही अंधभक्ति जो तुम्हारी देवी हुकुम की गुरुजी के प्रति है।
0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: अब हर लड़की की ना कोई ब्यूटी विश जरूर होती है। किसी को चाहिए जेल नेल्स, किसी को चाहिए नेल आर्ट, किसी को चाहिए फ्रेंच मैनिक्योर, तो किसी को चाहिए ब्राइट रेड शेड्स ऑन एवरी नेल। उसी तरह यहाँ पर हमारी जो मन्नत है ना, उनकी भी ढेर सारी विशेज हैं, लेकिन देखिए अभी तो उनके रास्ते में आ रही हैं ढेर सारी परेशानियाँ। क्या हो जाएगी मन्नत की हर मन्नत पूरी? क्या विक्रांत देंगे मन्नत का हर मोड़ पर साथ? क्या फिर से आएगा कहानी में कोई नया कन्फ्यूजन? लेट्स फाइंड आउट।

0: तस्वीरों के झरोके से याद आए मन्नत और विक्रांत के हसीन पल।
1: तू मैनू नहीं मिलिया,
0: विक्रांत ने किया धैर्य पर वार। कामयाब होता मन्नत और विक्रांत का प्लान। टीवी के सीरियल मन्नत में आज मन्नत और विक्रांत ने फिर एक बार प्लान बनाया है और इस बार देखिए यहाँ पर है मन्नत और विक्रांत ने साथ बिताए हसीन पल जो कैद हुए थे इन तस्वीरों में। और मन्नत ने लगा दी हैं ये सारी तस्वीरें और कर रहे हैं ये नाटक कि विक्रांत की याददाश्त वापस लानी है। ऐसे में यहाँ धैर्य के साथ साथ बाकी घर वाले भी मौजूद हैं और देखिए कैसे मन्नत इन तस्वीरों को निहार रही है। तभी एक एक कर सभी घर वाले आ जाते हैं, साथ ही आ गया है विक्रांत और धैर्य भी।

0: ऐसे में देखिए कैसे मन्नत विक्रांत को इस प्रोजेक्टर के जरिए अपनी तस्वीरें दिखा रही है। जो पल मन्नत और विक्रांत ने साथ बिताए थे, और धैर्य को लग रहा है डर कि कहीं विक्रांत की याददाश्त वापस ना आ जाए।
1: मन्नत विक्रांत की प्यार की कहानी शुरू हुई थी गुरुद्वारे से। बाबा जी ने दोनों को गुरुद्वारे पर मिलाया और फिर मिलते मिलते एक दूसरे के रूप इन्हें पता ही नहीं चला। पर कुछ लोगों ने इन्हें अलग करने की कोशिश की, इनके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, और कई हद तक वो लोग कामयाब भी होते क्योंकि मैं विज्ञान से दूर जाती इंदौर में रहने लगती। पहले कसम खा ली थी मैं विज्ञान की शक्ल कभी नहीं देखती, उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। पर एक कड़ी जिसने हमें छोड़े ना, क्यों गए थे आप विज्ञान? क्या करने की कोशिश करिए, क्यों गए थे आप विज्ञान?
0: और इन तस्वीरों के साथ साथ विक्रांत की याददाश्त भी वापस आने लगती है, और ये धैर्य को बिल्कुल भी गवारा नहीं। तभी तो इससे पहले कि विक्रांत को सब कुछ याद आए, धैर्य वहां पहुंच जाता है मन्नत को रोकने के लिए। लेकिन इसी बीच विक्रांत कर देता है धैर्य पर हमला और उसका गला पकड़ लेता है। भाई धैर्य का डर सच हो गया, और देखिए कैसे विक्रांत के हमले के बावजूद भी धैर्य कुछ कर नहीं पा रहा। ऐसे में रॉनी और मन्नत विक्रांत को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज विक्रांत के सर पर तो खून सवार है, वो धैर्य को नहीं छोड़ेगा।
2: तुम मार दोगे इसे विक्रांत,
3: नहीं आना बीच में।
0: लेकिन इससे पहले कि विक्रांत धैर्य की पिटाई करता, बच्चे वहां आ जाते हैं, और बच्चों को देख विक्रांत धैर्य को छोड़ देता है और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगता है।
4: पापा,

0: यानी कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन विक्रांत और मन्नत का ये प्लान रंग ला रहा है, क्योंकि विक्रांत मन्नत को मिलकर धैर्य, सम्राज्ञी और सम्राज्ञी के देवर का खुलासा जो करना है।
1: बाबा जी करें, विक्रांत की याददाश्त वापस लाने की हमारी ये कोशिश कामयाब हो जाए।
2: सब जल्दी ठीक हो जाएगा बाबा। मैंने 7 दिन मांगे थे ना विक्रांत से, इन 7 दिनों में मैं विक्रांत की याददाश्त भी वापस लाऊंगी और हमारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ भी, ये मेरा वादा है आपसे।
3: आज तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी।
0: खैर, इससे पहले विक्रांत कर रहा है घर से बाहर जाने की कोशिश, लेकिन मन्नत उसे रोक रही है और ऐसे में धैर्य के कहने पर ही विक्रांत रुकता है।
4: क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि तूने कहा है। क्यों मानो तेरी बात है? हट।
2: अरे देखिए, 5 दिन आप हमारी जिम्मेदार और डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से मना किया है, तो 5 दिन तक आप यहाँ हमारे साथ रहेंगे। घर में नहीं जा सकता।
4: ओए देख मन्नत, तू ना मैनू इस तरह जबरदस्ती बिठा के घर में नहीं रख सकती। मैनू जहां जाना है ना मैं जाऊंगा। हट।
2: अरे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप वापस आएंगे या नहीं?
4: मैनू पता है कि अगर मैंने अपनी शर्त पूरी नहीं की ना, तो तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी है? और मेरी सम्राज्ञी थी, तू क्या उन्हें जेल से निकाल देगी? अच्छा जी, इसलिए ना मैं वापस आने वाला हूँ। अब तो हट यारा, हट।
2: अच्छा ठीक है, आपको जाना है ना, तो आप देवरी जी के साथ चले।
4: चंगा ठीक है।
5: डॉक्टर ने अनाथ करने को क्या है ना, तो क्या है कि मामला है सेंसिटिव, तो गड़बड़ हो गई मन्नत जी मुझे डांट देंगे, है ना, अपना मामला गड़बड़ हो जाएगा।
0: तो भाई अब देखना होगा कि मन्नत और विक्रांत मिलकर क्या दुश्मनों का पर्दाफाश कर पाएंगे या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: कुछ रंग ऐसे होते हैं जो साथ होने पर ना और भी खूबसूरत लगते हैं, उसी तरह जैसे सही इंसान का साथ आपके लुक को कंप्लीट कर देता है। कुछ ऐसा ही कह रही हैं आज हमसे हमारी अपराजिता। जैसे अपराजिता और रक्षित, आई होप आप दोनों जानते हो कि आप दोनों को तो सही इंसान मिल गया है। अरे कितनी प्यारी है आपकी ये जोड़ी, ना लगे इसे किसी की भी बुरी नजर। चलिए लेकर चलते हैं आप सबको सीधा यहाँ ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा के सेट पर।
0: रक्षित और अपराजिता का कुछ कुछ होता है।
7: हो मेरा
8: हलचल हुई, जरा शोर हुआ, दिल चोर हुआ।
0: अपराजिता को हर जगह आए रक्षित नजर।

स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में अपराजिता को हो गया है रक्षित से प्यार, और ये बात उसे खुद भी समझ नहीं आ रही है क्योंकि हर जगह बस उसे रक्षित ही दिख रहा है, चाहे फिर वो ऑटो ड्राइवर हो या हो सब्जी बेचने वाला या फिर वॉचमैन, हर किसी में उसे बस रक्षित ही दिख रहा है। ये प्यार नहीं तो और क्या है।

0: 왜?
1: 응? 얘.
2: देखो बिटिया ताजा है.
0: नहीं जी.
3: तुझे पता क्या हुआ? मैं और अविनाश ना आइसक्रीम खाने गए थे
0: और माँ को लगा हम भाग के शादी करने गए. घर आई ना तो एकदम आंखें बड़ी बड़ी गुस्से में लाल खड़ी थी. मैंने तो बोल दिया कि यार मुझे ऐसी वैसी शादी नहीं चाहिए, हल्दी मेहंदी सब. क्या कहाँ खोई हुई है?
3: कहीं नहीं, यही तो. क्या क्या बोल रही थी तू?
0: चल झूठी.
3: रक्षित के बारे में सोच रही थी ना?
0: क्या मैं क्यों सोचूंगी उनके बारे में? मैं नहीं सोचती कुछ ऐसा भी. तेरा दिमाग खराब हो गया है. मैं कुछ नहीं सोच रही थी. मैं एक्चुअली थक गई हूँ आज.
3: मैं समझती हूँ आपको, थकेगी तो सही ना. रात में तुमने कितनी कसरत की है, पाइप चढ़ी, खिड़की कूदी, मेहनत लगती है ना.
0: माँ के पेट पे कोई बात ही नहीं पचती. होने वाली बहू को सब बता दे.
3: होने वाली सास ने नहीं, होने वाले पति ने बताया.
0: अरे वो अंकल आंटी बात कर रहे थे तो अविनाश ने सुन लिया और आके मुझे सब बता दिया. अबू तो ये क्या कर रहे थे?
3: पता नहीं रश्मि क्या हो गया, मुझे दिमाग खराब हो गया मेरा. मैं सुबह जाके मिल सकती थी लेकिन नहीं, मुझे तो रातों रात जाके बात करनी थी.
0: पता है वो रक्षित सर भी शॉक्ड हो गए थे. आज जाके इनसे सॉरी कह दूंगी. हाँ सॉरी तो बनता है. तो जाके ना सॉरी बोल देना और आई लव यू भी बोल देना. एक ही बार में सारा काम खत्म.
3: क्या क्या बोल रही तू?
0: अरे मैं तो वो बोल रही हूँ जो तेरे दिल में.
3: नहीं मेरे दिल में
0: मैं वो अपराजिता शर्मा दो चोटी बनाकर घूमती थी ना, तब से जानती हूँ तुझे.
3: हाँ तो
0: तेरे दिल में क्या है क्या नहीं सब पता है मुझे. रक्षित के प्यार में ना तेरा दिमाग खराब हो गया. अब वो दस्तक नहीं दे रहे तेरे दिल में, अब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ रहे हैं और तू कहीं नहीं छुप सकती, खुद के अंदर भी नहीं.
3: क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया. तू ये भुट्टा खत्म करना, मेरे पास वक्त नहीं है ये सब बकवास सुनने का. मैं ऑफिस जा रही हूँ.
0: ओ अप्पू सुन, भैया ये यहाँ रख रही हूँ, आऊंगी, खाना मत. अप्पू सुन,
3: भारद्वाज चले गए.
4: ये तो ये रिंकू के कानों ने परेशान कर रखा. भैया ये गाना बदलिए प्लीज.
5: गाने पसंद नहीं है आपको?

0: क्या मैडम चले?
1: चली चली, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया।
2: गुड मॉर्निंग
1: अपू।

0: दिमाग ही खराब हो गया, हर किसी में रक्षित सर नजर आवे।
1: क्या हुआ मैम, अंदर जाइए।
0: आप इधर मत देखिए, उधर देखिए, उधर देखिए।

0: नहीं है, सपना है फिर सर। इस बार उनके चक्कर में फंसूंगी नहीं, देखूंगी नहीं उस तरफ, अपने काम से काम होती।
1: भाई देखिए कैसे अपराजिता रक्षित के प्यार में खो गई है। इसके बाद अब शुरू होने वाला है ये झुमका रोमांस भी, तो क्या जल्द होगा इजहार? भाई यही तो देखना है, क्योंकि कहानी में आएगा अब लव स्टोरी वाला ट्विस्ट।

0: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
1: कभी कभी एक नया हेयर स्टाइल लोगों को चौंका देता है, तो कभी कभी एक नया लुक, कभी कभी तो नेल आर्ट भी। तो चलिए लेकर चलते हैं अब आपको एक ऐसे ही सेगमेंट की ओर, जिसमें से कुछ खबरें तो लेकर आएंगी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट, लेकिन हो सकता है कुछ खबरें आपको चौंका दे। जी हाँ, आप तो समझ ही गए होंगे मेरा इशारा, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। एकता कपूर लेकर आ रही है नया शो, और खबरों की माने तो इस शो में बन सकती है गौरव खन्ना और श्रद्धा आर्या की जोड़ी, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। के सीरियल रिमझिम के समीर बन गए हैं जोगी, देख लीजिए इनका बाबा वाला अवतार। सामने आई है ये तस्वीरें जहां समीर बन गए हैं बहरूपिया।

खान और नयनतारा की बनने वाली है जोड़ी। ये दोनों नजर आएंगे इनकी आने वाली नई फिल्म SVC 63 में और इसकी कास्ट को ज्वाइन किया है स्पेशल ऑप्स 2 एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम ने।

0: नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के नए प्रोमो पर, जहां पर गोकुल धाम फैमिली एकजुट होकर माधवी को बेकसूर साबित करेगी।
1: बनाना शुरू किया तो उनके दोनों हाथों में तीन तीन चूड़ियां हैं। जब वो मसाला मिक्स कर रही है तभी भी तीन तीन चूड़ियां हैं।
2: पैकिंग करते हुए भी तीन तीन चूड़ियां हैं हाथ में।
3: माधवी भाभी, और एक बात, आपकी टूटी हुई चूड़ी हमें सोसाइटी से मिली है, पूरी की पूरी टूटी चूड़ी।
4: सर, हो सकता है आज इन्होंने जो अचार बनाया हो उसमें कांच का टुकड़ा नहीं गिरा हो, जो पहले अचार बनाया हो उसमें गिरा हो।
5: हाँ, हो सकता है।
0: इसी के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित मोदी और टीम को ऑनर किया गया है फेडरेशन ऑफ इंडिया एसोसिएशन ने, जहां इंडिया परेड के लिए वो जाएंगे न्यूयॉर्क।
6: FIA, फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन, NYNJCTNE ने हमको इंडिया परेड के लिए न्यूयॉर्क आने का आमंत्रण दिया है। इंडिया परेड जो FIA हर वर्ष आयोजित करता है, ये 44th इंडिया परेड है। मैं आ रहा हूँ मेरे साथ आपके दिल में छाए हुए जेठालाल, आत्माराम तुकाराम भिड़े, टप्पू हमारे सोड़ी और भी कई कलाकारों के साथ हम आ रहे हैं इंडिया डे परेड। तो आप भी आइए, हम सब साथ मिलकर हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय विरासत, हमारी विविधता को अपनाए और हमारी सद्भावना का संदेश को आगे बढ़ाए।
0: से तुम तक सीजल के पूरे हो चुके हैं 400 एपिसोड्स, और ऐसे में देखिए कैसे अनु और आर्या केक काटते नजर आए।

बात करते हैं बिग बॉस सीजन 20 की। खबरों की माने तो इस सीजन में बतौर कंटेस्टेंट घर के अंदर नजर आ सकते हैं एक्टर रजत बेदी, लेकिन अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। सीरियल मन सुंदर की कास्ट तो चेंज हो चुकी है, लेकिन अब भी सामने आ रहे हैं रूही और नाहर के ये रोमांटिक पल। पर ये है अनसीन रोमांटिक सीन, जो फिल्माया तो गया था लेकिन ऑन एयर नहीं हुआ था। देख लीजिए, ये सीन शेयर किया है नैंसी रॉय ने।

0: खतरों के खिलाड़ी का नया प्रोमो देख लीजिए, जहां पर अविनाश बन गए हैं गौरव खन्ना और साथ ही सेट पर हो रही है मस्ती अनलिमिटेड।
1: हम कर लेंगे, हम वीक नहीं है। कैमरा कट हुआ क्या? नल्ली टीम दे रखी है। और ही? कुछ भी पूछ लो, कौन वीक है, आपको क्या लगता है, किसको उधर उधर?
2: नहीं रोहित जी, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सब बहुत अच्छा कर रहा है
3: ये। आज अविनाश बड़ा हीरो के जैसा बात कर रहे हैं, पर यहाँ आने से उसको एक भी मौका नहीं मिला कुछ दिखाने के लिए। हर चीज आ रहा है,
1: सबसे ज्यादा मैं दिखा रहा है, सबसे ज्यादा मैं दिखा रहा है इधर।
0: रानी मुखर्जी को मिला है अवार्ड और उन्हें किया गया ऑनर IFFM में। ऐसे में रानी ने शेयर की है ये तस्वीर। कंगना रनौत मना रही है तीज का त्योहार। सामने आई है ये तस्वीरें जहां वो CM रेखा गुप्ता के घर पर तीज का त्योहार मनाती नजर आई सभी लेडीज संग।

आधी शाम हुई आवारापन 2 की स्क्रीनिंग, जिसमें नजर आए कई सारे सितारे जैसे कि इमरान हाशमी, वामिका गब्बी, पलक मुछाल और मिथुन, शबाना आजमी, दिशा पटानी और कई और सितारे जो इस स्क्रीनिंग में हुए शामिल।

0: और हर्ष के द इंडियन गेम शो का ये नया प्रोमो देख लीजिए, जहाँ मस्ती अनलिमिटेड है।
1: ये क्यों है दोनों?
2: मेरे को फोन आया सोनी टीवी इंडियन, मैंने कहा हाँ, मैं सोचा इंडियन आइडल।
3: अरे नहीं नहीं भाई, इंडियन आइडल में आपका क्या काम, वहाँ तो सिंगर लोग जाते हैं।
0: जल्द आने वाली है फिल्म बंटवारा 1947। ऐसे में बीती शाम हुआ इसका स्पेशल प्रीव्यू, जिसमें नजर आए अर्जुन बिजलानी अपनी वाइफ संग। इसके अलावा चेतना पांडे, सारा अरफीन खान और कई और सितारे यहां पहुंचे।

दोराब जी ने होस्ट की नवरोज फीस्ट। ऐसे में इस खास शाम में शामिल हुए डोनल बिष्ट, संजय कगनानी, मिताली नाग, मनीषा खटवानी, खुद वहाबिज और कई और सितारे।

0: तो दोस्तों यही था आज का नेल पेंट स्पेशल। कैसी लगी आपको हमारी ये ब्यूटी टिप्स? आप इन्हें जरूर आजमाइएगा और हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चाहे हो सिंपल नेल्स, ग्लैमरस एलैबोरेट नेल आर्ट, जेल नेल्स या फिर कुछ और, देखिए हर लुक की ना अपनी ही खूबसूरती है। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिए, खूबसूरत नेल से ज्यादा जरूरी है हेल्दी नेल्स, खूबसूरत लुक से ज्यादा जरूरी है आपका कॉन्फिडेंस। बट अब इसी बात पर लेते हैं आपसे विदा। मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ग्लैमरस, बाय बाय।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
3: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जन सैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक भक्तों की वृद्धि। दिल्ली NCR में हो रही झमाझम बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से बातचीत की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, विजेताओं को बधाई दी।

0: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे और झंडों से भरा हुआ नजर आया दिल्ली का कर्तव्य पथ। नई दिल्ली जोन की निकली अनोखी पीसीआर वैन और बाइक तिरंगा रैली। मुंगेर में विशाल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी भी हुए रैली में शामिल। भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, लहराते हुए तिरंगे हाथ में लिए सड़कों पर निकले लोग। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और एसडीआरएफ की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देशभक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आई पूरी डल झील। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों और युवाओं और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। रायपुर में तिरंगा यात्रा दौड़ का आयोजन किया गया। देशभक्ति के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शानदार आयोजन। देशभक्ति के रंग में रंगा दिखा प्रयागराज, निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल हुए। भोपाल में सुंदर तिरंगा बोट रैली का आयोजन किया गया। बोट क्लब में हुए कार्यक्रम में तिरंगे से सजी हजारों बोट्स। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल। रामबन में सीआरपीएफ 84 बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया। छात्रों के साथ निकली तिरंगा रैली। कुलगाम में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। रामबन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जिला पुलिस लाइंस में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड आयोजित की गई। देशभक्ति के रंग में रंगा इलाका। जोशीले अंदाज में कदम ताल करते हुए नजर आए पुलिस के जवान, स्कूली छात्रों और बैंड में भी हिस्सा लिया।
1: पीएम श्री गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल।
0: लद्दाख कुजांस्कर क्षेत्र में देखी देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की मिसाल। भारतीय सेना ने फहराया 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। देश के कोने कोने के लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना था इस गरिमामय समारोह का उद्देश्य। बड़ी संख्या में छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के कारगिल में हुई 80वीं स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित, दिखा देशभक्ति के जोश का नजारा। मार्च पास में स्कूली छात्रों की टुकड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और लद्दाख पुलिस बैंड ने हिस्सा लिया, फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। पूरे कश्मीर में आजादी के जश्न का जोशीला माहौल, कश्मीरी महिलाएं बना रही मेड इन कश्मीर तिरंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में फहराए जाएंगे झंडे, सरकारी इमारतों की भी शोभा बढ़ाएंगे ध्वज। रामबन में जश्न आजादी को समर्पित लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। देशभक्ति के तरानों पर झूमे लोग।
2: मेरे देश से बढ़कर नहीं कोई अरमान।
0: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभेद्य और कड़े इंतजाम। लाल किले के आसपास मल्टी लेयर्ड सुरक्षा घेरा। ड्रोन से की जा रही है आसमान की निगरानी, बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग। शहर भर में भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक। प्रशासन की लोगों से सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर एजेंसियां। स्वतंत्रता दिवस और आगामी अमरनाथ जी यात्रा के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। आजादी के जश्न के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। 15 अगस्त से पहले जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट। बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। जवानों ने शुरू की विशेष सुरक्षा एक्सरसाइज। पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग जारी। रात में भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। एयरपोर्ट पर हाई लेवल एंटी टेरर मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सीआईएसएफ, बीएसएफ और पुलिस ने किया संयुक्त अभ्यास। आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति बनाई गई। क्विक रिस्पांस टीम ने कार्रवाई की प्रैक्टिस की। बम निरोधक दस्ते ने भी अभ्यास में हिस्सा लिया। 15 अगस्त से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त। एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के 6 चरण। पहले चरण सीआईएसएफ की निगरानी में, बीडीडीएस डॉग स्क्वाड से भी निगरानी। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की फाइनल रिहर्सल। बीएसएफ जवानों ने किया शानदार ड्रिल का प्रदर्शन। पंद्रह अगस्त से पहले बॉर्डर पर देशभक्ति का माहौल। जवानों ने पूरे जोश से किया कदम ताल। झंडा उतारने की प्रक्रिया का अभ्यास किया। बीटिंग रिट्रीट की तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। जवानों के जोश ने खींचा लोगों का ध्यान। अनुशासन और तालमेल का दिखा शानदार नजारा।

जवानों की शानदार प्रस्तुति ने मोह सभी का मन, बॉर्डर पर गूंजा देशभक्ति का उत्साह, मुख्य समारोह से पहले हर तैयारी परखी गई। कदमों की ताल से गूंजा अटारी बॉर्डर, बीएसएफ ने परेड में बढ़ाया देशभक्ति का जोश, स्वतंत्रता दिवस के जश्न को लेकर तैयारियां पूरी। भारतीय वायुसेना जल्द करेगी अपने परिवहन बेड़े में बड़ा बदलाव, पुराने परिवहन बेड़े को 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने की योजना। नांदेड़ में गुरुद्वारा पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, अखंड पाठ के साथ टेका माथा, साथ ही लंगर सेवा की। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई सुबह की मंगला आरती, महाप्रभु के दर्शन करने के लिए उमड़े भक्त।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा। ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे। ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने, इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है,

हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है, क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फार्मूलेशन में मिलाया है, जो आपको आपकी समस्या के हिसाब से बनाकर दी जाती है। इसलिए ये बिल्कुल सीधा असर करती है। मैंने ये नुस्खे पुरुष हो चाहे महिला हो, उम्र चाहे 20 साल हो चाहे फिर 70-80 साल हो, चलने में दिक्कत हो, सीढ़ियां चलने में दर्द होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। ये सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर ये सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्थर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्थर। ये गंधपुरा पत्थर में 85-99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में ये है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में
मसल्स और हड्डियों के समर्थन के

0: लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। यह है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके आरए फैक्टर को कंट्रोल करता है और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है। यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
11: तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
13: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जनसैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किले पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का उद्घाटन किया। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक की वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों की आज छुट्टी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के सीडब्ल्यूजी 2026 पदक विजेताओं से खास बातचीत की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, विजेताओं को बधाई दी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
14: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा। कल है हरियाली तीज और मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन शीघ्र विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए सबसे उत्तम है, क्योंकि इस दिन महादेव के साथ माँ पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। कहते हैं सावन में हरियाली तीज का दिन ही वो दिन था जब माता पार्वती की श्रद्धा को देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकारा था। कहते हैं कि जो भी पूरी श्रद्धा के साथ गौरी शंकर की पूजा उपासना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए जानते हैं हरियाली तीज का महत्व और इसका पूजा का विधान क्या है।

0: जब सावन में होता है प्रकृति का श्रृंगार और बागों में पड़ते हैं झूले, स्त्रियां 16 श्रृंगार करके मंगल गीत गाती हैं और भगवान गौरी शंकर से जीवन साथी की दीर्घायु की कामना करती हैं। अद्भुत है सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। मान्यता है कि ये वो पावन तिथि है जब माता पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई थी और उन्होंने जीवन साथी के रूप में महादेव को पाया था। ये परम प्रतापी व्रत है हरियाली तीज का, जो महिलाओं को माता पार्वती के धैर्य, निष्ठा और समर्पण का संदेश देता है। माना जाता है कि यही वो अमोघ व्रत है जब सौभाग्यवती स्त्रियों को अखंड सुहाग का वरदान मिल सकता है। आने वाली अखंड सुहाग की वो अलौकिक तिथि जब गौरी शंकर संग बरसेगी अमासुत की कृपा। तो आप विधि विधान से करें शिव परिवार की उपासना, अखंड सुहाग के साथ पूर्ण होगी आपकी सभी मनोकामना।
1: श्रावण मास की द्वितीया तिथि को माताएं बहनें बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ एक व्रत करती हैं, जिसका नाम है हरियाली तीज। इसे श्रावणी तीज भी कहा जाता है। यह व्रत सौभाग्य की रक्षा के लिए तथा जीवन साथी के लंबी आयु के लिए, जीवन साथी के यश कीर्ति में वृद्धि के लिए वह बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है।
0: एक ऐसी अद्भुत तिथि जब सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके भक्ति भाव से ईश्वर की वंदना करती हैं, खुशहाली के साथ ही आनंद का अनुभव करती हैं, साथ ही दिखाती हैं सर्वस्व समर्पण का भाव, जिसमें छिपी है अपने प्रियतम की दीर्घायु की कामना। वैसे तो सावन का हर दिन पावन है, मन भावन है, पूरे महीने बरसती है शिव पार्वती की विशेष कृपा, लेकिन इस माह में आने वाली हरियाली तीज दांपत्य जीवन में प्रेम रस की फुहार बरसाती है। साथ ही ये तिथि अविवाहित कन्याओं के लिए भी फलकारी मानी गई है। मान्यता है कि ये दिन उन कन्याओं के लिए बेहद खास है जिनके विवाह में बाधा आ रही है या फिर जिन्हें मनचाहा वर नहीं मिल पा रहा। तो आज हम आपको बताएंगे हरियाली तीज के वो खास उपाय जिससे आपको मिलेगा मनचाहा वरदान। लेकिन पहले आपको बता देते हैं हरियाली तीज की महिमा। सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है तीज का त्योहार। सौभाग्य और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है तीज का त्योहार। सावन में चारों तरफ हरियाली होती है, इसको हरियाली तीज कहते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। इस दिन वृक्ष, नदियों और जल के देवता वरुण की भी उपासना की जाती है। मुख्य रूप से ये त्योहार अच्छे तथा मनचाहे वर की प्राप्ति का है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए इस दिन व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। विवाहित महिलाओं को इस दिन भगवान शिव और पार्वती की उपासना संयुक्त रूप से करनी चाहिए।
1: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कथा के अनुसार यदि हम बात करें तो माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक कठोर तपस्या किया था। माता पार्वती के तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान शिव उन्हें पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाते हैं। इस व्रत को सुहागन महिलाएं भी करती हैं और कुंवारी कन्याएं भी करती हैं।
0: चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाली तीज की तिथि कितने बजे से लग रही है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त को शाम 6:46 से शुरू होगी, जबकि तृतीया तिथि का समापन 15 अगस्त की शाम 5:28 पर होगा। उदया तिथि को देखते हुए 15 अगस्त को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाएगा। पौराणिक मान्यता है कि सावन के महीने में ही शिव ने अपनी संगिनी पार्वती का हाथ थामा था और मां पार्वती ने कठोर तपस्या से शिव का दिल जीता था। इसकी खुशी में समस्त देवियों और सखियों ने झूला झूल कर इसे उत्सव की तरह मनाया था। भगवान शिव और पार्वती के इस मिलन को आज भी लोग हर्ष और उल्लास से मनाते हैं और एक दूसरे को खुशी से झूला झुलाते हैं।
1: माता पार्वती ने जंगल में जाकर रेत से शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की खूब आराधना की और उन्हें वरदान स्वरूप स्वयं को पति के रूप में प्रदान करते हैं। इसी कारण से श्रावण शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को माताएं बहनें बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए अटूट प्रेम और समर्पण की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं।
0: एक मान्यता और है जो कहती है कि सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी वृंदावन के कदंब के वृक्षों पर झूले पर झूला झूलते थे, इसलिए हरियाली तीज पर झूला झूलना राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का स्मरण कराता है। झूला झूलने और झुलाने की परंपरा अपने जीवन में उसी आनंद व प्रेम को आमंत्रित करने का प्रतीक है। इसीलिए माना जाता है कि इस तिथि पर यदि पति पत्नी एक दूसरे को झूला झुलाते हैं, जीवन में आनंद बना रहता है। इसीलिए इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माँ पार्वती से पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती हैं। कहते हैं जिसे भगवान शिव और माँ पार्वती को मना लिया उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है, लेकिन शिव संग माँ पार्वती की कृपा पाने के लिए जरूरी है कि उनकी पूजा उपासना भी विधि विधान और नियमों के साथ की जाए। आइए अब आपको बताते हैं कि कल किस तरह पूजा करें जिससे आप पर भी बरसे भोलेनाथ और पार्वती की कृपा और आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाए।
1: सुबह सूर्योदय से पूर्व जग जाएं, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, जो भी वस्तुएं उपलब्ध हों षोडशोपचार के लिए उसको लेकर के पूजा स्थल में बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करें, उसके बाद अपने इष्ट देव की आराधना करें, उसके बाद भगवान शिव का ध्यान करें, माता पार्वती का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, संकल्प के बाद षोडशोपचार पूजन करिए। जो भी आपके पास भोग है, प्रसाद है, मिष्ठान है, फल है, भगवान शिव माता पार्वती को अर्पित करिए। दिन भर व्रत रहिए। इस दिन शाम के समय शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करने से घर में सभी प्रकार की नकारात्मकताएं समाप्त होती हैं।
0: दिन भर उपवास रखना चाहिए तथा श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी जरूर लगाएं और चूड़ियां जरूर पहनें। शाम को शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करें। मंदिर में घी का बड़ा दीपक जलाएं, माँ पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद किसी सुहागिन स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान करें और उनका आशीर्वाद लें। इस दिन काले और सफेद रंग का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। हरे और लाल रंग का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। हरियाली तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत ही मंगलकारी होता है, तो आप भी हरियाली तीज पर भर लीजिए अपने जीवन में खुशियों के ढेर सारे रंग। आगे हम आपको बताएंगे विवाह का हरियाली तीज से क्या संबंध है, साथ ही जानेंगे मनोकामना पूर्ति के वो उपाय जो शिव पार्वती की संयुक्त उपासना से ही संभव है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। चाहे शीघ्र विवाह की कामना हो या फिर आप चाहते हो सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान, हरियाली तीज पर पूजा उपासना से गौरी शंकर करते हैं कल्याण। कुंवारी कन्याओं के लिए तो ये व्रत वरदान के समान है। मन चाहे वर की कामना से लेकर खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद हरियाली तीज के दिन आप आसानी से पा सकते हैं पूजा करके। तो चलिए अब आपको बताते हैं हरियाली तीज का महत्व और अलग अलग समस्याओं से निजात पाने के महा उपाय क्या है।

0: हरियाली तीज में आस्था के साथ प्रकृति और रिश्तों की खूबसूरती भी दिखाई देती है। सावन की हरियाली, झूले, मेहंदी, लोकगीत और पारंपरिक पकवान इस पर्व को खास बनाते हैं। माता पार्वती का महादेव के प्रति समर्पण का कारण ही हरियाली तीज को पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम और समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। कुंवारी कन्याएं भी अच्छे और योग्य जीवन साथी की कामना से इस व्रत को करती हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ियां और हरे रंग के श्रृंगार का इस्तेमाल करती हैं। हरा रंग सावन की हरियाली और प्रकृति की ताजगी का प्रतीक माना जाता है। परम कल्याणकारी और पुण्यदायी है सावन। सावन के महीने में आप विधि विधान से कर लीजिए भगवान गौरी शंकर को प्रसन्न, क्योंकि शिव पार्वती की अनुकंपा आप पर हो गई तो समझ लीजिए बन गई आपकी बिगड़ी, क्योंकि महादेव की शक्ति का कोई पैमाना नहीं और देवादि देव की शक्ति है माँ गौरी।
1: इस दिन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग बना करके, रेत का शिवलिंग बना करके, दुग्ध से, गंगा जल से, शहद से, पंचामृत से, जिससे भी आप सक्षम हो, गन्ने के रस से, आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं प्रदोष काल में। ऐसा माना जाता है कि इस दिन रुद्राभिषेक करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाएगी।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि हरियाली तीज पर किए गए उपाय से शादी विवाह से जुड़ी हर बाधा दूर हो सकती है। मान्यता है कि हरियाली तीज कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान है। इस दिन व्रत और उपवास रखने से विवाह से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो सकता है। वास्तव में तीज का संबंध शीघ्र विवाह से ही है। अविवाहित कन्याओं को इस दिन उपवास रखकर शिव गौरी की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। कुंडली में कितने भी बाधक रोग क्यों ना हो, इस दिन की पूजा से दूर हो सकते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने दो बार शिव को पाने की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती रूप में और फिर उमा रूप में। बहुत ही शुभ फलदायी है हरियाली तीज का दिन, इसलिए हम आपको एक दिन पहले ही हरियाली तीज के बारे में बता रहे हैं ताकि आप पूजा की सारी तैयारियां कर लें। ज्योतिष मान्यता है कि ये तिथि पति और पत्नी के बीच प्रेम की लौ जलाए रखने का काम करती है। फिर भी किसी कारणवश पति पत्नी के बीच तालमेल की समस्या हो तो ये खास उपाय उनके लिए है, गौर से देखिए।
1: विवाह और दाम्पत्य जीवन की में कोई बाधा आ रही है तो विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करें, माता पार्वती का पूजन करें। दोनों के मंत्र, ऐसे मंत्र जिसमें दोनों के नाम समाहित है, ओम शाम्ब सदाशिवाय नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। और इसमें जो भी पूजन करें, साथ में अगर पति पत्नी एक साथ बैठकर के पूजन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जो तनाव है किसी तरीके का, वह समाप्त हो जाएगा, जीवन में मधुरता आ जाएगी।
0: शिव जी को पीला वस्त्र और माँ पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें। इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगाकर पास में रख लें। माना जाता है कि शिव पार्वती के प्रताप से इस दिन वैवाहिक जीवन की तमाम बाधाओं का नाश हो जाता है। अगर पति पत्नी को एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस दिन किया जाने वाला एक खास उपाय आपकी ये समस्या भी दूर कर सकता है, गौर से देखिए ये महा उपाय।
1: इस दिन अभिष्ट की सिद्धि के लिए माता पार्वती को पूजन में 16 श्रृंगार की वस्तुएं, हरी चूड़ियां, मेहंदी, महावर, बिंदी इत्यादि जो भी 16 श्रृंगार की वस्तुएं हैं वह अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को भी वस्त्र अर्पित करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य में वृद्धि होती है, वैवाहिक सुख में वृद्धि होती है।
0: पति पत्नी अगर अलग रह रहे हैं तो भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर, गुलाल अर्पित करें। माँ गौरी को चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ साथ रहने की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ सिंदूर नियमित प्रयोग करें। जीवन की हर विपदा, हर बाधा का समाधान महादेव के नाम से दूर हो सकता है। और जब शिव के साथ शक्ति का आशीर्वाद मिल जाए तो फिर जीवन में हरियाली ही हरियाली है। इसलिए तैयारियां कर लीजिए क्योंकि कल है हरियाली तीज का महापर्व। और हाँ, हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपको बताएंगे एक ऐसा महा उपाय जिससे पति पत्नी को मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान।
2: हरियाली तीज का त्योहार न सिर्फ माँ पार्वती और भोलेनाथ की कृपा दिलवाता है, बल्कि अगर सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो इस दिन कीजिए एक महा उपाय। गौरी शंकर की कृपा से आपको शीघ्र मिलेगा उत्तम सेहत का वरदान।
0: वो बदल सकते हैं विधि का विधान, वो कर सकते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान। संकट में वो बन जाते हैं भक्तों की ढाल, भगवान गौरी शंकर की उपासना से दूर होता है काल। एक ऐसी अद्भुत तिथि जब दाम्पत्य जीवन के साथ ही विवाह में आने वाली सारी बाधाओं का नाश हो जाता है।
1: श्रावण मास में जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तो प्रकृति हमें बहुत कुछ प्रदान करती है। इस दिन पति पत्नी जब पूजन कर लें, दिन में संकल्प लेकर तो पूजन कर लें, उसके बाद पीपल, पाकड़, बरगद, गुलर, आम, नीम, इनमें से कोई भी वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। तो इससे आपसे प्रेम बढ़ेगा और ग्रह का नकारात्मक प्रभाव भी दूर होगा, सकारात्मकता में वृद्धि।
0: हरियाली तीज का दिन भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की कृपा पाने का भी शुभ दिन होता है, इसलिए इस दिन किए जाने वाले उपाय अचूक माने जाते हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत और पूजन विवाह संबंधी सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। तो अगर पति या पत्नी में किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो तो कीजिएगा एक महा उपाय, फिर देखिए कैसे मिलता है आपको उत्तम सेहत का वरदान।
1: आप रुद्राभिषेक कर लेते हैं, चाहे वो गो दुग्ध धारिया हो, गंगा जल हो, गन्ने का रस हो, कूस का रस हो, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, आयु में वृद्धि के लिए, चतुर्मुखी विकास के लिए, संतान से जुड़ी समस्या को दूर करने के लिए, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति के लिए शुद्ध गाय के दूध से भी अभिषेक किया जा सकता है।
0: शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें, जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ऐसे अचूक उपाय हैं जो बेहद ही कारगर हैं। सावन के इस पावन माह में आप भी इन उपायों को पूरे विधि विधान से कीजिए, जिससे आपको मिल सके शिव संग शक्ति का आशीर्वाद। तो बस तैयारियां कर लीजिए क्योंकि कल ही है हरियाली तीज का शुभ दिन, और पा लीजिए त्रिलोकीनाथ के साथ माँ पार्वती से खुशहाली और समृद्धि का वरदान।
2: और इसी के साथ प्रार्थना हूँ स्वीकार में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अमरावती में एक अत्याधुनिक बस में ही मेडिकल छात्रों को ट्रेनिंग दी जा रही है और इस बस में छात्रों को सर्जरी के गुर सिखाए जा रहे हैं। बस में ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं। इससे असल सर्जरी से पहले मेडिकल छात्रों को सर्जरी के अभ्यास का मौका मिल रहा है।
2: भविष्य के डॉक्टर यहां सर्जरी के गुर सीख रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में हर तरह के ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है और ये सब कुछ हो रहा है एक हाईटेक बस में। अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑन व्हीकल्स नाम की ये बस डॉक्टरों की ट्रेनिंग में मील का पत्थर साबित हो रही है।
3: मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो यात्रियों की बस नहीं है, लेकिन ये बस इतनी खास है कि इस बस को प्रशिक्षणार्थी बस कहा जाता है। और इस बस के भीतर क्या होता है, क्योंकि हम फिलहाल है अमरावती के PDMC कॉलेज में, जो पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है। इस मेडिकल कॉलेज के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उन छात्रों को इस बस के भीतर इन व्हील्स कहा जाता है, तो यहाँ सभी छात्रों को जो है वो टीचर्स कैसे लगाने हैं उसके गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं। क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सर्जरी में टीचर्स किस तरह से लगाया जाता है, सर्जरी किस तरह की होती है, वो सभी गुर जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है ये बस के भीतर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं।
2: बस के अंदर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं। डॉक्टर और प्रोफेसर यहां छात्रों को ऑपरेशन की बारीकियां समझाते हैं। बस में ही छात्रों को ऑपरेशन थिएटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल होता है। सर्जरी की तकनीक को समझने के साथ यहां सही तरीके से ऑपरेशन करने का अभ्यास करने का मौका भी मिल रहा है।
4: इसमें ये स्टूडेंट को जैसे पेट की हथेड़ियां फट जाती है या फिर उनको काटने की जरूरत पड़ती है, तो उनको काटने के बाद कैसे सीना है प्रॉपरली वो सिखाया जा रहा है। इस मॉडल के ऊपर अलग अलग तरीके के स्टिचेस है जो हम सर्जरी में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत को कैसे सिया जाता है वो ये स्टूडेंट सीख रहे हैं।
3: तो स्टूडेंट से बात करेंगे, कितना आसानी होती है इस प्रैक्टिकल को देख कर, इसका कितना फायदा होगा भविष्य में आपको?
5: काफी ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएंगी रियल पेशेंट पे करने से पहले, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो अभी हम सीख सकते हैं पहले।
2: इस लैब में छात्र चीरा लगाने से लेकर टांके लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन के साथ साथ लैब्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के जरिए सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी छात्रों को इस बस में दी जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग से इन मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसी मरीज की सर्जरी से पहले डॉक्टरों को व्यावहारिक अनुभव भी मिल जा रहा है। अमरावती से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं। तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
9: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
6: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जन सैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक भक्तों की वृद्धि। दिल्ली NCR में हो रही झमाझम बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से बातचीत की, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, विजेताओं को बधाई दी।
12: $100 आजादी के मनाएंगे, जब ये $4 trillion की इकॉनमी $30 trillion की इकॉनमी कम से कम बने।

0: 80 बरस का भारत 2047 में कैसा होगा? सबसे पहले तो आप सभी को आजादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इसी को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है और उसमें जिम्मेदारियां हर किसी की हैं, हर क्षेत्र की अपनी अपनी जिम्मेदारी। आज इसी को लेकर चर्चा होगी, बात करेंगे आजादी दिवस की। देश के कई हिस्सों में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस बीच निगाहें 2047 की तरफ हैं, यानी कि 20 साल बाद जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब हमारा हिंदुस्तान कैसा होगा? जब 100 बरस का होगा सपनों का भारत, सड़क से एआई तक कहां पहुंचेगा हिंदुस्तान? क्या 30 ट्रिलियन हो जाएगी अर्थव्यवस्था? आखिर किसानों को उम्मीदें क्या हैं? आज का जेन जी तब किस रोल में होगा? तो इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अलग अलग क्षेत्रों से देश के बड़े एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। तो देश को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली और अब हमारा हिंदुस्तान 80 बरस का हो गया है। देश आजादी का उत्सव मना रहा है और देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस पर तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। इस बार की थीम है विकसित भारत एट 2047 और जिसके लिए युवा शक्ति ये थीम रखी गई है। इस समारोह में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने की झलक है, साथ ही उपलब्धियों पर युवाओं का सम्मान भी होगा। इस बीच देश की निगाहें मिशन 2047 पर हैं। दरअसल 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह होगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार का लक्ष्य और सपना 2047 में 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का है। वहीं प्रति व्यक्ति आय में भारी उछाल की उम्मीदें हैं। टेक्नोलॉजी बदलाव, ग्रीन एनर्जी पर भी 2047 तक काफी जोर होगा। सेमीकंडक्टर, एआई हब बन रहे हैं। वहीं उम्मीदें ये भी हैं कि जल्दी ही इसरो का अपना स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन भी हो, गांव-गांव में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचे, रक्षा आयात शून्य करने की कोशिश हो रही है और भारत को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने की भी प्रयास लगातार चल रहे हैं। साथ ही साथ गरीबी पर लगातार प्रहार हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री कई बार मिशन 2047 का संकल्प दोहरा चुके हैं।
1: नए मौके बन रहे हैं, मेरे देश के युवाओं को अब धीरे धीरे चलने का इरादा नहीं। मेरा देश का नौजवान इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं करता। मेरा देश का नौजवान छलांग मारने के मूड में है, वो छलांग मारने के नई सिद्धियों को प्राप्त करने के मूड में है। मैं कहना चाहूंगा, भारत के लिए गोल्डन एरा है। वैश्विक परिस्थितियों के तुलना में भी देखें, ये गोल्डन एरा है, ये हमारा स्वर्णिम कालखंड है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये अवसर हमें जाने नहीं देना, ये मौका हमें जाने नहीं देना चाहिए और इसी मौके को पकड़ करके अपने सपने और संकल्पों को लेकर के चल पड़ेंगे तो हम देश की स्वर्णिम भारत की जो अपेक्षा और हमें विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।
0: मशहूर फाइनेंशियल कंपनी ऑनेस्ट एंड यंग की भारत पर एक रिपोर्ट ने भी काफी चर्चा बटोरी, जो कि मिशन 2047 को लेकर तैयार की गई है। इसके मुताबिक 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। 26 ट्रिलियन डॉलर यानी भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2300 करोड़ रुपए से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होने का अनुमान है। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 350 लाख करोड़ रुपए के करीब है। साथ ही भारत में प्रति व्यक्ति आय की अगर बात की जाए तो 2047 तक 13.5 लाख रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है, जबकि अभी भारत में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 2.25 लाख रुपए है। और इसके अलावा 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, यानी कि 2030 में अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका चीन के बाद भारत का नंबर हो सकता है। सरकार की कोशिश भी इस ओर है। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कई बार भारत की अर्थव्यवस्था के 30 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंचने का अनुमान और उम्मीद जता चुके हैं।
2: उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये 4 ट्रिलियन डॉलर की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: तो 2047 का विकसित भारत बनाने में जेन जी का बहुत अहम रोल होगा और उनके भी अपने विचार हैं, अपने सपने हैं। तो जयपुर में ऐसे ही कुछ युवाओं से मेरी सहयोगी रिदम ने बातचीत की है।
3: 2047 में मैं भारत को एक विकसित देश के रूप में देखना चाह रही हूँ, जहाँ पे भारत हर क्षेत्र में ग्रो कर रहा है, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में एक्सेट्रा, एंड हमारे सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिल रही है।
4: तो अभी आपको 2047 में एक ऐसा भारत देखना चाहती हूँ जहाँ पर हर एक यूथ में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल उनकी स्ट्रेंथ दिखाने का तरीका और रिसोर्सेस सब कुछ मिले।
5: मेरा विजन 2047 के भारत के लिए है कि जो एडुकेशन और टेक्नोलॉजी है वो भारत के मेन पिलर्स हो। हर सिटीजन को, लाइक हर स्टूडेंट को ये राइट होना चाहिए एडुकेशन का। कोई भी रूरल, चाहे वो किसी भी सिटी में हो, कोई भी रूरल एरियाज में हो, सब में। और इनोवेशन और AI के हम बढ़ते यूज़ को देख ही रहे हैं, तो उसे हम बता सकते हैं कि वो स्टडीज़ को कैसे और इफेक्टिव बना सकता है। बट ये भी होना चाहिए कि हम पूरी तरीके से AI पे डिपेंडेंट ना हो, बच्चों में क्रिएटिविटी स्किल्स ये सब कुछ आना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर माय इंडिया।
6: आई थिंक मैं कैंपेन करना चाहूँगी जिसमें मैं एक्चुअली एंशियंट टेक्स्ट का क्या मीनिंग था, क्या हमारी संस्कृति कैसे मॉडर्न थी। हमें लगता था कि वेस्टर्न मतलब मॉडर्न और इंडियन मतलब बैकवर्ड्स, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। तो कैसे इंडियन, एंशियंट इंडियन एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी और मॉडर्न साइंस थी, वो कैसे था, मैं वो सब लोगों के एड्रेस में लाना चाहूँगी।
7: मैं चाहती हूँ कि भारत बहुत ही डेवलप हो, जो कि अदर कंट्रीज बाकी अभी कर रही है। तो लाइक डेफिनेटली 25 ईयर्स पीछे भारत अभी, बट हम लोग सब मिलके और ऐसे मेंटर रहेंगे तो डेफिनेटली भारत बहुत ही आगे जाएगा। और जैसे चाइना हर चीज़ में एक्सपोर्ट करता है, जो भी छोटे मोटे प्रोडक्ट है वही से आपको दिखेंगे, तो ऐसा भारत उनसे भी ज़्यादा आगे जाके लाइक डेवलप करे अपने कंट्री को, लोग यहाँ के, ये मैं चाहती हूँ आगे के।
8: हम जब से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा उद्योग चमड़े का उद्योग था, जिसको व्यापार को आगे लाने के लिए मैंने अपने फैमिली बिजनेस को, मैं यहाँ कम से कम, मुझे आज मेरी उम्र हो गई है 53 साल से उस बिजनेस में हूँ। तो यहाँ पे तो हम कर ही रहे हैं लोकल, लेकिन लोकल में इतना क्वांटिटी जो बनना चाहिए, और मैं मैन्युफैक्चरिंग भी करता हूँ और ट्रेडिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे जो चाहिए वो यहाँ नहीं, वो मैं उस क्वांटिटी और उस क्वालिटी को, चप्पल के, सैंडल्स के और बेलीस को, मैं विश्व में जो भारत के जो लोगों के कदमों में रहती है, मैं उसे सुंदर बना के कि अब एक भारत में भारत का नाम हो, कि हम इस, जिसे कहते हैं हम पद में रहना, मोदी जी का जैसे सपना है कि आत्मनिर्भर बनो।
0: तो चले, किस तरह का भारत होना चाहिए, भारतवासियों की अलग अलग उम्मीदें हैं, जेंजी की अलग उम्मीदें हैं, महिलाओं की अलग उम्मीदें हैं, किसानों की अलग उम्मीदें हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, उसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, डॉक्टर SP शर्मा हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, एसोसिएशन एंड ऑथर ऑफ इंडिया एट 2047। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी भी हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रतीक भारद्वाज हैं, RJ हैं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, और प्रोफेसर धीरेज कुलश्रेष्ठ भी हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सबसे पहले तो आजादी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुरुआत डॉक्टर SP शर्मा आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि किताब भी है आपकी, इंडिया 2047। सर, आज हम जहां पर खड़े हैं, आज हम अपना 80वां आजादी दिवस मना रहे हैं, हमारे पास अभी 20 साल और हैं, कहां आज भारत खड़ा है? विकसित भारत का लक्ष्य 2047 का हमने रखा है, जब भारत 100 साल आजादी के हो जाएंगे, कितनी दूर हैं हम विकसित भारत के उस लक्ष्य से? सर ऑडियो म्यूट है, आप ऑडियो ऑन कर लीजिए।
9: यस
0: जी
9: जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसे कि आपने प्रश्न किया कि कैसा विकसित भारत होगा 2047 में, क्या संभावनाएं होंगी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे और कहां पर अभी हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अभी मात्र हमारे पास 20-21 साल ही हैं अपने विकसित भारत की जो हमारा सपना है उसको अचीव करने के लिए। और जैसे कि आपने जिक्र किया कि मेरी एक बुक है जो 2025 में लॉन्च हुई है, इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल, तो उसी में मैंने बहुत सारी ऐसी संभावनाएं ऐसी चर्चाएं की हैं जिसके ऊपर मैंने जो भी पॉलिसी एनवायरनमेंट रहा है पिछले 75-80 सालों में सबका वर्णन किया है, कैसे हम आगे बढ़े हैं, कैसे हमने रिफॉर्म्स की, कैसे हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी से लिबरलाइज्ड इकोनॉमी बने और कैसे हम उस लिबरलाइज्ड इकोनॉमी से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने, जो हम पहले बहुत ही स्लो पेस पे ग्रो कर रहे थे 1960s में, 70s में, 80s में, कैसे फिर हमने एक स्टेडी जो रुख था वो अख्तियार किया 1991 के रिफॉर्म्स के बाद, और कैसे फिर हमने 21st सेंचुरी में कैसे हमने ब्रेक थ्रू ली, जब हम 21वीं सदी में एंटर किए तो हमारा ग्रोथ रेट कैसे सुदृढ़ हुआ और हम कैसे फास्ट टू फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने। और अभी हम जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के अलावा हम बहुत ही रेजिलिएंट इकोनॉमी भी है, हमारा जो रेजिलियंस है वो बहुत ही सराहनीय है। आपने देखा होगा, शायद मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि पिछले 5-6 वर्षों में जो पोस्ट कोविड ईयर्स कहा जाता है जिनको, उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे इवेंट हुए हैं, ऐसी संभावनाएं हुई हैं या ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बहुत ही चैलेंजिंग है, जैसे कि हमने रशिया यूक्रेन युद्ध से लेके अभी जो ईरान और यूएसए में युद्ध चल रहा है उसके तक बीच में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं, ऐसी डिस्टर्बेंसेस हुई हैं, ट्रबुलेंसेस आई हैं जिनमें भारत ने बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और भारत का जो ग्रोथ रेट है पिछले 5 वर्षों में 7.5% का है ऑन एन एवरेज, क्योंकि हम 9.7% पे ग्रो किए इमिडिएटली आफ्टर द कोरोना और अभी हम लास्ट ईयर भी 7.7% पे ग्रो किए हैं, तो कुल मिला के जो एवरेज है वो 7.5% से भी ऊपर बनता है। और जो विकसित भारत की संभावनाएं हैं, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि भारत का जो अनुमान है, जो उसके GDP का अनुमान है वो लगभग कोई $30 trillion का है और किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने $26 trillion का अनुमान दिया है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अनुमान जो है वो $26 trillion से लेके लगभग कोई $45 trillion तक के, और अगर हम इनके मीडियन में जाएंगे तो लगभग कोई $30 trillion का हमारे पास एक मीडियन जो 30-35 तक का निकल के आता है। और जहां तक हमारी संस्था का एसोचैम का विचार है वो $35 trillion का है 2047 तक के, हम $35 trillion की अर्थव्यवस्था बनेंगे। और मैंने जो अपनी किताब में वर्णन किया है, जो मेरी किताब 2025 में रिलीज हुई इंडिया एट द रेट ऑफ 2047, उसमें मैंने $34 trillion का एस्टिमेट जो है अपनी किताब में दिया है। और उसके अलावा मैंने बताया है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होगा जो अभी लगभग कोई 863 बिलियन डॉलर है, जो लास्ट ईयर का मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ, और उसमें मैंने बताया है कि लगभग हमारा एक्सपोर्ट कोई 10 ट्रिलियन को जाके टच करेगा 2047 में, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम होगी वो लगभग कोई 20,000-21,000 डॉलर प्रति व्यक्ति हो सकती है, और जो एग्रीकल्चर का शेयर होगा उस टाइम पे GDP में वो लगभग कोई 12-13% होगा, और जो के अभी लगभग कोई 18-19% है ऑन एन एवरेज, और जो हमारा इंडस्ट्री का शेयर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होगा, उस टाइम पे हम लगभग कोई 35% का इंडस्ट्री का शेयर जाके देख सकते हैं 2047 तक, जो लगभग अभी कुल मिला के 24-25% है और जिसमें मैन्युफैक्चरिंग मात्र 16% है
0: जी।
9: तो कुल मिला के जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैंने उसमें अपने विषयों का जो निर्णय किया है, जो मेरे एनालिसिस हैं, जो मेरी कल्पनाएं हैं उस रिपोर्ट में, वो सब पीछे के जो पॉलिसीज हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 से लेके जो भी इकोनॉमी का चलन रहा, उसके बाद जो भी रिसेंटली जो पिछले 10-12 वर्षों में रिफॉर्म्स हुई, स्टार्टिंग फ्रॉम मेक इन इंडिया टू स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम एंड ज्ञान एंड आत्मनिर्भर भारत, यो सब यो जो पॉलिसीज हैं उनका बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है।
0: और साथ में ये भी बताया गया है कि
9: जो हमारे न्यू इकोनॉमिक एरियाज हैं, जैसे कि एआई और जो दूसरा हमारा जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं, जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी भरपूर एनालिसिस किया गया।
0: चलिए लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी भी मौजूद है। सर, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपसे सर ये जानना चाहूंगी, 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ था, रक्षा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो हम काफी हद तक दूसरे मुल्कों पर डिपेंड थे। रूस एक बहुत अच्छा साझेदार, एक अच्छा पार्टनर बन के भारत के साथ खड़ा हुआ, जहां से भारत ने आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को भी आगे साधा। और आज की तारीख में हम भारत एक ऐसा देश बन गया है जो दूसरे देशों को अपने हथियार बेच रहा है, दूसरे देश अब हम पे डिपेंड हो रहे हैं। अब लक्ष्य है 0 रक्षा आयात का और 2047 तक। अभी कहां खड़े हैं, कहां तक जाना है हमें?
10: जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को, भारतवासियों को हमारी तरफ से भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और ईश्वर करे कि हमारे जो सपने हैं विकसित भारत के, वो सुचारू रूप से पूर्ण हो। देखिए, एक चुनौती है, ये इतना सहज नहीं है, क्योंकि इतने सारे जो हैं इम्पेडिमेंट्स हैं हमारे रास्ते में, क्योंकि भारत एक विकसित देश है और अब धीरे धीरे शहर वो विकास की तरफ बढ़ रहा है और अब ठोस कदम उठाए गए हैं जिनके फलस्वरूप हम उन स्थिति में पहुंच रहे हैं जहां से कि हम वो हासिल कर सकते हैं जो कि एक समय असंभव लगता था। कभी हम निर्यात करने में तो बिल्कुल शून्य थे और आयात करते थे, रक्षा मामलों की जहां तक बात कर रहा हूं, और हम सर्वोपरि हुआ करते, सबसे ऊपर हुआ करते थे। आज स्थिति आपने जैसा कि उल्लेख किया, 80 से अधिक देशों को हम जो है डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो निर्यात कर रहे हैं। ये अपने आप में एक सुखद अनुभूति है किसी के लिए भी। और मजेदार चीज ये है कि ये इतना सहज नहीं था, इसको बनाने के लिए कई स्ट्रांग स्टेप्स लेने पड़े। और क्योंकि जरूरत होती है, जब भी आप कोई विकास की तरफ बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए चाहते हैं, तो उनको मार्केट चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और डिमांड और सप्लाई की जो एक व्यवस्था है, सप्लाई चेन की जो रिक्वायरमेंट है, वो कहीं भी अगर बाधित होती है तो आपके जो प्लान होता है वो पूरे पूरे धराशायी होते हैं। आज जब हम आयात, हम ये उम्मीद करते हैं कि 2047 तक हमारी जो आयात पर निर्भरता है

0: जो ऊंचाई है वो सीमित है, यानी कि सत्ता पर प्रश्न चिन्ह है, खुद पर निर्भर होना ही होगा। और उसका उदाहरण है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और यूक्रेन, जो हम देख रहे हैं कि दूसरे देशों के अगर सहायता ना मिले तो एक कदम वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमें स्वावलंबी होना जरूरी होगा, और ये जरूरी है कि हम अपने निर्यात को समाप्त करें, तो तभी संभव है जब हम खुद आत्मनिर्भर हों। ऐसी दशा में हमने अपने प्राइवेट सेक्टर को जो एंट्री दी है उसके बाद जो है वो बहुत तेजी से इस दिशा में जो है प्रगति हुई है, और देखा यह जा रहा है कि हमारे सोलर डीपीएसयू के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर का योगदान है लगभग 44% के आसपास जो है उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन में योगदान दिया है, एक खुली नीति का, और यहाँ तक कि उनको न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के अंदर जो न्यूक्लियर हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं और न्यूक्लियर वॉर वेजिंग कैपेबिलिटी है उसके अंदर भी का जो है उनके लिए जो ओपनिंग दी जा रही है। तो ये बताता है कि एक खुली नीति क्यों, क्या जो यूनिफॉर्म में क्या क्या वही देशभक्त है, वो हर व्यक्ति देशभक्त है जो भारत के लिए के विकास को सपना सोचता है और विकास भारत के लिए सांस लेता है। तो ऐसी स्थिति में चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे पब्लिक सेक्टर हो, दोनों का योगदान बहुत जबरदस्त है, महत्वपूर्ण है। भारतीय वायुसेना के बारे में मैं बता दूं कि जो हम फोर और फोर्थ फोर जनरेशन और 4.5 जनरेशन पर निर्भर है आज, और थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी है, ये सब के सब रिटायर हो चुके हैं वो समय तक, और हम फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन के एयरक्राफ्ट के साथ अनमैन प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर पाएंगे। और जो अभी वर्तमान में चुनौती हमने देखा कि किस प्रकार से यूक्रेन में और अभी हम मिडिल ईस्ट में भी देख रहे हैं कि ड्रोन जो है अनमैन प्लेटफॉर्म्स कितना जबरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, पूरा उन्होंने युद्ध रणनीति को बदल दिया है। ऐसी स्थिति में हमें वो सब हासिल करना होगा जो
1: जी
0: हम खुद पैदा कर सकते हैं, क्योंकि हम दूसरे की सहायता लेंगे, अगर दूसरों के रिसोर्सेज लेंगे तो जो हमारी जो एक सिक्योरिटी है वो आस्पेक्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। अब जहां तक बात रही कि स्वावलंबन की, तो
1: जी
0: हम जब स्वावलंबित होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, तो हम एक नई चीज बना सकते हैं जो कि इंडिजिनियस के साथ साथ दुश्मन को चौकन्ना करने में उसको सरप्राइज देने के काम में आ सकती है। जो सरप्राइज और कंसीलमेंट बहुत जबरदस्त दो बहुत महत्वपूर्ण हथियार हैं जो हर युद्ध में इन्होंने सफलता हासिल की है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमें देखना होगा किस प्रकार से टेक्निकल एसिमेट्री को हम अपने पक्ष में लेते हुए और किस प्रकार से हम आगे बढ़ें। और हमें जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज का जो वॉर है वो अब कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं है, ये एल्गोरिथम और फ्यूचर वॉरफेयर के ऊपर जो है अनमैन प्लेटफॉर्म्स का है।
1: बिल्कुल
0: हमें जहां पर अपने साइबर सिक्योरिटी के आस्पेक्ट को देखना होगा, और साथ में हमें एआई का भरपूर प्रयोग करना होगा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स में, डिसीजन मेकिंग में और टारगेटिंग टारगेटिंग में, जो हमने देखा कि इजराइल किस प्रकार से टारगेटिंग में इसका प्रयोग किया, जो ऑफेंसिव ऑपरेशन कंडक्ट किए वो आई के बदौलत
1: बिल्कुल
0: किए। तो ऐसे मामलों में निश्चित रूप से जो है हमें उन सभी को करना होगा। और अंतिम महत्वपूर्ण युक्ति जो साहब कहा कि हमारा थीम है युवा शक्ति, तो युवा को इस क्षेत्र से जोड़ना ताकि एआई में डेवलपमेंट हो सके, उनको उस वो माहौल देना
1: बिल्कुल
0: कि वो सीख सकें और भारत के उन्नति के विकास की यात्रा में सहयोगी बन सकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को साथ लेकर चलना। जेंजी का जिक्र हम आगे करेंगे। प्रतीक आपके पास लौटूंगी, उससे पहले एक बार प्रोफेसर धीरेश आपको इंक्लूड करूंगी। हमारे दोनों पैनलिस्ट की बात आपने सुनी, आप एक इकोनॉमिस्ट भी हैं। मैं जानना आपसे ये चाहूंगी, क्योंकि जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, आज हम 2026 में है, 20 साल हमें और आगे जाना है, लक्ष्य हमने 2047 का रखा है जब हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन आज भी कुछ बेसिक चीजें जो कमी हमें नजर आती है, आज भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी गरीबी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, आज भी युवा बेरोजगार है, प्रोटेस्ट हर जगह पर होते हैं, कितना बड़ा रोड़ा ये अटकाते हैं विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने में। और इसके अलावा अगर और भी पॉइंट्स हैं, चैलेंजेस जो हैं, मैं चाहूंगी उस पर भी जरा फोकस कीजिए प्रोफेसर धीरेश।
2: जी नवजोत जी, बहुत बहुत आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। और चूंकि बहुत व्यापक विषय पे आपने चर्चा रखी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दुनिया की प्रतिष्ठित जो मानी जानी मानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आईएमएफ की बात कर लो, तो वो भी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं, वो लगभग 55 ट्रिलियन डॉलर की बात कर रहे हैं 2047 तक। यानी कि किसी को संदेह नहीं है भारत की अर्थव्यवस्था को इस स्तर पर जाने के लिए, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरीके की गति से हम चल रहे हैं, नीति आयोग कह रहा है कि 7% से 8% की हमें जो ग्रोथ रेट है इसको बना के रखना है, जैसा कि डॉक्टर शर्मा ने कहा, बिल्कुल निश्चित रूप से हम लोग इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ऐसा मेरा मानना है और ऐसे आंकड़े भी हैं। अगर मैं थोड़े से आंकड़ों के आधार पर बात करूं, और जैसा कि आपका प्रश्न है कि जेनजीज और युवा शक्ति, जैसा हमारा इस बार थीम

0: भी है युवा शक्ति का। तो मैं ये मानता हूं कि युवा शक्ति देश के लिए बिल्कुल निर्धारित रूप से एक प्रोडक्शन फंक्शन में रोल अदा करती है, वो लेबर है और लेबर के रूप में हम उसको देखते हैं। और लेबर मीन्स मेंटल लेबर और फिजिकल लेबर, यानी कि हम दुनिया को जो है ना, पूरे वर्ल्ड को आज भी और वर्तमान में भी और भविष्य में भी, यानी कि पिछला भी देखें और पिछले 1947 लेके और आज तक नवजोत जी, और भविष्य में भी हम पूरी की पूरी इंजीनियरिंग से लेकर के, हम यानी कि मस्तिष्क से लेकर के और डॉक्टर्स से लेके, हेल्थ सेक्टर से लेकर के और आईटी सेक्टर से लेकर के, सभी दिशाओं में हमारा विकास का झंडा लहरा रहा है, यानी कि हमारा तिरंगा हर जगह पर है। अगर मैं बात करूं 2047 तक सड़कों के जो एक्सप्रेस वे, अब एक्सप्रेस वे तक के लिए प्लान करके भारत सरकार अभी तक इन्होंने रोड मैप पूरा बना लिया है। अगर हम उस विजन तक जाएंगे तो वो कहते हैं बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर। अब बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर में वो कहते हैं कि केवल हम एक्सप्रेस वे तक ही नहीं रहेंगे, हम मल्टी मोडल कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक जाने की बात कर रहे हैं, और इससे ऊपर की बात, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो 2024-25 में गति रही 9.4% रही, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ की ओर ताकत को दर्शाती है। अगर हम और उससे ऊपर बात करें, विश्व स्तरीय स्तर पर तो लॉजिस्टिक, हाई स्पीड रेल्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल कनेक्टिविटी, बहुत सारे मुद्दों पर भारत सरकार और भारत के पॉलिसी मेकर्स काम कर रहे हैं। 5G से लेकर 6G और क्लाउड और डिजिटल नेटवर्क को मजबूत करने की बात यहाँ हो रही है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि निश्चित रूप से भारत एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। और जिस तरीके से AI, हमने AI को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिजिटल इकोनॉमी के रूप में जो स्थापित करने का विश्व स्तर पर एक कदम बढ़ाया है, AI को एक टूल्स के रूप में भारत देख रहा है। हम AI इंजीनियरिंग में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, ऑटोमेशन में, सेमीकंडक्टर्स में,
1: जी
0: क्वांटम कंप्यूटिंग में, एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग में, जिस तरीके से हम एडॉप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, IMF का डेटा है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड ट्रेड फ्लोज को मजबूती की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारत की जो चुनौती केवल कि AI का कंज्यूमर बनना नहीं है नवजोत जी, AI मॉडल्स, चिप्स, एप्लीकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोड्यूसर बनना है। आज आप देखिए जितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के जो जो हमारे यहाँ पेटेंट्स और कॉपीराइट्स आ रहे हैं और बन रहे हैं, लगातार ये अपने आप में दर्शाता
1: जी
0: है कि भारत विकास की राह पर चल पड़ा है।
1: ठीक है।
0: और AI एग्रीकल्चर की बात हो रही है, AI हेल्थ केयर की बात हो रही है, एजुकेशन सेक्टर में AI, बैंकिंग सेक्टर में AI, गुड गवर्नेंस के लिए AI, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए AI, यानी कि रीस्किलिंग की बात हम लोग कर रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन की बात हम कर रहे हैं, डिजिटल इनइक्विलिटी की हम बात कर रहे हैं। और जो आपका प्रश्न था कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि भाई गरीबी एक एक मुद्दा है, मैं मानता हूँ कि गरीबी एक मुद्दा है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी कहा,
1: जी
0: और
1: जी
0: अगर हम इनको देखें कि लक्ष्य जो साधा गया है वो US डॉलर 15,000 से 18,000 का है, जबकि डॉक्टर साहब जो एसोचैम जो प्रिडिक्ट कर रहा है वो 20,000 से 21,000 का पर कैपिटा इनकम का देखता है। तो
1: ठीक
0: ये
1: है।
0: सब चीजें दर्शाती है कि आगे चल करके पर कैपिटा इनकम जब बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इसका प्रभाव, इकोनॉमिक ग्रोथ जो जब होगी
1: बिल्कुल,
0: तो इसका प्रभाव
1: आपने
0: डेवलपमेंट पर।
1: प्रोफेसर धीरेश सारी गुडी गुडी बातें की हैं, लेकिन यहाँ हम चर्चा इसको लेकर भी करना चाहेंगे कि चैलेंजेस हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त डीके पांडे साहब भी हैं। रक्षा क्षेत्र में कितना बड़ा चैलेंज है, और इसी के साथ साथ चर्चा हम डॉक्टर शर्मा से भी करेंगे कि चैलेंजेस अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो वहां कितने। लेकिन उससे पहले ब्रेक लूँ, उससे पहले जरा प्रतीक मैं आपके पास आना चाहूंगी। जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जेनजी के कंधों पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है 2047 भारत को विकसित भारत बनाने की, और आजकल हर तरफ जेनजी जेनजी चल रहा है। आपकी नजर में विकसित भारत कैसा
0: डेफिनेटली
1: हो, आपकी नजर में आने वाले दिनों में, आने वाले 20 सालों में भारत को आप कहां देखते हैं, किसका क्या योगदान देखते हैं?
0: जय घोष श्री राधा रमणो विजयते। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था सबको और आप सभी को गुड न्यूज टुडे के माध्यम से जितने भी लोग हमें देश के और पैनल के देख रहे हैं सबको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 2047 की जब बात करें और आपने ये जो प्रश्न रख दिया ना कि जेंजी के कंधों पर है, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपका ही चैनल देख रहा था और चैनल पे देखते हुए एक रिपोर्ट आ रही थी जिसमें वो बच्ची कह रही थी कि हम लोग सोचते थे कि जो भारत है वो तो एक ऐसा देश है जो वेस्टर्न से पीछे है, लेकिन हमारे जो एंशियंट लोग हैं
2: वो काफी ज्यादा मतलब कहा जा रहा है कि वो आगे की सोच रखते हैं, मॉडर्न सोच रखते हैं। जब इस चीज की बात हो रही है तो मैं कहीं ना कहीं ये बात आपसे नवजोत कहना चाहूंगा कि भारत को 2047 की बात सोचनी चाहिए। और जेंजी जो है ना, जेंजी का थॉट इस वक्त यही सबसे ज्यादा है कि वो हर चीज में लॉजिक देखता है। अगर हम देखें तो जो हमारे पुराने की जो हमारी जो पहले की पीढ़ियां हुआ करती थी, वो हमें लॉजिक देकर के बहुत सारी चीजें समझाया करती थी। तो लॉजिक इज एवरीवेयर। एंड जहां तक बात करी आपने जेंजी की, तो जेंजी को इस वक्त एक अच्छे गाइड की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि क्या है ना, जेंजी को हम लोगों ने एक अलग ब्रैकेट में बंद करके ऐसा बिल्कुल कर दिया है कि जैसे लगता है कि जेंजी हमारे भारत से नहीं किसी और प्लैनेट से आया हुआ है, ऐसा लगता है। तो जेंजी को लेकर के हमको भी ये रखना है, क्योंकि भाई लाइक जब मिलेनियल थे या उससे पहले की जो जनरेशन थी, तो हम लोगों को सिर्फ बॉलीवुड दशकों के हिसाब से बटाए, जब भी बटाए कि 80 के दशक के हीरो हीरोइन, 90 के दशक के हीरो हीरोइन, या इनका जमाना रहा। लेकिन भारत के युवाओं की अगर बात करी जाए तो मुझे लगता है कि ये जो जेंजी को आज हम जिस एज ग्रुप में कोट करते हैं, अगर मैं पुराने जमाने की बात करूं तो जिस वक्त हमारे भगत सिंह जी थे, तो भगत सिंह ने जिस वक्त हमारे देश की आजादी के लिए अपना एक जोश दिखाया, जिस वक्त हमारे आजाद हिंद फौज की बात जब होती है, क्योंकि अभी यहाँ पे पांडे सर भी है हमारे साथ में, तो ये सब अपने जो कहते नहीं, एक जो जवानी का एक जो उरूज होता है जिसपे हम बिल्कुल चरम पे होते हैं, तो उस वक्त जब हमारे अंदर सबसे ज्यादा उथल पुथल चल रही होती है, जब हमें सबसे ज्यादा चिंता होती है, जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो यहाँ पर उस चीज की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं जो आपने नवजोत बोला कि जेंजी के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी, वो कितना तैयार है, वो बहुत तैयार है, वो टेक्नोलॉजी से तैयार है, वो जो भी कार्य कर रहा है उसको पढ़ने से, अभी आप देखेंगे बीच में थोड़े समय पहले किताबों को पढ़ना लोगों ने सडनली बंद कर दिया था, बट अगर मैं जेंजी की बातें करूं, मे भी हो सकता है वो हार्ड कॉपीज ना पढ़ रहा हूं, बट दे आर प्रमोटिंग इट ऑन किंडल, ठीक है, वो लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम उस जेंजी को जो हमने थोड़े दिनों पहले अभी सड़कों पर देखा था, या हमने देश की गरिमा को भंग करते हुए जिस जेंजी को देखा था, हमें उससे जेंजी को नहीं कोट करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए जेंजी वो है जो नॉलेज को अपने बेस बना करके, पुराने लोगों को, पुराने एंशंट इंडिया के उसूलों को दिमाग में और दिल में रखते हुए, कहीं ना कहीं 2047 की कल्पना, और कल्पना नहीं, इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाने के लिए तैयार है।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए यहीं से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन बात चैलेंजेस की भी होगी, और उस चैलेंजेस से कैसे हम पार पाएंगे, सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।
3: भारत तक 2040 का लक्ष्य हम पूरा करके रहेंगे।

परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: 80 बरस का भारत 2047 में कैसा होगा, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। विकसित भारत के लक्ष्य से आज हम कितने दूर हैं, चैलेंजेस क्या हैं और कैसे उन चैलेंजेस का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शर्मा, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी मैं, चैलेंजेस की बात करूं आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज आप क्या देखते हैं?
1: देखिए, काफी हमारी चर्चा हुई है, आपने जेंजिस की बात की, काफी वक्ताओं ने जेंजिस की बात की, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जेंजिस में भारत नंबर वन है। हमारे पास सबसे ज्यादा जेंजिस है। मैं एक डेटा देख रहा था जिसमें मेरे को मालूम पड़ा कि भारत में लगभग, कोई एक अनुमान है, ये एग्जैक्ट डेटा तो शायद कुछ अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, तो 28% हमारे पास जेंजिस हैं जो लगभग कोई 40 करोड़ से ऊपर बनते हैं, और फिर चाइना में जो है वो लगभग कोई 19% है, लगभग कोई 26-27 करोड़ के लगभग है वहां पे जेंजिस, और जो ब्राजील है उसमें 23% है जो 5 करोड़ के आसपास है, और फिर अपने पास जो लगभग यूएस में भी 4-5 करोड़ के लगभग कोई जेंजिस हैं। तो भारत सबसे ऊपर है। भारत में जो जेंजिस हैं जो आयु 14 से लेके 29 वर्ष के बीच में है, वो उसमें 40 से 45 करोड़ तक के जो हमारा युवा वर्ग है तो वो है। तो अब ये डेटा हमें क्या बताता है कि भारत एक युवा शक्ति है। जैसे जो भी हम शक्तियों की बात करते हैं, जिसमें नारी शक्ति भी है और विश्व शक्ति की भी हम बात करते हैं, और ये हमारी जेंजी शक्ति है जो जो बड़ी तादाद में 40 से 45 करोड़ के बीच में एक अनुमान है जो है हमारे पास। तो आगे का जो हमारा रास्ता है, जो हमारी रोड टू विकसित भारत है, वो ये हमारे जो जेंजिस हैं, जो हमारे ये युवा फोर्स है, ये तय करेगी कि कैसा हमें भारत चाहिए। हम उस टाइम पे आज से 21-22 साल के बाद आप सोचिए कि हमारा, हम तो बहुत आगे निकल चुके होंगे, हमारी एज जो है वो लगभग, अगर मैं अपनी ही बात करूं तो आई विल बी लगभग कोई 75 और समवेयर बिटवीन 77 इतने इस तक पहुंच जाएंगे। तो जेंजिस उस टाइम पे जो देश है उसको लीड कर रहे होंगे और वो ही एक रास्ता अख्तियार करेंगे। अब ये जो नंबर्स हमने डिस्कस किए, जो हमने नंबर्स की बात की है कि भारत एक $30 trillion का इकोनॉमी होगा, और मैंने बताया कि 34 का होगा, किसी ने बताया कि 45 का होगा या 40 का होगा, जो भी नंबर होगा 30 से लेके 45 के बीच में या 26 से लेके 45 के बीच में, तो इस नंबर का उन चेंजेस के लिए क्या मतलब है, उस युवा वर्ग के लिए जो भी ग्रो कर रहा है उसके लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नंबर फॉर देम। सेकंड, जो हमारा पर कैपिटा इनकम का भी अनुमान हम लगा रहे हैं कि 19,000 होगा, 18,000 होगा या 20,000 होगा, ये पर कैपिटा इनकम का भी उनके पास क्या महत्व है, और जो भी हम बात करते हैं तो इन चीजों के संदर्भ में हमारा जो युवा वर्ग है जो आगे बढ़ रहा है, जो एक लॉजिक के ऊपर आगे बढ़ रहा है, वो इन सब फिगर्स का उसके लिए क्या मतलब होना चाहिए और क्या है, इसके ऊपर विचार करने की हमें जरूरत है। जो हमारा रास्ता है उसमें हमारा जो जेंजिस का सोच है, जो हमारा युवा वर्ग जो लगभग जो उसका अगर हम मीडियन एज देखें जो 21-22 साल बनता है, वो क्या सोच रहा है कि उसको कैसा भारत चाहिए 2047 में, उसको पर कैपिटा इनकम ज्यादा चाहिए या उसको सुविधाएं ज्यादा चाहिए या उसको हेल्थ सिस्टम चाहिए या उसको एजुकेशन, ये सब चीजें हमें उनको साथ में लेके चलना होगा, उनसे जान के फिर हमें अपना जो आगे का रोड है जो आगे 20 वर्ष तक
0: चलेंगे। डॉक्टर शर्मा एक सवाल, हाँ प्रोफेसर धीरेश मैं आ रही हूँ एक सेकंड आपके पास। डॉक्टर शर्मा ये बताइए, मैं सरल भाषा में अगर पूछूं, जेंजी तर्क के साथ बात करता है, सीधे तौर पर आज की तारीख में क्या बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्या नहीं है? जेंजी के पास रोजगार नहीं है, या फिर हम कहें कि उनके टैलेंट के हिसाब से उनको रोजगार नहीं मिल रहा, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर?
1: जी, मैं उसी के चीज ऊपर आ रहा था कि जो इनके चैलेंजेस हैं, सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एम्प्लॉयमेंट का है, जिसके लिए सीधे तौर पे हमें यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री अकेडमिया गवर्नमेंट के लिंकेजेस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग सिंक्रोनाइजेशन की जरूरत है। इंडस्ट्री को कैसे युवा वर्ग चाहिए, उनको वो किस तरीके के टैलेंट को अपनी इंडस्ट्री में एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी एक बहुत बड़ी जरूरत है। इनका कॉम्बिनेशन होना, इनका एक सुमेल होना, इनका एक सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, ये पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेशन है, जो जो भी किताब है, जो जैसे आपने बताया कि वो लॉजिक पे चलते हैं, वो जहाँ किताब को कम यूज करते हैं, वो
0: हाँ
1: एक ही बहुत ही कम समय
0: टिंडर
1: में
0: को
1: उसका
0: ज्यादा यूज
1: सलूशन
0: करते हैं
1: निकाल
0: अभी।
1: देते हैं,
0: हाँ मिस्टर
1: तो
0: भारद्वाज
1: उस
0: बता
1: तरीके
0: रहे थे
1: से
0: अभी।
1: उनके जो थॉट्स हैं उनको हम आगे किस तरीके से जो भारत की सोच है उसमें सम्मिलित कर सकते हैं,
0: ठीक है
1: कैसे इंडस्ट्री उनकी सोच का जो तेज गति से बढ़ रही है उसका लाभ उठा सकती
0: ठीक
1: है।
0: है,
1: ये
0: प्रोफेसर
1: जरूर
0: धीरेश
1: है
0: कुछ कहना
1: कि
0: चाह रहे हैं।
1: उनका
0: डॉक्टर
1: जो
0: शर्मा एक सेकेंड
1: उनका
0: आती
1: जो
0: हूँ।
1: सोच का ग्रोथ है वो हमारे से कहीं ज्यादा है।
0: ठीक है प्रोफेसर धीरेश,
2: नवजोत जी, बहुत ही व्यापक आपका प्रश्न, बहुत अच्छा लगा कि भाई जेंजी जो जो अभी गुजर रहा है जिस दौर से अनइम्प्लॉयड के जिस स्थिति से गुजर रहा है। देखिए, रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल सेक्टर में अनइम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 5% के आसपास है ना, और जो अगर मैं अर्बन एरिया की बात करूं तो 6.6% के आसपास है। यानी कि जो जेंजीज के सामने जो चैलेंजेस है, ये सच बात है कि जो सरकार व पॉलिसी मेकर्स के सामने भी जो चैलेंजेस है वो बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि हम कैसे रोजगार मुहैया कराएं। और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंजेस जो आने वाले हैं, जो आपने चैलेंजेस की बात की कि हम इस इंडस्ट्रीज की तरफ जा तो रहे हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल बहुत बड़ा चैलेंजेस रहेगा, जैसे कि हम एडवांस एग्रीकल्चरल सेक्टर्स को कैसे कर पाएंगे, जिसमें हम कहेंगे प्रिसीजन फार्मिंग, जिसमें हम कहेंगे ड्रोन से हम लोग जो है ना ड्रोन फार्मिंग की बात हो रही है, AI बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग की तरफ बढ़कर के हम कैसे एग्रीकल्चरल की तरफ आएंगे, जैसे हम डिजिटल मार्केट प्लेस की बात करेंगे, ये फ्यूचर चैलेंजेस की बात है, फूड प्रोसेसिंग की बात है, कोल्ड चेन की बात है। तो चैलेंजेस हैं, निश्चित रूप से हैं, लेकिन उसके लिए हमारी सरकार के पास जो रोड मैप अभी वर्तमान में जो दिखता है, जिसकी की कल्पना अर्नेस्ट एंड यंग्स ने भी की है, मूडीज ने भी की है, मैकिन्से की भी रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, वर्ल्ड वर्ल्ड फेमस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और IMF भी प्रेडिक्ट कर रहा है कि इन चैलेंजेस के साथ निश्चित रूप से ये सरकार निपट पाएगी और आने वाली सरकारें निपटेंगी। और हम पूर्णतः $30 ट्रिलियन तो मैम हम लोग मान के चल रहे हैं,
0: जी जी
2: लेकिन
0: जी
2: 45 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, जिनको कि विश्व की सारी स्थितियां। देखिए, जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं नवजोत जी, तो दो तरीके के चैलेंजेस हैं, एक तो एंडोजीनियस और एक एक्जोजीनियस। जैसा ने हमारे बीच में कहा कि भारत और यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है, ईरान और USA का जो फाइट होने से जो चल रहा है इसराइल के साथ में, उसका असर भारत के अंदर आ रहा है। तो
0: हाँ
2: ये चैलेंजेस भी हमें देखने पड़ेंगे वर्तमान में कि जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन
0: ठीक है
2: परिस्थितियों में भारत कैसे बढ़ेगा, तो
0: बिल्कुल।
2: उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाए।
0: उस पर मैं एक बार डीके पांडे जी का रिएक्शन लूंगी। सर मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार। प्रतीक, दोनों हमारे जो वक्ता जिस अपनी बात रख रहे हैं, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे फिर आगे बढ़ती हूँ।
3: मैं इस पे एक बात ये कहना चाहूंगा, मुझे लगता है नवजोत की जेंजी को लेकर के जैसे सर ने बहुत सारे आंकड़े बताए, शर्मा सर ने एंड कुलशेष जी भी बहुत सही बात बोल रहे हैं, बट हम ये कहना चाहेंगे कि किसी भी व्यक्ति को एक अलग कैडर में रख देना वो उससे ज्यादा बेटर चीज होगी कि उस व्यक्ति को सुनना। मतलब मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूं, जब आपने बोला ना कि वो तर्क मांगता है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं कि वो दंड है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि उसको समझ नहीं है, तर्क मांगने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें शक्ति नहीं है या वो अलग कैटेगरी में, जिस तरीके से पिछले कुछ समय से जेंजीज की वो कॉमन लेकर के जो उनकी ट्रोलिंग भी हुई है। बट मैं ये कहना चाहूंगा और बार बार ये बात कहना चाहूंगा, जेंजी के ऑब्जर्वेशन या हम उनके साथ काम करते हैं, वॉट वी वॉन्ट, जब ये क्वेश्चन होता है वी वॉन्ट क्लैरिटी, वी वॉन्ट कि हमको बिल्कुल अलग से ना रखा जाए, हमको किसी अलग कैडर में ना रखा जाए। और साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से, सिंस आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो जेंजीज जिन गानों पे भी रील बना रहे हैं वो भी वो गाने जो पुराने किसी समय में मदन मोहन साहब का जो संगीत है, या अगर आप देखेंगे जो गाने भी मेरा दिल ये पुकारे आजा, या जो ऐसे सॉन्ग्स किसी वक्त में हमारे नाना जी वगैरह सुना करते थे, हम उन गाने का रिक्रिएट वर्जन कर रहे हैं। तो आप यहीं से ही अनुमान लगा सकते हैं कि एज एन आर्टिस्ट इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है।
0: हाँ।
3: तो यह कहीं ना कहीं किस तरीके से वी जस्ट वॉन्ट लॉजिक, एंड लॉजिक के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लैरिटी एंड द क्लियर गाइडेंस की भाई आप हमारा हाथ थामो और हमारा हाथ थाम करके हमको एक रास्ता दिखाओ, 2047 की जिम्मेदारी हमारे कंधे पे है, हम उसको पूरा कर लेंगे, लेकिन उसमें हमें आपको आपका ट्रोलिंग नहीं चाहिए, हमें आपका
0: मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, अब मैं आपके पास आऊंगी। अगर हम 2026-27 के भारत के रक्षा बजट की बात करें तो 7.85 लाख करोड़ है, यानी सरकार के हर 100 रुपए में तकरीबन 14 रुपए जो है हमारे रक्षा बजट पर खर्च हो रहे हैं। सर इसी आंकड़े को लेकर मैं आगे चलती हूँ, क्योंकि AI पर आपने कहा कि ज्यादा फोकस की जरूरत है। चैलेंज हमारे लिए देखिए, अभी तक जो सर सबसे बड़ा चैलेंज हम देखते आ रहे थे हिमालय की तरफ से, एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चीन, अब तो समुद्र के रास्ते से भी बहुत बड़े चैलेंजेस भारत के पास हैं। और ऐसे में भविष्य के युद्धों के लिए खुद को तैयार करना, अपनी तकनीक को इस हिसाब से तैयार करना कि हम इनका मुकाबला कर सके, ये कितना बड़ा चैलेंज होगा सर?
4: बहुत ही आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया है। देखिए महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि जेन जी पे बात हो रही थी, मैं उसी बाद में आऊंगा। ये इंडियन ओशन रीजन एक हमारे लिए निश्चित रूप से एक उस जहां पर जो थ्रेट परसेप्शन है भारत के लिए वो उसमें काफी बदलाव आ रहा है, और नेवी के लिए जरूरत जो असेसमेंट किया गया है कि हम और उम्मीद है कि 2047 तक हम 4 इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स तैयार कर लेंगे और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा कर लेंगे। तो जहां तक बात है कि हमारे ओशन रीजन की, तो वहां पर हम उम्मीद है कि हमारे पर्याप्त जो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी। निश्चित रूप से जो बजट का है, फाइनेंसिस का इशू रहेगा, वो देखना होगा कि किस प्रकार से हम इसको फेज मैनर में आगे बढ़ाएं और एक ऐसी तकनीक का उपयोग करें, क्योंकि देखिए हम भारत में जब क्रिएट करते हैं तो उसकी लागत बहुत कम आती है, और वही चीज हम जब बाहर बनाते हैं तो उसकी कीमत जो है 10 या 15 गुना ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से अगर हम स्वदेशी पालन करेंगे तो निश्चित रूप से बातें आगे बढ़ती जाएंगी। महत्वपूर्ण यह है कि आपका जो थ्रेट परसेप्शन है समय के साथ चेंज हो रहा है, और साथ साथ जो जियोपॉलिटिकल एनवायरमेंट है जबकि हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वजह से और उसके बाद ईस्ट में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसकी वजह से भारत के जो अर्थव्यवस्था उस पर जो है कुठाराघात हुआ है। जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मेरे हिसाब से 2047 में जितने भी आंकड़े बात हो रही है 30 ट्रिलियन और 40 ट्रिलियन या जो भी आंकड़ा आता है वो हासिल करने में सबसे बड़ी रुकावट हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एनी डेवलपमेंट कंट्री, कोई भी जो देश विकसित हो रहा हो, ऊर्जा की आवश्यकता सर्वोपरि होती है, चाहे वो डिफेंस सर्विसेज हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे कोई, इसको हमें ध्यान देना ही होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हालांकि मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए कि जो हमारा पहले हम सीमित थे 4 या 5 स्रोत पर ऑयल के लिए और बाकी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, अभी हमने उसको लगभग 2 दर्जन के आसपास जो है स्रोतों को टैप किया है। तो निश्चित रूप से ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है, निश्चित रूप से हमें उस दिशा में हम कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आवश्यकता है कि हम एक जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग को लेकर चलें। हमने अपने ट्रांसपोर्ट फ्लीट के लिए देखा, हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट को देखा, न्यूक्लियर रिक्वायरमेंट हमारी जो है, जो नेवल रिक्वायरमेंट और आर्मी के जो टैंक्स हैं उनको सबको हम एसेस करके धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि 2037 तक जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो लगभग पूरी हो जाएंगी। रुकावटें जो हैं, जो टेक्निकल डेवलपमेंट होने हैं, अब जेन जी का रोल जहां जिसके बारे में जिक्र करना चाहता था, जेन जी अगर आपको ज्ञान है, जेन जी देखिए पिछले 6 महीने से जेनजी के जो है वो नेपाल में और जब बांग्लादेश में जो चीजें बढ़ी तो उसके बाद से जेनजी का जो है ये लफ्ज जो है न्यूज में आए। उसके पहले जेनजी कौन है, हम सब बराबर मानते थे, बच्चे हमारे हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, मैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑल 3 लेवल्स में पढ़ा चुका हूं, और मैंने हर बच्चों को करीब से समझने की कोशिश की, और उनको मैंने ये बताया कि आपको देखना होगा कि आज हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारा ज्ञान का जो स्रोत है वो व्हाट्सएप या कोई टेलर्ड या कहा जाए कि कोई किसी ने जिसको बना रखा होगा कि ये यही सूचना देनी है, मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं जाना है और इन डेप्थ जाना है। बुक्स पढ़नी ही होंगी आपको, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, या हमारा महाकाव्य हो या महाग्रंथ हो, उनको आपको देखना होगा, क्योंकि हमारी संस्कृति की आवश्यकता हुई आपको समझनी पड़ेगी। हमारे देश में क्या भौगोलिक परिस्थितियां रही हैं, क्या हमें चुनौतियां मिली हैं इतिहास में, वो दोबारा हमको अगर मिलती तो हम क्या करेंगे, क्योंकि समय बदल रहा है, AI और जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो एक नई चुनौती के रूप में आ रहे हैं। तो जेन जी के पास समय कहाँ है कि वो दूसरी चीजों में अपना वक्त जाया करे, उसको ज्ञान और ज्ञान के अलावा और कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अर्जुन की तरह अगर मछली की आंख नहीं देखेंगे तो शायद अपने लक्ष्य को नहीं कर पाएंगे। एक और मैं प्रश्न यहाँ पर उठाना चाहूंगा कि सब्सिडी की जिसकी बात की जा रही है, सब्सिडी हमारे जो GDP का लगभग 1.25% के बीच में हिस्सा खा लेती है। अगर वो हम उसको देखें किस प्रकार से उनको जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें, तो वो जो एक लगभग 4.25 लाख करोड़ का जो पूंजी है वो हमको विकसित कार्यों में करने का उपयोग होगी। जरूरत है हमें हेल्थ के जो केयर के ऊपर ध्यान देने की, वो आम लोगों तक कैसे वो हेल्थ सुविधाएं पहुंचे, जो रोड और ट्रांसपोर्टेशन पर ध्यान दिया जा रहा है निश्चित रूप से, लेकिन एजुकेशन हेल्थ ये 2 इंपॉर्टेंट है। अगर 2 चीजों पर ध्यान दिया गया तो शायद हमारा जेन जी या दूसरे और सभी लोगों को इसका लाभ होगा, और भारत बहुत तेजी से और सुदृढ़ तरीके से आगे बढ़ेगा।
0: बिल्कुल, एक बार जल्दी से जिस सब्सिडीज की बात की प्रोफेसर धीरेश, इस पर एक कमेंट आपका, मैं सवाल करना चाह रही थी अब क्योंकि समय की कमी है, तो संक्षेप में क्योंकि डॉक्टर शर्मा से भी इसका जवाब लेना है।
2: जी देखिए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को चाइना की तरह से हमें एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना हमारे बाद स्वतंत्र हुआ और कितना विकसित हो चुका है। देखिए फेसबुक के जो यूजर है, मैं एक अलग विषय पर बात कर रहा हूँ और हृदय से इस बात को रख रहा हूँ, 390 मिलियन यूजर्स हैं। इंस्टाग्राम के 553 मिलियन, यानी कि यूएस से लगभग 2 गुना ज्यादा और 3 गुना ज्यादा। हमें अपना कोई आत्मनिर्भर भारत के तहत कुछ ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाना चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमी का बहुत सारा पार्ट विदेशों में ना जाए और हम अपने इकोनॉमी को बचा के रख सकें। दिस इज द मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है जिसपे हमें
0: पहला पॉइंट। हाँ, जल्दी से सर, वक्त की कमी, एक बार डॉक्टर शर्मा से भी आंसर लेना है।
2: जी, सब्सिडी के लिए जरूरी यह है कि फ्रीबीज को ना दिया जाए, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में फ्रीबीज इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी।
0: ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर शर्मा, एक लास्ट कमेंट इस पे सर, साथ ही साथ एजुकेशन और हेल्थ दोनों सेक्टर्स का जिक्र कर दीजिए।
1: देखिए, एजुकेशन और हेल्थ में मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्रूशल सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। एजुकेशन हमारा भविष्य को बताती है और हेल्थ हमारा जो हमारा सेहत कैसा रहेगा उसको, ये दोनों चीजों से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो इनके ऊपर विशेष तौर पे एक सरकार की जो एक एडवाइजरी कमेटी होना चाहिए जो इन सेक्टर्स के बारे में सीधे तौर पे जो देश के जाने परमाने और साथ में जो युवा वर्ग है उनको लेके उनके ऊपर क्या विचारधारा हो आने वाले 20 वर्षों के लिए, 21 वर्षों के लिए, उसके ऊपर एक रोड मैप तय होना चाहिए कि कैसे हम आगे विकसित भारत तक इन दोनों सेक्टर्स को प्रफुल्लित करेंगे। उसमें एक जो युवा सोच उसमें एंटर करना चाहिए।
0: बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपने अपने विचार रखे, कैसे भारत विकसित भारत बनेगा, कैसे 2047 तक हम उस लक्ष्य को पा पाएंगे, चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशन क्या है, जानने की कोशिश की तमाम खास मेहमानों से। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस।

0: तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यंत खास माना जाता है। बम भोले के जयकारों के साथ सावन महीने में आध्यात्मिक आस्था अपने चरम पर होती है। उत्तर भारत में जहां आधा सावन महीना गुजर चुका है, वहीं देश के दक्षिणी हिस्से में सावन का आगाज हुआ है। तो चलिए देखते हैं वहां कैसे सावन में आस्था के रंग दिख रहे हैं।

0: गुजरात महाराष्ट्र सहित दक्षिण भारत के राज्यों में सावन की शुरुआत हो गई है। उत्तर भारत में पूर्णिमा चंद्र पंचांग का पालन किया जाता है जिससे महीने की शुरुआत पूर्णिमा के बाद होती है। वहीं दक्षिण भारत में अमांत चंद्र पंचांग से गणना शुरू होती है जिसके चलते महीने की शुरुआत अमावस्या के बाद होती है। अलग अलग चंद्र पंचांग होने के चलते दक्षिण भारत में सावन का महीना 15 दिन बाद शुरू होता है। यहाँ सावन का महीना भले ही 15 दिनों के बाद शुरू होता है लेकिन भगवान शिव की भक्ति का स्वरूप और आध्यात्मिक महत्व एक जैसा ही है। समंदर के किनारे भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश ही नहीं यहाँ दुनिया भर से हजारों शिव भक्त भगवान की आराधना के लिए पहुँच रहे हैं। आसमान से बरसती सावन की फुहारों के बीच भोलेनाथ के इस अलौकिक धाम की शोभा ही निराली नजर आती है। भगवान शिव के इस पावन धाम में आकर हर कोई अपने आप को धन्य मान रहा है।
1: सोमनाथ के दर्शन मैंने अभी शाम को, मैं लखनऊ से आया था, शाम को मैंने दर्शन किए, फिर मैंने मॉर्निंग में दर्शन किए, मैंने दो बार दर्शन किए और मुझे यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं काफी अच्छी लगी।
2: हर साल हम आते हैं, पूरा महीने शिव जी की सेवा करते हैं और एक जो एक जुड़ाव है, एक लगाव है, जो शिव जी की कृपा जिन पर रहती है वहाँ पे ही आप आ सकते हो।
3: यहाँ आकर के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चाहे यहाँ का दृश्य हो, चाहे यहाँ की व्यवस्था हो, बहुत ही मनमोहक। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, जो कोई मुझे देख पा रहा है, यहाँ पे जरूर आए।
0: सावन के पवित्र महीने में हर दिन बाबा सोमनाथ का भव्य श्रृंगार किया जाता है लेकिन सावन महीने के हर सोमवार और कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बाबा का विशेष श्रृंगार होता है। भक्तों में भगवान शिव के अनुपम श्रृंगार के दर्शन का अपना अलग ही आकर्षण होता है। भगवान सोमनाथ के धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सावन महीने में जो शिव भक्त बाबा के धाम नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके लिए यहाँ 30 दिनों तक ऑनलाइन बिल पूजा की व्यवस्था भी की गई है जिसकी बुकिंग भक्त महज 21 रुपए में ही कर सकते हैं।
4: श्रावण महीने के शुभारंभ से सोमनाथ में लोगों का एक मानव मेहरामण उमट रहा है। यहाँ हर राज्यों से अभी यात्री आते हैं और ये यात्रियों की इच्छा दर्शन करने की होती है, पूजा करने की होती है, ध्वजा चढ़ाने की होती है। सबके लिए यहाँ पर्याप्त बंदोबस्त है।
0: गीर सोमनाथ ही नहीं गुजरात के राजकोट में भी सावन महीने की अलग ही रौनक है। यहाँ पंचनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से भक्त पहुँच रहे हैं। कोई जलाभिषेक कर रहा है, कोई दुग्धाभिषेक कर रहा है, तो वहीं भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए कोई रुद्राभिषेक करने में लीन नजर आ रहा है।
5: भगवान की पूजा करना ये भी श्रावण मास के अंदर बहुत उत्तम माना गया है कि भगवान शिव की पूजा कौन कर सकता है, कि जिसका भाग्य का उदय होता है वही श्रावण मास में शिव पूजा कर सकता है।
0: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। जीवन में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना लिए सावन के पावन महीने में भक्त महादेव की शरण में पहुंचते हैं। बम भोले के जयकारों के साथ पूरा वातावरण ही शिवमय हो चला है। गिर सोमनाथ से दिलीप मोरी, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
11: मामा के घर आकर डोरेमोन देखने वाला ये भांजा अब खुद डोरेमोन बन गया है। बच्ची ने अपनी पैंट की जेब को ही डोरेमोन की पॉकेट बना ली और उसमें घर का सामान छुपा कर बैठ गया। इसके बाद एक एक करके जेब से सामान निकालने लगा जैसे डोरेमोन अपने गैजेट निकाल रहा हो, कभी कोई चीज तो कभी कुछ और। बच्चे का ये अंदाज देखने में बेहद मजेदार है। घर के सामान को अपनी जेब में छुपाकर जिस तरह बच्चा उसे निकाल कर दे रहा है, उसकी क्यूटनेस ने लोगों का दिल जीत लिया। मैडम जी ने पूरी क्लास लगा रखी है, बच्चे लाइन से बैठे हैं, सामने किताबें खुली हैं और मैडम के हाथ में डंडा भी मौजूद है। गलती की तो डांट पक्की, क्योंकि मैडम की नजर से कोई बच नहीं सकता। दरअसल ये छोटी बच्ची अपनी सभी गुड़ियों को एक साथ बैठाकर उन्हें पढ़ा रही है। किताब खोलकर बाकायदा क्लास चल रही है और मैडम बड़े ध्यान से सभी बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बच्ची का ये अंदाज इतना प्यारा है कि वीडियो देखने वाले भी कह रहे हैं, पढ़ाई करो बच्चों वरना मैडम देख ही रही है।
6: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर।
12: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है।
13: नमस्कार, स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। देखिए आज हम सब लोग आजादी दिवस मना रहे हैं, अभी से शुरुआत हो चुकी है, क्या क्या प्लान्स हैं आपके बताते चले जरा।
14: प्लान्स बन चुके हैं, एक तो पतंग उड़ाने वाला प्लान सबसे पहले है मेरा।
13: पतंग खरीद ली आपने?
14: बिल्कुल खरीद ली है, दिल्ली से स्पेशली मंगा ली जाती है कि कल पतंग उड़ाई जाएगी, मेरा तो ये प्लान।
13: आप घर पे आयोजन रखो, बाकियों को इनवाइट कर लो, वो मांझा लेके पहुंच जाएंगे घर पे अपनी अपनी पतंगे लेके,
14: चक्री पकड़ने के लिए,
13: चक्री पकड़ने, सपोर्ट करने के लिए। हम तो चक्री पकड़ सकते हैं। वैसे आपने उड़ाई है पतंग? कर ली, बहुत उड़ाई, पेचे बड़े लाए मैं, काटी भी बड़ी है, मजेदार। तो क्या है फिर आपका प्लान? तीज भी तो है कल।
14: कल तीज भी है, तो जहाँ कहीं भी प्रोग्राम होगा पहुँच जाएंगे वहाँ पर, तो उनके साथ हम भी सेलिब्रेट कर लेंगे।
13: तीज का व्रत है ना,
14: क्योंकि हमारे यहाँ जो तीज होती है बिहार में वो 14 सितंबर है, वो होती है हड़तालिका तीज, और ये हरियाली तीज होने वाली है,
13: ये पंजाब
14: हरियाणा इन सब इलाकों में होती है,
13: ये साडे वाली तीज है। हमारी इस तीज में हम खाते हैं,
14: इसमें व्रत नहीं होता,
13: इसमें व्रत नहीं होता, व्रत नहीं होता, हम सिर्फ लगाते हैं इसमें होता है।
14: हड़तालिका तीज में जो मैं बता रही हूँ 14 सितंबर, उसमें व्रत,
15: इस वाले में झूलन उत्सव होता है, झूला झूलते
14: हैं, सजते संवरते हैं, बहुत
15: ग्रीन कलर के कपड़े पहनते हैं, झूला झूलते हैं, घेवर खाते हैं।
13: हमारे यहाँ तो गिफ्ट्स बड़े मिलते हैं,
14: हमें तो मौका चाहिए, हमें
13: लड़कियों को गिफ्ट्स मिलते हैं, डांस होता है, गाना होता है, मेहंदी लगाई जाती है, सजते संवरते हैं, खाते पीते हैं, और वैसे भी कल है आजादी दिवस, तो देखिए हम सब लोग आजादी का जश्न मनाएंगे, साथ ही साथ सावन की तीज भी मनाएंगे। उस हरियाली तीज की बात भी होगी जहां पर महिलाएं हर साल जिसका बेसब्री से इंतजार करती हैं, तो मनाने के लिए कैसे तैयारियां हो चुकी हैं आज तस्वीरें आपको दिखाएंगे।
14: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। तो देखिए आपको बता दें कि कल चूंकि देश आजादी के जश्न में डूबेगा और तिरंगा यात्रा के साथ ही करोड़ों भारतीयों के गर्व, एकता और आजादी की पहचान बनकर तिरंगा आसमान में लहराएगा। तो कैसे? हाथों में तिरंगे के साथ लोग देशभक्ति के रंगों में सराबोर है, इसकी कई खूबसूरत तस्वीरें आई है, आपको दिखाएंगे।
13: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। फैशन वर्ल्ड की एक ऐसी कहानी भी आपको दिखाएंगे जिसमें एक फैशन डिजाइनर बेटे की अपनी माँ के पसंदीदा रहे सफेद रंग के साथ एक इमोशनल सी कहानी जुड़ी है, साथ ही रंग को लेकर सामाजिक सोच को चुनौती देने का जज्बा भी इसमें शामिल है, दिखाएंगे आपको।
14: नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ दीपिका शर्मा, आपको दिखाएंगे 40 साल पहले बिछड़ी दो बहनों की फिल्मी कहानी। कैसे ये दोनों बहनें नीदरलैंड में पली बड़ी है, फिर दोबारा से मिल जाती है, और क्या है इनका भारत से कनेक्शन, इसकी इंटरेस्टिंग कहानी भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
14: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जन सैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। लाल किला पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल्स एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक की भक्तों में वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूलों में आ चुकी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के सीडब्ल्यूजी 2026 पदक विजेताओं से की खास बातचीत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को दी बधाई।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं बैकग्राउंड में, भोलेनाथ की एक तरफ पूजा कल की जाएगी और साथ ही साथ महिलाएं सज धज कर तैयार। आज आपको बता दें कई सोसाइटीज में हमने देखा, ग्रुप्स में भी आ जाते हैं ना मैसेजेस कि भाई मेहंदी लगाने के लिए पहुंच जाइए। हाँ। और तैयार होने का सिलसिला एक तरह से आज से ही शुरू हो जाता है।
15: कल फंक्शन भी है, इनफैक्ट इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन भी है और
14: इंडिपेंडेंस डे का, और उसके बाद पहले लोग सुबह सुबह 15 अगस्त का सेलिब्रेशन मनाएंगे और उसके बाद फिर तीज और
15: उसके बाद फिर छोले भटूरे भी खाएंगे। खाने का इंतजाम होना चाहिए क्योंकि इसमें ये होता है ना कि व्रत तो कोई होता नहीं है, तो आपने बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने होते हैं, खाने होते हैं, मेहंदी।
13: मैंने सुना है घेवर भी मंगा रहा है कोई।
15: हाँ बिल्कुल,
14: कौन मंगा रहा है? आप मंगा रही हैं?
15: मैंने सोचा आप लोगों के लिए मंगा।
14: वाह,
15: खुशियां की बात है,
13: ये है असली तीज।
15: हाउ स्वीट,
14: सही बात
13: वो
14: है।
13: मावे वाला मंगा,
15: एकदम ओवरलोडेड, कोई डाइट नहीं फॉलो करनी है।
14: बिल्कुल, घेवर में डाइट किया तो क्या ही किया। और वैसे हरियाली तीज में देखिए सजना सवरना खाना पीना तो है ही, लेकिन याद करिए ठीक है मैरिड वुमेन जो है वो कल स्पेशली मनाती है, लेकिन झूले झूले से तो मुझे लगता है सबकी यादें जुड़ी होंगी। नहीं
15: मैं तो पीछे शिव और पार्वती को देख रही हूं।
13: मुझे याद है, मैं अपनी यादों की बात की तो मैं आपको बताती हूँ कि बचपन में ना हम लोग नॉर्मली सावन पर मेरी मदर जाया करती थी, गांव घर में था मेरा, ननियाल गांव में था, तो वहां पर एक्चुअली जिसको हम पंजाबी में कहते हैं पिंगा चूटते, वहां होता है ये, मस्ट है कि आप पंजाब के गांव-गांव में अगर आप जाएंगे तो बोलियां, गिद्दा, भंगड़ा रहता है, फिर उसके बाद खाना पीना बहुत ज्यादा होता है, मिठाइयां बहुत होती हैं, और मतलब झूला झूलना इज मस्ट।
15: अच्छा पिंगा, जिसको नहीं पता पिंगा इज झूले,
13: मेरे मुंह से बार बार पिंगा ही निकल रहा है।
14: बिल्कुल, तो देखिये सावन की फुहार, चारों तरफ हरियाली, हाथों में मेहंदी और झूलों पर झूमती खुशियां, यानी त्योहारों के मौसम में रंग अब तीज का चढ़ने लगा। कल यानी कि शनिवार को देश भर में हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाएगा और तीज की आहट के साथ बाजारों से लेकर घर आंगन तक उत्सव की रौनक दिखाई देने लगी है। कहीं मेहंदी रचाई जा रही है, कहीं रंग बिरंगे झूले सज रहे हैं, तो कहीं घेवर और तरह तरह के पकवानों की खुशबू त्यौहार का एहसास करा रही है। हरियाली तीज सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि सावन की खूबसूरती, सुहाग की आस्था और खुशियों का ऐसा संगम है जिसमें महिलाएं सजती संवरती हैं, झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं और अपनों के साथ इस त्यौहार की खुशियां बांटती हैं।
15: बिल्कुल, देखिए कहा यह जाता है कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है, इसीलिए सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना के साथ व्रत और पूजा करती हैं। वहीं कुंवारी युवतियां भी मनचाहे जीवन साथी की कामना के लिए इस पर्व में शामिल होती हैं और तीज का रंग सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहता।

0: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती है, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पे है, अलग अलग एक्टिविटीज साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। और देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिए में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नजर आ रही है।
1: मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और ये पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। तो मुझे काफ़ी शौक़ है और लहरिया के लिए मैं वैसे ही बहुत क्रेज़ी हूँ। सो मैंने पूरा गेटअप इसी उस पर लिया है, थीम पे, कि मैं लहरिया से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं जयपुर के अंदर, जैसे राजस्थान में हमारे मोर स्पेशली एक राष्ट्रीय पक्षी भी है, तो मैंने ये ऐड किया है ताकि मैं दिखा सकूँ कि तीज में और लहरिया टाइम में मोर ही सबसे पहले आते हैं और बरसात के सीज़न में मोर बहुत ब्यूटीफुल तरीके से डांस करते हैं। सो मैंने वही गेटअप लिया है, दिस इज़ मोरनी लुक।
2: राजस्थानी पोशाक जो है वो हमारी वेशभूषा है, लाइक जब से हम लोग जन्मे हैं मैंने देखा है राजपूताना जो हमारा है राजस्थान की पहचान है, और राजपूती जो पोशाक होती है वो कोई भी महिलाएं पहने वो एक पहचान ही दिखाती है हमारे राजस्थान की। और मैं मिसेज राजस्थान रनर अप हूँ, सो दैट्स व्हाई मैंने ये अपनी पोशाक को और अपने परिधान को पहले अहमियत दी है।
3: राजस्थान में जिस तरह से सावन को सेलिब्रेट किया जाता है लहरिया बंदेज इसके माध्यम से, ये ऐसा नहीं है कि कोई फैशन है, ये एक रिवाज है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, हैंड प्रिंटेड कपड़ा बनता है, उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो एक लहर जैसा शेप दे देती हैं। यहीं से ये प्रचलन शुरू हुआ और साथ ही साथ देखिए आप जितनी भी औरतें देखेंगे उनको पहला लहरिया जो है उनकी जब सगाई हो जाती है, सिंजारा आता है, या शादी के बाद तीज से पहले बाद में तीज आती है तो सिंजारा आता है, तो पहला लहरिया या मोठड़ा हमें हमारे ससुराल से हमारी सास की तरफ से तोहफे में मिलता है। सबसे पहली हम जो हमारी तीज मनाते हैं, जो झूला झूलते हैं, जो घेवर खाते हैं, वो हमारे ससुराल से आता है और हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। और हर महिला राजस्थान की तीज सिंजारा दोनों पे लहरिया पहनती है क्योंकि इसके सुहाग से जुड़ा हुआ था, और लहरिया अकेला नहीं पहना जाता, लहरिया 16 श्रृंगार से जुड़ा हुआ होता है। लहरिए के साथ साथ हमारे लिए नथ पहनना ज़रूरी है, चूड़ियाँ जो हरे रंग की आप पहनते हैं या बहुत सारे फैशन के हिसाब से अलग अलग तरीके की चूड़ियाँ या चूड़े आते हैं वो पहना जाता है, हम घेवर खाते हैं, और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सावन पे झूला झूलें। और ये एक सम्मान है हमारा, हमारे पर्यावरण को धन्यवाद देने के लिए एक सम्मान होता है कि हम हमारे पेड़, हमारी प्रकृति और हमारी घास और हमारी सुंदरता को हम एक धन्यवाद देते हैं क्योंकि राजस्थान में बारिश वैसे ही बहुत कम आती है, तो जब भी बारिश आती है तो हमारे लिए वो एक ईश्वर का तोहफा होता है और ये सब हमारा जो महिलाओं का धन्यवाद देने का एक तरीका होता है।
4: तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में। सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज़ नो लव, हस्बैंड के लिए लव एक ही दिखाता है, ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव, एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं, और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं, तो वो शिव जी और पार्वती की जैसी जोड़ी बनी रहती है वैसे ही सब चाहते हैं कि उनकी उनके हस्बैंड के साथ ये जोड़ी बनी रहे और ये उनको आशीर्वाद मिलता रहे।
5: मेरे को कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं बहुत ही चाव से मनाती हूँ हर फेस्टिवल, ये नहीं कि तीज, जितने भी अपने राजस्थान के फेस्टिवल्स होते हैं सभी को ऑर्गेनाइज करते हैं, हम चाहते हैं कि सारी लेडीज एक प्लेटफॉर्म पे आए।
6: साड़ी से प्यार मुझे अब होने लगा है, मैंने कभी ऐसे ट्राई नहीं करा बट अब मुझे लगता है, पहले ऐसा लगता था कि साड़ी पहनना इज़ लाइक अ ट्रिकी टास्क फॉर मी, बट अब जब मैं साड़ी पहनती हूँ आई लव दैट, जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ आई फील वेरी वेरी नाइस। एंड ऑल्सो सावन मतलब बारिश, जैसे मेरा नेम रिजेंबल करता है मेघा, एंड मुझे बारिश बहुत पसंद है, मुझे मेरे हस्बैंड से बहुत प्यार है, अगर तीज और बारिश प्यार का एक सिंबल है तो आई लव तीज।
0: ये कह सकते हैं कि महिलाओं का गेट टुगेदर भी है जहाँ सारी महिलाएं एक साथ आई हैं और राजस्थान का जो कल्चर है, राजस्थान के जो त्यौहार हैं उनको एक साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ निगम जैन, बिजनेस टुडे जयपुर। का त्यौहार साथ मिलाती है घेवर की मिठास और बहुत ही अलग अलग पारंपरिक स्वाद और त्यौहार। और ऐसे में हम हैं एक ऐसी जगह जहां घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नज़र आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं।
6: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है, जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार, और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपये पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने। ये इसका जो बैटर है, जिसमें जनरली हम मैदा, घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोज्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डाला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म, जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड, वो भी डाली है, और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है, और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है, अगेन विच इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे, रबड़ी इसमें नहीं यूज़ हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है, जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है।
0: तो अच्छा, हनी डिप्ड आपने बोला, तो मुझे ये बताइए कि उसका फ्लेवर कितना अलग होगा आम चाशनी वाले घेवर से।
6: मैं बोलूँगी डिफरेंट होगा, बट बहुत डिलीशियस होगा, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, क्योंकि आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, शुगर का कंटेंट भी हम लोग बहुत मिनिमलिस्टिक रखते हैं चीज़ों में। लेकिन अगर आप शुगर का रिप्लेसमेंट देखें तो हनी और भी ज़्यादा आयुर्वेदा में रिकमेंड करा जाता है। ये पूरा आयुर्वेद से बनी हुई रेसिपी है, जो कि आपके हेल्थ और टेस्ट दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिमार्केबल है। साइजेस पे पहले मैं बात करूंगी, तो साइजेस हमने 3 साइज के घेवर यहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से पहला 8 इंची घेवर है, जो एक रेगुलर आपको मार्केट में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद मिनी साइज घेवर है, जो कि 3 इंची में है, साथ ही में कॉइन साइज घेवर है, जिसको 1 बाइट घेवर का नाम भी दिया जाता है, जो 1.4 इंच का घेवर है। आजकल लोग मिठाई खाना चाहते हैं पर वैरायटी में खाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आप हर फ्लेवर चख सकते हैं छोटे छोटे साइजेस में। इसको हमने नाम दिया है कॉइन घेवर। इसमें 16 तरह के फ्लेवर हैं, पान हो गया, ये रबड़ी हो गया, रोज गुलकंद, न्यूटेला, ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, लोटस बिस्कॉफ, ये रेगुलर केसर चाशनी पिस्ता, ये मैंगो मैनिया, तिरामासू, कुनाफा घेवर, लेमन चीज़ केक, ब्लूबेरी, और ये हमारा हो गया लीची क्रीम, और साथ ही में ये बेल्जियन चॉकलेट। हम चाहते हैं कि त्यौहार पे कोई भी आए तो किसी को भी डिससेटिस्फेक्शन ना मिले, हर एज ग्रुप को, हर चॉइस के लोगों को हम यहाँ पे अकोमोडेट कर पाएँ। तो हर एज ग्रुप के हिसाब से हमने जो रेगुलर लोग मतलब बड़े लोग जो खाते हैं चाशनी का घेवर और रबड़ी वाला घेवर, जेंजीज को देखते हुए हमने ब्लूबेरी, तिरामासू, बेल्जियन चॉकलेट, कुनाफा, ये सब चीज़ें लॉन्च करी है। तो हर घेवर की अपनी एक खासियत है, एज के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। साथ ही में हमने इस बार कुछ सेवरी में भी लॉन्च किया, इसको हम घेवर चाट नाम दिया है। तो आप घेवर में सॉल्टेड, सेवरी, तीखा, हर तरह का टेस्ट आपको मिलेगा त्यौहार पे। इट्स ऑल असॉर्टमेंट ऑफ लाइक फ्लेवर्स हियर। घेवर तो हमारे राजा महाराजों के यहाँ से निकली हुई मिठाई है, और ये हमारे राजस्थान की परंपराओं को बहुत ज़्यादा, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई सबसे मेजर मिठाई है। अगर मैं राजस्थान की शान बोलूँ मिठाइयों में, तो वो घेवर है। तो इसको हमने जोड़ने के लिए, अब आप जैनजीज रबड़ी और चाशनी वाले घेवर से मुझे लगता है सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उनको अल्टीमेटली तिरामासू, बेल्जियन चॉकलेट या कुनाफा, ये सब चीज़ें चाहिए। तो इसी की हमने एक छोटी सी कोशिश करी है यहाँ पे, कि हमारी रूट्स को भी हम बरकरार रख सकते हैं, कि हमारा घेवर हम साथ में ले सकते हैं, बाकी जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े फ्यूजन में दे सके, तो हर जनरेशन और जैनजीज प्रेफरेबली इन चीज़ों का एंजॉयमेंट कर सके, और कहीं भी जो हमारी रूट्स हैं वो उसको ना छोड़े। त्यौहार पर खाएँ तो घेवर ही, केक नहीं खाएँ, बट उनके फ्लेवर में हमने एक फ्यूजन इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे,
0: क्योंकि हर एक त्यौहार की खास मिठाई होती है। भारत में हर एक अच्छे ओकेजन को मिठाइयों के साथ जोड़ा जाता है, तो इसमें पारंपरिक घेवर तो है ही, बट कुछ चेंजेस उसमें लाए हैं जिससे जो नई जनरेशन है, खास करके जेंजी है, वो उसको इंजॉय कर सके। इसमें हमें जो लोटस बिस्कॉफ है, बहुत ज़्यादा फेमस ये फ्लेवर बन चुका है, या चीज़ केक के फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, न्यूटेला फ्लेवर जो है वो आ गया है, और बीते कुछ सालों में जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी फ्लेवर्स हुए हैं, जैसे कि कुनाफा है, वो ऐड हुआ है। तो ये घेवर के साथ अगर एक इनोवेशन दिखती है तो अपने आप उसको खाने का मन होता है। खास बात ये है कि ये घेवर आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है, ड्राई फ्रूट्स से ये बना हुआ है, और इसमें आम रबड़ी नहीं है, जो ग्लेजिंग है वो भी ड्राई फ्रूट्स की है, जो इसको अपने आप में खास बनाती है। तो ये जो सीरीज है ये दिखाती है कि क्या इनोवेशन जो परंपरा है, जो ट्रेडिशंस है, उनके साथ अब जोड़ी जा सकती है। कैमरामैन मनोज के साथ रिदम जैन, गुड न्यूज़ टुडे जयपुर।
7: तो कल देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और उससे एक दिन पहले ही पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है, जम्मू कश्मीर से लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश तक। हर तरफ देशभक्ति का रंग दिख रहा है। रियासी का डैम तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठा तो अनंतनाग में पूरे उत्साह और उमंग के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। नोएडा में भी आजादी के जश्न का जोश देखते ही बन रहा है हाथों में तिरंगा और जुबां पर भारत माता के जयकारे। माहौल पूरी तरह से देशभक्ति से सराबोर है।
8: और देखिए, आजादी के जश्न की तस्वीरें सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं है, देश के दूसरे हिस्सों में भी तिरंगा शान से लहरा रहा है। मुंगेर में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर देश के प्रति अपना प्रेम और सम्मान जाहिर किया तो संगम नगरी प्रयागराज की सड़कें भी तिरंगे के रंग में पटी नजर आई। हर चेहरे पर गर्व, हर हाथ में तिरंगा और हर दिल में हिंदुस्तान। कल जब देश स्वतंत्रता दिवस मनाएगा तो ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं होगा बल्कि करोड़ों भारतीयों के गर्व, एकता और आजादी की पहचान बनकर आसमान में लहराएगा।
7: तो देश भर से आजादी के जश्न का जोश आपने देख लिया। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फाइनल रिहर्सल हो रही है। आजादी के पर्व से ठीक पहले सरहद का ये इलाका मानो जश्न के मंच में बदल गया। सुरक्षा जवानों के कदमों की धमक, बैंड की धुन और तिरंगे की शान सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। मुझे लगता है श्वेता, आप बताइए, आप शायद दो बार गई हैं अटारी या तीन बार, बताइए रौनक कैसी होती वहाँ?
9: How is the जोश?
7: पूछा
9: जाता है हर बार जब भी आप जाइए तो यही रहता है और उस समय ये लगता है कि वो है पाकिस्तानी और बस यहाँ पे हमारे हाथ में, यू नो, हम पूरे एकदम जोश के साथ, ऐसे लगता है कि हम सभी खुद एक जवान की भूमिका में अपने आप को देखते हैं और जोश उन्हीं की तरह रहता है।
7: बिल्कुल, तस्वीरें आप भी

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ जुनून मातृभूमि की शान का है। हाथों में लहराता तिरंगा और दिल में हिंदुस्तान भी है। हर कदमों में वो जोश जब हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। वो है 15 अगस्त का दिन।

तस्वीरें अटारी बॉर्डर की हैं, जहां 15 अगस्त से पहले आजादी का जश्न दिखाई दिया। सरहद के इस छोर पर देशभक्ति सिर्फ महसूस नहीं हो रही, बल्कि हर कदम, हर ताल और हर प्रस्तुति में नजर आ रही है। कदम से कदम मिलाते जवान, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर आत्मविश्वास और अंदाज ऐसा कि देखने वाला भी जोश से भर जाए। 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन भी है जब देश अपनी आजादी का जश्न मनाता है, उन वीरों की याद दिलाता है जिनके संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली। इसी खास दिन को यादगार बनाने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिहर्सल जारी है और इस अभ्यास को देखने

किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी की जुबान पर भारत माता की जय, तो कोई जवानों की कदम ताल देख कर गर्व से भर जा रहा है। जवानों की ऊंची कदम ताल, दमदार अंदाज और हर हरकत में जोश, यही तो है देश के जवानों की ताकत।

अटारी वाघा बॉर्डर की पहचान यहां होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। जवानों की ऊंची कदम ताल, जोशीली चाल और अनुशासन देखने वालों में रोमांच भर देता है। हर कदम के साथ सरहद की ताकत का एहसास देता है। यहाँ खड़े जवान सिर्फ परेड का हिस्सा नहीं होते, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान के प्रहरी नजर आते हैं। उनका जोश देख लोगों के अंदर भी देशभक्ति का भाव और मजबूत हो जाता है। लेकिन इस बार अटारी बॉर्डर पर तैयारियां सिर्फ जवानों की परेड तक सीमित नहीं है। आजादी के जश्न में संस्कृति, साहस और हुनर के रंग भी शामिल किए जा रहे हैं। डांस हो, ताइक्वांडो हो या अलग अलग राज्यों की पारंपरिक झलक, हर प्रस्तुति के लिए खूब अभ्यास हो रहा है। ताल से ताल मिलाते कदम, एक के बाद एक शानदार स्टेप और चेहरे पर आत्मविश्वास। खास बात ये कि इस आयोजन में महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। मराठा अंदाज में सजी महिलाएं जब पारंपरिक पोशाक में सामने आती हैं, तो उनकी प्रस्तुति देखते ही बनती है।

0: कहीं मराठा संस्कृति की झलक नजर आ रही है तो कहीं पंजाबी रंग बिखरता है। अलग अलग वेशभूषा में सजी महिलाएं अपनी प्रस्तुति के जरिए देश की विविधता को सामने ला रही हैं। वहीं ताइक्वांडो की तैयारी में साहस और आत्मरक्षा का संदेश नजर आता है। यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ कोई कार्यक्रम देखना भर नहीं है बल्कि देशभक्ति को करीब से महसूस करने का मौका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और अटारी के बाद चलिए अब आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां इस बार जश्न आजादी में देशभक्ति के साथ भक्ति का रंग भी खुलने वाला है। लखनऊ में 15 अगस्त के जश्न का मन सजकर तैयार है, लेकिन इस बार का ये जश्न कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि यहां आजादी का उत्सव सिर्फ तिरंगे और देशभक्ति के तरानों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि यूपी की सांस्कृतिक विरासत, यहां की परंपराएं, यहां की आस्था और अपने गौरवशाली इतिहास की झलक भी एक साथ दिखाई देने वाली।
2: यानी लखनऊ में इस बार आजादी का जश्न यूपी की संस्कृति के रंग में रंगा नजर आएगा। जहां एक तरफ देश के वीरों को नमन होगा तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की मिट्टी की खुशबू भी महसूस होगी। लोक परंपराओं से लेकर भक्ति संगीत तक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लेकर यूपी के गौरवशाली इतिहास तक हर रंग इस खास जश्न का हिस्सा बनने वाला है।
3: आजादी का जश्न है तो जाहिर सी बात है कि रंग भी तिरंगे का है, रोशनी भी तिरंगे की है और हर तरफ नजर बिल्कुल यही आ रहा है, हिंदुस्तान का गौरव, राजधानी दिल्ली से लेकर देश की सरहद तक हर कोना जैसे आजादी के उत्सव में रंग चुका है। कहीं इमारतें तिरंगे की रोशनी में नहा रही हैं तो कहीं सड़कें और बाजार तिरंगे से चमक रहे हैं।
4: और देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही तस्वीरें ये बता रही हैं कि आजादी का पर्व कितना खास है। कहीं तिरंगे की रोशनी से आसमान जगमगा रहा है तो कहीं पूरा शहर देशभक्ति के रंग में डूबा नजर आ रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं आजादी के जश्न की वो खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देखकर आंखों को सुकून मिलेगा और दिल गर्व से भर जाएगा।

0: इन रंगों की जगमगाहट। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के होने वाले मुख्य राष्ट्रीय समारोह को लेकर दिल्ली भी जगमगा रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ खूबसूरत तिरंगे की रोशनी से चमकता हुआ नजर आ रहा है। तिरंगे की आकर्षक एलईडी लाइट से की गई ये दिव्य सजावट लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। आजादी के उत्सव को लेकर देश का कोना कोना तिरंगे की रोशनी से रोशन है। यूपी की राजधानी लखनऊ भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सराबोर है। यहाँ विधान भवन समेत सरकारी और ऐतिहासिक इमारतों के अलावा मुख्य मार्गों को भी आकर्षक रूप से सजाया गया है। स्वतंत्रता दिवस उत्सव के शानदार रंग मुंबई पर भी पूरी तरह छाया हुआ है। चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन हो या उसके सामने स्थित बीएमसी का मुख्यालय, तिरंगे की दिव्य रोशनी से चमक रहा है। सीएसटी और बीएमसी हेडक्वार्टर्स के अलावा विधान भवन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एसबीआई से लेकर एलआईसी की बिल्डिंग तक तिरंगे की चमक से सराबोर है। आजादी के उत्सव को लेकर ऐसी ही चमक हर तरफ बिखरी हुई है। ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति वाली शहर ग्वालियर भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्य रोशनी और सजावट में चमक रहा है। ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की इस बिल्डिंग की छटा देखते ही बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार की पहचान वाले राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी भी 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगामय है। चाहे विधानसभा भवन हो या जनता भवन, तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। देश के सरहदी इलाके भी स्वतंत्रता दिवस के रंग में पूरी तरह रंगे हुए हैं। पंजाब के अमृतसर स्थित अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें देखिए। बॉर्डर का प्रवेश द्वार से लेकर दर्शक दीर्घा तक को आकर्षक तिरंगी रोशनी से सजाया गया है। सीमा का पूरा परिसर केसरिया, सफेद और हरे रंग की एलईडी लाइट से जगमगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, तैयारी सिर्फ तिरंगे को सलाम करने की नहीं है, बल्कि आजादी के जश्न में आज सिनेमा का पर्दा भी रंगा हुआ है, क्योंकि थिएटर्स में आज एक दो नहीं बल्कि 5 फिल्मों का बड़ा धमाका हुआ है। बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक हर तरफ नई कहानियां हैं, नए किरदार हैं और दर्शकों की नई उम्मीदें भी हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि इस बार बॉक्स ऑफिस पर भी मुकाबला जबरदस्त है।
2: बिल्कुल, आपको बता दें, आज रिलीज हुई फिल्मों में बंटवारा 1947 और आवारापन 2 पर खास नजर है। बंटवारा 1947 जो कि राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है, तो आवारापन 2 की कमान नितिन कक्कड़ ने संभाली है और इमरान हाशमी एक बार फिर से शिवम पंडित के किरदार में लौटे हैं। अब सवाल है कि आजादी के इस जश्न में दर्शकों का दिल किस फिल्म ने जीता है और कैसी है ये दोनों फिल्में, बता रही है हमारी सहयोगी सना फरजीन।
3: बॉर्डर के बाद सनी देओल एक बार फिर भारी भरकम डायलॉग्स बोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार वो ना तारा सिंह है ना ही कोई सेलिब्रेटेड आर्मी ऑफिसर। इस बार वायलेंस की जगह वो पीस, होप और लव का रास्ता चुनते हैं। पार्टीशन के दौरान इंडिया में अपना घर छोड़ने के बाद सनी का कैरेक्टर सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान पहुंचते हैं। उन्हें एक घर अलॉट होता है, लेकिन उस घर की असली मालिक एक हिंदू औरत पहले से वहां रह जा लेकिन उस घर की असली मालिक एक हिंदू औरत पहले से वहां रह रही होती है। जब पूरा मोहल्ला, यहां तक कि मिर्जा का बेटा भी उसके खिलाफ हो जाता है, तो मिर्जा उस औरत की हिफाजत के लिए सबके सामने खड़ा हो जाता है। राजकुमार संतोषी की फिल्म का प्रमाइस खूबसूरत है, यूनिटी, इंक्लूसिविटी और ये मैसेज कि इंडिया की असली ताकत उसकी ब्रदरहुड में है। लेकिन स्ट्रेच स्क्रीन प्ले और सब पार परफॉर्मेंसेस की वजह से फिल्म डिसअपॉइंट करती है। सनी देओल ने अपने करियर में अकेले कितने ही विलन्स को हराया है और यहां भी लगता है कि पूरी फिल्म का बोझ उनके कंधों पर अकेले डाल दिया गया है, क्योंकि एक एबल कास्ट के बावजूद जिसमें शबाना आजमी, प्रीति जिंटा, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे एक्टर्स हैं, कोई भी दिल को छू नहीं पाता। इमोशन, सेटअप, कैरेक्टर, सब कुछ परफॉर्मेटिव और आर्टिफिशियल लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे एक्टर्स फिल्म नहीं किसी प्ले की रिहर्सल कर रहे हैं। म्यूजिक भी फिल्म का वीक पॉइंट है, एक भी गाना ऐसा नहीं है जो याद रह जाए। फिल्म इम्पोर्टेंट जरूर है, खासकर ऐसे वक्त में जब नफरत हमारी इमोशंस, रिलेशनशिप्स और पूरी दुनिया को ड्राइव कर रही है। फिल्म अस वर्सेस देम वाली सोच को रिजेक्ट करती है और ये याद दिलाती है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और ये भी कि कोई रिलीजन बुरा नहीं होता, इंसान होते हैं।
4: और चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए ट्राई पर चर्चा और जीएनटी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: अब ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जन सैलाब। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किला पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान।
2: एक माँ की पसंदीदा चीज उसके बच्चे के लिए सिर्फ एक पसंद नहीं होती, उसमें माँ की यादें होती हैं। बिहार से शुरू हुई ऐसी ही एक कहानी अब दिल्ली की फैशन की दुनिया में अपने रंग बिखेर रही है। 32 साल के अमन वर्मा ने अपनी माँ के पसंदीदा सफेद रंग को ही अपनी पहचान बना लिया और आज उसी सफेद रंग के जरिए वो फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं।
4: और देखिए, ये कहानी सिर्फ एक रंग की नहीं, ये कहानी है माँ की यादों को अपने साथ लेकर चलने की, माँ के जज्बातों को अपनी पहचान बनाने की और उस पहचान से एक नया फैशन ब्रांड खड़ा कर देने की।

देश पूरी तरह आजादी के उत्सव के रंग में डूब चुका है। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर जगह भव्य सजावट देखने को मिल रही है। हर तरफ बस नजर आ रही है तो

0: एक फेवरेट साड़ी थी मेरी मम्मी की, लाइक वाइट कलर की विथ फ्लोरल, पिंक फ्लोरल्स. तो वो कभी शी कुड नॉट वेयर बिकॉज दादी ने कभी अलाउ ही नहीं किया. जब मैंने निफ्ट में पढ़ाई शुरू करी, जब मेरा मैंने ग्रेजुएट कर लिया, देन आई इट स्टार्टेड क्लिकिंग कि ऐसा क्यों है. सफ़ेद को ही ऐसे सैडनेस या विडो के लिए ही क्यों चूज किया गया है, व्हाई कांट इट बी अ सेलिब्रेशन, कलर ऑफ सेलिब्रेशन आल्सो.
1: बिहार का एक लड़का जिसकी माँ का पसंदीदा रंग था सफ़ेद, वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनना चाहती थी, तमाम सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन सफ़ेद रंग पर लगी बंदिशों की वजह से उसकी माँ कभी अपना पसंदीदा रंग पहन नहीं पाई.
2: कहते हैं रंगों की भी अपनी एक कहानी होती है. ऐसा ही सफ़ेद रंग जिसको समाज में उदासी और शोक से जोड़ा गया. अपनी माँ का इस पसंदीदा रंग से लगाओ अमन भले ही देर से समझे, लेकिन जब उस समझ को जमीन पर उतारा तो सफ़ेद रंग की रंगत को दुनिया तक पहुँचाने में जुट गए.
1: अमन वर्मा की वर्कशॉप में आ गए हैं हम. यहाँ कोई भी ड्रेस, चाहे वो तैयार हो चुकी हो या फिर तैयार होने के प्रोसेस में हो, वो सफ़ेद रंग की ही होगी. यहाँ चारों तरफ आपको सफ़ेद रंग बिखरा हुआ मिलेगा.
2: अपने माता पिता को कोरोना महामारी में खो चुके अमन वर्मा की फैशन डिजाइनिंग में माँ की याद और भी गहराई से जुड़ गई.
0: हर किसी के घर में हुआ होगा कि आपकी मम्मी आपके लिए कुछ बना रही हो एंड वो आपके बॉडी पे रख के आपकी वो स्वेटर की लेंथ और वो सब मापती है. सो दिस इज दैट स्टोरी ऑफ माइन. इफ यू कैन सी, यहाँ पे आपको दो हाथ दिख रहे होंगे और ये निटिंग नीडल है. सो दिस इज फ्रॉम दैट मेमोरी.
2: बिहार में पले बड़े फैशन डिजाइनर अमन वर्मा बचपन में सफेद रंग से जुड़ी कई सामाजिक मान्यताओं को घर में महसूस करते रहे. सफेद रंग के प्रति उदासी और सफेद रंग से जुड़ी कई सामाजिक मान्यताओं को घर में महसूस करते रहे. सफेद रंग के प्रति उदासी और खामोशी से जुड़े सवाल सालों साथ रहे और आज इन्हीं सवालों का जवाब अमन का ये नायाब फैशन ब्रांड दे रहा है.
0: कोई खरीदेगा, मैंने रिसर्च शुरू किया था ऑलमोस्ट अराउंड 2018 में. मैंने थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च शुरू किया कि अगर कोई खरीदेंगे. मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, मेरे दोस्तों से बात करनी शुरू करी कि क्या लगता है तुम्हें कि ये हो सकता है पॉसिबल या नहीं हो सकता है. सो एक साल करीबन ये सब ही करने के बाद देन मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है. अभी भी बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो कर रहे हैं सफ़ेद, ऐसा नहीं, बट वो एक चंक में नहीं कर रहे हैं. लाइक अगर वो 50 का एक कलेक्शन बना रहे हैं, दे आर डूइंग 10 लुक्स इन आइवरी.
2: आज अमन के माता पिता दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माँ की सफेद रंग की ख्वाहिश को हकीकत के पैमाने पर नापते अमन के डिजाइन ये ड्रेसेस केवल आधुनिक फैशन को फ्लॉन्ट नहीं कर रही, बल्कि उस सामाजिक सोच को भी चुनौती दे रही हैं, जिसमें सफेद रंग को लंबे समय तक विधवापन और शोक से जोड़कर देखा गया.
1: बचपन में माँ की एक याद, माँ का चुना हुआ एक रंग, उसको एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को लेकर आगे जा रहे हैं अमन. और कोशिश ये है कि सफ़ेद के इर्द गिर्द ही अब सब कुछ रचना है और सफ़ेद को लेकर जो कुछ भी अब तक कहा गया, जो समझा गया समाज में, उन सब को बदल कर रख देना है. यानी कि सफ़ेद में भी अब रंग भरने की बारी आ गई है. कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली.
3: नक्सल हिंसा से मुक्ति के बाद बस्तर बदल रहा है और इसके साथ ही बदल रही है बस्तर की बेटियों की जिंदगी भी. कभी जिन हाथों में बंदूक थी, आज उन्हीं हाथों में आत्मविश्वास है और कदम रैंप पर है. पूर्व नक्सली महिलाओं की रैंप वॉक की तस्वीरें सामने आई तो पूरे देश ने इस बदले हुए बस्तर को देखा. लेकिन सवाल है, बंदूक से रैंप तक का ये सफर आखिर कैसे तय हुआ?
4: जी हाँ, इन महिलाओं के लिए रैंप पर चलना सिर्फ एक फैशन शो नहीं है, बल्कि बीते अंधेरे से निकलते हैं. और इस बदलाव की कहानी आखिर क्या है और रैंप पर कदम रखते वक्त इन महिलाओं के दिल में आखिर क्या था, आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं.

0: इस फैशन शो की तस्वीरें दिनों वायरल हैं। असल में फैशन शो ना तो चमक दमक से भरपूर किसी मेट्रो शहर में हुआ है और ना ही इसमें फैशन और ग्लैमर की दुनिया की नामी गिरामी हस्तियों और मॉडल्स ने भाग लिया। मुंबई दिल्ली की चकाचौंध से दूर छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुए इस फैशन शो में जिन महिलाओं ने रैंप वॉक की वो असल में शहरी दुनिया से काफी दूर रही हैं। ये महिलाएं बस्तर के जंगलों में नक्सलियों के बीच काम कर चुकी हैं, लेकिन सरेंडर करने के बाद से ये अब फैशन की दुनिया में कदम रखकर जिंदगी की नई राह पर कदमताल करने निकल पड़ी हैं।
1: उधर जंगल में जाके मैं काम किए, लेकिन उधर काम किए करने से भी जनता का जल जंगल जमीन बचाने के मैं काम किए। इधर आके भी अच्छा लगता है, सिलेंडर करके कैसे काम करना है, कैसे घूमना, सब लोगों को इधर उधर जाके देखने से भी अच्छा लगता है।
0: सुकमा की इन महिलाओं की जिंदगी बड़े खौफनाक माहौल में बीती है। कई महिलाओं को तो अपने बारे में कुछ बोलने में भी हिचक होती है, ये हिंदी अंग्रेजी बोलना भी नहीं जानती। इनमें से कुछ महिलाओं ने स्थानीय भाषा में ही अपने मन के भाव जताए। एक महिला पुलिसकर्मी के जरिए हमने इनकी कहानी सुनी और जाना कि किस तरह इनके जीवन में बदलाव आया है।
2: नक्सली में थी उस समय, जंगल के लिए वहाँ रहती थी। वहाँ से आने के बाद बारूद जैसे कई घटना हो जाएगा तो मर भी जाऊंगी बोल के सोच के सिलेंडर की है। सिलेंडर करने के बाद यहाँ आने के बाद पुनर्वास में कदम लेने के बाद इधर रायपुर जाने से इनको जैसे पहले जंगल में कुछ नहीं देखी थी, रायपुर जाने के बाद देखने का मिला है।
0: इन तमाम महिलाओं की यही कहानी है। सरेंडर कर चुकी 9 पूर्व नक्सली महिलाओं ने कभी फैशन शो में भाग लेने या रैंप वॉक करने के बारे में सोचा तक नहीं था, लेकिन पुनर्वास कार्यक्रम के दौरान जब इन्हें ये चांस मिला तो अपने पक्के इरादे, लगन और भरपूर आत्मविश्वास के साथ इन्होंने ये भी कर दिखाया।
2: रेनबो करने से कभी ऐसा हम लोग नहीं की हैं, हमेशा जंगल में ही चलने वाले, यहाँ भाग लेंगे कि कैसा बोल के सोच में, मतलब मन में सोच में थे। सुकमा से आए हैं, सुकमा से हम लोग का नाम, मतलब नाम खराब नहीं करेंगे बोल के इनको मैं जैसे बोलती थी सर शाम को।
0: मुंबई से आए एक्सपर्ट ने लगातार 7 दिनों तक इन महिलाओं को रैंप वॉक, वेशभूषा, ग्रूमिंग और माइक पर बेझिझक बोलने का विशेष प्रशिक्षण दिया। इसका ये फायदा हुआ है कि कभी बंदूक थामकर हर पल मौत और पुलिस कार्रवाई के साए में रहने वाली ये महिलाएं अब समाज की मुख्य धारा में लौट रही हैं और नई जिंदगी की शुरुआत करने को तैयार हैं।
3: समर्पित जो नक्सली है रैंप वॉक इन्होंने किया, आज पूरे इनकी जो रैंप वॉक की वीडियो है काफी वायरल हो रहा है और देश दुनिया में इनके वीडियो को लोग देख रहे हैं। अब जहाँ पे नक्सलवाद के नाम से सुकमा जाना जाता था, अब यहाँ पर यहाँ जो समर्पित महिला नक्सली है मॉडल की तरह रैंप वॉक कर रही है।
0: इन महिलाओं ने सरेंडर करने के बाद कई तरह के हुनर सीखे हैं। नक्सली संगठन छोड़कर सरेंडर करने के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरह बदल रही है। कभी बंदूक और जंगल के खतरनाक माहौल के बीच जीवन गुजारने वाली इन महिलाओं के लिए रैंप वॉक के स्टेज तक पहुंचना ही बस्तर में बदलाव की नई तस्वीर पेश कर रहा है। ये महिलाएं अब इस खुले माहौल में अपनी मर्जी से जीवन जी रही हैं, भविष्य को लेकर खुश हैं और आत्मनिर्भर होने की तैयारी कर रही हैं। सुकमा से धर्मेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कहते हैं कि खून के रिश्ते कितनी भी दूरियां क्यों ना हो, एक दिन अपना रास्ता खोज ही लेते हैं। लेकिन नीदरलैंड से सामने आई एक कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अनाथालय, दो अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। इन दोनों को कभी पता ही नहीं था कि दुनिया में कहीं उनकी एक बहन भी है।
5: बिल्कुल, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिली। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और एक दूसरे के बेहद करीब आती चली गई। उन्हें क्या पता था कि करीब 40 साल बाद एक डीएनए टेस्ट उनकी जिंदगी का वो राज खोलने वाला है जिसे किस्मत ने इतने सालों से छुपा कर रखा था।
0: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये हैं मीना गेल्टिंग और मिनल टिस्सेन, दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुईं और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनकी जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
6: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
0: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और 2 बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा। मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
6: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
0: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इटली में क्यों धधकते लावे के करीब पहुंच रहे हैं लोग।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: चलिए अब बात करते हैं इटली के उस ज्वालामुखी की जिसका नाम सुनते ही सामने आता है आग, धुआं और लावा। सिसली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। विस्फोट के बाद आसमान में राख का गुबार छाया, तो ढलानों पर गर्म लावा बहता हुआ नजर आ रहा है। इसी नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट भी एटना का रुख कर रहे हैं।
7: लेकिन जिस नजारे को देखने के लिए लोग रोमांचित हो रहे हैं, वो खतरे की घंटी भी बजा रहा है। ज्वालामुखी की एक्टिविटी बढ़ने के बाद केटानिया एयरपोर्ट पर उड़ानों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने भी लोगों को बिना गाइड और पूरी जानकारी के ज्वालामुखी के पास जाने से बचने की सलाह दी है।

0: इटली के सिसली द्वीप पर मौजूद माउंट एटना इन दिनों लाल लाल धधकते लावे और राख की चादर से ढका नजर आ रहा है। ज्वालामुखी से निकलता गर्म लावा ढलानों पर नीचे की तरफ बह रहा है और इसी रोमांचक नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट एटना का रुख कर रहे हैं। हर शाम करीब 2000 लोग एटना की तरफ जा रहे हैं। इनमें कई लोग बगैर किसी गाइड के ही ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय गाइड्स का कहना है कि ज्वालामुखी की स्थिति कभी भी बदल सकती है, ऐसे में बगैर जानकारी और सुरक्षा इंतजाम के ऊपर जाना बेहद जोखिम भरा हो सकता है। एटना से निकलने वाली राख का असर सिसली के हवाई सफर पर भी पड़ा है। ज्वालामुखी की राख के कारण कैटानिया एयरपोर्ट पर उड़ानों को फिर रोकना पड़ा। एयर स्पेस पर पाबंदियां बढ़ाई गईं, जिससे पीक समर हॉलीडे सीजन में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गईं। कैटानिया एयरपोर्ट सिसली का प्रमुख एयर ट्रैवल गेटवे है और इटली के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट्स में भी इसकी गिनती होती है। पिछले हफ्ते से पूर्वी सिसली में ज्वालामुखी की गतिविधि और हवा की दिशा में बदलाव की वजह से राख आसपास के इलाकों में फैल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एटना के लावे की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लाल लाल लावे का ये खतरनाक मंजर लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। माउंट एटना लगातार लावा और राख उगल रहा है। एक तरफ प्रकृति का ये अद्भुत और रोमांचक नजारा लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ती भीड़ ने सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। लोगों से अपील की जा रही है कि तय रास्तों पर रहें, सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और बिना जानकारी या गाइड के ज्वालामुखी के करीब जाने की कोशिश न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल चुकी।
1: कल देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश के कोने कोने में तिरंगे को सलामी देने के लिए देशभक्ति का जोश नजर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती से तिरंगे को सलामी देने की ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे।
2: अमरावती पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण आकरे ने देशभक्ति के जज्बे में पानी के अंदर साइकिल चलाकर तिरंगे को अनोखी मान वंदना दी है। करीब 10 फीट गहरे पानी में 25 मीटर तक साइकिल चलाकर उन्होंने देश के तिरंगे को सलाम किया और इस दौरान करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक अपनी सांस रोककर यह हैरत अंगेज प्रदर्शन किया।
1: तो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं अनोखी देशभक्ति हम इसको कहेंगे, क्योंकि जहां एक तरफ कल हम आजादी दिवस पर तिरंगा लहराएंगे, हर जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही, लेकिन इस शख्स ने इस आजादी दिवस को अनोखा बनाने के लिए पानी के अंदर साइकिल चलाई। तो चलिए चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी तीज बधाई दी जाए।
3: बिल्कुल, तो कल अपने दिन को एंजॉय कीजिए, जिनकी छुट्टी है छुट्टी एंजॉय कीजिए, जिनको ऑफिस जाना है वो ऑफिस जाइए
4: और सेलिब्रेट करिए भाई
5: और घेवर भी खाइए
1: और खिलाइए भी। मिलते हैं मंडे को।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुन।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बिक रही देशभक्ति की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास निकाली तिरंगा बाइक रैली। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किले पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम। 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल के मुताबिक 10% से ज्यादा की भक्तों में वृद्धि। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से की खास बातचीत। खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला। विजेताओं को दी बधाई।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर तिरंगा फहराएंगे। यही वो प्राचीर है जहां से हर साल तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, बल्कि आजादी के उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लाल किले ने सल्तनतों को बदलते देखा, हुकूमतों को आते जाते देखा, लेकिन आज ये किसी बादशाह की सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। मुगल दौर से आजाद भारत तक, गुलामी की आहट से स्वतंत्रता की हुंकार तक, और सत्ता के प्रतीक से राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तक, लाल किले की कहानी दरअसल भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है। जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर।

0: आज वो शुभ घड़ी है जहां हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था उन क्रांतिकारियों पे चला था जिन्होंने की फौज को ज्वाइन कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर वो लड़े थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है उनमें से वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: में चूंकि विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो आपके नादिर शाह हो, जितने लोग भी आए, तो यहाँ से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी ऐसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब तो हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा, और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर साल 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत होता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें ये याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान और शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना।
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदलकर दिल्ली ले जाएंगे, और वहाँ पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपने एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं, लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ है, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरह से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवाने खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई, और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना, और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा।
4: तो तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव

0: तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जेएनटी।

0: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: तो उत्तराखंड से भी आजादी के जश्न की तस्वीरें सामने आई, टिहरी झील में नामों पर भव्य तिरंगा रैली निकाली गई, लाइफ जैकेट के साथ देशभक्ति के जोश से सराबोर युवाओं ने झील में नामों पर सवार होकर तिरंगा रैली में शिरकत की। 150 से ज्यादा लोगों ने टिहरी झील की लहरों पर 20 से ज्यादा नौकाओं पर सवार होकर ये तिरंगा रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर नावों पर सवार युवाओं ने देशभक्ति के जज्बे से सर्द फिजाओं में राष्ट्र प्रेम का जोश भर दिया। भारत माता की जय जयकार और वंदे मातरम से पूरा इलाका गूंज उठा। झील की लहरों पर इस भव्य तिरंगा रैली का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया। पीएम मोदी की अपील पर देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। ये तिरंगा रैली भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत यहाँ पर आयोजित हुई, जिसमें शामिल लोगों ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
0: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।

0: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में आयोजित तिरंगा रैलियों में जोश और जुनून के रंग, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उमड़ा जनसैलाब। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किले पर समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल्स एडिशन 2026 का उद्घाटन किया। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, पिछले साल के मुकाबले 10% से ज्यादा की भक्तों में वृद्धि। दिल्ली एनसीआर में बारिश, हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर यूपी बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, नैनीताल में 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से मुलाकात की, बधाई दी उनको और बढ़ाया उनका हौसला।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे झंडों से भरा नजर आया दिल्ली का कर्तव्य पथ, नई दिल्ली जोन में अनोखी PCR वैन और बाइक तिरंगा रैली। मुंगेर में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, बिहार के CM सम्राट चौधरी भी इस रैली में शामिल हुए। भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, लहराते तिरंगे हाथ में लिए सड़कों पर निकले लोग। श्रीनगर के डल झील में शिकारों SDRF की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई पूरी डल झील, भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों, युवाओं, अधिकारियों ने लिया हिस्सा। रायपुर में तिरंगा यात्रा दौड़ का आयोजन, देशभक्ति के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शानदार आयोजन हुआ। देशभक्ति के रंग में रंगा प्रयागराज, निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोग हाथों में तिरंगा लिए हुए शामिल। भोपाल में सुंदर तिरंगा बोट रैली का आयोजन हुआ, बोट क्लब में हुए कार्यक्रम में तिरंगे से सजे हजारों बोट्स दिखाई दी। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मान वंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल। रामबन में CRPF 84 बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान का किया आयोजन, छात्राओं के साथ निकाली तिरंगा रैली। कुलगाम में निकाली गई भव्य तिरंगा रैली, लोगों ने लगाए भारत माता की जय के जयकारे। रामबन में स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जिला पुलिस लाइंस में फुल ड्रेस रिहर्सल परेड आयोजित हुई। जोशीले अंदाज में कदम ताल करते नजर आए पुलिस के जवान, स्कूली छात्रों और बैंड ने भी हिस्सा लिया।
3: कदम से कदम मिला तिरंगे को सलामी देता सिंहासन हिल उठे।
2: लद्दाख के जांस्कर क्षेत्र में दिखी देशभक्ति और राष्ट्र एकता की मिसाल, भारतीय सेना ने फहराया 100 फीट ऊंचा राष्ट्र ध्वज। देश के कोने कोने में लोगों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना था इस गरिमामयी समारोह का उद्देश्य। बड़ी संख्या में छात्रों, स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के कारगिल में हुई 80वें स्वतंत्रता दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित, दिखा देशभक्ति के जोश का नजारा।
4: जोरदार तालियां हो जाए उनके ठीक पीछे, अब बारी है।
2: मार्च पास्ट में स्कूली छात्रों की टुकड़ियों, एनसीसी कैडेट्स और लद्दाख पुलिस बैंड ने लिया हिस्सा, फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज।
4: अंजुम के
2: पूरे कश्मीर में आजादी के जश्न का जोशीला माहौल, कश्मीरी महिलाएं बना रही मेड इन कश्मीर तिरंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जम्मू कश्मीर में फहराए जाएंगे झंडे, सरकारी इमारतों की भी शोभा बढ़ाएंगे ये ध्वज। रामबन में जश्न आजादी को समर्पित लाइव म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ, देशभक्ति के तरानों पर झूमे लोग। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के अभेद और कड़े इंतजाम, लाल किले के आसपास मल्टी लेयर्ड सुरक्षा घेरा। ड्रोन से की जा रही आसमान की निगरानी, बॉर्डर्स पर सख्त चेकिंग, शहर भर में भारी वाहनों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के सभी रास्तों में वाहनों की आवाजाही पर रोक, प्रशासन की लोगों से सहयोग करने की अपील। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले हाई अलर्ट पर एजेंसियां, स्वतंत्रता दिवस और आगामी बूढ़ा अमरनाथ जी की यात्रा के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई, आजादी के जश्न के बीच संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर। पंद्रह अगस्त से पहले जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर हाई अलर्ट, बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी, जवानों ने शुरू की विशेष सुरक्षा एक्सरसाइज। पुलिस बीएसएफ की संयुक्त पेट्रोलिंग जारी, रात में भी बॉर्डर पर कड़ी निगरानी, स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस से पहले इंदौर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट, एयरपोर्ट पर हाई लेवल एंटी टेरर मॉक ड्रिल, सीआईएसएफ बीएसएफ पुलिस ने किया अभ्यास। आतंकी हमले की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, क्विक रिस्पांस टीम ने कार्रवाई की प्रैक्टिस की, बम निरोधक दस्ते ने अभ्यास में हिस्सा लिया। पंद्रह अगस्त से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के 6 चरण, पहले 5 चरण सीआईएसएफ की निगरानी में। स्वतंत्रता दिवस से पहले अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट की फाइनल रिहर्सल, बीएसएफ जवानों ने किया शानदार ड्रिल का प्रदर्शन।

0: 15 अगस्त से पहले बॉर्डर पर देशभक्ति का माहौल, जवानों ने पूरे जोश के साथ किया कदमताल, झंडा उतारने की प्रक्रिया का अभ्यास हुआ। मीटिंग रिट्रीट की तैयारियों को दिया अंतिम रूप, जवानों के जोश ने खींचा सबका ध्यान, अनुशासन तालमेल का दिखा शानदार नजारा। जवानों की शानदार प्रस्तुति ने मोहा मन, बॉर्डर पर गूंजा देशभक्ति का उत्साह, मुख्य समारोह से पहले हर तैयारी परखी गई। कदमों की ताल से गूंजा अटारी बॉर्डर, बीएसएफ की परेड ने बढ़ाया देशभक्ति का जोश। भारतीय वायुसेना जल्द करेगी अपने परिवहन बेड़े में बड़ा बदलाव, पुराने परिवहन बेड़े को 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने की योजना। नांदेड़ में गुरुद्वारा पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, अखंड पाठ के साथ टेका माथा, साथ ही लंगर सेवा की। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई सुबह की मंगला आरती, महाप्रभु के दर्शन करने उमड़े था। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए हुए पवित्र यात्रा में शामिल। इस दौरान प्रशासन की सुरक्षा यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई कांवड़ यात्रा। बांका में कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे भक्ति के कई अनोखे रंग, विशाल शिवलिंग वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग की प्रतिमूर्ति है ये विशेष कांवड़, औघड़ धानी बम रखा गया है इस अनोखी कांवड़। धनबाद से ये खास कांवड़ लेकर निकला है 13 कांवड़ियों का जत्था, 33-33 फीट है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई। कल से राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में फिर से बदलाव, बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहनेंगे पुजारी, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम का प्रिय है। रेशम यानी सिल्क का होगा ये वस्त्र, रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ख्याल में रखते हुए ड्रेस कोड में बदलाव। जयपुर में इस बार चर्चा में है 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर, इसमें ड्राई फ्रूट्स, शहद, सोने का वर्क इस्तेमाल हुआ। अब घेवर सिर्फ पारंपरिक स्वाद में नहीं बल्कि ब्लूबेरी, चीज केक, तिरामिसू जैसे फ्लेवर्स में भी मिल रहा। रेगुलर के साथ मिनी साइज में भी मिलेगा आपको घेवर, ग्राहक अपनी पसंद के अलग अलग फ्लेवर्स का पैक बनवा सकते हैं। घेवर का नया रूप घेवर चाट लोगों को काफी पसंद आ रही है, इसमें दही, छोले, चटनी, मसालों का इस्तेमाल। राजस्थान में तीज पर घेवर खिलाने की बहुत पुरानी परंपरा है, अब नए फ्लेवर और डिजाइन के साथ घेवर पुरानी परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ रहा है। जयपुर में तीज से पहले महिलाओं ने खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया, लहरिया, मेहंदी और राजस्थानी गहनों में सभी ने त्योहार का रंग जमाया। कार्यक्रम में इन महिलाओं ने अलग अलग रंगों और डिजाइन के लहरिए पहने, पारंपरिक कपड़ों ने कार्यक्रम में चार चांद लगाए। एक महिला ने हरे नीले रंग और मोर के डिजाइन से मोरनी जैसा लुक बनाया। उनका खास पहनावा कार्यक्रम में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना। महिलाओं ने इस खास मौके पर अलग अलग एक्टिविटीज में हिस्सा लिया, राजस्थानी गानों पर डांस किया, स्वादिष्ट पकवानों ने माहौल को खुशनुमा बनाया। राजस्थान में तीज को परंपरा संस्कृति का माना जाता है त्यौहार। अब तीज की सवारी के साथ जयपुर में उत्सव और खास नजर आएगा। बिहार के अमन वर्मा ने अपनी मां के पसंदीदा सफेद रंग से शुरू किया फैशन ब्रांड श्वेतांगा। उनके डिजाइन सफेद रंग को शोक नहीं बल्कि खूबसूरती और आत्मविश्वास के साथ जोड़ते हैं। 2021 में दिल्ली में श्वेतांगा की शुरुआत हुई। अमन वर्मा की डिजाइन में सफेद और आइवरी रंग है खास। अमन वर्मा का फैशन वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। इसमें मॉडल्स ने बुलंदशहर की गांव की गली में दिखाया फैशन। अमन के डिजाइन सफेद रंग को लेकर समाज की पुरानी सोच को देते हैं चुनौती। सफेद रंग को नए अंदाज में पेश किया गया। कई चर्चित अभिनेत्रियां भी पहन चुकी हैं अमन वर्मा के ये डिजाइन्स। निया शर्मा, ईशा मालवीय और डेजी शाह ने उनके आउटफिट्स पहने हैं। लेह में बनाया गया इंटरनेशनल स्तर का आइस हॉकी स्टेडियम, अब यहां हो सकेंगे नेशनल इंटरनेशनल हॉकी मैचेस। ये स्टेडियम 24 घंटे और हर मौसम में आइस हॉकी के लिए रहेगा तैयार। इसमें गर्मियों में भी लद्दाख में हॉकी खेलना संभव। इस आइस रिंक को बनाने में करीब 51 करोड़ रुपए खर्च हुए। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया स्टेडियम। इस इंटरनेशनल स्तर के आइस रिंक को बनाने में 22 महीने लगे। अब आइस हॉकी खेलने और देखने वालों को नई सुविधा मिलेगी। पहले लद्दाख में आइस हॉकी मुख्य रूप से सर्दियों में होती थी, अब यहां गर्मियों में इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाए जाएंगे। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में टेक विज 2026 आयोजित, टेक्नोलॉजी का दिखा यहां पर जलवा। वसंत वैली स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन, कई कैटेगरीज में जीते अहम पुरस्कार भी। देश भर के 20 स्कूलों ने लिया हिस्सा, छात्रों ने दिखाया क्रिएटिविटी और इनोवेशन का दम। रोबोटिक्स में एम्बियंस पब्लिक स्कूल अव्वल, पिक्सल ऑन ग्राफिक्स में गुरुग्राम का दबदबा। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट रेखा पुरी ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, टीचर्स के मार्गदर्शन को बताया खास। कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर कर रहे हैं मेजबानी। पहली बार एक साथ हो रहे महिला और पुरुष के टूर्नामेंट, 16 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट। दोनों टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगा भारत। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत। वर्ल्ड टेस्ट जीतने पर भी टीम इंडिया रचेगी नया इतिहास, सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में कर लेगी वेस्टइंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय फेंसर्स ने सीनियर अंडर 23 कैटेगरी में कुल 35 मेडल जीते। आज बॉक्स ऑफिस पर दिखा सनी देओल का एक्शन अवतार बटवारा। 1947 रिलीज हुई फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी। इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी आज रिलीज हुई। 2007 में आई इमरान हाशमी की फिल्म आय, आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म। थिएटर के बाद अब ओटीटी पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता भी Z5 पर रिलीज हुई। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। नेटफ्लिक्स बाद से होगी स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी ओटीटी पर स्ट्रीम। इस साल मई में सिनेमाघर में रिलीज हुई थी ये फिल्म। चीन के बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने खेला फुटबॉल। मैदान पर रोबोट्स ने दागे दनादन गोल। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच में फुटबॉल का महासंग्राम। 666 टीमें और 2056 रोबोट्स मैदान में उतरे। फुटबॉल मैच में रोबोट्स आपस में भिड़े, गिरने के बाद खुद ही संभले ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ खेला टेबल टेनिस, सिखाया खेल का शानदार प्रदर्शन। फैक्ट्री से घर तक होगी रोबोट्स की परीक्षा, 20 अलग अलग परिस्थितियों में होगा मुकाबला। चीन में RDL अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोडक्शन लाइन से बाहर आया, त्यानजिन में RD3 अल्ट्रा रोबोट ने डांस कर सबको चौंकाया। दो RDL3 रोबोट्स के बीच में रिंग में बॉक्सिंग का दिलचस्प मुकाबला हुआ। RD3 रोबोट ने ताई ची की शानदार प्रैक्टिस की। 174 सेंटीमीटर लंबा है RD3 अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट, इंसानों के कामकाजी माहौल के हिसाब से डिजाइन हुआ। चीन के वैज्ञानिकों को चांद के दो चेहरों के रहस्य का नया सुराग मिला, चेंज E6 के सैंपल से चांद के दूर वाले हिस्से की नई जानकारी सामने आई। वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में इंपैक्ट मेल्ट के टुकड़ों की जांच की, चांद के दोनों हिस्सों के अंतर को करीब 4.3 अरब साल पुराने टकराव से जोड़ा। चीन में खड़े होकर उड़ने वाला मानव युक्त फ्लाइंग व्हीकल पेश, हांगझोउ में पायलट ने खड़े होकर उड़ाया एयरक्राफ्ट। अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट ने फॉर्मेशन फ्लाइट का प्रदर्शन किया, जॉयस्टिक से दोनों हाथों से उड़ान कंट्रोल करता है पायलट। चीन के कृषि मेले में 457 किलो के कद्दू ने लूटी महफिल, विशाल कद्दू बना पंपकिन किंग। चीन के जिलिन में दिखा विशाल पंपकिन, 457 किलो के कद्दू के साथ बच्चों ने खिंचवाई तस्वीरें। विशाल कद्दू ने चांगचुन एक्सपो की बढ़ाई रौनक, पंपकिन किंग बना आकर्षण का केंद्र। बेल्जियम के ब्रसेल्स में 5 लाख डहेलिया फूलों का कालीन बिछाया, इसका डिजाइन जापान की मशहूर ग्रेट वेव लहर पर आधारित। इस बार कालीन में डहेलिया फूल लगाए गए क्योंकि ये ज्यादा गर्मी सह सकते हैं। फूलों के इस कालीन में डहेलिया की 15 अलग अलग किस्में और 10 रंग इस्तेमाल किए गए। यह आयोजन बेल्जियम और जापान के बीच राजनयिक संबंधों के 160 साल पूरे होने पर किया गया। खास फूलों से बने इस कालीन को 16 अगस्त तक देख पाएंगे आम लोग। ब्रसेल्स के ऐतिहासिक ग्रैंड पैलेस में इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला है बर्फ खेलों का एक शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है एक आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम। इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे। हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब 2 से 3 महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंग का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंग की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंग में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ 2 से 3 महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
8: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास निकाली तिरंगा बाइक रैली। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा, लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल सेडिशन 2026 का किया उद्घाटन, 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन, पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक की भक्तों में वृद्धि। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से की खास बातचीत, खिलाड़ियों का बढ़ाया हौसला, विजेताओं को दी बधाई।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा भारत एक रंग में खिल उठा है, शहरों से गांवों तक, हिमालय से समुद्र तट तक आजादी का उत्सव विविध परंपराओं और सांस्कृतिक रंगों के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो है हर हाथ तिरंगा हर दिल में देशभक्ति का जज्बा। जी हां, पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है जिसमें सभी उम्र के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर के खूबसूरत डल झील से लेकर टिहरी और भोपाल में भी नावों पर आजादी का जश्न मनाया जा रहा है।
9: भारत की आन बान और शान है हमारा तिरंगा,
1: देश की एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। 140 करोड़ भारतीयों के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम की पहचान है तिरंगा। आजादी के पर्व से पहले देश भर में तिरंगा यात्राओं का जोश देखने को मिल रहा है। कहीं हाथों में तिरंगा लेकर युवा सड़कों पर उतरे हैं, तो कहीं बच्चे तिरंगे के साथ देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग हिस्सों में जमीन से लेकर आसमान तिरंगे के रंग में रंगा नजर आ रहा है। श्रीनगर की यह खूबसूरत झील भी ऐसी ही देशभक्ति की गवाह बनी, जहां पानी की लहरों के बीच शिकारे पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। झील की शांत लहरें, कश्मीर की खूबसूरत वादियां और इन्हीं लहरों के बीच शांत से लहराता तिरंगा घाटी में देशभक्ति की अलग जगह रहा है। शिकारे पर निकली इस तिरंगा यात्रा ने श्रीनगर की फजाओं को देशभक्ति के रंग में रंग दिया है। एक के बाद एक शिकारा हाथों में तिरंगा और चारों तरफ गूंजते देशभक्ति के नारे एक अद्भुत नजारा पेश कर रहे हैं। आजादी के जश्न की ऐसी ही तस्वीर टिहरी झील में भी देखने को मिली, जहां लहरों पर आमतौर पर पर्यटक नौकायन का आनंद लेते नजर आते हैं। वहीं आज यही झील देशभक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी। झील के लहरों के बीच जब एक साथ दर्जनों तिरंगे लहराए तो हर कोई देखता रह गया। लहरों पर लहराते तिरंगे की ऐसी खूबसूरत तस्वीर भोपाल से भी आई है, जहां बड़ा तालाब की लहरों पर जब सैकड़ों नावों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल के बड़ा तालाब में पानी की लहरों के बीच तिरंगे की शान देखते ही बन रही है। एक दो नहीं बल्कि 350 से ज्यादा तिरंगों से सजी नावें जब एक साथ तालाब में उतरी तो बड़ा तालाब तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया।
9: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़ा तालाब में तिरंगा लेके उतरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम इस वक्त उस नाव के ठीक साथ में चल रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त चल रहे हैं, और ये सामने तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से भोपाल की तालाब बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त जो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शहर शहर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। प्रयागराज में भी तिरंगे की शान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और हर दिशा में देशभक्ति का जोश, हर चेहरे पर राष्ट्रप्रेम और उत्साह नजर आया।
10: प्रयागराज में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जो जोश है

0: झूम और पा रहे हैं और देशभक्ति के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं।
1: तिरंगे की शान में उमड़ा ये जनसैलाब देश की एकता और अखंडता की तस्वीर पेश कर रहा है। हर उम्र के लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और एक सुर में देश के प्रति अपना प्रेम और सम्मान जाहिर कर रहे हैं।
2: देश की आन बान शान तिरंगा है और सारे देशवासी,
3: सारे प्रयागवासी आज तिरंगे की यात्रा में शामिल हुए। इन्होंने ये तिरंगा यात्रा निकाल करके देशभक्ति का सबूत दिया है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा परमो धर्मा, इसको इन्होंने आज दिखा दिया है कि हर भारतीय के दिल में देश सेवा बसती है, तिरंगे के प्रति सम्मान।
1: देश आजादी के जश्न में रंग चुका है। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में राष्ट्रभक्ति और एकता का पैगाम दिया जा रहा है और भारत माता के जयकारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टिहरी जेल से पंकज भट्ट, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और भोपाल से रविश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: देश पूरी तरह आजादी के उत्सव के रंग में डूब चुका है। शहर शहर, गांव गांव, हर जगह शान से तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर जगह भव्य सजावट देखने को मिल रही है और हर तरफ बस नजर आ रही है तो तीन रंगों की जगमगाहट। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो है तिरंगे की रोशनी से जगमग देश। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के होने वाले मुख्य राष्ट्रीय समारोह को लेकर दिल्ली भी जगमगा रही है। यहां जगह जगह पर भव्य सजावट की गई है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन को तिरंगे के रंगों से सजाया गया है। तिरंगे की आकर्षक एलईडी लाइट से की गई ये दिव्य सजावट लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शानदार सजावट की गई है। एयरपोर्ट बिल्डिंग को केसरिया सफेद और हरे रंग की लाइटों से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में तो सलाल डैम की आकर्षक तस्वीर लोगों को लुभा रही है। डैम को तिरंगी लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति वाला शहर ग्वालियर भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिव्य रोशनी और सजावट से चमक रहा है। ग्वालियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इस बिल्डिंग की छटा देखते ही बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार की पहचान वाले राज्य असम की राजधानी गुवाहाटी भी 80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तिरंगामय है। चाहे विधानसभा भवन हो या फिर जनता भवन, तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। भारत की आन बान और शान तिरंगा जब हाथों में आता है तो एक अलग ही गर्व का एहसास होता है। कर्नाटक के धारवाड़ का गारग गांव, जहां आज भी पीढ़ियों पुरानी खादी की बुनाई की परंपरा है, यहां खादी से बने झंडे हाथों से तैयार किए जाते हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। खादी के तिरंगे में धरोहर बुनता गांव। जी हां, आपको बता दें कि यहां के कारीगर अपने हाथों से खादी का कपड़ा तैयार करते हैं और उसी कपड़े से तैयार होता है राष्ट्रीय ध्वज, हमारा अपना तिरंगा।

0: आसमान में शान से लहराता ये तिरंगा हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना जगाता है और गर्व का एहसास कराता है। इसके रंगों में देश का गौरव है, इसकी लहरों में शहीदों की कुर्बानी है और इसमें भारत के स्वाभिमान की पहचान है। आसमान में लहराता ये तिरंगा बड़ी मेहनत से कारखानों में तैयार होकर आता है और खादी से बने तिरंगे की तो बात ही अलग है। ये तस्वीरें कर्नाटक के धारवाड़ के गारक गांव की है, जहां आज भी हाथ से खादी कपड़ा बुनने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। गारक के कारीगर आज भी मशीनों के बजाय अपने पारंपरिक हुनर और हाथ करघे से खादी तैयार करते हैं और इसके बाद शुरू होता है इसे तिरंगे के रंगों में रंगने का काम। सफेद खादी के कपड़ों पर सबसे पहले अशोक चक्र बनाया जाता है, इसके बाद कपड़े को तिरंगे के तय स्वरूप में तैयार किया जाता है, फिर इसमें केसरिया और हरे रंग के कपड़े को सावधानी से जोड़ा जाता है, हर सिलाई और हर किनारे को बारीकी से तैयार किया जाता है और जब सफेद केसरिया और हरे रंग के कपड़े एक साथ जुड़ते हैं तो तब तैयार होता है भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा, जिसे बनाते हुए भी कारीगरों को सिर्फ एक कपड़ा तैयार करने का एहसास नहीं होता बल्कि उनके हाथों से देश की आन बान और शान आकार ले रही होती है। हर धागे और हर सिलाई के साथ उनके मन में गर्व का भाव होता है क्योंकि उनके हाथों से तैयार होने वाला तिरंगा देश के गौरव का प्रतीक बनकर आसमान में लहराता है। असम के गुवाहाटी में भी कारीगर तिरंगे तैयार करने में जुटे हैं। असम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने इस बार हजारों तिरंगे तैयार करने का लक्ष्य रखा था, जिसे पूरा कर लिया गया है। दरअसल स्वतंत्रता दिवस करीब आते ही तिरंगे की मांग भी बढ़ जाती है, ऐसे में असम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज तैयार करने की तैयारी की है। हर तिरंगे को तैयार करने में कारीगरों ने कड़ी मेहनत की, कपड़े की कटिंग से लेकर सिलाई और फिनिशिंग तक हर चरण में खास सावधानी बरती जाती है।
1: अगस्त लास्ट ईयर हमारा 12,20,000 हम सेल किया है, इस साल का हम 12,00,000 ही रखा है, 13,00,000 12-13 जरूर होगा और हम लोग बोला है 9,00,000 ऑलरेडी हम भेज दिया है, आधा 3,00,000 हम इधर में सेल किया है, 3,00,000 और भी आएगा।
0: और खास बात है कि यहाँ राष्ट्रीय ध्वज खादी से तैयार किया जाता है और खादी की अपनी खासियत भी है, यह हाथ से तैयार होने वाला कपड़ा है जो टिकाऊ, प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है। खादी से बने तिरंगे में देश की आजादी के आंदोलन की विरासत भी जुड़ी है, यानी इसमें सिर्फ तीन रंग और अशोक चक्र नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, स्वदेशी परंपरा और कारीगरों की मेहनत भी बुनी होती है।
1: खादी का जो मानदंड है, जो खादी का प्रति खादी का जो चाहिदा है वो चाहिदा हमेशा रहेगा और बाहर में जो प्लास्टिक मेड वो मेंटेन नहीं करता है, रंग मेंटेन नहीं करता है, कोई कोई ऐसा करता है, लेकिन खादी का फ्लैग का डिमांड है वो आप लोग देखेगा जो 15 अगस्त का पीछे वो नर्दमा सर्दमा जहाँ तक फेंक देता है प्लास्टिक, खादी का फ्लैग संभाल कर रख देता है।
0: खादी से बनाए तिरंगा स्वतंत्रता दिवस पर घरों, संस्थानों और सड़कों पर शान से लहराएगा और जब हवा के साथ तिरंगे के ये तीनों रंग एक साथ झूमेंगे तो इसके पीछे कारीगरों की मेहनत और खादी की समृद्ध विरासत भी दिखाई देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राजस्थान के पाली जिले में आदिवासी महिलाएं अपनी तकदीर खुद लिख रही हैं। यहां के बाली तहसील की महिलाएं जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है जामुन से जिंदगी बदलती आदिवासी महिलाएं। आपको बता दें कि पाली जिले के बाली तहसील में पहले महिलाएं जामुन अपनी टोकरी में भर के शहर में या फिर सड़क के किनारे बेचती थी जिससे उनकी उतनी आय नहीं हो पाती थी। ऐसे में वहां की एक कंपनी ने इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। दरअसल ये कंपनी जामुन की छोटी छोटी गुठली को सुखाती है और उसके बाद उनको पीस कर पाउडर बनाती है। ये पाउडर दवाओं में काम आती है। ऐसे में ये कंपनी 300 आदिवासी महिलाओं को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दे रही है। दरअसल आदिवासी क्षेत्रों में हर वर्ष बड़ी मात्रा में जामुन उपलब्ध होता है, लेकिन समय पर बाजार नहीं मिलने के कारण अधिकांश फल खराब हो जाते हैं। ऐसे में कंपनी ने इसी समस्या को अवसर में बदलने की सोच के साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत की। ऐसे में कंपनी के माध्यम से महिलाएं फल संग्रह, छटाई, गूदा निकालने, प्रसंस्करण और पैकेजिंग जैसे कार्यों से जुड़ी हैं। इससे उन्हें अपने गांव के आसपास ही रोजगार मिल रहा है और उनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। ये पहल आदिवासी परिवारों के लिए आर्थिक संबल बनकर उभरी है।
3: पहले अभी बीच में हमने जामुन पे काम किया था, अभी जामुन के बीज सूख रहे और अभी पहले आदिवासी महिला सीताफल और जामुन को औने पौने दाम पे ऐसे ही बेचते थे। जब से कंपनी बनी है तब से उनको सामान का उचित दाम प्राप्त हो रहा है और जो भी औरतें जुड़ी हुई है जो कंपनी में काम कर रही है उनको 10,000 रुपये महीना इनकम हो रही है। और अभी आने वाले समय में सीताफल पे कंपनी का टारगेट 1,000 आदिवासी महिलाओं को जोड़ने का है।
2: बिहार के एक फैशन डिजाइनर ने अपनी मां के पसंदीदा रंग सफेद को अपनी पहचान बना लिया। फैशन डिजाइनर अमन वर्मा ने सफेद रंगों के साथ अपने आकर्षक डिजाइनों को लेकर लोगों के सामने वो आए। उन्होंने श्वेतांगा नाम का नया फैशन लेवल तैयार किया है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है डिजाइनर बेटे के हर ड्रेस में माँ वाला सफेद। जी हाँ, 32 साल के अमन वर्मा ने अपनी मां के पसंदीदा सफेद रंग को ही फैशन की दुनिया में अपनी जगह बनाने में इस्तेमाल किया। अमन के बनाए कपड़े अब दिल्ली की फैशन दुनिया में अपने रंग बिखेर रहे हैं।

0: एक फेवरेट साड़ी थी मेरी मम्मी की, लाइक वाइट कलर की विथ फ्लोरल, पिंक फ्लोरल्स. तो कभी शी कुड नॉट वेयर बिकॉज दादी ने कभी अलाउ ही नहीं किया. जब मैंने निफ्ट में पढ़ाई शुरू करी, जब मेरा मैंने ग्रेजुएट कर लिया, देन आई इट स्टार्टेड क्लिकिंग कि ऐसा क्यों है. सफ़ेद को ही ऐसे सैडनेस या विडो के लिए ही क्यों चूज किया गया है? व्हाई कांट इट बी अ सेलिब्रेशन, कलर ऑफ सेलिब्रेशन आल्सो.
1: बिहार का एक लड़का जिसकी माँ का पसंदीदा रंग था सफ़ेद, वो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनना चाहती थी, तमाम सारी चीज़ें करना चाहती थी, लेकिन सफ़ेद रंग पर लगी बंदिशों की वजह से उसकी माँ कभी अपना पसंदीदा रंग पहन नहीं पाई.
2: कहते हैं रंगों की भी अपनी एक कहानी होती है. ऐसा ही सफ़ेद रंग, जिसको समाज में उदासी और शोक से जोड़ा गया. अपनी माँ का इस पसंदीदा रंग से लगाओ अमन भले ही देर से समझे, लेकिन जब उस समझ को जमीन पर उतारा तो सफ़ेद रंग की रंगत को दुनिया तक पहुँचाने में जुट गए. अपने माता पिता को कोरोना महामारी में खो चुके अमन वर्मा की फैशन डिजाइनिंग में माँ की याद और भी गहराई से जुड़ गई. बिहार में पले बड़े फैशन डिजाइनर अमन वर्मा बचपन में सफेद रंग से जुड़ी कई सामाजिक मान्यताओं को घर में महसूस करते रहे. सफेद रंग के प्रति उदासी और खामोशी से जुड़े सवाल सालों साथ रहे, और आज इन्हीं सवालों का जवाब अमन का ये नायाब फैशन ब्रांड दे रहा है. आज अमन के माता पिता दुनिया में नहीं हैं, लेकिन माँ की सफेद रंग की ख्वाहिश को हकीकत के पैमाने पर नापते अमन के डिजाइन ये ड्रेसेस केवल आधुनिक फैशन को फ्लॉन्ट नहीं कर रही, बल्कि उस सामाजिक सोच को भी चुनौती दे रही हैं, जिसमें सफेद रंग को लंबे समय तक विधवापन और शोक से जोड़कर देखा गया.
1: बचपन में माँ की एक याद, माँ का चुना हुआ एक रंग, उसको एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को लेकर आगे जा रहे हैं अमन. और कोशिश ये है इस सफ़ेद के इर्द गिर्द ही अब सब कुछ रचना है, और सफ़ेद को लेकर जो कुछ भी अब तक कहा गया, जो समझा गया समाज में, उन सब को बदल कर रख देना है. यानी कि सफ़ेद में भी अब रंग भरने की बारी आ गई है. कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली.
3: महाराष्ट्र के अमरावती में एक बस में मेडिकल के स्टूडेंट्स को सर्जरी की ट्रेनिंग दी जा रही है. यहाँ के पंजाब राव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में मेडिकल छात्रों को मरीजों पर सर्जरी करने से पहले इसी हाईटेक बस में ऑपरेशन की प्रैक्टिस कराई जा रही है. ऐसे में हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है. चलती बस में सर्जरी की ट्रेनिंग. जी हाँ, आपको बता दें इंस्टीट्यूट ऑन व्हील्स के नाम से मशहूर इस बस में मरीजों पर ब्लेड कैसे चलाना है, टांके कैसे लगाने हैं, धागे को किस तरह पकड़ना है, और लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन के जरिए सर्जरी कैसे करनी है, इन सब की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग छात्रों को दी जा रही है.
4: भविष्य के डॉक्टर यहां सर्जरी के गुर सीख रहे हैं. आधुनिक सुविधाओं से लैस इस लैब में हर तरह के ऑपरेशन का अभ्यास कराया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है एक हाईटेक बस में. अमरावती के पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑन व्हीकल्स नाम की ये बस डॉक्टरों की ट्रेनिंग में मील का पत्थर साबित हो रही है.
5: मेरे पीछे जो बस खड़ी है वो यात्रियों की बस नहीं है, लेकिन ये बस इतनी खास है कि इस बस को प्रशिक्षणार्थी बस कहा जाता है. और इस बस के भीतर क्या होता है, क्योंकि हम फिलहाल है अमरावती के PDMC कॉलेज में, जो पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज है. इस मेडिकल कॉलेज के जो नए डॉक्टर बनने वाले हैं, उन छात्रों को इस बस के भीतर इन व्हील्स जिसे कहा जाता है, तो यहाँ सभी छात्रों को जो है वो टीचर्स कैसे लगाने हैं उसके गुर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं. क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि सर्जरी में टीचर्स किस तरह से लगाया जाता है, सर्जरी किस तरह की होती है, वो सभी गुर जो है उसके प्रैक्टिकल्स जो है ये बस के भीतर यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं.
4: बस के अंदर सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए जरूरी तमाम उपकरण मौजूद हैं. डॉक्टर और प्रोफेसर यहाँ छात्रों को ऑपरेशन की बारीकियाँ समझाते हैं. बस में ही छात्रों को ऑपरेशन थिएटर का प्रैक्टिकल नॉलेज भी हासिल होता है. सर्जरी की तकनीक को समझने के साथ यहाँ सही तरीके से ऑपरेशन करने का अभ्यास करने का मौका भी मिल रहा है.
6: इसमें ये स्टूडेंट को जैसे पेट की अतड़िया फट जाती है या फिर उनको काटने की जरूरत पड़ती है, तो उनको काटने के बाद कैसे सीना है प्रॉपरली वो सिखाया जा रहा है इस मॉडल के ऊपर. अलग अलग तरीके के स्टिचेस हैं जो हम सर्जरी में अलग अलग जगह यूज करते हैं, वो टाइप्स ऑफ स्टिचेस सिखाए जा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी हाथ को कैसे सिया जाता है वो ये स्टूडेंट्स सीख रहे हैं यहाँ पे।
5: तो स्टूडेंट से बात करेंगे, कितना आसानी होती है इस प्रैक्टिकल को देखकर, यानी इसका कितना फायदा होगा भविष्य में आपको?
7: काफी ज्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएंगी रियल पेशेंट पे करने से पहले, और अगर कुछ मिस्टेक्स होती है तो अभी हम सीख सकते हैं पहले।
4: इस लैब में छात्र चीरा लगाने से लेकर टांके लगाने का अभ्यास कर रहे हैं। सामान्य ऑपरेशन के साथ साथ लैब्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के जरिए सर्जरी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी छात्रों को इस बस में दी जा रही है। ऐसी ट्रेनिंग से इन मेडिकल छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसी मरीज की सर्जरी से पहले डॉक्टरों को व्यावहारिक अनुभव भी मिल जा रहा है। अमरावती से धनंजय साबले, गुड न्यूज टुडे।
3: राजस्थान में 15 अगस्त को हरियाली तीज मनाई जाएगी और इसको लेकर वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। तीज से पहले एक प्री सेलिब्रेशन में बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और अलग अलग रंगों के जरिए सावन की रंगत बिखेरती नजर आई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो सातवीं और आखिरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है, और वो है तीज से पहले सावन के रंग में जयपुर। महिलाओं के लिए खास माने जाने वाले इस त्यौहार की तैयारियां जयपुर में कार्यक्रम में दिखाई दी। राजस्थान में तीज और घेवर का रिश्ता सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति का भी एहसास दिलाता है, लिहाजा बाजारों में अलग अलग तरह के घेवर भी बिक रहे हैं।

0: राजस्थान की यही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है। जयपुर में तीज से पहले एक प्री सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं एकजुट हुई और लहरिया के अलग अलग रंगों में सजकर सावन की रंगत बिखेरती नजर आईं।
1: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं।
0: राजस्थानी पोशाक और पारंपरिक आभूषणों से सजे इस आयोजन में राजस्थान की संस्कृति की खूबसूरत झलक दिखाई दी। किसी ने पारंपरिक मोठड़ा और गुलाबी लहरिया पहना तो कोई नए रंगों और डिजाइन्स के लहरिये में दिखी। राजस्थानी लोक गीतों की धुनों के बीच महिलाओं ने खूब आनंद लिया।
2: ये ऐसा नहीं है कि कोई फैशन है, ये एक रिवाज है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा कपड़ा बनता है, हैंड प्रिंटेड कपड़ा बनता है, उस पर जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो वो एक लहर जैसा शेप दे देती हैं। यहीं से ये प्रचलन शुरू हुआ और साथ ही साथ देखिए, आप जितनी भी औरतें देखेंगे उनको पहला लहरिया जो है, उनकी जब सगाई हो जाती है, सिंजारा आता है, या शादी के बाद तीज से पहले बाद में तीज आती है तो सिंजारा आता है, तो पहला लहरिया या मोठड़ा हमें हमारे ससुराल से, हमारी सास की तरफ से तोहफे में मिलता है। सबसे पहली हम जो हमारी तीज मनाते हैं, जो झूला झूलते हैं, जो घेवर खाते हैं, वो हमारे ससुराल से आता है।
0: तीज के मौके पर राजस्थान में घेवर खाने का रिवाज है। राजस्थान में तीज और घेवर का रिश्ता सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति है। लेकिन इस बार जयपुर में यही पारंपरिक घेवर एक ऐसे अंदाज में सामने आया है जहाँ स्वाद के साथ शाही ठाट, एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन भी देखने को मिल रहा है। जयपुर में इस बार करीब 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर खास आकर्षण बना हुआ है। साधारण घेवर जहां मैदा से तैयार होता है, वहीं इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है। इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है, जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट ग्लेजिंग और भरपूर मेवों की परत है। सबसे खास है इसका गोल्डन टच, ऊपर से सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल भी हुआ है।
1: जो कि ये घेवर है आपके सामने
3: जी,
1: साथ ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा, घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोर्स्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड, वो भी डाली है, और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है, और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है, अगेन विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है।
0: तीज राजस्थान में सिर्फ एक त्योहार भर नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और रंगों का उत्सव है। लहरिया, मेहंदी, झूला और घेवर इसके खास रंग हैं। बदलते दौर में त्योहार मनाने के अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन इन आयोजनों में पारंपरिक संस्कृति आज भी उसी उत्साह के साथ नजर आती है। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और
6: सुहागिन महिलाओं का त्योहार, निर्जला व्रत से मिलेगी माता पार्वती की कृपा, हर डिजाइन में माँ वाला सफेद, सवा 2 लाख का दुपट्टा, देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: हरियाली तीज का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
1: स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास निकाली तिरंगा बाइक रैली। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें हाथ में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तारानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम। आजादी का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परुमिता देशमुख जी। परुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परमिता जी?
1: ये मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
1: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, ज्योति तो डाक्षुने के उनाश, एकला चलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी, बिल्कुल।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए पौरमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: सुहागिन महिलाओं का त्योहार, निर्जला व्रत से मिलेगी माता पार्वती की कृपा। हर डिजाइन में माँ वाला सफेद, 2.25 लाख का दुपट्टा। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोग
1: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। महिलाओं का तीज उत्सव, निर्जला व्रत से मिलेगी माता पार्वती की कृपा। हर डिजाइन में माँ वाला सफेद, माँ की पसंद बनी बेटे की करियर की पहचान। और भारतीय कारीगरी का नया अंदाज, भारतीय व्यापार महोत्सव में 2.25 लाख का दुपट्टा। देखिए शुरुआत हेडलाइंस के साथ।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
8: HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर, क्रिएटिंग लीडर्स।
1: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जाबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें, दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास निकाली तिरंगा बाइक रैली। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर
6: जावो पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी
9: वादी।
6: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा। लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में करेंगे सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान के समर एनुअल एडिशन 2026 का किया उद्घाटन। 16 अगस्त से 15 सितंबर तक आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम, 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक भक्तों में वृद्धि। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा बलों के CWG 2026 पदक विजेताओं से खास बातचीत की। खिलाड़ियों को बढ़ाया हौसला, विजेताओं को बधाई दी। आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात सबसे पहले हरियाली तीज की करेंगे। सावन के महीने में मनाया जाने वाला ये पर्व जिसकी रौनक अभी से देखने को मिल रही है। हरियाली तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास माना जाता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। और इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना, मेहंदी लगाना, झूला झूलना, लोकगीत गाना, ये परंपराएं भी इसमें शामिल हैं।

0: सावन का महीना बारिश की रिमझिम फुहार, लोक गीतों की मिठास और 16 श्रृंगार कर झूला झूलती महिलाएं, ये तमाम रंग हैं उस त्योहार के जिसका सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार किया करती हैं। इनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद देश में हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला है। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आया तो इसकी रौनक उत्तर भारत में नजर आने लगी। जयपुर में तो सज धज कर आई ये महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर प्री सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं इस त्योहार के लिए खास तौर पर राजस्थान की पारंपरिक पोशाक लहरिया पहनकर आई हैं। किसी ने पारंपरिक मोठड़ा और गुलाबी लहरिया पहना तो कोई नए रंगों और डिजाइन के लहरिये में नजर आया। राजस्थानी पोशाक और पारंपरिक आभूषणों ने तीज के इस त्योहार में एक अलग ही रंग घोल दिया है।
1: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पे है, अलग अलग एक्टिविटीज साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। और देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिये में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नजर आ रही है।
0: इस पूरे सेलिब्रेशन में तीज का झूला खास आकर्षण बना रहा। महिलाएं बारी बारी से झूला झूलती दिखी और इसके साथ ही तस्वीरें भी क्लिक करवाई। झूले के आसपास पूरे समय उत्साह और चहल पहल बनी रही। हरियाली तीज राजस्थान में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का उत्सव है जिसे सुहागिन महिलाएं हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाती आई हैं।
2: पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मुझे काफ़ी शौक है। और लहरिया के लिए मैं वैसे ही बहुत क्रेजी हूँ, सो मैंने पूरा गेटअप इसी उस पर लिया है, थीम पे।
3: तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में। सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज़ नो लव, हस्बैंड के लिए लव वे की दिखाता है। ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव। एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं।
0: हरियाली तीज की बात हो और घेवर का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हर साल की तरह इस साल भी बाजार में एक से बढ़कर एक स्वाद और फ्लेवर वाले घेवर मिल रहे हैं। जयपुर में इस बार करीब 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर खास आकर्षण बना हुआ है। आम घेवर जहां मैदा से तैयार होता है तो वहीं इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है। इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट की परत है। सबसे खास है इसका गोल्ड टच, ऊपर सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल हुआ है। इसी शाही और प्रीमियम अंदाज की वजह से इसकी कीमत 21,000 रुपए है।
4: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपए पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
5: जी।
4: सात ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोज्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डाला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड वो भी डाली है और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है, अगेन विच इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे रबड़ी इसमें नहीं यूज हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है।
0: बदलते समय के साथ घेवर कई साइज और स्वाद में मौजूद है। जयपुर में घेवर 3 साइज में मिल रहा है, रेगुलर 3 इंच का मिनी और 1.4 इंच का छोटा घेवर। अलग अलग पैक में पसंद के फ्लेवर चुनने का विकल्प भी आपको मिलेगा। मसलन 16 पीस के पैक में अलग अलग फ्लेवर शामिल किए जा सकते हैं, जबकि 4 पीस के पैक में अपनी पसंद के 4 फ्लेवर आप चुन सकते हैं। यानी त्योहार पर घर ले जाने से लेकर गिफ्टिंग तक घेवर का अंदाज भी अब काफी मॉडर्न हो गया है, और अगर मीठे घेवर से मन भर गया हो तो इसका चटपटा अंदाज घेवर चाट भी लोगों के लिए मौजूद है।
1: घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नजर आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं, अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं, और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं। कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है, पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को, जिसको कहा जाता है जेन जी, उनको खास पसंद आते
4: हैं। आजकल लोग मिठाई खाना चाहते हैं पर वैरायटी में खाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आप हर फ्लेवर चख सकते हैं छोटे छोटे साइजेज में। इसको हमने नाम दिया है कॉइन घेवर।
1: कौन से फ्लेवर्स आप बताइए इसमें मौजूद
4: हैं? इसमें 16 तरह के फ्लेवर हैं। पान हो गया, ये रबड़ी हो गया, रोज गुलकंद, न्यूटेला, ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, लोटस बिस्कॉफ, ये रेगुलर केसर चाशनी पिस्ता, ये मैंगो मैनिया, तिरामासू, कुनाफा घेवर, लेमन चीज़ केक, ब्लूबेरी, और ये हमारा हो गया लीची क्रीम, और साथ ही में ये बेल्जियन चॉकलेट। एक जनरली लोग आजकल चाहते हैं, अगर हम मीठा कम खाना चाहते हैं और मीठे इतना सारा जब मीठा खा लिया है त्यौहार पे, उसके साथ उनको कुछ नमकीन टेस्ट चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज़ डिश बनाई है जिसको हमने घेवर चाट बनाया है। बेस इसमें घेवर का ही है, जो जनरली हम देखते हैं मैदा और चीनी और घी से बना हुआ, और ऊपर जो इसमें ग्लेजिंग है ये अलग अलग वेजिटेबल्स हैं, छोले हैं इसमें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में मूली, चुकंदर के लच्छे डले हुए हैं।
0: बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में हरियाली तीज को भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: चलिए अब आपको 32 साल के फैशन डिजाइनर अमन वर्मा से मिलवाते हैं, जिन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में ही फैशन की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। बिहार के रहने वाले अमन ने अपनी मां की अधूरी इच्छा से प्रेरित होकर अपना फैशन ब्रांड शुरू किया। उनका ये ब्रांड सफेद रंग के कपड़ों पर ही केंद्रित है। अमन के बनाए कपड़े कई जाने माने टीवी और फिल्मी कलाकार भी पहन चुके हैं।

0: एक से बढ़कर एक डिजाइन और एक से बढ़कर एक ड्रेस, जिनमें लाल, काला, पीला और गुलाबी जैसे कई रंग देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इनमें एक रंग बहुत कॉमन है और वो है सफेद। ये सफेद रंग ही डिजाइनर अमन वर्मा के ब्रांड का मुख्य आधार है। इसके पीछे की कहानी बड़ी दिलचस्प है। फैशन डिजाइनर अमन वर्मा के लिए यही सफेद रंग उनकी माँ की एक अधूरी पसंद की याद है। अमन बताते हैं कि उनकी माँ के पास सफेद रंग की एक खूबसूरत साड़ी थी। ये साड़ी उनकी माँ को बहुत पसंद थी, लेकिन वो इसे पहन नहीं पाती थी। इसके पीछे वजह थी सफेद रंग को लेकर परिवार की रूढ़िवादी सोच।
1: बिहार का एक लड़का जिसकी माँ का पसंदीदा रंग था सफेद, वो सफेद रंग की साड़ी पहनना चाहती थी, तमाम सारी चीजें करना चाहती थी, लेकिन सफेद रंग पर लगी बंदिशों की वजह से उसकी माँ कभी अपना पसंदीदा रंग पहन नहीं पाई। उस छोटे से बच्चे ने ये बात थोड़ी देर से समझी, लेकिन जब समझी तब ये ठान लिया कि सफेद रंग की रंगत को ही पूरी तरह से बदल कर रख देना है। आज उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सफेद रंग की परिभाषा ये लड़का काफी हद तक बदल चुका है।
2: मुझे पता है एक फेवरेट साड़ी थी मेरी मम्मी की, लाइक वाइट कलर की विथ फ्लोरल, पिंक फ्लोरल्स। तो कभी शी कुड नॉट वेयर बिकॉज दादी ने कभी अलाउ ही नहीं किया। तो तब तो मेरे को इतना ध्यान में ही नहीं गया इस रिगार्डिंग कि हाँ ऐसा कुछ भी हो सकता है कि हाँ क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं ना ये सब। जब मैंने निफ्ट में पढ़ाई शुरू करी, जब मेरा मैंने ग्रेजुएट कर लिया, देन इट स्टार्टेड क्लिकिंग कि ऐसा क्यों है। सफ़ेद को ही ऐसे सैडनेस या विडो के लिए ही क्यों चूज किया गया है, व्हाई कांट इट बी अ सेलिब्रेशन, कलर ऑफ सेलिब्रेशन आल्सो।
0: बचपन में अमन ने जो देखा और सुना वो उनके जहन में बस गया। जब अमन ने पढ़ाई की और फैशन की दुनिया में कदम रखा तो उन्होंने सफेद रंग को ही अपने पेशे की पहचान बना दी और खड़ा किया एक ब्रांड जो अब काफी चर्चित हो गया है। अमन ने अपना ये ब्रांड 2021 में शुरू किया। उनके कलेक्शन में सफेद रंग के अलग अलग शेड्स नजर आते हैं। कल्चर आउटफिट्स, टेक्सचर ड्रेस और बेहद सदे हुए क्राफ्ट वर्क के साथ अमन कुछ भी बनाए उसका आधार सफेद ही होता है।
2: 2018 में मैंने थोड़ा बहुत बेसिक रिसर्च शुरू किया कि अगर कोई खरीदेंगे, मैंने लोगों से बात करनी शुरू करी, मेरे दोस्तों से बात करनी शुरू करी कि क्या लगता है तुम्हें कि ये हो सकता है, पॉसिबल या नहीं हो सकता है। सो एक साल करीबन ये सब ही करने के बाद देन मुझे रियलाइज हुआ कि हो सकता है। अभी भी बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो कर रहे हैं सफ़ेद, ऐसा नहीं, बट वो एक चंक में नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर वो 50 का एक कलेक्शन बना रहे हैं, दे आर डूइंग 10 लुक्स इन आइवरी। सो वो पॉसिबिलिटी है, पीपल आर बाइंग आइवरी एंड वाइट क्लोथ्स फॉर देयर फंक्शंस। तो वो मैं खुद को भी चैलेंज करना चाहता था कि क्या ये पॉसिबल है, मैं करूँ तो ये होगा या नहीं होगा, बिकॉज पूरा ब्रांड एक कलर के इर्द गिर्द रखना बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, जो मैंने लिया रिस्क, पर आई थिंक इवेंचुअली वो मेरे लिए वर्क भी करा।
0: अमन के बनाए डिजाइन उस सामाजिक सोच को भी चुनौती देते हैं, जिसमें सफेद रंग को विधवा महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है। यानी जिस रंग पर सामाजिक बंदिशों की परचाई थी, अमन ने उसी रंग को खूबसूरती, आत्मविश्वास और आधुनिक फैशन का प्रतीक बना दिया है। अमन के बनाए कपड़े टीवी और फिल्मों से जुड़े कई कलाकार भी पहन चुके हैं।
2: I have few client base from Patna, they order from us. So I think their mindset are changing, like not very drastically, but थोड़ा gradually धीरे धीरे हो रहा है।
1: शादी में ना सही तो संगीत में सही, इतने changes तो आ ही रहा है।
2: I think majorly people buy for us like हल्दी function के लिए। So हाँ, we have few clients who are based in Patna and you know majorly I guess Patna या।
0: 32 साल के अमन बिहार के रहने वाले हैं और उनकी पहचान सोशल मीडिया पर भी तेजी से बढ़ी। उनका एक वीडियो खास तौर पर वायरल हुआ, जिसमें मॉडल्स किसी बड़े फैशन रैंप पर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के एक गांव की सकरी गली में उनके कलेक्शन को प्रदर्शित करती नजर आई।
1: एक आपने बुलंदशहर के किसी गांव में जाके वहां की गलियों पर आपने फैशन शो किया था, वो कहानी क्या थी? वो रील भी बहुत वायरल हुई।
2: वो बेसिकली मेरे दिमाग में ये था कि बिकॉज मेरा कलेक्शन पूरा एक टेक्सटाइल पे बेस्ड था, जो कि मणिपुरी लीरम फी एक स्कार्फ है, दे यूज लाइक मणिपुरी बेस्ड है। और मैंने
1: शायद वही है,
2: दिस इज दैट ओनली, दिस इज मणिपुरी टेक्सटाइल वीव. सो और प्लस मैंने उसको ना बंगाली गमछा के साथ मिक्स किया था. आई वॉन्टेड टू डू टू ट्रेडिशंस टुगेदर, टू कल्चर्स टुगेदर. सो मेरा दिमाग में तब ये चल रहा था कि आई डोंट वॉन्ट टू डू इट लाइक अ रेगुलर कैंपेन, जो नॉर्मली हर डिज़ाइनर वो थोड़े हाई फैशन वाले होते हैं. तो मैं मुझे इसको रूट से कनेक्टेड रखना था. लाइक सो नियर आई फाउंड लाइक बुलंदशहर इज द मोस्ट नियरेस्ट, जहाँ मैं जा, मेरे लिए ट्रैवल ईजी था, प्लस बजट वाइज ही मेरे लिए ईजी था.
0: बिहार से शुरू हुआ ये सफर अब फैशन की दुनिया में एक ऐसी कहानी कह रहा है जिसमें रंग के साथ साथ यादें, भावनाएं और सामाजिक सोच को चुनौती देने का जज्बा भी शामिल है.
1: बचपन में माँ की एक याद, माँ का चुना हुआ एक रंग, उसको एक ब्रांड बनाया, उस ब्रांड को लेकर आगे जा रहे हैं अमन. और कोशिश ये है कि सफ़ेद के इर्द गिर्द ही अब सब कुछ रचना है. और सफ़ेद को लेकर जो कुछ भी अब तक कहा गया, जो समझा गया समाज में, उन सब को बदल कर रख देना है. यानी कि सफ़ेद में भी अब रंग भरने की बारी आ गई है. कैमरामैन शैलेन के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली.
3: चलिए बात करते हैं ऐसे व्यापार महोत्सव की जो भारतीय कपड़ों के कारोबार को लोकल मार्केट से निकालकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में धूम मचाने के लिए मंच दे रहा है. धागों को आपस में पिरोकर कपड़ा बनाने के बाद सुई और धागे की मदद से खूबसूरत और जटिल डिजाइन वाले भारतीय परिधानों की ये प्रदर्शनी है, पुराने फैशन ट्रेंड्स को तोड़ रही है. बुनाई, कढ़ाई, रंगाई और छपाई जैसे वस्त्र शिल्प से जुड़े भारतीय कारीगरी के नए अंदाज को आप भी देखें.

0: दिल्ली का भारत मंडपम आजकल देश की वस्त्र कला, ओढ़ने पहनने की संस्कृति और उसे समय के साथ नए आयाम देने वाली प्रतिभाओं का गवाह बन रहा है। बुनाई, कढ़ाई, रंगाई और छपाई जैसे वस्त्र शिल्प से जुड़ी विरासत और परंपराओं की झांकी लगी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े देश भर के डिजाइनर विलुप्त होती कलाओं और वस्त्र बुनाई की समृद्ध कला को संजोए रखने वाले कारीगरों का सबसे बड़ा मंच सजा है। धागों को आपस में पिरोकर कपड़ा बनाने, फिर सुई और धागे की मदद से खूबसूरत और जटिल डिजाइन बनाने की कला की प्रदर्शनी लगी है। आमतौर पर साधारण सूती या शिफॉन दुपट्टे की कीमत 50 रुपए से 200 रुपए के बीच होती है। डिजाइनर सिल्क या भारी कढ़ाई वाले दुपट्टे हो तो ज्यादा से ज्यादा कीमत 500 से 2500 के बीच चली जाती है। हालांकि भारतीय व्यापार महोत्सव में एक स्टॉल पर 2 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा का दुपट्टा मिल रहा है। इस खास दुपट्टे में चांदी के कई सिक्के लगे हैं। एक का वजन 20 ग्राम के करीब है, जिसकी वजह से दुपट्टे का रेट भी रोज ऊपर नीचे होता रहता है।
1: बेहद अनोखी और शानदार चीजें भी आपको यहाँ मिलेंगी। चांदनी चौक अमूमन आप जाते हैं शादियों की शॉपिंग के लिए और सोचते हैं कि कम पैसे में बहुत अच्छा माल लेकर आएंगे, लेकिन चांदनी चौक के एक व्यापारी हैं जो कि इस मिथ को थोड़ा सा तोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत यूनिक तरीके से। ये भाई साहब सिर्फ दुपट्टे में डील करते हैं और इनके पास 2.25 लाख का दुपट्टा है।
2: हाँ जी, हमारे पास 2500 से लेके 2.25 लाख तक के दुपट्टों की पूरी रेंज है। और मैं आपको अपना 2.25 लाख वाला दुपट्टा दिखाता हूँ कि वो क्या दुपट्टा है।
1: लेकर ऐसे आए हैं जैसे इसमें कोई नेकलेस रखा हो, बहुत महंगा सा।
2: ये हमारा दुपट्टा है, ये चीफ, इसमें 36 क्वाइन लगे हुए हैं 20-20 ग्राम के, 720 ग्राम चांदी लग रही है जी। और ये सब हमारे पास इन स्टॉक रेडी होते हैं। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ ये क्या चीज है।
1: ये मेरे ख्याल से पूरा हाथ से ही बनता है,
2: पूरा जरदोजी का वर्क है, पूरा ये हाथ से बनता है। ये देखिए
1: 2.25 लाख का दुपट्टा है, बड़े प्यार से खोलिएगा।
2: हाँ जी, ये देखिए आप, ये 2.25 लाख का है। आप थोड़ी पीछे जाके इनको वो खोलिए। आप इसमें एक एक जो काम देखेंगे ना, जैसे हमारा मोदी जी कह रहे हैं तो लोग अपने भारतीय संस्कृति को हम दिखा रहे हैं कि इसमें सारा जरदोजी का काम करवा रहे हैं।
1: वोकल फॉर लोकल,
2: वोकल फॉर लोकल जी।
0: सूरत से आए सिद्धार्थ को तरह तरह के ब्लाउज बनाने में महारत हासिल है। 5000 से ज्यादा डिजाइन के साथ उनके पास 50,000 रुपए तक के ब्लाउज मौजूद हैं। 60 से ज्यादा देशों में उनके डिजाइन पसंद किए जाते हैं।
1: कुछ आइडियाज बहुत अलग होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। उनके बारे में जब आप सोचते हैं, देखते हैं, आपको थोड़ा सा अजीब महसूस हो सकता है, लेकिन कुछ क्रिएटिव माइंड्स हैं जो उस काम को कर रहे हैं और बेहद पैशन के साथ कर रहे हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ जी हैं और सूरत से आए हैं, और सिद्धार्थ जी सिर्फ और सिर्फ ब्लाउज बनाते हैं, यही उनकी USP है। आप दुनिया की कोई भी डिज़ाइन सोचिए, वो सब कुछ उनके पास मौजूद है। लगभग 5000 डिजाइंस में ये डील करते हैं।
3: आप देख सकते हो एक मॉडल ने बहुत यूनिक ब्लाउज वेयर किया हुआ है। देखिए मैम ने जो एक डेनिम के साथ वेयर किया हुआ है, वो भी बड़ा बहुत बड़ा कट दाना में यूनिक ब्लाउज बना हुआ है। सबसे हॉट जो मतलब सबसे यूनिक ब्लाउज है, इसमें हमने ये आउटफिट बनाने में जो जरदोसी में बना हुआ है, ये आउटफिट बनाने में हम लोग को 20 दिन लगा है, 20 दिन लगा है, क्योंकि एक एक डोरी जो उसकी रहती है ना, डोरी बहुत हार्ड से हमको बनानी पड़ती है।
0: एक बार फिर बच्चों के लिए प्लास्टिक के बजाय लकड़ी के खिलौने खरीदने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। प्लास्टिक के खिलौनों में हानिकारक केमिकल की आशंका ज्यादा होती है, जबकि अच्छी लकड़ी और प्राकृतिक रंगों से बने खिलौने बच्चों के लिए पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। ऐसे खिलौनों की भी यहाँ नुमाइश है। 15 अगस्त तक चलने वाला भारतीय व्यापार महोत्सव देश के अलग अलग हिस्सों से आ रहे कारोबारियों, MSME, स्टार्टअप, निर्माता, निर्यातक और महिला उद्यमियों को एक मंच मुहैया करवा रहा है, ताकि भारतीय कपड़ों का कारोबार लोकल मार्केट से निकलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में धूम मचाए।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।

0: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: का क्या है महत्व, हरियाली तीज पर क्या होगा पूजा विधान, कौन सी रखी जाएंगी सावधानियां और मिलेंगे कौन से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें
6: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे हरियाली तीज की और इसके महिमा की, साथ ही साथ आपको बताएंगे हरियाली तीज के विशेष उपायों के बारे में। 12 राशियों का राशिफल भी बताएंगे और कार्यक्रम के अंत में बताएंगे एक विशेष उपाय। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है। और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगी, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करेंगी। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती, तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर, उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री, सिंदूर बिंदी चूड़ी आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें और मां पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, सुहागन स्त्री को, उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी, ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा। सिंह राशि, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें, दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा, भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा, माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा, मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः, 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं हरियाली तीज पर, इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी? विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करिएगा। इसके बाद मंदिर में घी का दीपक जलाइए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए भगवान शिव से और मां पार्वती से कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो। जो आपने भगवान शिव को पीले और माता पार्वती को लाल या गुलाबी वस्त्र अर्पित किया था, इन वस्त्रों में आपस में गांठ लगा लीजिएगा और इन वस्त्रों को अपने पास सुरक्षित रखिएगा। अगले साल तीज पर गांठ को खोलकर वस्त्रों को साफ करके पुनः आप अर्पित कर सकती हैं, पुनः गांठ लगाकर अपने पास रख सकती हैं। अगर आप महिला हैं और तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं, तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही करिएगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में प्रदोष काल में अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपको लाभ होगा। अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का उपाय हरियाली तीज पर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पुरुष शीघ्र विवाह के लिए उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करेंगे। शिव जी को पीला और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा प्रदोष काल में करते हैं हरियाली तीज पर, तो आपका विवाह शीघ्र होगा। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।
7: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9:00।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: आजादी के जश्न की तस्वीरें उत्तराखंड से भी आए हैं। टिहरी झील में नावों पर भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। लाइफ जैकेट के साथ देशभक्ति के जोश से सराबोर युवाओं ने झील में नावों पर सवार होकर तिरंगा रैली में शिरकत की। 150 से ज्यादा लोगों ने टिहरी झील की लहरों पर 20 से ज्यादा नौकाओं पर सवार होकर तिरंगा रैली निकाली। हाथों में तिरंगा लेकर नावों पर सवार युवाओं ने देशभक्ति के जज्बे से सर्द फिजाओं में राष्ट्रप्रेम का जोश भरा। पूरा इलाका भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। झील की लहरों पर इस भव्य तिरंगा रैली का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया था। प्रधानमंत्री की अपील पर देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन किया जा रहा है और ये तिरंगा रैली भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित की गई, जिसमें शामिल लोगों ने देशभक्ति और एकता का संदेश दिया। अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, देश के कोने कोने में तिरंगे को सलामी देने के लिए देशभक्ति का जोश नजर आएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती से तिरंगे को सलामी देने की एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अमरावती पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण आकरे ने देशभक्ति के जज्बे में पानी के अंदर साइकिल चलाकर तिरंगे को अनोखी मानवंदना दी। करीब 10 फीट गहरे पानी में 25 मीटर तक साइकिल चलाकर उन्होंने देश के तिरंगे को सलाम किया। इस दौरान करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक अपनी सांस रोककर उन्होंने ये हैरतअंगेज प्रदर्शन किया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच।
3: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। HRIT University Ghaziabad, shaping future, creating leaders.
3: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग की रोशनी से नहाई प्रमुख इमारतें, राष्ट्रध्वज की रंग की लाइटों से जगमग हुआ दिल्ली का इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें। दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट के पास निकाली तिरंगा बाइक रैली। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे मेट्रो का सफर। सीवे स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का किया ऐलान। 9 जाबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर चक्र से होंगे सम्मानित। सावन में रामनगरी में उमड़ा भक्तों का हुजूम। 35 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया दर्शन। पिछले साल के मुताबिक 10% से अधिक भक्तों में वृद्धि। और चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। और चर्चा लद्दाख में 100 फीट की ऊंचाई में फहराए गए तिरंगा की भी है।
1: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस से पहले लद्दाख के जांस्कर में भारतीय सेना ने 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया। इसे फोटंग के पास कोजुथांग में लगाया गया है। जांस्कर के सुरम्य वातावरण के बीच शान से खड़ा ये विशाल झंडा न सिर्फ भारत की एकता और अखंडता का संदेश दूर दूर तक पहुंचा रहा है बल्कि यहां के लोगों को गर्व से भी भर रहा है। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के तौर पर स्थापित इस झंडे की चर्चा अब हर तरफ है। सेना के फॉरएवर इन ऑपरेशंस डिवीजन ने जांस्कर जिले के नागरिक प्रशासन के सहयोग से ये पहल की है। ध्वजारोहण के साथ साथ यहां परिसर के आसपास नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण का काम भी किया गया ताकि लोग यहां आकर कुछ समय बिता सकें। तिरंगे की स्थापना को सेना और लद्दाख की जनता के बीच अटूट विश्वास और आपसी सम्मान के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है। के अमरावती से एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। यहां अमरावती पुलिस विभाग के कांस्टेबल प्रवीण आकरे ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगे को अनूठे अंदाज में सलामी दी। उन्होंने गहरे पानी में करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक सांस रोककर 25 मीटर तक साइकिलिंग की। खास बात ये कि इस दौरान उन्होंने किसी ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, पानी में साइकिल का संतुलन बना रहे इसलिए साइकिल में जरूर कुछ बदलाव किए थे। और सबसे खास बात ये कि गहरे पानी में भी उनकी साइकिल में लगा तिरंगा अपनी जगह पर अडिग रहा। मुंबई में इसराइल की डिप्टी कौंसल जनरल अविशाग हेफर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनी। उन्होंने मुंबई के ऐतिहासिक CSMT स्टेशन पर यात्रियों को तिरंगा बांटा और उन्हें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। वीडियो में वो स्टेशन पर महिला, पुरुष, युवाओं, बच्चों और सुरक्षा बलों को तिरंगे के साथ मुस्कुराते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए देखी जा सकती हैं। अविशाग हेफर के मुताबिक ये दूसरी बार है जब वो भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यहाँ हैं। अविशाग हेफर भारत और इसराइल के बीच सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान के जयपुर में हरियाली तीज के तैयारियों के बीच 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खासियत ये है कि ये मैदे से नहीं बल्कि इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है और इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट ग्लेजिंग और भरपूर मेवों की परत है। सबसे खास है इसका गोल्ड टच। ऊपर सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल भी किया गया है। इसी शाही और प्रीमियम अंदाज की वजह से इसकी कीमत करीब 21,000 रुपए रखी गई है। लोकप्रिय असमिया गायक पापोन असम में बाढ़ पीड़ितों के बीच नजर आए। इस दौरान वो यहाँ आम इंसान की तरह लोगों से बातें करते, हंसी मजाक करते और उन्हें गले लगाते दिखे। पापोन ने यहाँ शिवसागर जिले के निमेजान इलाके के कई बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा किया और राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने यहाँ राहत सामग्री भी बांटी। उनके मुताबिक वो ये पता लगाने की कोशिश में है कि कहां तक मदद नहीं पहुंच पाई और लोगों की और क्या जरूरतें हैं ताकि सब तक समय पर सही मदद पहुँच सके।
0: अब बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार समारोह में पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गूंजेगा। वहीं लाल किले पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली और देश के दूसरे राज्यों में किसी भी खतरे से बचने के लिए पुलिस समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर शहर हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है। यही नहीं, सरकारी इमारतें भी तिरंगे के रंग से रोशन हो चुकी है और लोगों पर भी जश्न आजादी की खुमारी छाने लगी है। बस अब कुछ घंटे का और इंतजार है, जब पूरे देश में बड़े ही शानो शौकत और हर्षोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर और राज्यों की राजधानियों में गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सख्त सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त से जुड़ी इन तैयारियों के बीच देश भर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। देश भर में सुरक्षा, परेड रिहर्सल, झांकियों और सजावट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्य मैदानों तक प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और राजधानी दिल्ली में विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसके तहत दिल्ली से लगे तमाम राज्यों के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
1: दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां करी है। इस डिस्ट्रिक्ट का काफी बड़ा बॉर्डर भी लगता है, आपको पता है, गाजियाबाद का साथ और नोएडा के साथ। तो आज हम जनरल गश्त कर रहे हैं, तमाम स्टाफ हमारे, तमाम इंस्पेक्टर सिंह सब फील्ड में है और सघन चेकिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग की जा रही है और एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है और ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और हमारे जो दो बड़े बॉर्डर हैं गाजीपुर और चिल्लापुर, उन पर स्टाफ की डिप्लोमेंट भी की गई है।
0: साथ ही लाल किले के आसपास और राजधानी के बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी में 15 अगस्त के लिए 10 से 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
2: जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जनरल गश्त है, इसमें थाना प्रभारी से लेकर ऊपर तक तमाम सीनियर ऑफिसर्स और हमारी फोर्स आज इलाके में गश्त कर रही है और साथ ही टिकट्स पे चेकिंग भी बढ़ाई गई है, इंटेंसिफाई की गई है। एंटी टेरर मेजर्स को ध्यान में देते हुए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग आज यहाँ पे बढ़ा रखी है और क्योंकि नेशनल फेस्टिवल, नेशनल डे 15 अगस्त से पहले ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है।
3: हमारा जो डिप्लॉयमेंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20,000 के आसपास विभिन्न एजेंसीज के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, PCR है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिविजन्स हैं, तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होगी, कमांडोज तैनात होंगे, NSG की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं, उसके अलावा NSG के कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे, NDRF की फोर्स भी यहाँ पे रहेगी ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी QRTs हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है CCTV कैमरा। 1,000 से ऊपर CCTV कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेन लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने CCTV कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा।
0: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने से लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, 21 तोपों की सलामी, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, राष्ट्र के नाम संबोधन और अंत में NCC कैडेट्स और माई भारत वॉलंटियर्स के वंदे मातरम के सामूहिक गायन तक हर चरण में इस साल की थीम विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका की झलक दिखाई देगी। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। इसके तुरंत बाद थल सेना का बैंड राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन बजाएगा और समारोह में मौजूद लोग राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बाद राष्ट्रगान होगा और बैंड का संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह करेंगे। ध्वजारोहण के साथ ही भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर फूलों की बारिश करेंगे। इनमें एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा वंदे मातरम दर्शाने वाला ध्वज लेकर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर्स की कमान विंग कमांडर रजत और स्क्वाड्रन लीडर अंकित वर्षने संभालेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 2500 लड़के और लड़कियां शामिल होंगे। इनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के NCC कैडेट्स के साथ माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। इन्हें लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया जाएगा। ये मिलकर वंदे मातरम का आकार बनाएंगे। ज्ञान पथ पर विकसित भारत एट 2047 थीम से जुड़े व्यू कटर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी 15 अगस्त की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, तो आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए और जश्न आजादी में शरीक होकर देश का शौर्य और गौरव बढ़ाइए। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार कांवड़ यात्रा में बना श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
4: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान की गिनती की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और जवाबदेह बनाने के लिए निगरानी व्यवस्था को और सख्त किया गया है। दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों के लिए अब बिना जेब वाली वर्दी अनिवार्य कर दी गई है। वहीं गिनती केंद्र में प्रवेश और निकास के दौरान कर्मचारियों की कड़ी तलाशी की व्यवस्था भी लागू की गई है। इसके अलावा गिनती कक्ष की CCTV रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने की अवधि 45 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दी गई है। वहीं गिनती केंद्रों में लगे स्थायी CCTV कैमरों को BTZ यानी पैन टिल्ट जूम कैमरों में बदलने की तैयारी है। यूपी में इस बार कांवड़ यात्रा ने आस्था और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों का नया रिकॉर्ड बनाया है। मुजफ्फरनगर के DM और SSP के मुताबिक इस बार गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच करीब 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये यात्रा का हिस्सा बने। बड़ी बात ये रही कि इतनी विशाल भीड़ के बावजूद इस साल कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई। गुजरात के आणंद के बकरोल में करीब 67.5 करोड़ की लागत से हाईटेक जेल तैयार की गई है। डिप्टी CM हर्ष सांघवी ने आज इसका लोकार्पण किया। सुरक्षा के लिहाज से यहां अत्याधुनिक हार्डकोर बैरक, वॉच टावर, SRP बैरक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लैस आधुनिक कोर्ट रूम तैयार किए गए हैं। 1,20,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस आधुनिक जेल में 370 कैदियों को रखा जा सकता है। इसमें पुरुष और महिला कैदियों के लिए अलग अलग बैरक हैं। अब सलाइवा से भी ओरल कैंसर की पहचान संभव होगी। IIT इंदौर के शोधकर्ताओं ने ओरल कैंसर की प्रारंभिक पहचान के लिए नॉन इन्वेसिव सलाइवा और स्वैब आधारित तकनीक विकसित की है। रिसर्च टीम के मेंबर प्रोफेसर हेमचंद्र झा के मुताबिक ओरल कैंसर सबसे पहले सलाइवा और ओरल म्यूकोसल सतह पर आणविक संकेत छोड़ता है। ऐसे में उनका मकसद इन नॉन इन्वेसिव संकेतों को पहचानना है, जिससे प्रारंभिक स्टेज में ही मुंह के कैंसर की पहचान की जा सके। राष्ट्रपति भवन का प्रसिद्ध अमृत उद्यान 16 अगस्त यानी रविवार से आम लोगों के लिए खुलने जा रहा है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी समय सारणी के मुताबिक उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेगा। दर्शकों को शाम 5 बजे तक ही अंतिम प्रवेश दिया जाएगा। रखरखाव के लिए सोमवार को उद्यान बंद रहेगा। यहां आने वाले लोगों की एंट्री और एग्जिट नॉर्थ एवेन्यू रोड के पास स्थित गेट नंबर 35 से होगी। तो अगर आप भी अमृत उद्यान में फूलों की सुंदरता और खुशबू का आनंद लेना चाहते हैं तो 15 सितंबर तक यहां आ सकते हैं। एंट्री फ्री है।
0: और अब बात तिरंगा यात्रा की। तिरंगा भारत के आन बान और शान की पहचान। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग चुका है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाओं से लेकर पुरुष और शासन प्रशासन के लोग हिस्सा ले रहे हैं। कश्मीर की खूबसूरत डल झील से लेकर उत्तराखंड के टिहरी और मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नावों पर जश्न आजादी मनाई जा रही है।

0: भारत के आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा, देश की एकता, अखंडता और गौरव को एक साथ दर्शाने वाला तिरंगा, 140 करोड़ भारतीयों के गौरव, स्वाभिमान और राष्ट्रप्रेम की पहचान है तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले जगह जगह, शहर शहर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसके अद्भुत छटा और उसकी खुशबू पूरे देश में महसूस की जा रही है। जम्मू के कठुआ में तिरंगा यात्रा में उमड़ा ये सैलाब आजादी के दीवानों की याद दिला रहा है। हर गली मोहल्ले से गुजरता हुआ ये सैलाब देशभक्ति का संदेश दे रहा है। हर हाथ में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जोश। तिरंगे के साथ जैसे जैसे पांव आगे बढ़ रहे हैं, देशभक्ति का जुनून और राष्ट्र के प्रति प्रेम का भाव और गहरा होता जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और पुलिस प्रशासन के लोग भी शामिल हुए।
1: कठुआ पुलिस अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की तरफ से आप देख रहे हैं, आज मेगा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया सब डिवीजन बनी में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, स्कूली बच्चे, टीचर्स और मार्केट एसोसिएशन सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है और आप देख रहे हैं 5000 प्लस गैदरिंग है। और
2: संदेश क्या दिया गया
1: इसमें? यही संदेश है कि हमें जो वीर जवान है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने जान तक न्यौछावर किए और उसको बनाए रखने के लिए हमें देशभक्ति का जो हमें संदेश जो है अपने तिरंगे के साथ, हम घर घर तिरंगा कैंपेन में हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचे तक अपना पैगाम पहुंचाएं।
0: श्रीनगर की खूबसूरत डल झील भी ऐसी ही देशभक्ति की गवाह बनी, जहां पानी की लहरों के बीच शिकारे पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बसी डल झील और उसकी लहरों के बीच शान से लहराता तिरंगा घाटी में देशभक्ति की अलख जगा रहा है। शिकारे पर निकाली गई इस तिरंगा यात्रा ने श्रीनगर की फिजाओं को देशभक्ति के रंग से सराबोर कर दिया है। शिकारे पर हाथों में तिरंगा और चारों तरफ देशभक्ति की गूंज से फिजा की रौनक बढ़ गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई लहरों पर लहराते तिरंगे की ऐसी खूबसूरत तस्वीर मन को मोह लेने वाली है। यहाँ बड़ा तालाब में सैकड़ों नावों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली गई। भोपाल के बड़ा तालाब में पानी की लहरों के बीच तिरंगे की शान देखते ही बन रही है। एक दो नहीं बल्कि 350 से ज्यादा तिरंगों से
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़ा तालाब में तिरंगा लेके उतरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम इस वक्त उस नाव के ठीक साथ में चल रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त चल रहे हैं, और ये सामने तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से भोपाल की तालाब बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त जो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं। और ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे जल में, थल में, नभ में, हर जगह इस वक्त तिरंगा छाया हुआ है और यहाँ पे 100 से ज्यादा नावें हैं जिनमें तिरंगा लगाया गया है। मुख्यमंत्री सभी का अभिवादन कर रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और हाथों में तिरंगा लहरा करके मध्य प्रदेश भी सशक्त बने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर देश जो है उसकी परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री की, उसको हाथों में लिए यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश इस तिरंगा यात्रा के जरिए। आप देखिए कि कितने बड़े स्तर पर ये तिरंगा यात्रा मध्य प्रदेश खेल विभाग ने जो रखी है, खेल मंत्री विश्वास सारंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है मुख्यमंत्री के साथ, और इस तिरंगा यात्रा के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो देश की पहली पानी में निकाली गई इस तिरंगा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं।
0: आजादी के जश्न की ऐसी ही तस्वीर टिहरी झील में भी देखने को मिले, जहां लहरों पर आमतौर पर पर्यटक नौका विहार का आनंद लेते नजर आते हैं, वहीं आज यही झील देशभक्ति के रंग में रंगी दिखाई दी। झील की लहरों के बीच जब एक साथ दर्जनों तिरंगे लहराए तो हर कोई देखता रह गया।
4: पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, तो हमने भी यह तिरंगा यात्रा का आयोजन एक नए नए विजन को लेके किया है, क्योंकि हमारे टिहरी जिले में एशिया का सबसे बड़ा रॉकफिल बांध है और उसी में एक कम से कम 42 किलोमीटर की एक लंबी झील है और इसी झील में एक हम आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे साथ अनेकों युवा साथियों ने भी प्रतिभाग किया है।
5: जो ये देशभक्ति की भावना लेके हम चल रहे हैं, हम अभी टिहरी झील में मौजूद है, तो ये हमारे लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरा देश अभी भक्ति में हो रखा है देश के प्रति। हम सब तिरंगा लेके इस अभियान को कर रहे हैं और हमारे जिले के लिए, हमारे लिए गौरव की बात यह है कि हमारे पास एशिया की सबसे बड़ी झील है, तो हम इस झील में आज खड़े होकर के पूरे देश में ये आह्वान दे रहे हैं कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, ये पूरा भारत वर्ष एक है और हम सारे युवा, जितने भी देश के युवा है, अपने देश के लिए पूरे तन मन धन से खड़े हैं।
0: प्रयागराज में भी तिरंगे की शान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हाथों में तिरंगा लिए बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए और हर दिशा में देशभक्ति का जोश, हर चेहरे पर राष्ट्रप्रेम और उत्साह नजर आया।
6: भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सिद्धार्थनाथ सिंह और बीजेपी के तमाम यहाँ पर पदाधिकारी है और सब जितने लोग हैं यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर के झूम और गा रहे हैं और देशभक्ति के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं।
0: प्रयागराज से निकली भव्य तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए जिससे पूरा शहर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। हर उम्र के लोग इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं और एक सुर में देश के प्रति अपना प्रेम और सम्मान जाहिर कर रहे हैं।
7: सारे प्रयागवासी आज तिरंगे की यात्रा में शामिल हुए, इन्होंने ये तिरंगा यात्रा निकाल करके देशभक्ति का सबूत दिया है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा परमो धर्मा, इसको इन्होंने आज दिखा दिया है कि हर भारतीय के दिल में देश सेवा बसती है, तिरंगे के प्रति सम्मान।
0: देश आजादी के जश्न में रंग चुका है। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में राष्ट्रभक्ति और एकता का पैगाम दिया जा रहा है और भारत माता के जयकारों के साथ हर घर तिरंगा अभियान में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो देश के प्रति सच्ची भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। टिहरी झील से पंकज भट्ट और प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ भोपाल से रवीश पाल सिंह, गुड न्यूज टुडे।
8: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और वेस्ट एशिया में अनिश्चित माहौल के बीच कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार 14 अगस्त को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 70 अंकों की गिरावट के साथ 78,009 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 29 अंकों की गिरावट के साथ 24,366 पर बंद हुआ। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। सर्राफा व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 800 रुपए गिरकर 1,56,200 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए पर स्थिर रही। चौदह अगस्त को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 3 पैसे चढ़कर 95.42 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
8: मिर्जापुर मूवी से पहले मल्टीप्लेक्स पीवीआर ने बदला अंदाज। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी ऐसी ही कई खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चले फिल्मी मोड पर।
9: तुम्हारे बाप हमको पलट के जवाब दिए थे।
0: मिर्जापुर द मूवी के सिनेमाघरों में दस्तक देने से पहले ही इसका क्रेज दिखाई देने लगा है। 4 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली है और इसी को लेकर पीवीआर ने भी खास अंदाज में इस फ्रेंचाइजी का स्वागत किया है। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से निकलकर बड़े पर्दे तक पहुंच रही है। मिर्जापुर अपने मजबूत फैन बेस को एक बार फिर सिनेमाघरों तक खींचने की तैयारी में।

0: मिर्जापुर की गद्दी के बारे में सुने?
1: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
0: नहीं खुला तो तोड़ देंगे।
2: देश की आजादी मुबारक हो।
3: आपको भी बहुत मुबारक हो।
4: सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर नजर आई है और इस बार कहानी 1947 के बंटवारे के दर्द को सामने रखती है। असगर वजाहत के मशहूर नाटक पर आधारित बंटवारा 1947 में उस दौर की उथल पुथल, डर और अनिश्चितता को प्रभावी तरीके से दिखाया गया है। संतोषी ने लाहौर के माहौल को काफी वास्तविक रखने की कोशिश की है। फिल्म का पहला हिस्सा कहानी को तैयार करने में समय लेता है, लेकिन दूसरा भाग ज्यादा प्रभावशाली है और कई दमदार दृश्य कहानी को मजबूत बनाते हैं।
2: अब ये घर हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है।
5: अम्मा यहाँ कोई है?
6: कौन है आप?
5: तुम कहो जी, तुम कौन हो? जो मेरे घर
7: है तुम्हें।
4: आवारापन 2 में इमरान हाशमी की शिवम पंडित के किरदार में वापसी हुई है और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई है। 2007 में आई पहली फिल्म को समय के साथ कल्ट पहचान मिली, इसलिए उसके बाद की कहानी से उम्मीदें भी काफी ज्यादा थीं। इस बार शिवम और एक बच्चे का रिश्ता कहानी के केंद्र में है, जिसके साथ एक्शन और भावनाओं को जोड़ा गया है। शुरुआत में बच्चों की तस्करी का गंभीर मुद्दा सामने आता है, लेकिन आगे चलकर कई सब प्लॉट कहानी को थोड़ा बिखरा हुआ जरूर बनाते हैं।
8: न्यूज़ वक्त में खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
8: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें, नई संसद, इंडिया गेट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई जबरदस्त सजावट।

स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें।

उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे मेट्रो का सफर।

चलिए न्यूज पथ पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोज को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोज ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।

कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, और इस गाने पर इन नन्हे कलाकारों की प्यारी परफॉर्मेंस देखकर दिल खुश हो जाए। उम्र छोटी है लेकिन जोश भरपूर है। डांस स्टेप हो या कॉन्फिडेंस, किसी भी चीज में इन बच्चों की कमी नहीं दिखती। चेहरे की मासूमियत के साथ देशभक्ति का जज्बा भी साफ नजर आ रहा है। अपने शानदार अंदाज से बच्चों ने माहौल में उत्साह भर दिया। इनकी क्यूटनेस में दिखता देश प्रेम लोगों को खूब पसंद आ रहा है। रंग बिरंगे कपड़े, तेज म्यूजिक और उसी ताल पर बच्चों का शानदार प्रदर्शन। देखने में ये स्टेप भले ही आसान लग रहे हों, लेकिन इन्हें एक साथ सही तालमेल के साथ करना बिल्कुल आसान नहीं है। इन नन्हे बच्चों ने अपनी मेहनत और अभ्यास से हर मूवमेंट को बेहद खूबसूरती से पूरा किया। चेहरे पर मुस्कान और कदमों में गजब का तालमेल दिखाई दिया। बच्चों की इस प्यारी प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर भी लोगों का खूब प्यार बटोर रहा है।

हर तरफ बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप, हर ग्रुप में चार बच्चे और हाथों में तिरंगा। जैसे ही म्यूजिक बजता है, नन्हे हाथों से लहराने लगता है देश का गौरव। तिरंगे के कोने को थाम कर बच्चे पूरे उत्साह से उसे हवा में लहराते नजर आते हैं। स्कूल में हुए कार्यक्रम की ये खूबसूरत झलक हर किसी का ध्यान खींच रही है। मासूम चेहरों पर खुशी और हाथों में तिरंगा देखकर साफ है कि देश प्रेम की भावना बचपन से ही दिलों में बसती है।

किसी के हाथ में हरा बॉक्स, किसी के पास नारंगी तो किसी के हाथ में सफेद रंग। अलग अलग रंगों के इन छोटे छोटे बॉक्स को लेकर बच्चे खास तस्वीर बनाने में जुटे हैं। धीरे धीरे सभी अपनी जगह लेते हैं और सामने बनकर तैयार हो जाता है तिरंगा। नन्हे हाथों से की गई ये कोशिश सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं बल्कि देश के प्रति सम्मान की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। तिरंगा बनने के बाद बच्चों ने उसे सलामी देकर इस पल को और खास बना दिया।

0: आज़ादी वो भावना है जो हर सपने को पंख देती है और इस नन्ही बच्ची का हुनर इसका खूबसूरत उदाहरण है। चार बच्चों ने मिलकर अपनी अपनी बॉडी को मोड़ा और उसे साइकिल की तरह मोड़कर उस पर बैठने का संतुलन बनाया और फिर हाथों में तिरंगा लेकर उसे शान से लहराया। मुश्किल लगने वाले इस कर्तव्य को बच्ची ने पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरा किया। नन्ही उम्र, गजब का संतुलन और हाथों में तिरंगा, इस प्रयास में देश के लिए बच्चों का प्यार साफ दिखाई दे रहा है।
1: न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या के राम मंदिर की। कल यानी कि 15 अगस्त से अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की सेवा पूजा में लीन अर्चकों यानी कि पुजारियों की व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से मंदिर के सभी अर्चकों के लिए एक समान ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। राम मंदिर की धर्म समिति के पूज्य संतों ने पुजारियों की पोशाक को लेकर सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया। नए ड्रेस कोड के अनुसार सभी अर्चक नीचे धोती और ऊपर अंगवस्त्र धारण करेंगे। ये वस्त्र विशेष रूप से रेशम का बना होगा और इसका रंग पीला रखा गया है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पीला रंग भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी कारण रामलला के मुख्य परिधानों से लेकर पुजारियों के वस्त्रों तक में पीले रंग को प्राथमिकता दी गई है। श्री राम जन्मभूमि धर्म समिति के सदस्य महंत राजकुमार दास ने बताया कि रेशमी वस्त्र की धार्मिक शुद्धता, पवित्रता और सात्विकता को ध्यान में रखते हुए इसे चुना गया है। महंत राजकुमार दास के अनुसार रामलला की नित्य सेवा में समर्पित सभी अर्चक 15 अगस्त से एक ही निर्धारित पीताम्बरी रेशमी परिधान में नजर आएंगे। इस एक समान व्यवस्था से न केवल मंदिर की सेवा पूजा प्रणाली में अनुशासन और एक रूपता आएगी, बल्कि धार्मिक गरिमा भी और अधिष्ट स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। धर्म समिति का मानना है कि इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद राम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को एक अनुशासित और भव्य धार्मिक वातावरण का अनुभव होगा। इसके साथ ही मंदिर में चढ़ावे की गिनती को लेकर भी व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इस बदलाव को लेकर हमने अयोध्या में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: ये वस्त्र एक तो किसी से स्पर्श स्पर्श होने पर इनकी पवित्रता शुद्धता बनी रहती है, इसलिए रेशमी वस्त्र जो हमारी संत समिति है आदरणीय महापुरुषों ने तय किया है कि ऐसा वस्त्र रहे और वो ट्रस्ट ही उपलब्ध कराएगा वस्त्र भी पुजारियों के लिए, तो थोड़ा अच्छे से व्यवस्थित रहे। भगवान श्री राम लला सरकार हमारे राजाधिराज हैं, तो उनके अनुरूप वस्त्र सबका एक ड्रेस कोड रहेगा, तो एक पहचान रहेगी कि हाँ ये भगवान के अर्चक हैं और उनकी सेवा में नियमित रूप से रह रहे हैं। तो वस्त्र के ही
3: कितने तारीख से
2: ये आने वाले, मुझे लग रहा है कि 15 तारीख के पहले हो जाएगा, सबकी तैयारी हो जाएगी और 15 को सब लोग डेस्क में मिलेंगे पुजारी लोग हमारे। इनको सिल्क का वस्त्र बोलते हैं, रेशमी सिल्क होता है, तो पीत वस्त्र रहेगा, रेशमी सिल्क है वो।
4: जो भगवान श्री राम की पूजा करते हैं और जो अर्चक हैं उनकी ड्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है, सिल्क की उनकी ड्रेसें होंगी और खास उसमें जो है जेब नहीं होगी और वो सिले हुए कपड़े नहीं होंगे, तो वो पीताम्बरा कलर का, क्योंकि राम जी का प्रिय कलर पीला है। यहाँ पे हमारे साथ युवा वर्ग है और यहाँ पे आप सनातनी भी हैं, आप राम जी के दर्शन करने आए, कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को, इन बदलाव को कैसे देख रहे हैं?
5: ये बदलाव बहुत अच्छे हुए हैं, मतलब कि जो हुआ था अभी जो हाल ही में चोरी हुई थी उसको लेकर उसके बाद में जो ये बदलाव किए गए उसको देखते हुए ये बहुत ही अच्छे जो बदलाव हुए हैं, ये आगे चलकर हमको लगवाया कि इससे और भी बेटर हो सकता है और ये करेंगे जैसा कि अभी तक हो रहा है उसी हिसाब से और हो तो हाँ, गलत जो ये गलत कार्य किए गए हैं अगर ये दोबारा ना हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर धर्म को लेकर कोई ऐसा कर रहा है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि लोगों का जो उनसे जो लगाव है वो बहुत गलत हो जाता है।
4: जो ड्रेस भी चेंज कर दिए गए पुजारियों के, ये कलर रहेंगे और
5: हाँ, ये जो ड्रेस चेंज किए गए वो भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि अब उसमें जेब नहीं रहेगी पहली बात, और जो पहले का कल्चर चलता आ रहा है कि लोग पहले भी पीताम्बर डालकर सिर्फ धोती और ऊपर डालते थे, वो अब आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, मतलब पहले का कल्चर एकदम उसी तरह चलता रहेगा तो हमारी जो पद्धति है वो उसी तरह बरकरार रहनी चाहिए, और इसमें जो बदलाव आए हैं बहुत ही अच्छे आए हैं।
6: बढ़िया, बहुत बढ़िया बदलाव है, काफ़ी काफ़ी बदलाव हुआ है। हम लोग अभी फिलहाल अंदर तो गए नहीं है,
3: बाहर से ही देख रहे हैं, कानून बैरियर एरियर ये दिख रहे हैं, तो बदलाव तो लग ही रहा है काफी।
6: शुरुआत अच्छी है और इसको और भी बेहतर तरीके से किया जा सकता है, और भी बेहतर चीजें हमें उम्मीद है कि सरकार और भी बेहतर तरीके से करेगी आने वाले दिनों में। और बहुत यहाँ का विकास भी देख करके अच्छा मन खुश होता है जब आते हैं, जब पहले आते थे तब की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। और इन चीजों को देख करके एक हिंदू होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते बहुत ही दिल को सुकून मिलता है, तसल्ली मिलती है।
1: 15 अगस्त को लेकर पंजाब में अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की फाइनल रिहर्सल हुई। आजादी के पर्व से ठीक पहले सरहदी इलाके में सुरक्षा जवानों के कदमों की धमक, बैंड की धुन और तिरंगे की शान, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। यहाँ पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में सराबोर है।

कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ जुनून मातृभूमि की शान का है। हाथों में लहराता तिरंगा और दिल में हिंदुस्तान भी है। हर कदमों में वो जोश जब हर हिंदुस्तानी गर्व से भर जाता है। वो है 15 अगस्त का दिन।

तस्वीरें अटारी बॉर्डर की हैं, जहां 15 अगस्त से पहले आजादी का जश्न दिखाई दिया। सरहद के इस छोर पर देशभक्ति सिर्फ महसूस नहीं हो रही, बल्कि हर कदम, हर ताल और हर प्रस्तुति में नजर आ रही है। कदम से कदम मिलाते जवान, हाथों में तिरंगा, चेहरे पर आत्मविश्वास और अंदाज ऐसा कि देखने वाला भी जोश से भर जाए। 15 अगस्त भारत के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, ये वो दिन भी है जब देश अपनी आजादी का जश्न मनाता है, उन वीरों की याद दिलाता है जिनके संघर्ष और बलिदान से हमें स्वतंत्रता मिली। इसी खास दिन को यादगार बनाने के लिए अटारी वाघा बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिहर्सल जारी है और इस अभ्यास को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पहुंच रहे हैं।

किसी के हाथ में तिरंगा है, किसी की जुबान पर भारत माता की जय, तो कोई जवानों की कदम ताल देख कर गर्व से भर जा रहा है। जवानों की ऊंची कदम ताल, दमदार अंदाज और हर हरकत में जोश, यही तो है देश के जवानों की ताकत।

अटारी वाघा बॉर्डर की पहचान यहां होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जवानों की शानदार परेड इस आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण होती है। जवानों की ऊंची कदमताल, जोशीली चाल और अनुशासन देखने वालों में रोमांच भर देता है। हर कदम के साथ सरहद की ताकत का एहसास देता है। यहाँ खड़े जवान सिर्फ परेड का हिस्सा नहीं होते, बल्कि देश की सुरक्षा और सम्मान के प्रहरी नजर आते हैं। उनका जोश देख लोगों के अंदर भी देशभक्ति का भाव और मजबूत हो जाता है। लेकिन इस बार अटारी बॉर्डर पर तैयारियां सिर्फ जवानों की परेड तक सीमित नहीं है। आजादी के जश्न में संस्कृति, साहस और हुनर के रंग भी शामिल किए जा रहे हैं। डांस हो, ताइक्वांडो हो या अलग अलग राज्यों की पारंपरिक झलक, हर प्रस्तुति के लिए खूब अभ्यास हो रहा है। ताल से ताल मिलाते कदम, एक के बाद एक शानदार स्टेप और चेहरे पर आत्मविश्वास। खास बात ये कि इस आयोजन में महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ भाग ले रही हैं। मराठा अंदाज में सजी महिलाएं जब पारंपरिक पोशाक में सामने आती हैं, तो उनकी प्रस्तुति देखते ही बनती है।

0: कहीं मराठा संस्कृति की झलक नजर आ रही है तो कहीं पंजाबी रंग बिखरता है। अलग अलग वेशभूषा में सजी महिलाएं अपनी प्रस्तुति के जरिए देश की विविधता को सामने ला रही हैं। वहीं ताइक्वांडो की तैयारी में साहस और आत्मरक्षा का संदेश नजर आता है। यहां पहुंचने वाले लोगों के लिए ये सिर्फ कोई कार्यक्रम देखना भर नहीं है, बल्कि देशभक्ति को करीब से महसूस करने का मौका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ।
3: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
1: कल से शुरू होगा भारतीय क्रिकेट टीम का 600वां टेस्ट। खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए आपको लिए चले खेल चक्कर।
10: श्रीलंका के साथ कल से होने वाले 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया गोल पहुंच गई है। वहां से टीम इंडिया के नेट्स पर अभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। वहीं भारत और श्रीलंका के कप्तान शुभमन गिल और धनंजय डिसिल्वा गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज की ट्रॉफी के साथ पोज भी देते दिखे। भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट शनिवार से गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंक तालिका के लिहाज से दोनों टीमों के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है। जो क्लीन स्वीप करने में सफल रहेगा उसकी एंट्री टॉप फोर में हो सकती है। विमेन क्रिकेटर जेमिमा रॉड्रिग्स हैमस्ट्रिंग चोट के कारण एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर हो गई हैं। उन्हें ये चोट इसी महीने इंग्लैंड में द 100 टूर्नामेंट के दौरान लगी थी। उनकी जगह प्रतिका रावल को टीम में शामिल किया गया है। बीसीसीआई के मुताबिक मेडिकल जांच में उनकी हैमस्ट्रिंग में गंभीर स्तर का टियर मिला है। एशिया कप 28 अगस्त से 5 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के मौके पर जम्मू कश्मीर के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से नई दिल्ली में आने और राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के एट होम रिसेप्शन में शामिल होने का न्योता मिला है। आमिर हुसैन इसे अपने लिए बड़ा सम्मान और उपलब्धि मानते हैं और बेहद खुश हैं। उनके मुताबिक उन्होंने कभी इसकी कल्पना नहीं की थी और अब राष्ट्रपति का निमंत्रण मिलने से पूरा गाँव खुश है।
1: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना है। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छा।
11: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबर।
3: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
4: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पथ राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
10: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्हे बच्चों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
11: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें
1: किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।

0: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान। आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर। देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
4: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश में तिरंगे के 3 रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें, कर्तव्य पथ से संसद, इंडिया गेट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी जबरदस्त सजावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे मेट्रो का सफर। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट, मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए।

नवजोत रंधावा, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं जश्न आजादी की। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और इस वक्त पूरे देश में गजब का उत्साह है। शहर हो या गांव, हर जगह तिरंगा लहरा रहा है और तिरंगा यात्रा धूमधाम से जारी है। आज आपको उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक हर दिशा में तिरंगा यात्रा की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि झीलों और नदियों में निकाली गई तिरंगा यात्रा की तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। इतना ही नहीं, दिल्ली, लखनऊ और ऐसे तमाम शहरों में महत्वपूर्ण इमारतें इस वक्त तीन रंगों की रोशनी से नहाई हुई हैं। यहां तक कि कोयम्बटूर में आदियोगी की प्रतिमा भी तिरंगे का एहसास करा रही है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो 15 अगस्त पर हर तरफ तिरंगे की शान दिखाई दे रही है। आजादी के जश्न में देश का हर हिस्सा, हर तबका शामिल है। प्रयागराज में हजारों लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली तो भोपाल में 32 किलोमीटर लंबी यात्रा ने पूरे शहर को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इंदौर में तीन रंगों का समंदर नजर आया, जबकि गुजरात के आणंद में 25,000 से ज्यादा लोगों ने तिरंगा लहराकर देशभक्ति का संदेश दिया। कहीं गीत गूंजे, कहीं तलवारबाजी और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। इस रिपोर्ट में देखिए।

0: उत्तर से दक्षिण तक,
1: भारत माता की,
0: पूरब से पश्चिम तक, कूचों में, गलियों में, गांव में, शहर में, पहाड़ से मैदान तक, जमीन से आसमान तक, हर तरफ जश्न है, जश्न आजादी है। हर चेहरे पर खुशी, हर हाथ में तिरंगा है, जो 8 दशक की आजादी और उसकी उपलब्धियों के साथ शान से लहरा रहा है। एक रेला आ रहा है, एक रेला जा रहा है।
2: हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रैली में आके, बहुत सारे और भी बहुत सारे स्कूल थे हमारे स्कूल से, मैं तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी शासनगर स्कूल से हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आके। हमें सिर्फ 15 अगस्त में तिरंगा नहीं लहराना चाहिए, हमें हर दिन मनाना चाहिए, सिर्फ 15 अगस्त में नहीं करना चाहिए, मतलब हर दिन।
3: हम देखते हैं कि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हमें ये जानना चाहिए कि 15 अगस्त हमारा फर्ज है और हमें निकलना चाहिए। सिर्फ हमें 15 अगस्त पे नहीं जानना चाहिए कि ये हमारा भारत है, हमें हर रोज ये जानना चाहिए कि ये हमारा भारत है, हमें कुछ करना है और हमें घर से निकलना चाहिए बाहर और सबको बताना चाहिए हम भारत के नागरिक हैं।
0: एक ही धुन है, एक ही लय है, चाहे रेत के दानों में या फिल्मों के गानों में।

गुनगुनाते हुए, गीत गाते हुए हर पीढ़ी तिरंगे के साथ अपनी देशभक्ति का जज्बा दिखा रही है, स्वतंत्रता का उत्सव मना रही है। ये तस्वीरें तिरंगा यात्रा की हैं, जो पूरे देश में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र गौरव का संदेश दे रही हैं। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा का ये सिलसिला 9 अगस्त से शुरू हुआ है, जिसे 15 अगस्त तक जोश और जुनून के साथ यूं ही चलना है।

0: प्रयागराज की तिरंगा यात्रा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। हर उम्र और हर तबके के लोग यात्रा में देशभक्ति के नारे लगाते हुए एक साथ चले। इस यात्रा का असली मकसद भी तो यही है ना, देश के लोग एक साथ आए।
1: भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जो जोश है वो देखने को

0: खून और पा रहे हैं और देशभक्ति के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं।
1: सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब देश की एकता और अखंडता की तस्वीर पेश कर रहा है। हाथों में मौजूद तिरंगा देश के लिए बलिदान देने वाले सपूतों की कहानी सुना रहा है और साथ ही ऐसे तमाम कीर्तिमानों को याद दिला रहा है जो देश ने गुजरे सालों में हासिल किए हैं।
2: देश की आन बान शान तिरंगा है और सारे देशवासी, सारे प्रयागवासी आज तिरंगे की यात्रा में शामिल हुए। इन्होंने ये तिरंगा यात्रा निकाल करके देशभक्ति का सबूत दिया है। देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा परमो धर्मा, इसको इन्होंने आज दिखा दिया है कि हर भारतीय के दिल में देश सेवा बसती है, तिरंगे के प्रति सम्मान।
3: गिरजाघर से लेके यहाँ शहीद स्मारक दीवार से हम लोग बहने सब आई है, हर शहर से, हर कोने से, हर गांव से यहाँ पे हर व्यक्ति आया है उस आजादी के जश्न को मनाने, जिसकी वजह से हम आज यहाँ पे आजादी से रह रहे हैं। और आज 15 अगस्त को 80 साल हो जाएंगे हम लोगों को आजाद हुए, तो हम लोग इसको एक जैसे दिवाली होली मनाते हैं उसी तरीके से हम ये तिरंगा यात्रा को हम मना रहे हैं।
4: ये तिरंगा यात्रा नहीं, ये देश की धड़कन है। हम लोग और जो यहाँ पे कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता।
1: देश आजादी के जश्न में रंग चुका है। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में राष्ट्रभक्ति और एकता का पैगाम है। प्रयागराज की इस भव्य तिरंगा यात्रा में लोग कई मीटर लंबा तिरंगा लिए चले, साथ ही भारत माता की जय का उद्घोष गूंजता रहा। जगह जगह लोगों ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हजारों लोगों की मौजूदगी में जोशीले माहौल ने प्रयागराज की सड़कों को देशभक्ति के उत्सव में बदल दिया।

0: चलिए अब आपको मध्य प्रदेश की वो तिरंगा यात्रा दिखाते हैं जो राज्य ही नहीं बल्कि देश की सबसे लंबी तिरंगा यात्रा रही। 32 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा यात्रा में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए।
1: मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेके इस तिरंगा यात्रा पे चल रहे हैं।
2: यशस्वी प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा देश अपने देशभक्ति के माहौल में सराबोर है। ऐसे में तिरंगा थामे युवाओं की सबसे बड़ी यात्रा में भोपाल और पूरा भोपाल तो क्या पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।
1: बड़ी संख्या में जिस तरीके से जैन जी जैन अल्फा तमाम लोग तिरंगा यात्राओं में पहुंच रहे हैं, आपको क्या लगता है कि तिरंगा यात्राएं जो है इन बच्चों के मन में देशभक्ति और देश सम्मान इसकी भावना को किस तरीके से विकसित करती है?
2: देखो आज का युवा सब समझता है और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश शक्ति सम्पन्न हो रहा है, ऐसे में हर एक कोई का मन का भाव उमड़ता घुमड़ता देशभक्ति के ज्वार के साथ इन तिरंगा यात्राओं में दिखाई दे रहा है।
0: हजारों की तादाद में जुटे युवा, स्कूल कॉलेज के छात्र, ज्यादातर पैदल, कुछ गाड़ियों पर भी सवार। जब भोपाल में तिरंगा यात्रा निकली तो जैसे पूरा शहर तीन रंगों में रंग गया। यात्रा के जरिए न सिर्फ देशभक्ति बल्कि अखंड भारत और नशा मुक्ति का संदेश भी दिया गया।
3: यात्रा का आयोजन जो हुआ है ये इंदौर शहर के युवाओं ने आयोजित किया है। ये किसी संगठन या किसी पार्टी के उसमें नहीं है। सिर्फ सामान्य जो यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी है, यहाँ रहने वाला विद्यार्थी है, उसने भारत माता की जय के लिए स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर तिरंगा यात्रा आयोजित की है, जिसमें समाज के सभी संगठनों सभी अंग से लोग हैं।
0: मध्य प्रदेश में ऐसी ही भव्य यात्रा इंदौर में भी निकाली गई। सड़क पर जैसे दूर तक लहराता हुआ तीन रंगों का समंदर, हाथों में पोस्टर और पोस्टर पर संदेश, तीन रंगों का ये अभिमान राष्ट्रपथ है गतिमान। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, देशभक्ति के इस एहसास में सभी एक साथ नाचते झूमते जश्न मनाते।

इस अंदाज में इंदौर ने तिरंगे के साथ अपना राष्ट्र प्रेम अभिव्यक्त किया। आनंद से भर देने वाली ऐसी ही एक तस्वीर गुजरात के आणंद से भी सामने आई है। शास्त्री मैदान में आयोजित तिरंगा यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देशभक्ति के इस मेल में गुजरात की कला और परंपरा के रंग घुले मिले नजर आए। अभूतपूर्व जोश, अद्भुत दृश्य, फिजा में राष्ट्रभक्ति और हाथों में लहराता तिरंगा।

ऐसे उत्साह और उमंग के साथ देश आजादी का उत्सव मना रहा है, खुशी के गीत गा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का रंग जमीन से लेकर आसमान, झीलों से लेकर नदियों तक हर तरफ नजर आ रहा है। उत्तराखंड की टिहरी झील में 150 से ज्यादा लोगों ने 2 दर्जन से अधिक नौकाओं पर तिरंगा यात्रा निकाली, तो कश्मीर की डल झील में शिकारी राष्ट्रीय ध्वज के साथ आगे बढ़े। भोपाल के बड़े तालाब में 350 से ज्यादा तिरंगों से सजी नावों ने अनोखा नजारा पेश किया। देखिए इस रिपोर्ट में।

0: क्या मन मौजी बेफिक्रे थे, मौत पे अपनी हंसते थे, दिल में वतन को रखने वाले सर पे एक कफन भी रखते थे। हम जब तिरंगा लहराते हैं, भारत माता के वो सपूत याद आते हैं। आजादी का ये जश्न ऐसे तमाम बलिदानियों को याद करने का अवसर है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज हाथों में तिरंगा है, आंखों में गर्व है और जुबा पर भारत माता का जयकारा। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में राष्ट्रभक्ति का ऐसा रंग दिखाई दे रहा है जहां जमीन ही नहीं पानी की लहरें भी तिरंगा की शान से सराबोर नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की टिहरी झील से लेकर कश्मीर की डल झील और मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित बड़े तालाब तक पानी के बीच निकली तिरंगा यात्राओं ने देशभक्ति की ऐसी तस्वीर पेश की जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से भर गया। आमतौर पर टिहरी झील की लहरों पर पर्यटकों की नावें दिखाई देती हैं। सैलानी यहां पहुंचते हैं, शिकारे और बोटिंग का आनंद लेते हैं और पहाड़ों के बीच फैली इस खूबसूरत पानी को निहारते हैं। लेकिन स्वतंत्रता दिवस से पहले तस्वीर पूरी तरह बदली हुई नजर आई। नावों पर सवार लोग हाथों में तिरंगा, चेहरे पर राष्ट्र प्रेम का उत्साह और चारों तरफ गूंजते भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष। टिहरी झील की लहरों के बीच जब एक साथ दर्जनों राष्ट्रीय ध्वज फहराए गए तो पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। पानी के बीच चल रही नावों पर लहराता तिरंगा दूर से ऐसा नजारा पेश कर रहा था मानो पहाड़ों के बीच राष्ट्र प्रेम की कोई विशाल तस्वीर उकेर दी गई हो। इस तिरंगा यात्रा में 150 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। दो दर्जन से अधिक नौकाओं में सवार होकर कार्यकर्ता झील की जलधारा के बीच पहुंचे। हर नाव पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई दिया और हर तरफ देश के वीर सपूतों की कुर्बानी को याद करते हुए देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी बल्कि उन बलिदानियों को नमन करने का अवसर भी था जिन्होंने मातृभूमि की आजादी और सम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जिन वीरों ने अपने वर्तमान को देश के भविष्य के लिए कुर्बान किया उन्हीं की वजह से आज करोड़ों भारतीय स्वतंत्रता का उत्सव मना रहे हैं।
1: माता जी, भारत माता जी।
0: टिहरी झील को पर्यटन के लिहाज से उत्तराखंड की अहम पहचान माना जाता है। एशिया के बड़े रॉकफिल बांध से जुड़ा ये पानी पहले से ही पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है मगर इस बार इसकी पहचान में देशभक्ति का एक और रंग जुड़ गया।
2: पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है तो हमने भी यह तिरंगा यात्रा का आयोजन एक नए विजन को लेकर किया है क्योंकि हमारे टिहरी जिले में एशिया का सबसे बड़ा रॉकफिल बांध है और उसी में एक कम से कम 42 किलोमीटर की एक लंबी झील है और इसी झील में एक हम आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमारे साथ अनेकों युवा साथियों ने भी प्रतिभाग किया है।
0: टिहरी में इस खास आयोजन का जश्न तो है ही लेकिन दूसरी ओर श्रीनगर की डल झील भी राष्ट्र प्रेम की गवाह बनी हुई है। शांत पानी की लहरें, चारों तरफ पहाड़ और उन्हीं लहरों के बीच शान से फहराता तिरंगा, शिकारी एक के बाद एक झील की सतह पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज थामे लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए जिससे पूरा माहौल देशभक्ति के रंग में रंग गया। कश्मीर की फिजाओं में तिरंगे की मौजूदगी ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और खास बना दिया। शांत झील की लहरों पर आगे बढ़ते शिकारे और उनके साथ लहराते राष्ट्रीय ध्वज ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें कश्मीर की खूबसूरती और हिंदुस्तान की एकता दोनों साथ दिखाई देने लगी। ये नजारे सिर्फ देखने भर के लिए नहीं थे बल्कि उस भावना का प्रतीक था जिसमें देश के अलग अलग हिस्से एक ही तिरंगे के नीचे अपनी एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। पहाड़ों की झीलों में तो देशभक्ति दिखी ही लेकिन भोपाल के बड़ा तालाब में भी देश प्रेम का उत्साह कुछ कम नहीं दिखा। यहाँ भी बड़ा तालाब तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दिया। पानी की सतह पर एक दो नहीं बल्कि कई नावें उतरी और उनके साथ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज लहराते नजर आए। 350 से ज्यादा तिरंगों से सजी नावों ने जब बड़े तालाब का रुख किया तो पानी पर दूर तक सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दिए। नीले पानी के बीच केसरिया, सफेद और हरे रंग की यह कतार देखते ही बनी।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की शान कहे जाने वाले बड़ा तालाब में तिरंगा लेके उतरे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हम इस वक्त उस नाव के ठीक साथ में चल रहे हैं जहां मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त चल रहे हैं, और ये सामने तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से भोपाल की तालाब बीचों बीच जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हाथों में तिरंगा लेकर के इस वक्त जो तिरंगा यात्रा है उसमें शामिल हो रहे हैं।
0: भोपाल में राष्ट्रध्वज के सम्मान का उत्साह दिखाई दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा थामकर देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। बड़े बच्चे सब ने मिलकर इस आयोजन में हिस्सा लिया। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: राजनीतिक नक्शे सरहद या पर बंदिशों से नहीं बनता, संपूर्णता में देश का मतलब है नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी। इस नजरिए से देखिए तो नर्मदा के पावन लहरों पर लहराते राष्ट्रीय ध्वज के बड़े मायने। ये तस्वीरें जबलपुर की हैं, जहां पर जलहेरी घाट से तिलवारा पुल तक 18वीं अखंड भारत नर्मदा तिरंगा यात्रा निकाली गई। नदी में तैरते और तिरंगा थामे लोगों ने एक साथ नदी और देश दोनों के प्रति सम्मान जताया। नदी में यात्रा आसान नहीं है, करीब 7 किलोमीटर तक की तैराकी यात्रा में 5 साल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया। महिलाएं भी पीछे नहीं हटी इस तैराकी में, वो भी शामिल हुई। देश की एकता और अखंडता का संकल्प दोहराया गया। महाराष्ट्र के अमरावती से तिरंगे को सलामी देने का एक अनोखा अंदाज सामने आया, काफी चर्चा में है। अमरावती पुलिस विभाग के कांस्टेबल प्रवीण आकरे ने पानी के अंदर साइकिल चलाकर तिरंगे को सम्मान दिया। प्रवीण आकरे ने करीब 10 फीट गहरे पानी में 25 मीटर तक साइकिल चलाई। इस दौरान करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक सांस रोके रखे उन्होंने। हम आपको बता दें कि पानी के अंदर साइकिल संतुलित रहे इसके लिए उसमें कई बदलाव किए गए थे। प्रवीण आकरे पानी के अंदर तैरते हुए योगासन करने के लिए जाने जाते हैं। पानी के भीतर योग और सांस रोकने की अपनी प्रतिभा के चलते उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।
5: को तो सलाम है ही है, लेकिन तिरंगे के साथ आपको भी सलाम इसीलिए है क्योंकि आपने इतनी कठिन जो परीक्षा है वो परीक्षा ही कहेंगे, क्योंकि तिरंगे को सलाम तो हर कोई करता है, लेकिन तुम्हारा तिरंगे का सलाम करने का तरीका अलग है। कितने दिन से प्रैक्टिस चल रही है?
6: 1.5 महीने से प्रैक्टिस शुरू है, अभी 25 मीटर ही किया है। इसके आगे का टारगेट 35 से 40 मीटर का अंडर वाटर करने का, और ये गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजने के लिए तैयार है।
4: हर शहर, गांव गांव, हर जगह शान से तिरंगा लहरा रहा है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हर जगह भव्य सजावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में जगह जगह भव्य सजावट की गई है। मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन को तिरंगे के रंगों से सजाया गया है। तिरंगे की आकर्षक एलईडी लाइट से की गई ये दिव्य सजावट लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी शानदार सजावट की गई है। एयरपोर्ट बिल्डिंग को केसरिया, सफेद और हरे रंग की लाइटों से सजाया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में सलाल डैम की आकर्षक तस्वीरें भी लोगों को खूब पसंद आ रही हैं। डैम को तिरंगी लाइटों से भव्य तरीके से सजाया गया है। ऐतिहासिक धरोहरों और समृद्ध संस्कृति वाला शहर ग्वालियर रोशनी और सजावट से चमक उठा है। ग्वालियर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग की छटा देखते ही बन रही है। पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार की पहचान असम की राजधानी गुवाहाटी भी 80वें स्वतंत्रता दिवस की 3 रंगों से रोशन है। चाहे विधानसभा भवन हो या फिर जनता भवन, तिरंगे की रोशनी से सराबोर नजर आ रहे हैं। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: देशभर में लोग 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, जगह जगह तिरंगा रैलियां निकाली जा रही, तो देशभर में प्रमुख इमारतों को तिरंगे के 3 रंगों से रोशन किया गया है। दिल्ली की बात करें तो कर्तव्य पथ से लेकर इंडिया गेट और नई संसद के साथ साथ संसद के पुराने भवन को भी तिरंगे से रोशन कर दिया गया है। इस मौके पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को भी जबरदस्त तरीके से सजाया गया है। सजावट दिल्ली के दूसरे महत्वपूर्ण इमारतों की भी हुई है, चाहे वो ITO हो या फिर दिल्ली सचिवालय, सब तिरंगे की रोशनी में सराबोर हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आजादी दिवस पर किस तरीके से तमाम प्रमुख इमारतों को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, इसके अलावा दिल्ली सचिवालय की अगर हम बात करें, संसद भवन नया पुराना दोनों को तिरंगे की रोशनी से सजा दिया गया। वैसे ये तस्वीरें केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश से नजर आ रही, जहां पर 3 रंग की लाइट से तमाम इमारतों को सजाया गया है। तैयारियां आजादी के जश्न की जो अभी से शुरू हो चुकी हैं। ये तस्वीरें हर जगह पर आपको रोशनी ही नजर आएगी।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर,

0: जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
4: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। नई संसद, इंडिया गेट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर की गई जबरदस्त सजावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी से आई जश्न की तस्वीरें, सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो की सेवा। लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे मेट्रो का सफर। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जाबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाया 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाया 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
4: 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न से पहले रोशनी से जगमग देश की राजधानी दिल्ली। राष्ट्रपति भवन तिरंगे की रोशनी से जगमगाया। इंडिया गेट पर दिखा रोशनी का भव्य नजारा, स्वतंत्रता दिवस से पहले खास लाइटिंग। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भी तिरंगे की रोशनी से जगमगाए, ऐतिहासिक इमारतों को रोशनी से सजाया गया। रोशनी से नहाई नई संसद की इमारत, संसद भवन का खूबसूरत लुक सामने आया, रात में दिखा भव्य नजारा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तिरंगे की रौनक खास लाइटिंग से बढ़ी, स्टेशन की खूबसूरती दिखा देशभक्ति का शानदार नजारा। लखनऊ में तिरंगे के रंग में रंगी यूपी विधानसभा इमारत पर हुई खास ट्राइकलर लाइटिंग, आजादी के जश्न की झलक नजर आई। रांची में तिरंगे की रोशनी से जगमगाया झारखंड हाईकोर्ट, झारखंड विधानसभा पर दिखा तिरंगे का रंग, केसरिया सफेद और हरे रंग से रोशन भवन। जम्मू कश्मीर के रियासी में आजादी का जश्न, तिरंगे की भव्य रोशनी से नहाया सलालबाद, डैम से गिरते पानी का विहंगम दृश्य। गुवाहाटी तक तिरंगे की रोशनी, कोलकाता लोकभवन तिरंगे की रोशनी से नहाया, असम विधानसभा और असम सचिवालय की ट्राइकलर लाइटिंग से भव्य सजावट। चेन्नई में रिपन बिल्डिंग तिरंगे की रोशनी से नहाई, आरबीआई बिल्डिंग पर दिखा तिरंगे का रंग, पोर्ट ट्रस्ट बिल्डिंग भी तिरंगे की रोशनी से सजी, तमिलनाडु सचिवालय भी हुआ जगमग। कल देश भर में मनाया जाएगा 80वां स्वतंत्रता दिवस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल लाल किले की प्राचीर से फहराएंगे तिरंगा। पीएम मोदी 13वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लाल किले पर होगा ध्वजारोहण, 21 तोपों की भी दी जाएगी सलामी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 5,000 विशेष अतिथि होंगे शामिल, 100 एनसीसी और 100 माय भारत वॉलंटियर्स शामिल होंगे। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर उत्सव, विकसित भारत 2047 में युवा शक्ति की भूमिका थीम पर खास फोकस। लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन होगा, हेलीकॉप्टर से होगी फूलों की बारिश। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रपति ने की सेना की तारीफ। राष्ट्रपति मुर्मू ने आतंकवाद पर दिया सख्त संदेश, भारत को नक्सल मुक्त बनाने की उपलब्धि का जिक्र किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस समेत कई बलों का सम्मान, 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा मेडल्स, 301 कर्मियों को गैलेंट्री मेडल, 272 पुलिस और 29 फायर जवान शामिल, बहादुरी के लिए मिलेगा सम्मान। आजादी के जश्न में देशभक्ति के रंग में सेना, भारतीय सेना के बैंड दे रहे शानदार प्रस्तुति, देशभर में गूंज रहा है देशभक्ति का संगीत। ताजमहल से लेकर इंडिया गेट तक सेना का संगीत, ऐतिहासिक स्थलों पर बैंड की शानदार प्रस्तुति, आजादी के जश्न में जुड़ा नया। लेह से नीलगिरी तक सेना का देशभक्ति अभियान, इंडिया गेट पर 15 अगस्त को आर्मी सिंफनी बैंड, शौर्य स्मारकों से वाटरफ्रंट तक सेना का संगीत। रक्षा मोर्चे से आई गुड न्यूज, 1577 करोड़ की रक्षा डील पर मोहर, लाइट एम्युनिशन सिस्टम खरीदे जाएंगे, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को मिलेगा बढ़ावा। भारत और मलेशिया की वायुसेना के युद्धाभ्यास उदारा शक्ति 2026 का भव्य समापन, दोनों देशों ने साझा किया ऑपरेशनल अनुभव, रफाल और Su-30 MKI की दिखी जुगलबंदी। कल स्वतंत्रता दिवस पर देखिए भारतीय सेना की शौर्य गाथा, ऑपरेशन सिंदूर कल रात 9 बजे डिस्कवरी और डिस्कवरी प्लस पर डॉक्यूमेंट्री होगी प्रीमियर। ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार बड़ा खुलासा, डॉक्यूमेंट्री में सैन्य नेतृत्व का अनुभव, ऑपरेशन की 88 घंटे पूरी कहानी। ऑपरेशन सिंदूर में आर्मी नेवी और एयरफोर्स के बेजोड़ तालमेल की कहानी, रियल टाइम फैसलों से स्ट्राइक तक का सफर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एनएसए अजीत डोभाल का दुनिया को संदेश, ऑपरेशन सिंदूर पर पहली बार खुलकर बोले डोभाल। पूर्व CDS जनरल अनिल चौहान ने साझा किया अनुभव, डॉक्यूमेंट्री में आर्म्ड फोर्सेस की महिला अधिकारियों का जिक्र। उत्तराखंड की टिहरी झील में बोट पर भव्य तिरंगा यात्रा, 150 से ज्यादा लोग तिरंगा यात्रा में शामिल। तिरंगा यात्रा के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा नावों पर सवार हुए लोग झील की लहरों पर लहराया तिरंगा। टिहरी झील में भी दिखा देशभक्ति का अनोखा नजारा, भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे। लहरों के बीच एक साथ लहराए सैकड़ों तिरंगे, नावों में सवार लोगों का जोश देखते ही बना राष्ट्र प्रेम और एकता का संदेश। दर्शकों की झील देशभक्ति में रंगी, टिहरी झील के बीच अद्भुत नजारे ने लोगों का मन मोह लिया। जम्मू के रियासी में देखा देशभक्ति का भव्य नजारा, दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल पर गूंजा वंदे मातरम। CRPF जवानों और बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली, वंदे मातरम के नारों के बीच गुजरी ट्रेन, देखते ही जोश से गूंज उठा पुल। तिरंगे और वंदे भारत ट्रेन का शानदार संगम, CRPF जवानों के साथ बच्चों ने लहराया तिरंगा। गुजरात के आनंद में तिरंगे का महसला, वल्लभ विद्यानगर में 25,000 से ज्यादा लोग जुटे, हाथों में तिरंगे के साथ गूंजे देशभक्ति की गीत। वंदे भारत से आणंद पहुंचे डिप्टी CM हर्ष सिंह भी लोगों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, युवाओं के हाथों में दिखा तिरंगा। 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगे झंडों से भरा नजर आया दिल्ली का कर्तव्य पथ, नई दिल्ली जोन में अनोखी PCR वैन और बाइक रैली नजर आई। मुंगेर में विशाल तिरंगा यात्रा का हुआ आयोजन, बिहार के CM सम्राट चौधरी भी हुए रैली में शामिल। भोपाल में विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन, CM मोहन यादव ने दिखाई हरी झंडी, लहराते तिरंगे के साथ सड़कों पर निकले लोग। श्रीनगर के डल झील में शिकारों और SDRF की बोट पर निकाली गई तिरंगा रैली, बड़ी संख्या में लोग शामिल। देशभक्ति के रंग में रंगी नजर आई पूरी डल झील, भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद स्थानीय नागरिकों, युवाओं और अधिकारियों ने लिया हिस्सा। रायपुर में तिरंगा यात्रा दौड़ का आयोजन, देशभक्ति के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शानदार आयोजन। देशभक्ति के रंग बिरंगा प्रयागराज निकली भव्य तिरंगा यात्रा, हजारों लोगों ने हाथों में तिरंगा लिए अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। भोपाल में सुंदर तिरंगा बोट रैली का आयोजन, बोट क्लब में हुए कार्यक्रम में तिरंगे से सजी हजारों बोट्स। अमरावती में तिरंगे की अनोखी मानवंदना, पुलिस कांस्टेबल ने 10 फीट पानी के अंदर तिरंगा लेकर चलाई साइकिल। रामबन में सीआरपीएफ 84 बटालियन ने हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया, छात्रों के साथ निकाली तिरंगा रैली। भारतीय वायुसेना जल्द करेगी अपने परिवहन बेड़े में बड़ा बदलाव, पुराने परिवहन बेड़े को 60 नए मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से बदलने की योजना। नांदेड़ में गुरुद्वारा पहुंची पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, अखंड पाठ के साथ टेका मत्था, साथ ही लंगर सेवा भी की। पुरी के प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ मंदिर में हुई सुबह की मंगला आरती, महाप्रभु के दर्शन करने उमड़े भक्त। यूपी में कांवड़ यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड, गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच 4.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए पवित्र यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी चाक चौबंद रही, बिना किसी बड़ी दुर्घटना के सुरक्षित तरीके से संपन्न हुई कांवड़ यात्रा। बांका में कांवड़ यात्रा के दौरान दिख रहे भक्ति के अनोखे रंग, विशाल शिवलिंग वाली कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र। मोतिहारी के कैथलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग की प्रतिमूर्ति है ये विशेष कांवड़ यात्रा। औगरधानी बम रखा गया है इस अनोखी कांवड़ यात्रा का नाम। धनबाद से ये खास कांवड़ लेकर निकलाते हैं कांवड़ियों का जत्था। 33 फीट है इसकी ऊंचाई और चौड़ाई, करीब 210 मीट्रिक टन है वजन। कल से राम मंदिर के पुजारियों के ड्रेस कोड में बदलाव, बिना सिले पीले रंग के वस्त्र पहने के पुजारी, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पीला रंग भगवान श्री राम का प्रिय। रेशम यानी सिल्क का होगा ये वस्त्र, रेशमी वस्त्र की पवित्रता और शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ही ड्रेस कोड शामिल किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले तक पहुंचने वाले लोगों के लिए मुफ्त में होगी यात्रा। मुंबई में किसानों का बड़ा जुटान, पूरे महाराष्ट्र से किसान आत्मनिर्भर भारत मंच पर पहुंचे, किसानों के मिले कारोबार के नए गुर। किसान सीख रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तरीका, बिना बिचौलिए अनाज बेचने की ट्रेनिंग, अच्छे दाम पाने पर दिया जा रहा है जोर। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, खेती में महिलाओं की भी बढ़ रही है भागीदारी, खेती के साथ बिजनेस की समझ पर जोर। कोलकाता में नए आईटेक एप्पल प्रीमियर पार्टनर स्टोर की शुरुआत, पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने उद्घाटन किया। चमोली में टनल में फंसे 3 लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मौके पर बचाव दल मौजूद। बागेश्वर में बारिश से सरयू उफान पर, कपकोट में लगातार मूसलाधार बारिश, सरयू का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंचा, सरयू के किनारे जाने से पुलिस की रोक, लोगों को सुरक्षित जगह पर भेज रहे हैं पुलिसकर्मी, नदी के आसपास न जाने की सलाह। उत्तराखंड के रामगढ़ में मूसलाधार बारिश का असर, तेज बहाव में बहा डायवर्जन, दोमुही के पास रास्ता पूरी तरह से बहा। शोपियां में ओलावृष्टि से भारी नुकसान, कई गांवों में तेज हवाओं के साथ गिरे ओले, सेब की फसल को हुआ भारी नुकसान। दिल्ली के वसंत पैलेस स्कूल में टेकविज 2026 का आयोजन, टेक्नोलॉजी का दिखा जलवा, वसंत वैली स्कूल ने मारी बाजी। वसंत वैली स्कूल बना ओवरऑल चैंपियन, कई कैटेगरीज में जीते अहम पुरस्कार, इनोवेट जूनियर और सीनियर में नंबर 1 रहा। देश भर के 20 स्कूलों ने लिया था हिस्सा, छात्रों ने दिखाया क्रिएटिविटी और इनोवेशन का दम, स्कूलों ने जीते कई पुरस्कार। रोबोटिक्स में एमएस पब्लिक स्कूल अव्वल, पिक्सल ऑन ग्राफिक्स में गुरुग्राम का दबदबा, टेकविज में टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस की सीख। कार्यक्रम की चीफ गेस्ट रेखा पुरी ने बढ़ाया छात्रों का हौसला, टीचर्स के मार्गदर्शन को बताया अहम, कहा टेकविज ने दिया भविष्य के लिए बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म। कल से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत, बेल्जियम और नेदरलैंड मिलकर कर रहे हैं मेजबानी, पहली बार एक साथ हो रहे हैं महिला और पुरुष मुकाबले, 16 दिन तक चलेगा टूर्नामेंट, दोनों टूर्नामेंट में खेले जाएंगे कुल 50 मैच। कल अपना 600वां टेस्ट मैच खेलेगा भारत। गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में होगी भारत और श्रीलंका के बीच में भिड़ंत। गॉल टेस्ट जीतने पर भी भारत टीम इंडिया रचेगी नया इतिहास। सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीतने के मामले में कर लेगी वेस्टइंडीज की बराबरी। भारत ने नाइजीरिया के लाहौर में कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में पहली बार जीता ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब। भारतीय फेंसर्स ने सीनियर और अंडर 23 कैटेगरी में कुल 35 मेडल जीते। आज बॉक्स ऑफिस पर दिखा सनी देओल का एक्शन अवतार बटवारा 1947 रिलीज। फिल्म में प्रीति जिंटा, करण देओल, शबाना आजमी भी। इमरान हाशमी की आवारापन 2 भी आज रिलीज। 2007 में आई आवारापन का सीक्वल है ये फिल्म। थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता Z5 पर हुई स्ट्रीम। 19 जून को थिएटर्स में रिलीज होने के बाद अब ओटीटी पर कमाल करेगी कॉकटेल 2। नेटफ्लिक्स पर आज से स्ट्रीम। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल भी आज से ओटीटी पर स्ट्रीम। इस साल मई में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म। चीन के बीजिंग में ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने खेला फुटबॉल। मैदान पर रोबोट्स ने दागे शानदार गोल। ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच फुटबॉल का महासंग्राम। 666 टीमें और 2056 रोबोट्स मैदान में। फुटबॉल मैच से रोबोट्स आपस में भिड़े, गिरने के बाद खुद ही संभले ह्यूमनॉइड रोबोट्स। ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने इंसानों के साथ खेला टेबल टेनिस, दिखाया खेल का शानदार प्रदर्शन। फैक्ट्री से घर तक होगी रोबोट्स की परीक्षा। 20 अलग अलग परिस्थितियों में होगा मुकाबला। चीन में RD3 अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट प्रोडक्शन लाइन से बाहर आया। दो RD3 ह्यूमनॉइड रोबोट्स के बीच रिंग में हुआ बॉक्सिंग का दिलचस्प मुकाबला। RD3 रोबोट ने ताई ची की शानदार प्रैक्टिस की। 134 सेंटीमीटर लंबा है RD3 अल्ट्रा ह्यूमनॉइड रोबोट। इंसानों के कामकाजी माहौल के हिसाब से डिजाइन हुआ है ये रोबोट। चीन के वैज्ञानिकों को चांद के दो चेहरों के रहस्य का मिला नया सुराग। चेंज 6 के सैंपल से चांद के दूर वाले हिस्से की नई जानकारी सामने आई। वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में इंपैक्ट मेटल के टुकड़ों की जांच की। चांद के दोनों हिस्सों के अंतर को करीब 4.3 अरब साल पुराने टकराव से जोड़ा। चीन में खड़े होकर उड़ने वाला मानव युक्त फ्लाइंग व्हीकल पेश। जांगजो में पायलट ने खड़े होकर उड़ाया एयरक्राफ्ट। अल्ट्रा लाइट एयरक्राफ्ट ने फॉर्मेशन फ्लाइट का किया प्रदर्शन। जॉयस्टिक से दोनों हाथों से उड़ान कंट्रोल करता है पायलट। चीन के कृषि मेले में 457 किलो का कद्दू, जिसने लूटी महफिल। विशाल कद्दू बना पंपकिन किंग। चीन के जिलिंग में दिखा विशाल पंपकिन। 457 किलो के कद्दू के साथ बच्चों ने तस्वीर खिंचवाई। विशाल कद्दू ने चांगचुंग एक्सपो की बढ़ाई रौनक। पंपकिन किंग बना आकर्षण का केंद्र।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही हैं।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: तोकुशिमा का मशहूर अवा ओडोरी डांस इन नन्ही बच्चियों की वजह से एक बार फिर चर्चा में है। बच्चियों का डांस इतना शानदार है कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। हाथों के खूबसूरत मूवमेंट हो या पैरों का जबरदस्त बैलेंस, हर स्टेप बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। सबसे खास है इनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, जो पूरे डांस में जान डाल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को तो पहली नजर में लगा कि ये कोई AI से बनाया गया डांस है, लेकिन ये सच में बच्चियां ही हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने बच्चे को हारते हुए भला कैसे देख सकती है। इस वीडियो में एक बच्ची और गोरिल्ला के बच्चे के बीच रस्सी को लेकर खींचतान चल रही है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं और मुकाबला काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। तभी बच्चे की माँ भी मैदान में उतर आती है। माँ ने रस्सी पकड़ी और जोर लगाकर अपने बच्चे को जीत दिला दी। वीडियो सामने आने के बाद लोग माँ के इस अंदाज की खूब तारीफ कर रहे हैं और इसे माँ का प्यार बता रहे हैं। गाना बजा तो बच्चों के कदम भी थिरकने लगे और देखते ही देखते क्लासरूम डांस फ्लोर बन गया। दरअसल क्लास खत्म होने के बाद बच्चों का डांस कराया गया था। इस दौरान इन नन्ही बच्चियों ने अपने डांस से ऐसा समा बांधा कि हर कोई उनकी तारीफ करने लगा। स्टेप से लेकर स्टाइल तक सब कुछ बेहद शानदार नजर आया। वहीं चेहरे के एक्सप्रेशन और अदाओं ने इस डांस को और भी खास बना दिया। बच्चियों का ये अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है और वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान, हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, HRIT यूनिवर्सिटी गाजियाबाद, शेपिंग फ्यूचर क्रिएटिंग लीडर्स।
10: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश में तिरंगे के 3 रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें, कर्तव्य पथ से संसद, इंडिया गेट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिखी जबरदस्त सजावट।

स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिख रही देशभक्ति की तस्वीरें। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, हाथों में तिरंगा लिए सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी वादी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल सुबह 4 बजे से शुरू होगी दिल्ली मेट्रो सेवा, लाल किले पर आयोजित समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे मेट्रो का सफर। 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शूरवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट, मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव, और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में एक बार फिर से मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको जानकारी देते हैं कि आज के इस शो में हम पंडित जी के साथ क्या चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं हरियाली तीज के बारे में। हरियाली तीज का त्यौहार है, तो हरियाली तीज के मौके की महिमा क्या है वो आपको विस्तार से पंडित जी बताएंगे। साथ ही हरियाली तीज पर कौन कौन से विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपकी जिंदगी में सुधार होगा, साथ ही ये उपाय आपकी जिंदगी के लिए काफी कारगर सिद्ध होंगे, ये सारी जानकारियां पंडित जी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप महिला हैं और तीज की पूजा का पूरा लाभ चाहती हैं, तो भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा प्रदोष काल में ही करिएगा। सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में, प्रदोष काल में, अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी तो आपको लाभ होगा।
0: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 15 अगस्त 2026 शनिवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, शाम के 5:28 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 9:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9:00 से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: और चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। जैसे हमने आपको बताया, बात होगी आज हरियाली तीज के बारे में। सबसे पहले पंडित जी से यही जानते हैं कि हरियाली तीज का महत्व क्या होता है। पंडित जी,
1: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज के पर्व के बारे में। हरियाली तीज कितना महत्वपूर्ण पर्व है और इसका महत्व क्या है, पहले ये जानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। तीज का पर्व श्रावण के महीने में होता है, जब चारों तरफ हरियाली होती है, इसीलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्षों, नदियों और जल के देवता वरुण देव की उपासना भी इस दिन की जाती है। मुख्य रूप से अगर आप देखें तो तीज का त्योहार अच्छे और मनचाहे वर की प्राप्ति का त्योहार है, इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उनके लिए इस व्रत को रखना और पूजा उपासना करना बड़ा महत्वपूर्ण है, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संयुक्त रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। यानी जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है वो भी भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी, और जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेंगी।
0: चलिए, हरियाली तीज से जुड़े हुए और भी बहुत सारे सवाल हैं जो पंडित जी से हम आगे जाके पूछेंगे, लेकिन अब आते हैं राशिफल पर और पहली तीन राशियों का हाल पंडित जी से विस्तार से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बारी है मेष, वृष और मिथुन वालों की, जानते हैं पंडित जी से इनके भाग्य में आज क्या लिखा है।
1: मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ दिख रहा है, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, करियर में सफलता मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं, धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, रिश्तों में समस्या हो सकती है, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से अब ये पूछते हैं, पंडित जी हरियाली तीज पर जो पूजन हम करते हैं, जिस तरह के भी उपाय हम करते हैं, इस पूजन के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, या यूं पूछूं आपसे कि कौन कौन सी सावधानियां हैं जो रखनी चाहिए।
1: देखिए, जो महिलाएं या जो बालिकाएं हरियाली तीज पर पूजन करेंगी उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बातें हैं? इस दिन उपवास रखना, व्रत रखना, निराहार रहना लाभकारी होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, अगर आपके सेहत में दिक्कत है और आप व्रत नहीं रख पाती तो केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा, प्याज लहसुन आदि का प्रयोग मत करिएगा। साथ ही साथ जो कन्या या जो महिला पूजा करेंगी हरियाली तीज पर उन्हें पूर्ण श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। इस दिन मां पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। बालिकाएं महिलाएं श्रृंगार की पूरी सामग्री सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, आलता, ये तमाम चीजें रखकर अर्पित करें और मां पार्वती की पूजा करने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को, सुहागन स्त्री को, उस श्रृंगार की सामग्री को उपहार में दे देना चाहिए। हरियाली तीज पर महिलाओं को काले, सफेद या भूरे वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। हरियाली तीज पर लाल, हरा, गुलाबी, नारंगी, ऐसे सुंदर रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए। और हरियाली तीज पर जो पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल में करना उत्तम होगा, सूर्यास्त के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद के समय में पूजा करना बेहतर रहेगा।
0: चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ, अंत में जाके आपको महाउपाय के बारे में बताएंगे, आपके सवाल भी लेंगे, राशिफल पर वापस आते हैं और अगली तीन राशियों का हाल आपको बता देते हैं कैसा रहने वाला है। बारी है अब कर्क, सिंह और कन्या वालों की।
1: कर्क राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी, धन और उपहार की प्राप्ति होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की अधिकता रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। शिव जी को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपके सवालों को शो में शामिल करते हैं। पहले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि आपका कोई भी प्रश्न है, आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से, उसका जवाब आप अपने तमाम सवाल इस शो में भेजिए। ईमेल के जरिए अपने तमाम सवाल इस शो में भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। पंडित जी, पहला प्रश्न कौन से दर्शक का है?
0: जी, आज का पहला प्रश्न अभिषेक जी ने हमें लिखा है और अभिषेक जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 2004, जन्म का समय सुबह के 8:35, जन्म स्थान है अयोध्या, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मुझे सिविल सर्विस में सफलता मिलेगी या मुझे किसी और क्षेत्र की तरफ जाना चाहिए? अभिषेक जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए और पहले आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करिए, उसमें जब आपको सफलता मिल जाए तब आगे यूपीएससी की तरफ बढ़िएगा। अभी से आप अपना प्रयास करिए, आगे चल करके गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। एक साथ कई रास्तों पर चलने का प्रयास ना करें और बार बार अपना लक्ष्य ना बदलें। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें तो आपको लाभ होगा।
1: चलिए इसी के साथ वक्त चला है दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ने का और पंडित जी से ही जानते हैं कि कौन सा है अगला सवाल और कौन से दर्शक का है।
0: जी, अगला प्रश्न शालिनी जी ने हमें लिखा है और शालिनी जी हमें हरिद्वार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 21 मई 1984, जन्म का समय सुबह के 10:40, जन्म का स्थान है पौड़ी गढ़वाल और मेल लिखती हैं हरिद्वार से। शालिनी कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके टूट चुका है, क्या आगे मेरे दूसरे विवाह होने की संभावना बनती है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? शालिनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा और दूसरा विवाह साल 2027 के मध्य में यानी 2027 के अप्रैल के बाद आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है। आपका दूसरा विवाह सफल होगा, उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए, 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
1: देखिए, हरियाली तीज का मौका है तो ये सवाल तो पूछना बनता है। पंडित जी, ये बताइए कि हरियाली तीज पर अगर शीघ्र विवाह कोई करना चाहता है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा किस तरह से करनी चाहिए?
0: जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, तमाम प्रयास करने के बावजूद उन बालिकाओं को शीघ्र विवाह के लिए हरियाली तीज पर कैसे पूजा करनी चाहिए? बालिकाएं प्रातः काल स्नान करके 12 बजे के पहले ये संकल्प लेंगी कि आज मैं शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करूंगी। दिन भर अधिक से अधिक शिव जी और माता गौरी का ध्यान करें। दिन भर ज्यादा से ज्यादा ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जप करें। प्रदोष काल में सूर्यास्त के आसपास के समय में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव जी के मंदिर जाइएगा। भगवान शिव को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाइएगा। माता पार्वती को लाल वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता गौरी के मंत्रों का जप करिएगा। मंदिर में भी कर सकती हैं और घर पे आके भी कर सकती हैं। ओम गौरी शंकराय नमः 3 माला या 11 माला, और मंदिर में एक घी का दीपक जला दीजिएगा। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती से शीघ्र विवाह हो जाने की प्रार्थना करिएगा। श्रृंगार की सामग्री किसी सुहागन स्त्री को दान कर दीजिएगा। अगर आप ऐसा करती हैं हरियाली तीज पर, इस तरह से पूजा करके प्रार्थना करती हैं, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: चलिए, राशिफल पर वापस आते हैं और अगली 3 राशियों का भी हाल आप सबको बता देते हैं। अभी बारी है तुला, वृषभ और धनु वालों की। पंडित जी आपको विस्तार से बताएंगे कि इनके भाग्य में आज का लिखा है।
0: तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, करियर में सफलता मिलेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी। अनाज का दान कर दें तो दिन की मुश्किल कम हो जाएगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, नौकरी में लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए, विवाह अगर नहीं हो पा रहा तो उसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं वो पंडित जी ने आपको बताया। आप ये जानते हैं कि सुखद वैवाहिक जीवन अगर आप चाहते हैं उसके लिए हरियाली तीज के इस खास मौके पर कौन कौन से अचूक उपाय हैं जो आप सभी कर सकते हैं पंडित जी।
0: जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है वो अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए हरियाली तीज पर क्या उपाय करेंगी? विवाहिता महिलाएं चाहें तो उपवास रख सकती हैं या केवल सात्विक आहार ग्रहण करेंगी। अगर बीमारी या अन्य कारणों से उपवास नहीं रख पाती तो संपूर्ण श्रृंगार करिएगा और हाथों में मेहंदी जरूर लगाइएगा। प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के आसपास के समय में शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को पीला और माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करिएगा। माता गौरी को श्रृंगार की

0: हो सकता है, करियर में लापरवाही ना करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें, शनि मंत्र का जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताओं से राहत मिलेगी, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि अगला प्रश्न कौन से दर्शक का है और कौन सा सवाल आया है पंडित जी के पास।
0: जी अगला प्रश्न राम कृपाल जी ने हमें लिखा है और राम कृपाल जी हमें बिहार से मेल लिखते हैं, अपने बेटे के बारे में जानना चाहते हैं। इनके बेटे की जन्म तारीख है 17 अगस्त 1994, जन्म का समय शाम के लगभग 6 बजे और जन्म स्थान है सीतामढ़ी बिहार। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा विवाह करने को तैयार नहीं है, तो क्या मेरे बेटे का विवाह होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? राम कृपाल जी, आपके बेटे की शादी जरूर होगी और आपके सुपुत्र अपनी इच्छा से विवाह करेंगे साल 2027 में, जून से लेकर दिसंबर के बीच वाले समय में इनके विवाह की संभावनाएं बन रही हैं। इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से ही होगा, तो थोड़ा आप धैर्य रखिए, आपके सामने चीजें आ जाएंगी। आपके पुत्र का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करिए अपने बेटे के लिए, और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिए, इससे स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
1: अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी दर्शकों का अंतिम सवाल इस शो में ले लेते हैं और पंडित जी ही आपको बताएंगे कि कौन से दर्शक का अंतिम सवाल है।
0: जी अंतिम प्रश्न हमें रजनी बाला जी ने लिखा है और रजनी बाला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1978, जन्म का समय रात में 9:30, जन्म स्थान है सीतापुर उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि काफी समय से मैं और मेरे पति मिलकर अपनी एक प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी ले नहीं पा रहे हैं, तो अपनी

0: प्रॉपर्टी कब तक ले सकेंगे और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रजनी जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट खरीदने की कोशिश करिए। जमीन खरीदकर मकान बनवा पाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर बना बनाया फ्लैट या मकान खरीदें तो वो साल 2026 के अंत तक हो जाएगा। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, आपके भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। थोड़ा सा आने वाले समय में अपनी आंखों का अगर आप ध्यान दें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी अब आपको बताएंगे कि जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 15 अगस्त को, उनका हैप्पी बर्थडे यानी उनका गुड डे, उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 15 अगस्त को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी, करियर में और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: चलिए शो के अंत की तरफ हम पहुंच गए हैं और अब पंडित जी आपको जानकारी देंगे आज के शो की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या विवाहिता महिलाओं को काली श्रृंगार सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, काला रंग शोक का और दुख का प्रतीक है, इसीलिए वैवाहिक जीवन में अगर विवाहिता महिलाएं काले रंग का प्रयोग करेंगी तो उसमें समस्या आ सकती है। इसलिए जहां तक संभव हो विवाहिता महिलाओं को काले रंग के वस्त्रों से और काले रंग की श्रृंगार सामग्री का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
1: चलिए पंडित जी से जानना चाहेंगे 15 अगस्त 2026 शनिवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुख और शांति बनी रहेगी। लेकिन ये उपाय करेंगे शुभ पहर में, 15 अगस्त शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस शो के अंत की तरफ बढ़ते हुए हम बात करते हैं गुडलक राशि के बारे में। तो आज की गुडलक राशि यानी आपकी राशि कौन सी है वो आपको जानकारी देते हैं।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग भगवान शिव की पूजा कैसे करेंगे। आज की गुडलक राशि है कन्या। आपको शिवलिंग पर नियमित रूप से बेल पत्र अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी।
1: चलिए, तमाम उपाय और जानकारियां तो पंडित जी ने आपके साथ साझा कर दी हैं। अब बारी आती है खास उपाय की, जिसका आपको भी इंतजार रहता है। तो खास उपाय, अचूक उपाय या फिर यूं कहें कि महा उपाय आज का क्या है, पंडित जी आपको जानकारी देंगे।
0: जी,

0: अगर आप पुरुष हैं और शीघ्र विवाह का उपाय हरियाली तीज पर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पुरुष शीघ्र विवाह के लिए उपाय हरियाली तीज पर प्रदोष काल में करेंगे। शिव जी को पीला और माता पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें और उसके बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा प्रदोष काल में करते हैं हरियाली तीज पर, तो आपका विवाह शीघ्र होगा।
1: पंडित जी, तमाम जानकारियां और उपाय बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए, इसी के साथ आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
3: अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे और इस बार समारोह में पहली बार लाल किले पर वंदे मातरम गूंजेगा। लाल किले पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, किसी भी खतरे से बचने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं।

0: स्वतंत्रता दिवस से पहले शहर शहर हर घर तिरंगा अभियान जोरों पर है। यही नहीं, सरकारी इमारतें भी तिरंगे के रंग से रोशन हो चुकी है और लोगों पर भी जश्न आजादी की खुमारी छाने लगी है। बस अब कुछ घंटे का और इंतजार है जब पूरे देश में बड़े ही शानो शौकत और हर्षोल्लास के साथ 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिसके लिए राजधानी दिल्ली में लाल किले की प्राचीर पर और राज्यों की राजधानियों में गुरुवार को फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली में सख्त सुरक्षा इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त से जुड़ी इन तैयारियों के बीच देश भर में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। देश भर में सुरक्षा, परेड रिहर्सल, झांकियों और सजावट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली के लाल किले से लेकर दूसरे राज्यों के मुख्य मैदानों तक प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और राजधानी दिल्ली में विशेष चौकसी बढ़ती जा रही है, जिसके तहत दिल्ली से लगे तमाम राज्यों के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है।
1: दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारियां करी है। इस डिस्ट्रिक्ट का काफी बड़ा बॉर्डर भी लगता है, आपको पता है, गाजियाबाद का साथ और नोएडा के साथ। तो आज हम जनरल गश्त कर रहे हैं, तमाम स्टाफ हमारे, तमाम इंस्पेक्टर सिंह सब फील्ड में है और सघन चेकिंग की जा रही है और पेट्रोलिंग की जा रही है और एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है और ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही है और हमारे जो दो बड़े बॉर्डर हैं गाजीपुर और चिल्लापुर उन पर स्टाफ की डिप्लोमेंट भी की गई है।
0: साथ ही लाल किले के आसपास और राजधानी के बाजारों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी में 15 अगस्त के लिए 10 से 15,000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जबकि 1,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनके जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
2: जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की जनरल गश्त है। इसमें थाना प्रभारी से लेकर ऊपर तक तमाम सीनियर ऑफिसर्स और हमारी फोर्स आज इलाके में गश्त कर रही है और साथ ही टिकट्स पे चेकिंग भी बढ़ाई गई है, इंटेंसिफाई की गई है। एंटी टेरर मेजर्स को ध्यान में देते हुए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग आज यहाँ पे बढ़ा रखी है और क्योंकि नेशनल फेस्टिवल, नेशनल डे 15 अगस्त से पहले ये एक रेगुलर एक्सरसाइज है।
3: हमारा जो डिप्लॉयमेंट है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट, दूसरा टेक्निकल डिप्लॉयमेंट। तो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर 15 से 20,000 के आसपास विभिन्न एजेंसीज के सुरक्षाकर्मी यहाँ पर तैनात रहेंगे, जिसमें दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के अंदर ट्रैफिक है, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है, लोकल पुलिस है, PCR है, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल सेल है, उसके अलावा सिक्योरिटी भी है, सारी डिविजन्स हैं, तो उन सबका डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा यहाँ पे पैरामिलिट्री की भी बहुत कंपनियाँ यहाँ पे तैनात होगी, कमांडोज तैनात होंगे, NSG की टीम्स तैनात होंगी, हिट टीम्स हैं, उसके अलावा NSG के कमांडोज हैं, स्नाइपर्स हैं, वो सारे यहाँ पे रहेंगे। NDRF की फोर्स भी यहाँ पे रहेगी ताकि किसी प्रकार की अगर कोई इवेंचुअलिटी होती है तो उसको रिस्पॉन्ड किया जा सके। इसके अलावा हमारी QRTs हैं, मचान मोर्चे काफ़ी जगह पे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉयड रहेंगे। दूसरी बात करें टेक्निकल डिप्लॉयमेंट की, तो उसके अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है CCTV कैमरा। 1,000 से ऊपर CCTV कैमरे सिर्फ इंडिपेंडेंस डे के लिए ही लाल किले और इसके आसपास के इलाकों में लगाए गए हैं। उनको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास कंट्रोल रूम्स हैं, जिसमें हमारे जो हाईली ट्रेन लोग हैं, सिर्फ इसीलिए ट्रेन किया उनको, तो वो बैठ के उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उसको रिस्पॉन्स के लिए हमने पॉइंट्स बनाए हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्स टीम्स भी ऑन ग्राउंड रहने वाली हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमने CCTV कैमरों में जो जगह के हिसाब से और नीड के हिसाब से बहुत जगह पे वीडियो एनालिटिक्स का भी उस पर यूज़ किया गया है। उसमें FRS है, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है, इंट्रूजन डिटेक्शन है, इस तरह के कई सारे वीडियो एनालिटिक्स का उसमें इस्तेमाल किया जाएगा।
0: अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पहले से तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री के लाल किले पहुंचने से लेकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने, 21 तोपों की सलामी, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश, राष्ट्र के नाम संबोधन और अंत में NCC कैडेट्स और माई भारत वॉलंटियर्स के वंदे मातरम के सामूहिक गायन तक हर चरण में इस साल की थीम विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की भूमिका की झलक दिखाई देगी। ध्वजारोहण के बाद तिरंगे को राष्ट्रीय सलामी दी जाएगी। इसके तुरंत बाद थल सेना का बैंड राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की धुन बजाएगा और समारोह में मौजूद लोग राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन करेंगे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बाद राष्ट्रगान होगा और बैंड का संचालन सूबेदार ईश्वर सिंह करेंगे। ध्वजारोहण के साथ ही भारतीय वायुसेना के दो MI-17 हेलीकॉप्टर समारोह स्थल पर फूलों की बारिश करेंगे। इनमें एक हेलीकॉप्टर राष्ट्रीय ध्वज और दूसरा वंदे मातरम दर्शाने वाला ध्वज लेकर उड़ेगा। हेलीकॉप्टर्स की कमान विंग कमांडर रजत और स्क्वाड्रन लीडर अंकित वर्षनेय संभालेंगे। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में करीब 2500 लड़के और लड़कियां शामिल होंगे। इनमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के NCC कैडेट्स के साथ माई भारत वॉलंटियर्स भी शामिल हैं। इन्हें लाल किले की प्राचीर के सामने ज्ञान पथ पर बैठाया जाएगा। ये मिलकर वंदे मातरम का आकार बनाएंगे। ज्ञान पथ पर विकसित भारत एट 2047 थीम से जुड़े व्यू कटर भी लगाए जाएंगे। दिल्ली की तरह ही देश के दूसरे राज्यों में भी 15 अगस्त की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अब बस कुछ ही घंटों का इंतजार है, तो आजादी का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाइए और जश्न आजादी में शरीक होकर देश का शौर्य और गौरव बढ़ाइए। दिल्ली से अंशुल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: कुछ ही घंटों में देश अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। देश के कोने कोने में तिरंगे को सलामी देने के लिए देशभक्ति का जोश नजर आ रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में तिरंगे को सलामी देने की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर लोग दंग रह जाएंगे। अमरावती पुलिस के कांस्टेबल प्रवीण आखरे ने देशभक्ति के जज्बे में पानी के अंदर साइकिल चलाकर तिरंगे को अनोखी मानवंदना दी। करीब 10 फीट गहरे पानी में 25 मीटर तक साइकिल चलाकर उन्होंने देश के तिरंगे को सलाम किया और इस दौरान करीब 1 मिनट 16 सेकंड तक अपनी सांस रोककर यह रतंकेस कारनामा कर दिखाया। सावन के महीने में मनाए जाने वाली हरियाली तीज की रौनक दिखाई देने लगी है। हरियाली तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास माना जाता है। हरियाली तीज पर महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। हर दिन हरे रंग के कपड़े पहनने, मेहंदी लगाने, झूला झूलने और लोकगीत गाने की परंपरा है।

0: सावन का महीना बारिश की रिमझिम फुहार, लोक गीतों की मिठास और 16 श्रृंगार कर झूला झूलती महिलाएं, ये तमाम रंग हैं उस त्योहार के जिसका सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार किया करती हैं। इनका ये इंतजार अब खत्म होने वाला है क्योंकि अब से कुछ घंटों बाद देश में हरियाली तीज का त्योहार बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाने वाला है। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आया तो इसकी रौनक उत्तर भारत में नजर आने लगी। जयपुर में तो सज धज कर आई ये महिलाएं हरियाली तीज के मौके पर प्री सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठा हुई हैं। इनमें ज्यादातर महिलाएं इस त्योहार के लिए खास तौर पर राजस्थान की पारंपरिक पोशाक लहरिया पहनकर आई हैं। किसी ने पारंपरिक मोठड़ा और गुलाबी लहरिया पहना तो कोई नए रंगों और डिजाइन के लहरिये में नजर आया। राजस्थानी पोशाक और पारंपरिक आभूषणों ने तीज के इस त्योहार में एक अलग ही रंग घोल दिया है।
1: सावन का महीना लेके आता है त्योहार और उसके साथ ही लहरिया का उत्सव, तीज का पर्व। ऐसे में महिलाएं श्रृंगार करती हैं, लहरिया पहनती हैं, रंग बिरंगे कपड़े, और इस सावन को जो है वो इंजॉय करती हैं, सावन के झूला झूलती हैं और इसी तरह से हरियाली तीज मनाती है। पर तीज के साथ साथ ही अलग अलग डेज पर एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ महिलाएँ आपस में मिलती हैं और इस दिन को सेलिब्रेट करती हैं। वैसे ही एक सेलिब्रेशन में मौजूद हूँ जहाँ ये खूबसूरत महिलाएं मौजूद हैं। सावन का झूला यहाँ पे है, अलग अलग एक्टिविटीज साथ में चल रही है और इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही हैं ये सभी महिलाएं। और देख सकते हैं किस तरीके से कुछ लहरिये में हैं, कुछ राजस्थानी पोशाक में हैं, कुछ बहुत ही खूबसूरत सावन का रंग दिखाती नजर आ रही है।
0: इस पूरे सेलिब्रेशन में तीज का झूला खास आकर्षण बना रहा। महिलाएं बारी बारी से झूला झूलती दिखी और इसके साथ ही तस्वीरें भी क्लिक करवाई। झूले के आसपास पूरे समय उत्साह और चहल पहल बनी रही। हरियाली तीज राजस्थान में सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा और संस्कृति का उत्सव है जिसे सुहागिन महिलाएं हर साल हर्षोल्लास के साथ मनाती आई हैं।
2: पूरा आउटफिट एंड जितने भी क्रिएटिव जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वो सारी मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो मुझे काफ़ी शौक है। और लहरिया के लिए मैं वैसे ही बहुत क्रेजी हूँ, सो मैंने पूरा गेटअप इसी उस पर लिया है थीम पे।
3: तीज और सावन दोनों ही बहुत ही महत्व रखते हैं एक लेडी की लाइफ में। सुहाग से रिलेटेड पहली बात तो रहता है विच इज़ नो लव, हस्बैंड के लिए लव एक ही दिखाता है। ये सेलिब्रेट करते हैं हम अपनी सास के साथ, स्पेशली ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो कनेक्शन लव बढ़ाता है हस्बैंड के साथ, फैमिली में लव। एंड येस ऑफकोर्स ग्रीन पहनते हैं और हम सावन में हम शिव जी और पार्वती जी की पूजा भी करते हैं।
0: हरियाली तीज की बात हो और घेवर का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो हर साल की तरह इस साल भी बाजार में एक से बढ़कर एक स्वाद और फ्लेवर वाले घेवर मिल रहे हैं। जयपुर में इस बार करीब 21,000 रुपए का स्वर्ण श्रृंगार घेवर खास आकर्षण बना हुआ है। आम घेवर जहां मैदा से तैयार होता है तो वहीं इसका बेस पूरी तरह ड्राई फ्रूट से बनाया गया है। इसमें चीनी या गुड़ की जगह शहद से मिठास दी गई है जबकि ऊपर रबड़ी की जगह ड्राई फ्रूट की परत है। सबसे खास है इसका गोल्ड टच, ऊपर सोने का वर्क किया गया है और इसमें स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल हुआ है। इसी शाही और प्रीमियम अंदाज की वजह से इसकी कीमत 21,000 रुपए है।
4: हमारे पास यहाँ पे इंडिया का सबसे महंगा और सबसे हेल्दीएस्ट घेवर है जिसको हमने नाम दिया है स्वर्ण श्रृंगार और वो कॉस्ट करता है 21,000 रुपए पीस, जो कि ये घेवर है आपके सामने
5: जी।
4: सात ये इसका जो बैटर है जिसमें जनरली हम मैदा घी और चीनी से बनाते हैं, इसमें हमने जो बैटर में ही ड्राई फ्रूट्स डाले हैं और ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे बाहर से सोज्ड हैं, जैसे कि पिस्ता, बादाम, काजू, ये इसके बैटर में ही डाला हुआ है। फिर इसके अंदर हमने स्वर्ण भस्म जिसको बोलते हैं रियल गोल्ड वो भी डाली है और ऊपर आप देखेंगे जिसमें केसर लगी हुई है वो ईरानी केसर है और साथ ही में जो इसमें बर्क लगा है ऊपर वो गोल्डन बर्क है अगेन विच इज़ प्रोक्योर्ड फ्रॉम जैन टेम्पल, वो एनिमल क्रुएल्टी फ्री है। और साथ में ऊपर जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स की ग्लेजिंग देखेंगे रबड़ी इसमें नहीं यूज़ हुई है, इसमें पूरी प्रॉपर ड्राई फ्रूट से ही इसको ग्लेज करा गया है। और इसके अलावा इसका जो डिपिंग हुई है जनरली हम चाशनी शुगर में बनाते हैं, ये हनी डिप्ड घेवर है।
0: बदलते समय के साथ घेवर कई साइज और स्वाद में मौजूद है। जयपुर में घेवर 3 साइज में मिल रहा है, रेगुलर 3 इंच का मिनी और 1.4 इंच का छोटा घेवर। अलग अलग पैक में पसंद के फ्लेवर चुनने का विकल्प भी आपको मिलेगा। मसलन 16 पीस के पैक में अलग अलग फ्लेवर शामिल किए जा सकते हैं, जबकि 4 पीस के पैक में अपनी पसंद के 4 फ्लेवर आप चुन सकते हैं। यानी त्योहार पर घर ले जाने से लेकर गिफ्टिंग तक घेवर का अंदाज भी अब काफी मॉडर्न हो गया है। और अगर मीठे घेवर से मन भर गया हो तो इसका चटपटा अंदाज घेवर चाट भी लोगों के लिए मौजूद है।
1: घेवर पारंपरिक रूप से तो मिलता ही है, पर उसके साथ साथ ही जेंजी का जो टेस्ट है वो इस घेवर में नजर आता है। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये घेवर दिखते हैं। अलग अलग शेप्स में, अलग अलग साइजेस में ये मिल रहे हैं और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर कुल 21 फ्लेवर्स में ये घेवर हैं। कहा जाता है कि जो पारंपरिक स्वाद होता है उसका मज़ा अपना अलग ही होता है, क्योंकि वो ट्रेडिशंस के साथ जुड़ा होता है। पर यहाँ ये जो टेस्ट है ये नई जनरेशन को, जिसको कहा जाता है जेन जी, उनको खास पसंद आते
4: हैं। आजकल लोग मिठाई खाना चाहते हैं पर वैरायटी में खाना चाहते हैं, तो हमने उसके लिए ये सोल्यूशन निकाला है कि आप हर फ्लेवर चख सकते हैं छोटे छोटे साइजेज में। इसको हमने नाम दिया है कॉइन घेवर।
1: कौन से फ्लेवर्स आप बताइए इसमें मौजूद हैं?
4: इसमें 16 तरह के फ्लेवर हैं। पान हो गया, ये रबड़ी हो गया, रोज गुलकंद, न्यूटेला, ये डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, लोटस बिस्कॉफ, ये रेगुलर केसर चाशनी पिस्ता, ये मैंगो मैनिया, तिरामासू, कुनाफा घेवर, लेमन चीज़ केक, ब्लूबेरी, और ये हमारा हो गया लीची क्रीम, और साथ ही में ये बेल्जियन चॉकलेट। एक जनरली लोग आजकल चाहते हैं, अगर हम मीठा कम खाना चाहते हैं और मीठे इतना सारा जब मीठा खा लिया है त्यौहार पे, उसके साथ उनको कुछ नमकीन टेस्ट चाहिए, उसके लिए हमने ये चीज़ डिश बनाई है जिसको हमने घेवर चाट बनाया है। बेस इसमें घेवर का ही है, जो जनरली हम देखते हैं मैदा और चीनी और घी से बना हुआ, और ऊपर जो इसमें ग्लेजिंग है ये अलग अलग वेजिटेबल्स हैं। छोले हैं इसमें, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में मूली, चुकंदर के लच्छे डले हुए हैं।
0: बता दें कि धार्मिक मान्यताओं में हरियाली तीज को भगवान शिव और माँ पार्वती के पुनर्मिलन से जुड़ा पर्व माना जाता है। कहा तो ये जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से विवाहित महिलाएं इस दिन अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और कुंवारी लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना से हरियाली तीज का व्रत रखती हैं और पूजा भी करती हैं। जयपुर से रिदम जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: डिफेंस सेक्टर में भारत की सुनहरी उड़ान, आयातक से निर्यातक तक बन गए कई कीर्तिमान। हिंदुस्तान की रक्षा शक्ति के 8 दशकों का सफर देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर, सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम। आजादी का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परमिता देशमुख जी। परमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए, कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शुने के उनाश, एकला चलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी, बिल्कुल।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: कदम से कदम मिलाते हुए
3: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
0: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला बर्फ पर खेलों का शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम। और इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे।

0: हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब दो से तीन महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंक का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंक की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंक में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ दो से तीन महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर।

मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर तिरंगा फहराएंगे। यही वो प्राचीर है जहां से हर साल तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, बल्कि आजादी के उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लाल किले ने सल्तनतों को बदलते देखा, हुकूमतों को आते जाते देखा, लेकिन आज ये किसी बादशाह की सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। मुगल दौर से आजाद भारत तक, गुलामी की आहट से स्वतंत्रता की हुंकार तक, और सत्ता के प्रतीक से राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तक, लाल किले की कहानी दरअसल भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है। जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर,

0: आज वो शुभ घड़ी है जहां हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था, उन क्रांतिकारियों पे चला था

0: जिन्होंने कि फौज को ज्वाइन कर लिया था, आजाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर वो लड़े थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है उनमें से, वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: चूंकि विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो आपके नादिर शाह हो, जितने लोग भी आए, तो यहाँ से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी, जैसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब तो हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा, और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर साल 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत होता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें ये याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान और शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदलकर दिल्ली ले जाएंगे और वहां पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपने एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरह से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवाने खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा।
4: तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव शाहजहां के दौर में पड़ी थी, जिसे कभी किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था, वही लाल किला आज आजाद भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। हर 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जेएनटी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: नेदरलैंड से सामने आई कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अनाथालय, दो अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिलती हैं। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और करीब 40 साल बाद डीएनए टेस्ट में पता चला कि दोनों बहनें हैं। देखिए अजीबोगरीब लेकिन सच्ची फिल्मी कहानी।
3: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये हैं मीना गेल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं, दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुई और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनकी जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
4: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
3: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और 2 बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा। मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
4: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
3: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज़ टुडे पर।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम, आजादी का उत्सव मनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परुमिता देशमुख जी। परुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया। मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए। नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए। बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने। अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको? सबसे ज्यादा
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शुने के उनाश, एकला चलो रे।
0: ये होना चाहिए ना फिर।

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी, हाँ, जी, जी।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए पौरमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
1: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला बर्फ पर खेलों का शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम। और इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे।

0: रिंक पर हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब 2 से 3 महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंक का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंक की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंक में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। यह अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौत तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ 2 से 3 महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साई बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साई भक्त ने अपने आराध्य को

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर तिरंगा फहराएंगे। यही वो प्राचीर है जहां से हर साल तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, बल्कि आजादी के उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लाल किले ने सल्तनतों को बदलते देखा, हुकूमतों को आते जाते देखा, लेकिन आज ये किसी बादशाह की सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। मुगल दौर से आजाद भारत तक, गुलामी की आहट से स्वतंत्रता की हुंकार तक, और सत्ता के प्रतीक से राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तक, लाल किले की कहानी दरअसल भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है, एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है, जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर।

0: आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था उन क्रांतिकारियों पे चला था जिन्होंने की फौज को ज्वाइन कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर वो लड़े थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है उनमें से, वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों

0: मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था, अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: चूंकि विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो आपके नादिर शाह हो, जितने लोग भी आए, तो यहाँ से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी ऐसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब तो हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा, और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर साल 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत होता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें ये याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान और शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना।
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदल कर दिल्ली ले जाएंगे, और वहां पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपने एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं, लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरह से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवाने खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहरे बहिष्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई, और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने। लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा।
4: तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव शाहजहां के दौर में पड़ी थी, जिसे कभी किला-ए- मुबारक के नाम से जाना जाता था, वही लाल किला आज आजाद भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। हर 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जेएनटी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नेदरलैंड से सामने आई कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, दो बच्चियां, दो अलग अनाथालय, दो अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिलती हैं, पहले अजनबी थी फिर दोस्त बनी और करीब 40 साल बाद डीएनए टेस्ट में पता चला कि दोनों बहनें हैं। देखिए अजीबोगरीब लेकिन सच्ची फिल्मी कहानी।
3: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये है मीना गिल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था, बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं, दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुईं और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनके जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
4: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
3: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और दो बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा। मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
4: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
3: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: सीमा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख स्वतंत्रता दिवस कुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साई बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साई भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम, आजादी का उत्सव मनाने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परुमिता देशमुख जी। परुमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परुमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शुने के उनाश, एकला चलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ।
1: हाँ, जी, हाँ, जी।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
1: भूल जाइए बुरी खबरें, देखिए मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
1: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला बर्फ पर खेलों का शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम। और इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे।

0: रिंक पर हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब 2 से 3 महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंक का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंक की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंक में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ 2 से 3 महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
4: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सीमा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो, लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट, मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर।

अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनके बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लाल किले ने सल्तनतों को बदलते देखा, हुकूमतों को आते जाते देखा, लेकिन आज ये किसी बादशाह की सत्ता का प्रतीक नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। मुगल दौर से आजाद भारत तक, गुलामी की आहट से स्वतंत्रता की हुंकार तक, और सत्ता के प्रतीक से राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तक, लाल किले की कहानी दरअसल भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है। जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर।

0: आज वो शुभ घड़ी है जब हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था उन क्रांतिकारियों पे चला था जिन्होंने की फौज को ज्वाइन कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर लड़े थे भारत को आजाद कराने के लिए। सबसे ज्यादा चर्चित नाम है उनमें से वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और पंद्रह

अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: में चूंकि विभिन्न राजनीतिक शक्तियां, चाहे वो मराठा हों, चाहे वो सिख्स हों, चाहे वो आपके नादिर शाह हो, जितने लोग भी आए, तो यहाँ से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी ऐसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब तो हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा, और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर साल 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत होता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें ये याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान और शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना।
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदल कर दिल्ली ले जाएंगे, और वहाँ पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपने एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं, लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरह से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवाने खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहरे बहिष्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा।
4: तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव शाहजहां के दौर में पड़ी थी, जिसे कभी किला-ए- मुबारक के नाम से जाना जाता था, वही लाल किला आज आजाद भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। हर 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जेएनटी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: नेदरलैंड से सामने आई कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अनाथालय, दो अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिलती हैं। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और करीब 40 साल बाद डीएनए टेस्ट में पता चला कि दोनों बहनें हैं। देखिए अजीबोगरीब लेकिन सच्ची फिल्मी कहानी।
8: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये है मीना गेल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुईं और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनकी जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
9: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
8: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और दो बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा। मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
9: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन। लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी। इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली। देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्या को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम। आजादी का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परमिता देशमुख जी। परमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शुने के उनाश, एकला चलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी जी।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया। आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला बर्फ पर खेलों का शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम। और इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे।

0: हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब दो से तीन महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंक का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंक की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंक में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ दो से तीन महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें, सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो, लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया, 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साई बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट, मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साई भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनपी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। तिरंगे के रंग में रंगा पूरा देश आजादी के जश्न के लिए पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इन सब के बीच देश और दुनिया की नजरें टिकी हैं दिल्ली के उस ऐतिहासिक लाल किले पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर तिरंगा फहराएंगे। यही वो प्राचीर है जहां से हर साल तिरंगा सिर्फ आसमान में नहीं लहराता, बल्कि आजादी के उन अनगिनत संघर्षों और बलिदानों की कहानी भी सुनाता है, जिनकी बदौलत आज हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। लाल किले ने सल्तनतों को बदलते देखा, हुकूमतों को आते जाते देखा, लेकिन आज ये किसी बादशाह की सत्ता का प्रतीक नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की आन बान और शान का प्रतीक है। मुगल दौर से आजाद भारत तक, गुलामी की आहट से स्वतंत्रता की हुंकार तक, और सत्ता के प्रतीक से राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक तक, लाल किले की कहानी दरअसल भारत के बदलते इतिहास की कहानी है।

15 अगस्त एक ऐसी तारीख जो हर भारतीय के दिल में देशभक्त की धड़कन तेज कर देती है। एक ऐसी तारीख जब फिजाओं में देशभक्ति का जुनून तैरता है। नीले आसमान के तले फहराते तिरंगे का हर रंग भारत की महान गाथा बयां करता है। जब राष्ट्रगान की हर धुन में करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं और जब पूरी दुनिया की निगाहें टिक जाती हैं दिल्ली के लाल किले पर,

0: आज वो शुभ घड़ी है जहां हम देश के लिए मर मिटने वाले, देश की आजादी के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले, आजीवन संघर्ष करने वाले, फांसी के तख्त पर चढ़कर के भारत मां की जय के नारे लगाने वाले अनगिनत आजादी के दीवानों को नमन करने का ये पर्व है।
1: यमुना किनारे खड़ा ये लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक विशाल इमारत नहीं, बल्कि भारत के इतिहास का वो जीवंत दस्तावेज है जिसकी दीवारों ने सल्तनतों का उत्थान और पतन देखा है, अंग्रेजी हुकूमत का दौर देखा है, आजादी के लिए उठती आवाजें सुनी हैं, और फिर इन्हीं दीवारों ने उस ऐतिहासिक सुबह को भी देखा जब गुलामी की बेड़ियां टूटी और आजाद भारत का तिरंगा पहली बार शान से लहराया। 1857 भारत के इतिहास का वो दौर जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते देश के कई हिस्सों में फैल गई। दिल्ली भी इस बगावत का एक बड़ा केंद्र बनी। लाल किला उस संघर्ष का गवाह बना। आजादी की लड़ाई के आखिरी दौर में भी लाल किला इतिहास के केंद्र में आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ लाल किले में मुकदमे चले।
2: तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्हें 1943 के अंदर सिंगापुर से वो दिल्ली चलो जो था उन्होंने उसका नारा दिया था, और उसके बाद यहीं पर ही 1945 के अंदर यहाँ जो था वो यहाँ पर मुकदमा चला था उन क्रांतिकारियों पे चला था जिन्होंने की फौज को ज्वाइन कर लिया था, आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन कर लिया था और जैपनीज की तरफ से के साथ मिलकर वो लड़े थे भारत को आज़ाद कराने के लिए। सबसे ज़्यादा चर्चित नाम है उनमें से वो आपका नाम है प्रेम सहगल जी का नाम है, उसके बाद ढिल्लन का नाम है, उसके बाद शाहनवाज का नाम है, इन तीनों को था। तो इन तीनों को भी यहाँ पर बात हुई कि यहाँ पर उनका मुकदमा चलेगा, तो उनको बचाने के लिए वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड करा कि हम इनको बचाएंगे। उन्होंने एक कमेटी बनाई लॉयर्स की जो कि वो लड़े। तब तक 45 तक और 47 तो हमें आज़ादी भारत को मिल गई, तो ये माहौल बन चुका था। तो अंग्रेज़ों को मालूम था कि इनको कहना चाहिए सजा देने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होना है, तो वो जो चीफ ऑफ द आर्मी था उसने इनकी सजा को कम्यूट कर दिया था।
1: आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के खिलाफ चले मुकदमों ने देश भर में आक्रोश और राष्ट्रवादी भावना की ऐसी लहर पैदा की जिसने आजादी की मांग को और बुलंद कर दिया। लाल किला जो कभी साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था अब भारतीय राष्ट्रवाद की भावनाओं से जुड़ने लगा था। देश के कोने कोने में आवाज उठ रही थी अंग्रेजों भारत छोड़ो, और फिर वो तारीख आई जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया था। चौदह और 15 अगस्त 1947 की आधी रात जब भारत ने आजादी की नई सुबह में कदम रखा, ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 16 अगस्त 1947 को सुबह 8:30 बजे पहली बार लाल किले के लाहौरी गेट की प्राचीर पर तिरंगा फहराया और आजाद भारत को संबोधित किया।

0: शाहू जितने लोग भी आए, तो यहां से ही उन्होंने शासन करा या यहाँ पर शासन करने का उन्होंने प्रयास करा। इसलिए लाल किला जो है हमेशा से ही सत्ता का केंद्र रहा है। और बाद में अंग्रेज भी जब आए तो उन्होंने भी इसको गैरिसन बना दिया था, छावनी बना दिया था इसको। और जब हिंदुस्तान के आज़ाद हुआ तो भी ऐसा कि हम जानते हैं कि 16 अगस्त को यहाँ पर नेहरू जी ने झंडा फहराया था और देश के नाम संदेश दिया था।
1: जिस किले पर कभी विदेशी सत्ता का प्रभाव था, उसी लाल किले पर पहली बार स्वतंत्र भारत का तिरंगा शान के साथ लहराया। ये सिर्फ ध्वजारोहण नहीं था, ये ऐलान था सदियों के गुलामी के बाद भारत अब अपना भविष्य खुद लिखेगा। तब से लेकर आज तक हर साल 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। 1947 के बाद लाल किला किसी एक शासक का किला नहीं रहा, ये भारत के लोकतंत्र की आवाज का मंच बन गया। हर साल 15 अगस्त की सुबह देश की निगाहें लाल किले की प्राचीर पर टिक जाती हैं। प्रधानमंत्री आते हैं, तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गूंजता है और फिर प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। लाल किले की प्राचीर से देश की पिछले साल की उपलब्धियों, भविष्य की योजनाओं और सैन्य और साथ ही आर्थिक ताकत का ब्यौरा दुनिया के सामने रखा जाता है। भारत के 13 प्रधानमंत्रियों ने लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया है। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। 15 अगस्त के दिन लाल किले पर तीनों सेनाओं द्वारा प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। 21 तोपों की सलामी होती है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाती है। ये दृश्य पूरे देश में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव का संचार करता है। इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला हर भारतीय के लिए त्याग, संघर्ष और एक नए सशक्त भारत के उदय का जीवंत प्रतीक बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: समय का पहिया घूमता गया, सरकारें बदली, चेहरे बदले, देश के सामने आती चुनौतियां बदली, लेकिन सदियों से जो एक चीज अपनी जगह अटल खड़ी रही वो है दिल्ली के लाल किले की ये ऐतिहासिक प्राचीर। 1857 की क्रांति के शोलों से लेकर 15 अगस्त को शान से फहराते तिरंगे तक लाल किला भारत के अतीत का संघर्ष, वर्तमान की सामर्थ्य और भविष्य का अखंड संकल्प है।

0: समय बदलता गया, सरकारें बदलती गईं, प्रधानमंत्री बदलते गए, देश की चुनौतियां बदलती गईं, लेकिन लाल किले की प्राचीर वही रही। कभी यहां से गरीबी से लड़ने का संकल्प सुनाई दिया, कभी आत्मनिर्भरता का संदेश, कभी विज्ञान और तकनीक की बात, कभी सैनिकों के शौर्य का सम्मान, कभी देश के किसानों और युवाओं का जिक्र, और हर बार एक बात समान रही, भारत की संप्रभुता और एकता का संकल्प। सदियों से जो भी भारत पर शासन करता था, लाल किला उसकी सत्ता का मुख्य केंद्र माना गया था। मुगलों के बाद जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो लाल किले पर ब्रिटिश यूनियन जैक फहराया गया। इस वजह से लाल किला भारत की राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन गया था।
1: राइट फ्रॉम जब भी बनकर तैयार हुआ था लाल किला, जो 1648 में बनकर तैयार हुआ, वहाँ से जब हम शुरू करते हैं और अंग्रेजों ने कब्जा किया, तब तो हमेशा ये सत्ता का केंद्र रहा है। और उसके बाद में जब आपको 1947 के अंदर भारत आज़ाद होता है, तो उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो था कि हर 15 अगस्त को यहाँ पर आके झंडा फहराया जाता है, और यहाँ पर इसको इस बात को मान लिया गया है कि ये जो है भारत की जो शासकीय शक्ति है उसका प्रतीक लाल किले को माना गया।
0: 1947 में भारत के आज़ाद होने पर ब्रिटिश सरकार ने लाल किला परिसर भारतीय सेना के हवाले किया। आज़ादी के बाद लाल किले का इस्तेमाल सैनिक प्रशिक्षण के लिए किया जाने लगा। सालों तक यहां सेना का कार्यालय था। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने अपने कार्यालय को हटाकर लाल किला खाली किया और एक समारोह में पर्यटन विभाग को सौंप दिया। इसके आकर्षण और भव्यता की वजह से इसे 2007 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। आज इसके खूबसूरती को देखने दुनिया के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं। लाल किला परिसर में संग्रहालयों का एक ऐसा समूह है जिसे स्वतंत्रता सेनानियों और उनके साहस को समर्पित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस संग्रहालय, यादें जलिया संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ऑफ 1857, दृश्य कला संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक संग्रहालय, इन पांचों संग्रहालयों को सामूहिक रूप से क्रांति मंदिर भी कहा जाता है। लाल किले में जय हिंद नाम से एक घंटे का शानदार लाइट एंड साउंड शो भी होता है। ये शो लाल किले के इतिहास और भारत की आजादी की गाथा को तीन चरणों में दिखाता है। लाइट एंड साउंड शो लाल किले के इतिहास को जीवंत करते हुए दर्शकों के भीतर देशभक्त की भावना को मजबूत करता है। करीब 250 एकड़ जमीन पर फैला ये भव्य किला मुगल राजशाही और ब्रिटिशर्स के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तान बयां करता है। लाल बलुआ पत्थरों से बनी विशाल दीवारों के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। लाल किला सिर्फ लाल पत्थरों से बनी एक ऐतिहासिक इमारत भर नहीं, ये वो प्राचीर है जिसने बादशाहों का दौर देखा, गुलामी का दर्द देखा, और फिर उसी आसमान के नीचे आजाद भारत का तिरंगा लहराते देखा। हर 15 अगस्त को जब इस प्राचीर पर तिरंगा शान से लहराता है तो पूरी दुनिया के सामने भारत की आजादी, संप्रभुता, लोकतंत्र और आत्मसम्मान का संदेश बुलंद होता है।
2: मैं आपसे ये कहूंगा कि जिस झंडे के नीचे हम आप खड़े हैं और आज बैठे हैं, आज इसकी हिफाजत और इसकी रक्षा का सवाल, इसकी शान बनाए रखना है। ये कायम रहे, हम रहें या न रहें, लेकिन ये झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए।
0: ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: हर साल 15 अगस्त को लाल किला सिर्फ रोशन नहीं होता, इतिहास फिर से जीवंत होता है। लाल किले की प्राचीर पर लहराता तिरंगा हमें ये याद दिलाता है कि जिस किले ने कभी बादशाहों की हुकूमत देखी थी, आज वही किला लोकतांत्रिक भारत की ताकत और स्वाभिमान की आवाज बन चुका है।
0: कहानी शुरू होती है 17वीं सदी से, जब मुगल शासक शाहजहां ने कई वजहों से अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली ले जाने का फैसला किया। शाहजहां अपनी सल्तनत के हिसाब से एक नया और भव्य शहर बसाना चाहता था। इसके जरिए वो अपनी शान और शौकत और मुगल कला के वैभव को दुनिया के सामने दिखाना चाहता था। इसके लिए उसने दिल्ली को चुना।
1: कि शाहजहां ने, जिनको कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने का बहुत शौक था, उन्होंने जब ये निर्णय लिया कि हम आगरा से अपनी कैपिटल को बदलकर दिल्ली ले जाएंगे, और वहाँ पर उन्होंने एक शाहजहांबाद बसाया, जिसको आज भी पुरानी दिल्ली है, उसको पहले कहा जाता था शाहजहांबाद। तो यहाँ पर जब आया तो उन्होंने कहा कि हम एक जो है अपने सत्ता का केंद्र, यानी कि एक अपने एक अपना महल किला बनाएंगे। और लाल किला, जैसा कहते हैं, लाल हिंदी का शब्द है और किला जो है अरबिक शब्द है, इन दोनों को मिला के बना है वो। चूंकि वहाँ बलुआ मिट्टी का रेड स्टोन सैंड स्टोन का बना हुआ है, इसलिए उसको लाल किला कहा जाना शुरू कर दिया है।
0: शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहांबाद बसाने का फैसला किया और इसी नई राजधानी के केंद्र में खड़ा हुआ एक भव्य किला, जिसे आज दुनिया लाल किले के नाम से जानती है। यमुना नदी के किनारे किला होने से प्राकृतिक सुरक्षा मिलती है, इस वजह से दुश्मनों के लिए इस किले पर हमला करना आसान नहीं था। मुगल काल में दिल्ली के लाल किले का मूल नाम किला ए मुबारक था, जिसका मतलब भाग्यशाली किला होता है। विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल दुनिया के इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण 1638 में शुरू हुआ और 10 साल तक चला। 1648 में ये किला बनकर तैयार हुआ। कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के मशहूर वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को लाल किले की शाही डिजाइन बनाने के लिए चुना था। उस्ताद अहमद लाहौरी ने लाल किला को बनवाने में भी अपनी पूरी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल कर इसे सुंदर और भव्य रूप दिया। यही वजह है कि निर्माण के इतने सालों के बाद आज भी इस किले को विशालता और खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों से घिरा ये किला सिर्फ सुरक्षा का मजबूत दुर्ग नहीं था, बल्कि इसके भीतर महल, दरबार, उद्यान, जल प्रणाली और शाही आवासों का पूरा संसार बसाया गया था। फारसी, तैमूरी और भारतीय स्थापत्य परंपराओं का अद्भुत मेल लाल किले को मुगल स्थापत्य की उत्कृष्ट उपलब्धियों में शामिल करता है।
2: जो इसकी बनावट है वो एक धनुषाकार है, धनुष की तरह से आगे और फिर उस तरीके से ही ये ऐसे गोलाकार धनुषाकार में बनाया गया था। जो महल थे, या जैसे जीनत बेगम का महल, मैकाफ का वो घर जो कुतुब मीनार पे भी है और यहाँ पर भी था, ये सब बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे और बड़े नफासत, लखनवी नफासत से सारी चीजें होती थी। चांदनी चौक से पालकियां गुजरती थी, नवाब गुजरते थे, वो एक अजीब और बहुत ही खूबसूरत दूसरी दुनिया थी।
0: इस किले की दीवारें भले ही लाल हैं, लेकिन इसके भीतर कभी शाही वैभव के रंग बिखरे रहते थे। यही था दीवाने आम, जहां बादशाह आम लोगों और फरियादियों से मिलता था, और यही था दीवाने खास, जहां खास दरबार सजता था। कभी इसकी खूबसूरती का हिस्सा थी नहरे बहिश्त, यानी स्वर्ग की धारा, जो महल के हिस्सों के बीच बहती थी। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और तैमूरी प्रभावों का सुंदर समन्वय दिखाई देता है। दुनिया का सबसे बड़ा और दुर्लभ कोहिनूर हीरा भी कभी इसी लाल किले का हिस्सा था। दरअसल शाहजहां जिस तख्त पर बैठता था, ये हीरा उसी में लगा था। लेकिन वक्त हर साम्राज्य की तस्वीर बदल देता है। 18वीं और 19वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य की ताकत कमजोर होती गई, और फिर आया वो दौर जब दिल्ली और लाल किले पर अंग्रेजी हुकूमत का प्रभाव बढ़ता गया। 1857 भारत के इतिहास का वो साल जब अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह भड़का। दिल्ली इस संघर्ष का एक प्रमुख केंद्र बनी और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर विद्रोह के प्रतीकात्मक नेता बने, लेकिन अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल डाला।
2: 1857 में 10 मई को जो विद्रोह का स्वर उठा मेरठ से, उन्होंने दिल्ली और दिल्ली में लाल किले को अपने विद्रोह का प्रतीक माना, और बहादुर शाह जफर को, हालांकि वो बहुत बूढ़ा था, उसको एक प्रतीकात्मक हेड माना, अपने प्रमुख माना, जिसके अंडर जो विद्रोह का स्वर उठा वो फैलाया जाएगा।
4: तब से ये स्वतंत्रता का एक प्रतीक बन गया।
0: बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, अंग्रेजों ने किले पर कब्जा कर लिया और इसे ब्रिटिश छावनी में तब्दील कर दिया। इसके बाद लाल किले का चरित्र भी बदल गया। जो किला कभी मुगल बादशाहों की सत्ता का केंद्र था, वो ब्रिटिश सैन्य नियंत्रण का हिस्सा बन गया। अब तक लाल किला बहुत कुछ देख चुका था, बादशाहों का वैभव, सल्तनतों का उत्थान पतन, 1857 की बगावत और अंग्रेजी हुकूमत का शिकंजा। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। इन दीवारों को अभी इतिहास का वो सबसे गौरवशाली अध्याय देखना था, वो दिन जब इसी प्राचीर पर विदेशी हुकूमत का झंडा नहीं, आजाद भारत का तिरंगा शान से लहराने वाला था, जब एक साम्राज्य का अध्याय खत्म होने वाला था और एक नए राष्ट्र के सफर की शुरुआत होने वाली थी। और फिर आया 15 अगस्त 1947, जिस किले की नींव शाहजहां के दौर में पड़ी थी, जिसे कभी किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था, वही लाल किला आज आजाद भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और राष्ट्रीय गौरव का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन चुका है। हर 15 अगस्त को जब इसकी प्राचीर पर तिरंगा लहराता है, तो इतिहास एक बार फिर वर्तमान से जुड़ जाता है। सल्तनत के किले से लोकतंत्र के किले तक का ये सफर दरअसल लाल किले की नहीं, भारत की कहानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: और चलिए इसी के साथ एक बार फिर से 80वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए जेएनटी।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: नेदरलैंड से सामने आई कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दो बच्चियां, दो अलग अनाथालय, दो अलग परिवार और जिंदगी की राह भी बिल्कुल अलग अलग। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब करीब 30 साल बाद ये दोनों पहली बार मिलती हैं। पहले अजनबी थी, फिर दोस्त बनी और करीब 40 साल बाद डीएनए टेस्ट में पता चला कि दोनों बहनें हैं। देखिए अजीबोगरीब लेकिन सच्ची फिल्मी कहानी।
6: ये तस्वीर इत्तेफाक की ऐसी कहानी है जिसे दुनिया बड़ी दिलचस्पी से सुन रही है। ये हैं मीना गिल्टिंग और मिनल डिसेन। दोनों के सरनेम अलग हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग परिवारों में हुई है, लेकिन दोनों का अतीत एक है। दोनों का जन्म भारत में हुआ था। बचपन में दोनों को अलग अलग अनाथालय में छोड़ दिया गया और फिर किस्मत दोनों को भारत से हजारों किलोमीटर दूर नीदरलैंड ले गई। अलग अलग डच परिवारों ने उन्हें गोद लिया, अलग घर मिले, अलग पहचान मिली, लेकिन शायद किस्मत ने दोनों के लिए एक सरप्राइज बचा कर रखा था। बचपन बीता, दोनों अपनी दुनिया में बड़ी होती गईं। दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इस दुनिया में उनका अपना कोई है। फिर आया साल 1996, दोनों बहनें बड़ी हुई और एक ऐसे प्रोग्राम में पहुंची जहां गोद लिए गए बच्चों का मिलन समारोह आयोजित किया गया था। यही पहली बार मीना और मिनल आमने सामने आई। दोनों की ये पहली मुलाकात थी और इसी मुलाकात के बाद दोनों में एक ऐसा कनेक्शन बना जिसे उस वक्त शायद दोनों खुद भी समझ नहीं पाई। दोस्तों ने भी गौर किया कि दोनों के चेहरे एक दूसरे से बेहद मिलते जुलते हैं। दोनों ने एक दूसरे के पते लिए, दोस्ती हुई और फिर मजाक मजाक में दोनों एक दूसरे को बहन कहकर बुलाने लगी। किसे पता था ये मजाक कुछ साल बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। कहानी में अभी लंबा इंतजार था। कुछ वक्त बाद दोनों का संपर्क टूट गया, जिंदगी अपनी अपनी राह पर आगे बढ़ गई और करीब 15 साल तक दोनों एक दूसरे से दूर रही। फिर आया अप्रैल 2026, दोनों ने अलग अलग डीएनए टेस्ट कराने का फैसला किया। मकसद था अपने जैविक परिवार, अपने अतीत और उन रिश्तेदारों के बारे में जानना जिनसे उनका रिश्ता जन्म के साथ जुड़ा था। जब रिपोर्ट आई तो अतीत ने ऐसा दरवाजा खोला जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मीना और मिनल, जो खुद को सालों से दोस्त समझती रहीं, वो सगी बहनें निकली। रिपोर्ट से सच जानने के बाद इसी अगस्त को दोनों नीदरलैंड में एक दूसरे से मिली। ये लम्हा दोनों बहनों के लिए भावुक कर देने वाला था। 43 साल की मीना आज 3 बच्चों की माँ है। उनके मुताबिक उन्हें ताउम्र लगता रहा कि उनकी जिंदगी की कहानी में कोई पन्ना गायब है, लेकिन अब वो पन्ना मिल चुका है।
7: मुझे लगता है कि अब जाकर मैं पूरी हुई हूँ। मेरे दिल में जो एक खाली जगह थी वो जैसे उस पहले के टुकड़े को मिलने से भर गई है। और हाँ, मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत भावुक कर देने वाला है, लेकिन मुझे वाकई बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
6: दूसरी तरफ 44 साल की मिनल फ्रांस में अपने पार्टनर और दो बेटों के साथ रहती हैं। उनका बचपन प्यार से भरा था, लेकिन जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद दिल के किसी कोने में एक अनजाना अकेलापन शायद हमेशा मौजूद रहा, मगर अपनी सगी बहन को पाकर मानो सब कुछ बदल गया।
7: मैं घर पर अकेली थी, तभी मेरे फोन पर एक पॉपअप आया। उसमें लिखा था, आपके डीएनए टेस्ट के नतीजे तैयार हैं। मैंने उसे खोला तो उसमें लिखा था मीना बहन, लेकिन मुझे उस वक्त एहसास ही नहीं हुआ कि ये वही मीना है जिसे मैं जानती थी।
6: इन बहनों की कहानी खुद में किस्मत की एक अनोखी कहानी है। दोनों बहनों ने बरसों तक एक दूसरे को बस दोस्त समझा, लेकिन किस्मत ने उन्हें फिर से उसी डोर में बांध दिया जिस रिश्ते में उन्हें कुदरत ने कभी बांधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज़ टुडे।

0: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: आज अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा देश। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर में तिरंगे के रंगों की रोशनी से जगमग हुई प्रमुख इमारतें। स्वतंत्रता दिवस से पहले जश्न आजादी के रंग में रंगा देश, शहर शहर तिरंगा रैलियों का आयोजन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दिखी देशभक्ति की तस्वीर। उत्तराखंड के टिहरी से आई आजादी के जश्न की तस्वीरें। सैकड़ों युवाओं ने टिहरी झील पर नावों पर सवार होकर निकाली तिरंगा रैली, देशभक्ति के तरानों से गूंजी पूरी वादी। स्वतंत्रता दिवस की वजह से आज सुबह 4 बजे से ही चलेगी दिल्ली मेट्रो। लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में आमंत्रित लोग मुफ्त में कर सकेंगे यात्रा। अस्सीवें स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने वीरता पुरस्कारों का ऐलान किया। 9 जांबाजों को मिलेगा कीर्ति चक्र, 19 शौर्यवीर शौर्य चक्र से होंगे सम्मानित। शिरडी में भक्त ने साईं बाबा को चढ़ाए 24 कैरेट सोने के साथ बिस्किट। मुराद पूरी होने पर बेंगलुरु के साईं भक्त ने अपने आराध्य को चढ़ाए 21 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के शुद्ध सोने के बिस्किट।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। हमारा तिरंगा सिर्फ तीन रंगों का झंडा नहीं है, ये हमारी आन बान और शान का प्रतीक है। और आज जब हम मना रहे हैं भारत की आजादी का 80वां स्वतंत्रता दिवस, वो तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए एक बार फिर से दिल से कहें वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो तैयार हो जाइए देशभक्ति संगीत मनोरंजन और गर्व से भरे इस खास जश्न के लिए, क्योंकि आज के ये मंच समर्पित है हमारे भारत के नाम। आजादी का उत्सव मनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जसराज के शिष्य परोमिता देशमुख जी। परोमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। वही अपने अपने सास के साथ इनका साथ देंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के पोते राहुल मिश्रा और सुमित कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: चलिए, तो इस दिन को देखिए, हम सभी याद करते हैं आज के दिन जितने भी लोगों ने हमारे लिए त्याग दिया, उस बलिदान को हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है परोमिता जी?
2: ए मेरे वतन के लोग।
0: चलिए, देर किस बात की, शुरुआत उसी से करते हैं।
2: ठीक,

बात है, बहुत खूब परुमिता जी। देखिए, कुर्बानी का आपने जिक्र किया और उस पर ये गाना भी बहुत ही अद्भुत आपने गाया। आजादी की अगर हम बात करते हैं तो आजादी, जब ये शब्द सुनते हैं आपके मन में क्या आता है, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे आजादी को संगीत के जरिए?

0: बहुत बढ़िया. मैं सच बताऊं, हम दोनों का मन नहीं कर रहा कि इसको बीच में रोका जाए या हम थोड़ा सा ब्रेक लें या हम कहीं पर चले जाएं पानी पिए. नहीं, ये कंटिन्यूअसली ऐसे जीएनटी पर चलते रहना चाहिए. बहुत उम्दा, बहुत सुंदर गाया है आपने. अच्छा परमिता जी, जब भी देशभक्ति के तरानों की हम का जिक्र करते हैं, आपके जहन में या आपके दिल के करीब पूछूं, कौन सा गाना है जो सबसे पसंद है आपको, सबसे ज्यादा?
1: सबसे पसंद था रविन्द्रनाथ टैगोर का एक है, जो दी तो डाक शुने के उनाश, एकला जलो रे.
0: ये होना चाहिए ना फिर.

0: बहुत खूब, आजादी का उत्सव इतना भी सुंदर हो सकता है इन तरानों के साथ, ये तो कभी नहीं सोचा था। पौरमिता जी, आपने क्या माहौल बनाया है और बहुत ही सुंदर आवाज है आपकी। पौरमिता जी से क्या सुनेंगे पूजा?
1: रघुपति राघव सुनना चाहूंगी मैं, मेरा खुद फेवरेट है।
2: अच्छा, आप लोग भी गाइएगा साथ में।
1: जी, बिल्कुल।

0: क्या बात,
1: बहुत बढ़िया। आप सभी का जीएनटी के स्टूडियो में आने के लिए परमिता जी, राहुल, सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
0: चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
0: जश्न आजादी से पहले लद्दाख को मिला बर्फ पर खेलों का शानदार तोहफा। लद्दाख में अब आइस हॉकी के लिए कड़ाके की सर्दी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां तैयार हो चुका है आर्टिफिशियल आइस हॉकी स्टेडियम, और इस आइस रिंग पर आइस हॉकी के साथ साथ कई दूसरे विंटर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकेंगे।

0: रिंक पर हॉकी खेलने का रोमांच वही होगा, लेकिन अब आइस रिंक के लिए लद्दाख में माइनस वाले बर्फीली सर्दी का इंतजार नहीं करना होगा। अब 2 से 3 महीने नहीं, पूरे साल आइस रिंक पर खिलाड़ी कर सकेंगे प्रैक्टिस। शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से लद्दाख में पहला आइस रिंक बनाया गया है। करीब 51 करोड़ की लागत से बनाए गए इस इंटरनेशनल आर्टिफिशियल रिंक का उद्घाटन गुरुवार को उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने किया। इस आर्टिफिशियल आइस रिंक की खास बात आइस चिलिंग की सुविधा है। रिंक में 24 घंटे आइस चिलिंग की सुविधा होने से खिलाड़ी पूरे साल आइस हॉकी की प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये अत्याधुनिक आइस रिंक न सिर्फ पुराने खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर की सौगात लेकर आया है, बल्कि आइस खिलाड़ियों की नई पौध तैयार करने के लिए भी बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। अब तक खिलाड़ियों को सर्दियों के दौरान ही प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने का अवसर मिलता था। इस बर्फीले मौसम के लिए उन्हें साल भर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आइस हॉकी खेलने के लायक बर्फ 2 से 3 महीने तक ही गिरती है। लेकिन अब इस नए आर्टिफिशियल आइस रिंक के शुरू होने से यहां साल भर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो सकेंगी। इतना ही नहीं, इस रिंक पर आइस हॉकी के अलावा आइस स्केटिंग समेत कई विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकेगा। उम्मीद है कि आइस रिंक के जरिए लद्दाख में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को मजबूती मिलेगी और युवाओं को अपनी पहचान बनाने का मौका मिल सकेगा। अशरफ पानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: क्या है हरियाली तीज का पूजा विधान? हरियाली तीज पर मिलेंगे कौन से वरदान? क्या है हरियाली तीज का महत्व, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।